मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्ज़ पर। आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। श्रोताओं, आज बुधवार है, शक सम्मत 1948 के श्रवण मास की 14वीं तिथि, तदनुसार 5 अगस्त सन 2026। इस समय हमारी स्टूडियो घड़ी में भोर के 5:56 होने को हैं। अब हमारी आज की

0: मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 978 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। भोर के 6 बजने को हैं। अब पहले हिंदी में समाचार और 6:05 पर अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। भारत इस वर्ष ब्रिक्स संगठन के अध्यक्ष के रूप में ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की तीसरी बैठक की मेजबानी करेगा। ये बैठक आज और कल भोपाल में होगी। संस्कृति मंत्रालय ने बताया कि बैठक में सदस्य देशों के प्रतिनिधि सांस्कृतिक सहयोग बढ़ाने और ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक से पहले प्रमुख मुद्दों पर सहमति बनाने पर विचार करेंगे। 2 दिन की बैठक में 3 प्राथमिकता क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। मंत्रालय ने बताया कि इस बैठक से ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत सांस्कृतिक साझेदारी मजबूत करने तथा संस्कृति के माध्यम से समावेशी विकास

0: को बढ़ावा देने की भारत की प्रतिबद्धता व्यक्त होती है। ब्रिक्स देशों के शिक्षा मंत्रियों की 13वीं बैठक आज से उड़ीसा के भुवनेश्वर में होगी। ये बैठक 7 अगस्त तक चलेगी। इसी दौरान संगठन के वरिष्ठ अधिकारियों की तीसरी बैठक भी चलेगी। शिक्षा मंत्रालय ने बताया कि इन बैठकों में शिक्षा मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और सदस्य देशों के प्रतिनिधि विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। मुख्य रूप से आरंभिक बाल्यावस्था में समुचित देखभाल और शिक्षा, कौशल विकास सहयोग बढ़ाना तथा अनुसंधान, नवाचार और स्टार्टअप को बढ़ावा देने पर विचार होगा। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ब्रिक्स देशों के शिक्षा मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेंगे। संसद ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इसे राज्यसभा ने कल स्वीकृति, लोकसभा पहले ही विधेयक को पारित कर चुकी है। विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में संशोधन करना है। नया विधेयक विलंबित पंजीकरण के प्रावधानों को और अधिक सख्त बनाने और जन्म तथा मृत्यु की घटनाओं के समय पर सूचना देने को प्रोत्साहित करने के लिए लाया गया है। इससे पहले लोकसभा ने विनियोग विधेयक 2026 पारित किया। इसमें 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वित्त वर्ष के दौरान कुछ सेवाओं पर स्वीकृत राशि से अधिक खर्च की गई थी। इस राशि को पूरा करने के लिए देश की संचित निधि से धन के विनियोग को अधिकृत करने का प्रावधान है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही का नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित रही। इसके बाद कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने अयोध्या राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठाया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर का विरोध करने वाली कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अब चंदे की कथित चोरी को लेकर नाटक कर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। संसद की कार्यवाही आज दिन के 11 बजे से शुरू होगी। झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी और अन्य भर्ती परीक्षाओं में कथित तौर पर पेपर लीक होने के विरोध में प्रदर्शन कर रहे नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों ने राज्य के बाहर के सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से जांच की मांग की। उन्होंने कहा कि उन्हें अपराध जांच विभाग सीआईडी की जांच पर भरोसा नहीं है। प्रदर्शनकारी 29 जुलाई से रांची में अनिश्चितकालीन धरना दे रहे हैं। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में कथित स्थानीय चुनाव को पूरी तरह दिखावा बताया है और कहा है कि इससे सच्चाई छिप नहीं सकती। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में संवाददाताओं से कहा कि वहां की वास्तविकता विरोध प्रदर्शन और पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा की जा रही हिंसा है।
1: इस वर्ष जून से अब तक वहाँ जन प्रदर्शन जो चल रहा है उसमें 90 लोग मारे गए हैं और कई एक अन्य में घायल हुए हैं। पाकिस्तान की सत्ता व्यवस्था ने जनता के असंतोष का जवाब गोली से, संचार बंदी से, धमकी से और दमन से दिया है। इसके लिए उसे जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए और विश्व समुदाय को मानव अधिकारों पर पाकिस्तान के पाखंडपूर्ण उपदेशों के इस खोखले मुखौटे के पार वास्तविकता को देखना चाहिए।
0: राष्ट्रपति भवन स्थित अमृत उद्यान की ग्रीष्मकालीन वार्षिक प्रदर्शनी आम लोगों के लिए इस महीने की 16 तारीख से खुल जाएगी। लोग 15 सितंबर तक अमृत उद्यान का भ्रमण कर सकेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार राज्य परिवहन निगम की बसों में 60 वर्ष और इससे अधिक आयु की महिलाओं को निःशुल्क यात्रा की सुविधा देगी। इसके लिए बजट में समुचित प्रावधान किए गए हैं। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में कृष्ण प्रसाद गरागा और पृथ्वी कृष्णमूर्ति रॉय ने डबल्स प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। महिला सिंगल्स में तन्वी शर्मा भारत की अगुवाई करेगी। पीवी सिंधु और उन्नति हुड्डा इस प्रतियोगिता में भाग नहीं ले रही हैं। ये प्रतियोगिता 9 अगस्त तक खेली जाएगी। विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप आज से शुरू हो रही है। इसमें 36 सदस्य भारतीय टीम हिस्सा लेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Subhadra Ramachandran. The Parliament has passed the Registration of Births and Deaths Amendment Bill 2026 with the Rajya Sabha approving it yesterday. Lok Sabha had already passed the bill. Minister of State for Home Nityanand Rai moved the bill in the upper house, which aims to amend the Registration of Births and Deaths Act 1969. Following the passage of the bill, the Rajya Sabha was adjourned for the day. The Lok Sabha has passed the Appropriation No. 3 Bill 2026 yesterday. Following the passage of the bill, the lower house was also adjourned for the day. Earlier,

श्रोताओं, ये भक्ति रचनाएं आप आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरत गढ़ से सुन रहे हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम की अगली रचना।

श्रोताओं, आप वंदना कार्यक्रम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से सुन रहे हैं। हमारे मीटर्स हैं मीडियम वेव 326.7 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्स, डीआरएम 909 किलोहर्ट्स, एफएम 100.1 किलो मेगाहर्ट्स, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी आप हमें सुन पा रहे हैं। आइए सुनते हैं प्रोग्राम की अंतिम रचना।

0: अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना, आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। आइए सुनते हैं आज का चिंतन। विषय है ओमकार साधना, वाचक स्वर चैतन्य गुरु का।
1: साधना एक शब्द है, लेकिन ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण अर्थ होता है। ओंकार का साधना के बारे में आप सबको परिचय कराना चाहूँगा। ओंकार, जैसे हम बोलते हैं एक मंत्र का ओम नमः शिवाय ऐसा, तो सिर्फ ओम बोलने से उसका पूरा फायदा हमें मिलता नहीं। ओंकार के अंदर में तीन मात्राएं होते हैं, आकार, उकार, मकार। कौन सा मात्रा को कितना देर बोलने से कौन सा तरंगे पैदा होते हैं, और उन तरंगों का जो फ्रीक्वेंसी है, जो हमारा मेटाबॉलिज्म के ऊपर, हमारा शरीर के अंदर में ब्लड केमिकल्स के ऊपर कैसा काम करता है, एक तकनीक है जो ओंकार साधना है। और उसको हम इस तरह बोलने से बहुत फ़ायदा होगा, जैसे

अभी मैं तीन मात्राओं को उच्चारण किया, लेकिन अंदर से आवाज एक ही है, इसको ऊपर में जैसा पूरा मुंह खोल करके बोला हूं तो आ, ये शब्द नाभि से निकलती है। और दूसरा ऊ उकार, तो उसको हम दोनों होठों को नजदीक करते हैं तो उकार में बदलते हैं, इस मात्रा को मैंने ज्यादा इस्तेमाल किया। और ये अनाहत चक्र मैंने हमारा हृदय के पास में, क्योंकि जो कॉन्शियस लेवल है हमारा ये पूरा यहीं पर होता है। और

0: मकार, जब मकार मैंने उच्चारण किया तो कंठ के ऊपर, जिसको हम पराशक्ति परा बोलते हैं। इस तरह उकार को ज़्यादा बोलने से शरीर के अंदर में जो अनाहत चक्र है चौथा, और उसके नीचे और ऊपर में पूरा ऊर्जा का संचालन होगा और नीचे अंगों के अंदर में जितने भी बीमारियां दूर होते हैं। ऐसे ही आध्यात्मिक क्षेत्र में अगर हमको आगे बढ़ना हो तो मकार शब्द को दोनों होठों को बंद करके उच्चारण करते हैं, तब पूरा मस्तिष्क के अंदर में ऊर्जा संचारित होगा और उससे हमारा मस्तिष्क में और मानसिक तौर पर बहुत फायदा होगा। अगर एक आम आदमी शुरू करना हो तो इसी तरह आकार को 4-5 सेकंड बोलें, फिर उसके बाद उकार को जितना लंबा खींच सके उतना लंबा खींचें और मकार से अंत कर दें। और इस तरह से अगर हम आकार उकार मकार को बोलते हैं तो जो उन कोशिकाओं के अंदर में जो गड़बड़ है वो दूर हो जाएगा और अपने आप फ्रीक्वेंसी बदल जाएगा और बीमारी दूर हो जाएगा। और इसके साथ में अपना श्वास का प्रक्रिया को भी जोड़ते हैं। जब बोलते वक्त हमारा शरीर के अंदर में से कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ तो मुंह से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। अब अंत में जो कुछ भी बचा है मुंह बंद करके नाक से बोलता हूँ तो नाक से जो बचा वो पूरा निकल जाता है। निकलने के बाद श्वास ना लेते हुए नाभि को अंदर खींच करके गर्दन को नीचे करते हैं और बाहर में हवा बाहर, मतलब एक बांध बन गया, इसको कहते हैं प्राणायाम में शून्य स्थिति। इस स्थिति में जितना देर रह सकते हैं उतना देर रहेंगे, जब सहन नहीं कर पाते हैं तब गर्दन को उठा करके मुंह से श्वास ले लेंगे। यहाँ पर क्या होता है, अब तक जो ऑक्सीजन कोशिकाओं को नहीं मिला है वो ऑक्सीजन मिलने लगता है। जब ऑक्सीजन से भरपूर हो जाता है कोशिकाएं, तब उसके अंदर में जो कार्बन डाइऑक्साइड भरा हुआ आज तक वो पूरा निकल जाता है, तो नया ऊर्जा कोशिका को मिलेगा और पुराना गंदगी निकल जाती है। इस तरह हर कोशिका, हर अंग, अंग प्रत्यंग पूरा बॉडी के अंदर में और खास करके रीढ़ हड्डी के अंदर में, मेरुदंड के अंदर में जितना भी तकलीफ है सब दूर हो सकते हैं। जो व्यक्ति इस क्रिया को इस तरह 25 मिनट, मतलब 25 मिनट लगातार बोलना नहीं, ये सब बोलना श्वास के साथ में जोड़ना 1 मिनट लगता है और 4 मिनट आराम करते हैं। एक ओंकार साधना का मतलब 5 मिनट हो गया, ऐसा हम आम व्यक्ति 5 बार ही करना चाहिए। ऐसा इस 25 मिनट जो व्यक्ति मॉर्निंग में खाली पेट पे करता है उनको पूरा शरीर एक ऊर्जावान हो जाता है, हर कोशिका ताजगीपन महसूस करता है। थकावट जिंदगी में होती नहीं है तो हमारा आभा मंडल चेहरे का वो पूरा बदल जाता है, जीवन ही कुछ ऊर्जावान हो जाता है।
1: अभी आप आज का चिंतन सुन रहे थे, आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है।

जी हाँ, ये है आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़। कार्यक्रम विवरण में सुनिए हमारी आज की तीनों सभाओं में प्रसारित मुख्य मुख्य कार्यक्रमों का विवरण और उनका प्रसारण समय। अब से कुछ ही समय बाद 7:10 पर कार्यक्रम होगा खेतीहरा वास्ते। जानकारी का विषय रहेगा जैविक खादों का महत्व। दोपहर 12:50 पर ग्रामीण श्रोता सुनते हैं कार्यक्रम खेत खलिहान। विषय होगा ओझला एक संतुलित आहार। चौपाल कार्यक्रम होगा संध्या 7:00, जिसमें आज व्हाट्सएप, ईमेल और पत्रों पर आधारित आपके पत्रों के उत्तर दिए जाएंगे। बाजार भाव और मौसम संबंधी जानकारी भी ग्रामीण श्रोता इस कार्यक्रम में सुन पाएंगे। मानस गान आप सुनेंगे 7:20 पर। आप सुनेगा भाग संख्या 326, मुख्य स्वर सुरेश वाडकर का होगा। राजस्थानी लोक संगीत का कार्यक्रम मरुमंगल हमारे केंद्र से होता है 9:10 पर। आज कलाकार

होंगे तानाराम मेहरड़ा। प्रोग्राम सुप्रभात 7:30 पर कुछ युगल फिल्मी गीत 9:30 पर आप हमारे केंद्र से सुनेंगे आज के फनकार। हमारा ये कार्यक्रम होगा दिन में 10 बजे, दिन में 11 बजे आप सुनेंगे प्रोग्राम सैनिकों के लिए कुछ बातें कुछ गीत। हमारा ये कार्यक्रम होगा दोपहर 12:05 पर, चंदौर फिल्मी गीतों का लुत्फ आप ले सकते हैं दोपहर बाद 2:30। प्रोग्राम एक ही फिल्म से होगा रात 8:15 पर और देर रात 10 बजे आप सुनेंगे कुछ फिल्मी गीत। झोंक माही दी प्रोग्राम सराइकी होगा संध्या 6:05 पर। युवा श्रोताओं के लिए युववाणी कार्यक्रम आप सुनते हैं संध्या 5 बजे, जिसमें आज फरमाइशी प्रोग्राम होगा आपकी पसंद और टुडे हिस्ट्री। बहनों के लिए उनका अपना कार्यक्रम महिला जगत होगा दोपहर 1:05 पर, जिसमें आज फरमाइशी प्रोग्राम आपकी पसंद के साथ साथ सावन में हरे रंग का महत्व, पड़ोसी हमारे सच्चे मित्र और आधुनिकता के मायने विषय पर बहने सुनेंगी जानकारी। सुगम संगीत आप हमारे केंद्र से सुना करते हैं हमारी प्रातःकालीन सभा में 8:45 पर, दोपहर 12:30 पर और रात 9:15 पर। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाने वाले कार्यक्रम इस प्रकार से हैं। रात 8 बजे संसद समीक्षा और रात 9:30 पर चर्चा का विषय है। ये दोनों कार्यक्रम हम आपके लिए आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। जिले की चिट्ठी संध्या 6:40 पर आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र से रिले की जाएगी। अभी आप सुन रहे थे हमारी आज की तीनों सभाओं में प्रसारित मुख्य मुख्य कार्यक्रमों का विवरण और उनका प्रसारण समय। मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। 6:55 होने को है। अब पहले संस्कृत में, 7 बजे हिंदी में और 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। भारतीय ध्वज वाले वाणिज्यिक पोत एमएसवी फैज नूरे औलैया पर हमले की भारत ने कड़ी निंदा की है। हमले के बाद ये जहाज कल यमन तट से दूर लाल सागर में डूब गया था। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि सभी 13 भारतीय नागरिकों को बचा लिया गया है। मंत्रालय ने कहा कि रियाद में भारतीय दूतावास स्थिति पर कड़ी नजर रख रहा है और चालक दल की सुरक्षा के लिए यमन के अधिकारियों के साथ सक्रिय समन्वय कर रहा है। मंत्रालय ने यमन के अधिकारियों के सहयोग के लिए उनका आभार व्यक्त किया। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में कथित स्थानीय चुनाव को पूरी तरह दिखावा बताया है और कहा है कि इससे सच्चाई छिप नहीं सकती। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में संवाददाताओं से कहा कि वहां की वास्तविकता विरोध प्रदर्शन और पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा की जा रही हिंसा है।
1: इस वर्ष जून से अब तक वहाँ जन प्रदर्शन जो चल रहा है उसमें 90 लोग मारे गए हैं और कई अन्य घायल हुए हैं। पाकिस्तान की सत्ता व्यवस्था ने जनता के असंतोष का जवाब गोली से, संचार बंदी से, धमकी से और दमन से दिया है। इसके लिए उसे जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए और विश्व समुदाय को मानव अधिकारों पर पाकिस्तान के पाखंडपूर्ण उपदेशों के इस खोखले मुखौटे के पार वास्तविकता को

0: रखना चाहिए।
1: भारत इस वर्ष ब्रिक्स संगठन के अध्यक्ष के रूप में ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की तीसरी बैठक की मेजबानी करेगा। ये बैठक आज और कल भोपाल में होगी। संस्कृति मंत्रालय ने बताया है कि बैठक में सदस्य देशों के प्रतिनिधि सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ाने और ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक से पहले प्रमुख मुद्दों पर सहमति बनाने पर विचार करेंगे। ब्रिक्स देशों के शिक्षा मंत्रियों की 13वीं बैठक आज से उड़ीसा के भुवनेश्वर में होगी। ये बैठक 7 अगस्त तक चलेगी। इसी दौरान संगठन के वरिष्ठ अधिकारियों की तीसरी बैठक भी चलेगी। शिक्षा मंत्रालय ने बताया है कि इन बैठकों में शिक्षा मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और सदस्य देशों के प्रतिनिधि विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। संसद ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इसे राज्यसभा ने कल स्वीकृति दी थी। लोकसभा पहले ही विधेयक को पारित कर चुकी है। विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में संशोधन करना है। ये नया विधेयक विलंबित पंजीकरण के प्रावधानों को और अधिक सख्त बनाने और जन्म तथा मृत्यु की घटनाओं की समय पर सूचना देने को प्रोत्साहित करने के लिए लाया गया है। इससे पहले लोकसभा ने विनियोग विधेयक 2026 पारित किया। इसमें 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वित्त वर्ष के दौरान कुछ सेवाओं पर स्वीकृत राशि से अधिक खर्च की गई थी। इसी राशि को पूरा करने के लिए देश की संचित निधि से धन के विनियोग को अधिकृत करने का प्रावधान है। संसद के दोनों ही सदनों की कार्यवाही कल नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के कारण, पुलिस की कथित कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के चलते बाधित रही। इसके बाद कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। संसद की कार्यवाही आज दिन में 11 बजे से शुरू होगी। झारखंड लोक सेवा आयोग और अन्य भर्ती परीक्षाओं में कथित तौर पर पेपर लीक होने के विरोध में प्रदर्शन कर रहे नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों ने राज्य के बाहर के सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से जांच की मांग की है। उन्होंने कहा है कि उन्हें अपराध जांच विभाग CID की जांच पर भरोसा नहीं है। प्रदर्शनकारी 29 जुलाई से रांची में अनिश्चितकालीन धरना दे रहे हैं। रिजर्व बैंक आज द्विमासिक मौद्रिक नीति की समीक्षा घोषित करेगा। RBI के गवर्नर संजय मल्होत्रा आज सुबह 10 बजे नवीनतम रेपो रेट की घोषणा करेंगे। रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की 3 दिन की बैठक सोमवार को शुरू हुई थी। नीतिगत निर्णय, मौजूदा भू राजनैतिक तनाव और अमरीकी फेडरल रिजर्व पर दबाव के महत्वपूर्ण दौर में आ रहा है। ये आशा है कि RBI प्रमुख रेपो रेट में कोई बदलाव न करते हुए इसे 5.25% पर ही रखेंगे। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज तन्वी शर्मा और किदांबी श्रीकांत सहित भारत के शीर्ष खिलाड़ी प्रतियोगिता में अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Anuja Kumar. The Parliament has passed the Registration of Births and Deaths Amendment Bill 2026, with the Rajya Sabha approving it yesterday. Lok Sabha had already passed the bill. Minister of State for Home, Nityanand Rai, moved the bill in the Upper House, which aims to amend the Registration of Births and Deaths Act 1969. Following the passage of the bill, the Rajya Sabha was adjourned for the day. The Lok Sabha has passed the Appropriation No. 3 Bill 2026 yesterday. Following the passage of the bill, the Lower House was also adjourned for the day. Earlier, Finance Minister Nirmala Sitharaman introduced the Taxation and Other Laws Amendment Bill 2026. The Lower House witnessed repeated disruptions by opposition members over several issues, including alleged police action during students' protest over the NEET paper leak issue. India has condemned the attack on the Indian-flagged commercial vessel MSV Faiz-e-Noor-e-Ulia that sank in the Red Sea off the coast of Yemen yesterday. In a statement, Ministry of External Affairs said all 13 Indian nationals have been rescued. It said the Indian embassy in Riyadh is closely monitoring the situation and proactively coordinating with the Yemeni authorities for the safety and security of the crew. The ministry thanked the Yemeni authorities for their support. It said the continuing incidents of attacks

0: commercial shipping in the region are deeply worrisome. The Ministry of External Affairs said the targeting of commercial shipping in the region must end, and free and unimpeded navigation and commerce through the international waterways in the region must be restored at the earliest. India has termed the so-called local elections in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir as complete farce, saying such hollow exercises cannot hide reality. Briefing media in New Delhi yesterday, External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal pointed out that the real happening is that of public protests and wanton killings by Pakistani forces. He added that Pakistan must be held accountable and the world should see Pakistan's hypocritical lecturing on human rights.
1: This so-called local election in Pakistan-occupied Kashmir is a complete farce. The real happening is that of public protests and wanton killings by Pakistani forces. Such hollow exercises cannot hide reality. Since June this year, at least 90 civilians have lost their lives in the continuing crackdown. Many more have been injured. As you have seen, the Pakistani establishment has answered public discontent with bullets, blackouts, intimidation and repression, and now seeks to manufacture legitimacy.
0: The Reserve Bank of India will announce its bi-monthly monetary policy review today. RBI Governor Sanjay Malhotra will announce the latest repo rate decision in Mumbai at 10 a.m. Monetary Policy Committee of the Central Bank began its three-day meeting on Monday. The policy decision comes at a crucial juncture amid persistent geopolitical tensions and a hawkish U.S. Federal Reserve. The RBI is expected to hold the core repo rate unchanged at 5.25%. India, as chair of BRICS 2026, will host the third BRICS Culture Working Group meeting in Bhopal from today till the 6th of August. The Ministry of Culture said that the meeting will bring together representatives from BRICS member states to advance cultural cooperation and build a consensus on key areas ahead of the BRICS Culture Ministers meeting. Meanwhile, the 13th BRICS Education Ministers meeting and the third BRICS Senior Officials meeting will also be held from today till the 7th of this month in Bhubaneswar, Odisha. Education Ministry said that these meetings will bring together education ministers, senior officials and delegates from BRICS member countries. The Medical Counselling Committee will begin Round 1 registration for NEET UG Counselling 2026 today. According to the official schedule, Round 1 registration and fee payment will remain open from 5th of August to 12th of August until 3 p.m. The summer annuals of Amrit Udyan at Rashtrapati Bhavan will open for the public from the 16th of this month. People can visit the Amrit Udyan till the 15th of September. During this period, it will remain open from 10 a.m. to 6 p.m. with the last entry at 5 p.m. However, the Udyan will remain closed on all Mondays for maintenance. Entry to Amrit Udyan will be free of cost. And that is the end of this news bulletin.
2: आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। खेतीहरों वास्ते कार्यक्रम में लीजिए सुनिए जानकारी, जैविक खादों का महत्व।
3: किसान भाइयों राम राम। किसान भाइयों आप जिता रासायनिक खाद को उपयोग करा तो बीन चुके है अगर जितो आप ज्यादा उपयोग करा तो असंतुलन होने के कारण अपनी भूमि की संरचना जी कमजोर पड़ गई या कैसे भूमि जी उत्पादन कम देने लग गई। तो इंगा कारण वही है कि अभी ज़्यादा आप रासायनिक खादों का उपयोग करा तो बीच क्या है कि बार बार बंगी भूमि की संरचना जबकि कमजोर पड़ गई। तो इन्हें सही रखने वास्ते आपने जैविक खादों को जो है वो प्रयोग करना चाहिए। जैसे शू कह प्रमुख पोषक तत्वों के सागे सागे गौण और सूक्ष्म पोषक तत्वों की भी पूर्ति हो जाए। इंगे खातर जैविक खादों को प्रयोग करने रहने से गौण और सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी की समस्या उत्पन्न को नहीं हुए। पोषक तत्वों की पूर्ति के अलावा जैविक खादों का कई लाभ है। जैविक खादों के उपयोग में रासायनिक खाद को नकारात्मक परिस्थितिक प्रभाव ने भी कम करो जा सके। इनके उपयोग से मिट्टी की उत्पादकता में बढ़ोतरी हो जाए। इनको मूल्यांकन मिट्टी के भौतिक रासायनिक और जैविक गुणों में होने वाले परिवर्तनों से आसानी से आप कर सकें। जैविक खादों के उपयोग से मिट्टी की पोषक तत्वों की धारण तथा पूर्ति करने की क्षमता जबकि बढ़ जाए। इनके सागे जल शोषण है जल धारण क्षमता में वृद्धि और सूक्ष्म जीवों की संख्या में भी बढ़ोतरी हो जाए। तो इन हिसाब अपने जैविक खादों को उपयोग है जो करना चाहिए। कई जैविक खादें जहाँ गोबर की खाद है, कंपोस्ट खाद है, वर्मी कंपोस्ट खाद है, हरी खाद, जीवाणु खाद और खड़ी की खाद। या गोबर की खाद की बात करें आप तो घरेलू पशु है जो अपने

0: गाय भैंस भेड़ बकरी ऊंट आंगा ठोस एर द्रव मल मूत्र शू या बिछावन शू बन एक गड्ढे में सड़ागर अच्छी तरह तैयार करेड़े पदार्थ ने गोबर की खाद कहवे। इमें लगभग सगड़ा ही आवश्यक पोषक तत्व है। पूरी तरह शू सड़ेड़े गोबर की खाद में 0.5 ऊँ लेगे 1 सैकड़े तई नाइट्रोजन, 0.4 ऊँ लेगे 0.8 सैकड़े तई फास्फोरस, 0.5 ऊँ लेगे 1.3% तई पोटाश, हैर 40 PPM जस्तो, 2.8 PPM तांबो, 1.46 PPM लो और 61 PPM मैंगनीज पायो जाए। इंगे प्रयोग से भूमि की भौतिक रासायनिक और जैविक संरचना में भी सुधार हुआ है। किसान भाई कंपोस्ट खाद की बात करा तो खरपतवार है, फसल का अवशेष है, पशुओं को बचोड़ो चारो, पेड़ पौधों की पत्तियां, कूड़ो करकट, अन्य कार्बनिक कचरा अन्य सड़ागे कंपोस्ट खाद तैयार करीजिए। इमें 0.4 ऊँ लेगे 0.8 सैकड़े ताई नाइट्रोजन, 0.3 ऊँ लेगे 0.6 सैकड़े ताई फास्फोरस, 0.7 ऊँ लेगे 1 सैकड़े ताई पोटाश पायोजर। खेत में बुआई से 3 से 4 सप्ताह पहला मिट्टी में डालकर आपने मिला देना चाहिए। बर्मी कंपोस्ट की बात करें तो केंचुओं कृषि अवशिष्ट ने पचा के उत्तम किस्म का कंपोस्ट बनाया जाए जका वर्मी कंपोस्ट कहलावे है। प्रकृति ने केंचुआ ने इसी अद्भुत क्षमता प्रदान करी है कि आपके बाहर से ज्यादा मल मूत्र त्याग कर उत्कृष्ट टीका वर्मी कंपोस्ट बनावे। वर्मी कंपोस्ट में 2.5 ऊँ लेगे 3 सैकड़े तई नाइट्रोजन, 1.5 ऊँ लेगे 2 सैकड़े तई फास्फोरस और 1.5 ऊँ लेगे 2 सैकड़े तई पोटास की मात्रा जगी पाई जाए। इंगा एंटीबायोटिक गुणा से फसल में कीट है रोग है बांगे प्रति अधिक प्रतिरोधी हो जाए। इंगे अतिरिक्त वर्मी कंपोस्ट में शुष्क पोषक तत्व संतुलन मात्रा में और एंजाइम और विटामिन भी इनमें पाए जाए। हरी खाद की बात करें तो दलहनी है या अदलहनी फसलों ने हरी खाद में मृदा में जीवांश पदार्थ और पोषक तत्वों की पूर्ति के बढ़ावन खातर फसल ने मिट्टी में मिलाने की प्रक्रिया नहीं हरी खाद कहवे। हरी खाद के प्रयोग से मृदा की भौतिक रासायनिक और जैविक दशाओं पर अनुकूल प्रभाव पड़े। इंगे प्रयोग से भूमि में पोषक तत्व संतुलित मात्रा में मिले, मृदा की जल धारण क्षमता और कणाकार संरचना जकी बढ़ जाए। हरी खाद के रूप में प्रयोग करने वाली मुख्य फसलें जहाँ ढेंचो है, सनेही है, ग्वार है, ए है। जीवाणु खाद की बात करा तो ऐ फसलों में पोषक तत्वों की पूर्ति खातर अत्यंत प्राकृतिक सस्त और आसानी से प्रयोग करे जाने वाला खाद है। इनकी उत्पादन लागत रासायनिक खादों की तुलना में कई गुणा कम हुआ है। जहाँ राइजोबियम जीवाणु दालों के सागे मिल गए लगभग 100 से लेकर 300 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टर तक उपलब्ध कराव है। एजेक्टो वेक्टर अब एक बहुत ही अत्यंत उपयोगी है। फास्फोरस घोलक जीवाणु भूमि में उपस्थित ए गुलनशील फास्फोरस ने गुलनशील अवस्था में लियागे पौधों के लिए उपलब्ध करावे बन योग्य बनावे है। खड़ी की बात करा तो तिलहनी तेल से निकलने वाले जो अवशिष्ट पदार्थ बचड़ो है बिना खड़ी के और इंगे शु खेत में खाद के रूप में प्रयोग करो जाए। खड़ी में नाइट्रोजन को प्रतिशत गोबर की खाद और कंपोस्ट खाद की तुलना में क्यों ज्यादा हुआ है। पोषक तत्वों की मात्रा खड़ियों की प्रकृति पर निर्भर करे। अरंडी की खड़ी में 4.4%, नीम की खड़ी में 5.2% और सूरजमुखी की खड़ी में 7.9% तक नाइट्रोजन मिले है। इंगे सागे सागे फास्फोरस है, पोटास है, बिंगी भी मात्रा मिले है। खड़ियां पोषक तत्वों की पूर्ति खातर जैविक खादों की श्रेणी में आ जाए। किसान भाइयों अब हूँ चालू, राम राम सा, राम राम।
1: खेती घर वास्ते कार्यक्रम में अभी ग्रामीण श्रोता सुन रहे थे जानकारी जैविक खादों का महत्व, आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरत करते। आइए मुखराम परिहार की आवाज में ये लोक भजन सुनिए।

मुखरम प्रहर की आवाज़ में अभी आपने ये लोक भजन सुना। आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। कार्यक्रम सुनिए मानस गान। आज सुनिए भाग संख्या 326, मुख्य स्वर सुरेश वाटकर का।

रावण के मुख से सीता हरण तथा युद्ध का वृत्तांत सुनकर कुंभकर्ण अत्यंत दुखी हो गया। वह रावण को धिक्कारता है जो जगजननी का अपहरण करके अब अपना कल्याण चाहता है। कहता है, अब भी यदि अभिमान त्याग कर वह श्रीराम की शरण जाए तो उसका कल्याण हो सकता है। नारद मुनि से मिला ज्ञान वह रावण को दे देता, किंतु अब बहुत देर हो चुकी है। अतः वह भाई से गले मिलकर युद्ध में जाने को तैयार हो जाता है, जहां उसे समस्त पापों का हरण करने वाले कमल नयन श्रीराम के दर्शन होंगे। असंख्य घड़े मदिरापान और भैंसों का भोजन करके वज्र गर्जना करता कुंभकर्ण युद्ध भूमि में आ पहुंचा। वहां विभीषण उसके पैरों पर गिर पड़ा और अपने अप

मान और निष्कासन की कथा कह सुनाई। कुंभकर्ण ने छोटे भाई विभीषण का साधुवाद किया, फिर बोला, रावण पर काल सवार है, अब भला वह सदुपदेश क्या सुनेगा। धन्य है तू जो अपने सत्कर्म से राक्षस कुल का भूषण हो गया। किंतु अब मैं भी काल के वश में हूं, मुझे अब अपना पराया कुछ नहीं दिख रहा, अतः तू प्रभु के पास वापस लौट जा।

अभी आप मानस गान सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। कार्यक्रम सुनिए सुप्रभात। आज पहले बात करेंगे देशभक्ति पर। श्रोताओं, देशभक्ति का अर्थ अपने देश से निस्वार्थ प्रेम और उसके प्रति समर्पण है। जिस तरह एक संतान अपनी मां के लिए सब कुछ त्याग देती है, उसी तरह एक सच्चा नागरिक भी अपने देश के लिए त्याग करने को हमेशा तत्पर रहता है। मां और मातृभूमि स्वर्ग से भी महान है। भारत जैसे विविधता वाले देश को एकता के सूत्र में बांधने वाली सबसे मजबूत कड़ी है, और वो है देशभक्ति। आओ झुककर सलाम करें उनको जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है। खुश नसीब होता है वो खून जो देश के काम आता है। भारत का इतिहास देशभक्ति की गाथाओं से भरा पड़ा है। जब अंग्रेजों ने हमें गुलाम बनाया था, तब लोक मान्य बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा देकर करोड़ों लोगों में जागृति पैदा की। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, रानी लक्ष्मीबाई, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे वीरों ने हंसते हंसते फांसी का फंदा चूम लिया। चाहता हूं कोई नेक काम हो जाए, मेरी हर सांस देश के नाम हो जाए। जो सिर उठे तो मेरे सामने तिरंगा हो, और जो सिर झुके तो वतन को सलाम हो जाए। शहीद वीरों ने हमें सिखाया कि देश की आजादी और सम्मान से बढ़कर कुछ भी नहीं। आज भी हमारे सैनिक सियाचिन की बर्फ और राजस्थान की तपती रेत में खड़े होकर हमारी रक्षा करते हैं। ये सब देशभक्ति ही तो है। श्रोताओं, देशभक्ति का मतलब सिर्फ 15 अगस्त और 26 जनवरी को भाषण देना या झंडा फहराना ही नहीं है। सच्ची देशभक्ति हमारे कामों में दिखती है। कर्तव्यों का पालन करना, शिक्षा और मेहनत से पढ़कर अपने देश का नाम रोशन करना, सामाजिक एकता बढ़ाना, पर्यावरण और सफाई रखना, स्वदेशी को

बढ़ावा देना। बहुत सी चुनौतियां जरूर हैं हमारे समाज में, लेकिन इन तमाम चुनौतियों से आगे बढ़ते हुए हमें देश हित में तत्पर और मजबूती से खड़ा रहना है और अच्छे काम करना है। कुछ नशा तिरंगी की आन का है, कुछ नशा मातृभूमि की शान का है। हम लहराएंगे हर जगह ये तिरंगा, नशा ये हिंदुस्तान का है।

द लेजेंड ऑफ भगत सिंह। इस फिल्म में अभी आपने सोनू निगम और मनमोहन बारिस को सुना। श्रोतो, बात चल रही थी देशभक्ति की। देशभक्ति कोई भाषण नहीं, एक जीवन शैली है। यह भावना हमें स्वार्थ से ऊपर उठकर सोचने की प्रेरणा देती है। अगर हम में से हर व्यक्ति सोच ले कि मैं अपने देश के लिए क्या कर सकता हूं, तो भारत दुनिया का सबसे शक्तिशाली और खुशहाल देश बन जाएगा। कुछ कर गुजरने की अगर तमन्ना उठती हो दिल में, भारत मां का नाम सजाओ दुनिया की महफिल में, हर तूफान को मोड़ दे जो हिंदुस्तान से टकराए, चाहे तेरा सीना हो छलनी तिरंगा ऊंचा ही लहराए, किसकी राह देख रहा तुम खुद सिपाही बन जाना, सरहद पर नहीं से ही सीखो अंधेरों से लड़ पाना, इतना ही कहना काफी नहीं, भारत हमारा मान है, अपना फर्ज निभाओ देश कहे हम उसकी शान है, विकसित होता राष्ट्र हमारा रंग लाती हर कुर्बानी है, फकर से अपना परिचय देते हम सारे हिंदुस्तानी हैं। आइए सब मिलकर शपथ लें कि हम अपने विचारों, शब्दों और कर्मों से भारत मां का मान बढ़ाएंगे। लिख रहा हूं अंजाम जिसका कल आगाज आएगा, मेरा लहू का हर एक कतरा इनकलाब लाएगा, मैं रहूं या ना रहूं पर यह वादा है तुमसे मेरा कि मेरे बाद वतन पे मरने वालों का सैलाब आएगा।

0: चक दे इंडिया, अभी अपने इस फिल्म का गीत सुना।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: श्रोताओं, मदद करना जिनकी हमेशा फितरत में होता है, हाथ में आया हुआ मौका वो ना कभी खोता है। बुराई को मिटा तो नहीं सकता वो हर जगह से, पर अपनी परछाई का बीज वो सदा बोता है। श्रोताओं, कर भला हो भला एक बहुत पुरानी कहावत है, जिसका मतलब है कि दूसरों के साथ अच्छा करो तो तुम्हारे साथ भी अच्छा होगा। हमारे धर्म, संस्कृति और जीवन के हर क्षेत्र में इस बात की शिक्षा हमें मिलती है। ये सिर्फ कहावत ही नहीं बल्कि जीवन जीने का सबसे बड़ा मंत्र है। इसका सीधा अर्थ है कि हम दूसरों की मदद करें, दया करें, प्यार से पेश आएं। अगर हम किसी का भला सोचेंगे तो ईश्वर हमारा भला अवश्य करेगा। कर्म का फल हमें जरूर मिलता है, अगर हम कांटे बोएंगे तो कांटे ही काटेंगे, और अगर हम फूल बोएंगे तो हमें फूल ही मिलेंगे। दूसरों की मदद करना एक मानवीय कार्य है, क्योंकि अपने ऊपर दूसरों को रखना केवल एक मानव ही कर सकता है। उसे इसी कार्य में खुशी और संतुष्टि का अनुभव होता है। जो व्यक्ति दयालु होते हैं उनका सम्मान सभी करते हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में हम कई ऐसे काम कर सकते हैं जिससे दूसरों का भला हो। बड़ों का सम्मान करना, बड़ों की मदद करना, उनके छोटे छोटे कामों में सहयोग कर उन्हें हल्का कर देना। श्रोताओं, दुनिया गोल है, जो हम दूसरों को देंगे वही हमारे पास लौट कर आएगा। इसलिए हमेशा याद रखो, जैसा करोगे वैसा भरोगे। अगर हम चाहते हैं कि हमारे साथ भला हो तो हमें भी सबका भला करना चाहिए।

0: जब दरवाजा खुला तो मैं दंग रह गया। दो हसीन आंखें मेरी तरफ देख रही थीं और दिल धड़क धड़क के कह रहा था कि जॉनी बेटे, तेरी मंजिल यहीं पर है। लेकिन याद रख, अगर इन्हें मालूम हो गया कि तू चोर है, उचक्का है, छोटी मोटी चोरियों के इल्जाम में बार बार जेल जा चुका।
1: नफरत कर...

हम वो हैं जिंदगी में कभी साथ न छोड़ेंगे, थामेंगे अगर हाथ तो फिर हाथ न छोड़ेंगे।

किशोर कुमार की आवाज़ में अभी आपने जॉनी मेरा नाम फिल्म से ये गीत सुना। श्रोताओं, ना चादर बड़ी कीजिए, ना ख्वाहिशें दफन कीजिए, चार दिन की जिंदगी है, बस चैन से बसर कीजिए। ना परेशान किसी को कीजिए, ना हैरान किसी को कीजिए, कोई लाख गलत भी बोले बस मुस्कुरा कर छोड़ दीजिए। ना रूठा किसी से कीजिए, ना झूठा वादा किसी से कीजिए, कुछ फुर्सत के पल निकालिए, कभी खुद से भी मिला कीजिए।

हमराज फिल्म में अभी आपने महेंद्र कपूर को सुना। सुप्रभात कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से। मैं हूं आपके साथ आपका रेडियो दोस्त हरप्रीत। प्रोग्राम की अगली और आखिरी पेशकश दहलीज फिल्म से, आवाजें महेंद्र कपूर और आशा की। श्रोतो, संगीत हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। संगीत सुनने से हम मानसिक शांति का अनुभव करते हैं। संगीत से ही साज और आवाज है, संगीत से ही अंत और आगाज है। चिड़ियों के चहकने में संगीत का आभास है, सागर की लहरों में संगीत की आवाज है, बादल के गर्जने में संगीत का ही शोर है, बारिश के बरसने में संगीत का ही सोच है, धड़कनों व सांसों में जीवन का संगीत है, संगीत से ही लगाव और संगीत से ही प्रीत है। आप सुनिए ये गीत, कार्यक्रम से अपने दोस्त हरप्रीत को अनुमति दें। नमस्कार।

अभी आप सुप्रभात कार्यक्रम सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। 8 बजने को है अब समाचार प्रभात, 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज और 8:30 पर खबरनामा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा।

0: सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। लाल सागर में यमन तट के पास हमले के बाद भारतीय ध्वज वाला जहाज डूबा, सभी 13 भारतीय नाविक सुरक्षित, भारत ने हमले की कड़ी निंदा की। भारतीय रिजर्व बैंक आज द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा की घोषणा करेगा। सर्वोच्च न्यायालय ने रिजर्व बैंक को फर्जी और साइबर धोखाधड़ी से जुड़े बैंक खातों से निपटने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने के निर्देश दिए। नीट यूजीसी काउंसलिंग के पहले चरण के लिए ऑनलाइन पंजीकरण आज से। मौसम विभाग ने असम और मेघालय में आज मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है और विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में पीवी सिंधु को नवीं वरीयता मिली। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी को पांचवीं वरीयता। और अब समाचार विस्तार से। भारतीय ध्वज वाला वाणिज्यिक पोत एमएसवी फैज नूरे औलैया कल यमन तट के पास हमले के बाद लाल सागर में डूब गया। पोत पर सवार सभी 14 नाविकों को सुरक्षित बचा लिया गया। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इनमें से 13 भारतीय थे।
3: भारतीय ध्वज वाला यह वाणिज्यिक

0: पोत सऊदी अरब से तेल लेकर आ रहा था। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने बताया, यमन के जल क्षेत्र के पास मिसाइल हमले के बाद पोत लाल सागर में डूब गया। श्री सोनोवाल ने कहा कि भारत इस अकारण हमले की कड़ी निंदा करता है और हमारे लोगों की सुरक्षा देश की सर्वोच्च प्राथमिकता है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों पर हमले की लगातार घटनाएं चिंताजनक है। क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बनाया जाना बंद होना चाहिए और क्षेत्र के अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों के माध्यम से निर्बाध नौवहन और व्यापार शीघ्र बहाल किया जाना चाहिए। मंत्रालय ने बताया कि रियाद में भारतीय दूतावास स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहा है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
1: भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में कथित स्थानीय चुनाव को पूरी तरह दिखावा बताया है और कहा है कि इससे सच्चाई छिप नहीं सकती। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में संवाददाताओं से कहा कि विरोध प्रदर्शन और पाकिस्तानी सैनिकों की हिंसा ही वहां की वास्तविकता है।
2: इस वर्ष जून से अब तक वहाँ जन प्रदर्शन जो चल रहा है उसमें 90 लोग मारे गए हैं और कई अन्य घायल हुए हैं। पाकिस्तान की सत्ता व्यवस्था ने जनता के असंतोष का जवाब गोली से, संचार बंदी से, धमकी से और दमन से दिया है। इसके लिए उसे जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए और विश्व समुदाय को मानव अधिकारों पर पाकिस्तान के पाखंडपूर्ण उपदेशों के इस खोखले मुखौटे के पार वास्तविकता को देखना चाहिए।
1: श्री जायसवाल ने यह भी बताया कि अगले महीने 12 और 13 तारीख को भारत की मेजबानी में दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए बिम्स्टेक के वर्तमान अध्यक्ष के रूप में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान को आमंत्रित किया गया है। भारत इस साल ब्रिक्स संगठन के अध्यक्ष के रूप में ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की तीसरी बैठक की मेजबानी करेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यह बैठक आज और कल भोपाल में आयोजित होगी।
3: भोपाल में आज से ब्रिक्स देशों की बड़ी सांस्कृतिक बैठक शुरू हो रही है। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत ये आयोजन 8 अगस्त तक चलेगा। इसमें ब्रिक्स सांस्कृतिक कार्य समूह और संस्कृति मंत्रियों की बैठकें होंगी। इसके चलते भोपाल को ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की तरह सजाया गया है। इस आयोजन से सांस्कृतिक संवाद बढ़ेगा और सदस्य देशों के बीच सहयोग मजबूत होगा। पहले 2 दिन अधिकारी स्तर पर चर्चा होगी जबकि आखिरी 2 दिन मंत्री स्तर पर घोषणा पत्र को अंतिम रूप दिया जाएगा। भारत ने इस बैठक में 2 अहम प्रस्ताव रखे हैं। पहला, कलाकारों और सांस्कृतिक धरोहर की जानकारी के लिए साझा डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाना और दूसरा, यूनेस्को में सदस्य देशों के साथ मिलकर साझा नामांकन भेजने की पहल करना। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
1: ब्रिक्स देशों के शिक्षा मंत्रियों की 13वीं बैठक आज से उड़ीसा के भुवनेश्वर में होगी। ये बैठक 7 अगस्त तक चलेगी। इसी दौरान संगठन के वरिष्ठ अधिकारियों की तीसरी बैठक भी चलेगी। शिक्षा मंत्रालय ने बताया है कि इन बैठकों में शिक्षा मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और सदस्य देशों के प्रतिनिधि विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
4: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। रिजर्व बैंक आज द्विमासिक मौद्रिक नीति की समीक्षा घोषणा करेगा। आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा आज सुबह 10 बजे नवीनतम रेपो रेट की घोषणा करेंगे। रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की 3 दिन की बैठक सोमवार को शुरू हुई थी। नीतिगत निर्णय, मौजूदा भू राजनैतिक तनाव और अमरीकी फेडरल रिजर्व पर दबाव के महत्वपूर्ण दौर में आ रहा है। यह आशा है कि आरबीआई प्रमुख रेपो रेट में कोई बदलाव न करते हुए इसे 5.25% पर ही रखेंगे। सर्वोच्च न्यायालय

0: ने रिजर्व बैंक को फर्जी और साइबर धोखाधड़ी से जुड़े बैंक खातों से निपटने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने और जारी करने को कहा है। न्यायालय ने राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, कानून प्रवर्तन एजेंसियों और बैंकों से शिकायत निपटान प्रणाली मजबूत करने, धोखाधड़ी की गई धनराशि वापस लाने तथा डिजिटल धोखाधड़ी से निपटने की प्रक्रिया में सुधार करने को कहा है। झारखंड लोक सेवा आयोग और अन्य भर्ती परीक्षाओं में कथित तौर पर पेपर लीक होने के विरोध में प्रदर्शन कर रहे नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों ने राज्य के बाहर के सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से जांच की मांग की है। उन्होंने कहा है कि उन्हें अपराध जांच विभाग CID की जांच पर भरोसा नहीं है।
1: झारखंड की राजधानी रांची का जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम इस समय युवाओं के आक्रोश और आंसुओं का गवाह बना हुआ है। JPSC परीक्षा में कथित धांधली के खिलाफ छात्र सड़कों पर हैं, लेकिन विडंबना देखिए, व्यवस्था का रुख इतना कड़ा है कि कड़ाके की धूप और खुले आसमान के नीचे बैठे इन प्रदर्शनकारियों को पीने का पानी, खाना और शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाएं तक नसीब नहीं हो पा रही है। रक्षा राज्य मंत्री और रांची के सांसद संजय सेठ ने इस मुद्दे पर विपक्ष के मौन रहने पर तीखा हमला बोला है। आंदोलन पर बुनियादी संकट गहराने के बाद गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने भी हेमंत सोरेन सरकार की घेराबंदी शुरू कर दी है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
0: मेडिकल परामर्श समिति नीट UG काउंसलिंग 2026 के पहले चरण का पंजीकरण आज से शुरू करेगी। आधिकारिक कार्यक्रम के अनुसार पहले चरण का पंजीकरण और शुल्क भुगतान आज से 12 अगस्त दोपहर 3 बजे तक होगा। हालांकि शुल्क भुगतान 12 अगस्त शाम 6 बजे तक किया जा सकता है। एक रिपोर्ट।
2: अभ्यर्थी कल से 13 अगस्त तक अपनी पसंद दे सकते हैं। अपना चयन बताने की सुविधा 13 अगस्त सवेरे 11 बजे बंद हो जाएगी। पहले चरण की सीट आवंटन प्रक्रिया 13 अगस्त से 16 अगस्त तक चलेगी और परिणाम 17 अगस्त को घोषित किए जाएंगे। जिन उम्मीदवारों को सीटें आवंटित की गई हैं, उन्हें 18 अगस्त से 22 अगस्त के बीच अपने संबंधित संस्थानों में रिपोर्ट करना होगा। संस्थान 23 अगस्त को उम्मीदवारों के डेटा का सत्यापन करेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने उम्मीदवारों को MCC पोर्टल पर पंजीकरण, चयन भरने और सीट आवंटन प्रक्रिया समझने में सहायता करने के लिए वीडियो जारी किए हैं। इन वीडियो का उद्देश्य काउंसलिंग प्रक्रिया को सरल और विद्यार्थी अनुकूल तरीके से समझाकर उम्मीदवारों को मार्गदर्शन देना है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: उत्तर प्रदेश सरकार राज्य परिवहन निगम की बसों में 60 वर्ष और इससे अधिक आयु की महिलाओं को निःशुल्क यात्रा की सुविधा देगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इसके लिए बजट में समुचित प्रावधान किए गए हैं।
3: वित्तीय वर्ष 2026-27 के पहले अनुपूरक बजट में इस विशेष पहल को लागू करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने लोक कल्याण संकल्प पत्र में वरिष्ठ नागरिक महिलाओं के लिए मुफ्त बस सेवा का वायदा किया था। इस निर्णय से राज्य भर में लाखों वरिष्ठ महिलाओं को आर्थिक राहत मिलेगी। इसके अलावा सरकार ने महिला कल्याण विभाग को 1,094 करोड़ रुपए अतिरिक्त आवंटित किए हैं, जिससे निराश्रित महिला पेंशन योजना, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना और महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा से संबंधित विभिन्न कार्यक्रमों को मजबूती मिलेगी। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: मौसम विभाग ने आज असम और मेघालय में अत्यधिक तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, बिहार, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, उप हिमालयी, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में भी आज तेज बारिश का अनुमान है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, झारखंड और मध्य प्रदेश में कल तक तेज बारिश हो सकती है। केरलम में आज भी तेज वर्षा जारी रहेगी। हालांकि कल की तुलना में आज बारिश में कुछ कमी का अनुमान है। असम में लगातार तेज बारिश जारी है और इससे राज्य के कई हिस्सों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मौसम विभाग ने असम के लगभग सभी जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया है और अगले 24 घंटों में पूरे राज्य में भारी बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पीवी सिंधु को BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में नवी वरीयता दी गई है। ये चैंपियनशिप 17-23 अगस्त तक नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी। चैंपियनशिप में सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी को पुरुष डबल्स में 5वीं वरीयता मिली है। लक्ष्य सेन पुरुष सिंगल्स में 14वीं और ध्रुव कपिला तथा तनिषा क्रिस्टो मिक्स डबल्स में 15वीं वरीयता प्राप्त खिलाड़ी हैं। चैंपियनशिप की पांचों स्पर्धाओं में भारत के दो दो खिलाड़ी भाग लेंगे।

0: विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप 2026 आज से अमरीका में शुरू हो रही है। इसमें 36 सदस्यों वाली भारतीय टीम हिस्सा लेगी। राष्ट्रपति भवन के अमृत उद्यान में ग्रीष्मकालीन वार्षिक प्रदर्शनी 16 अगस्त से आम जनता के लिए खोल दी जाएगी। अमृत उद्यान का 15 सितंबर तक भ्रमण किया जा सकता है। अमृत उद्यान में प्रवेश निःशुल्क है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
1: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठों पर साइबर ठगी को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट के सख्त निर्देश और एयर इंडिया की फ्लाइट 2379 के अचानक हवा के दबाव में फंसने से यात्रियों की हुई कठिनाई के समाचार सबसे ऊपर छाए हुए हैं। जनसत्ता का शीर्ष समाचार है, साइबर ठगी वाले खातों से निपटने के लिए 4 हफ्ते में बने मानक संचालन प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट। दैनिक जागरण ने इसी खबर को शीर्षक दिया है, 4 सप्ताह के भीतर म्यूल खातों से निपटने को SOP बनाए RBI। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, डिजिटल अरेस्ट पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, हाथों पर नियम बनेंगे। पंजाब केसरी ने एयर इंडिया विमान की उड़ान संख्या 2379 के समाचार को सबसे ऊपर प्रकाशित किया है। शीर्षक दिया है, एयर इंडिया विमान टर्बुलेंस में फंसा, पत्र ने इस घटना में घायल यात्रियों की तस्वीरें भी प्रमुखता से छापी हैं। दैनिक भास्कर ने इस खबर को शीर्षक दिया है, थाईलैंड से दिल्ली आ रहा विमान टर्बुलेंस में फंसा, DGCA ने जांच के आदेश दिए। दैनिक ट्रिब्यून ने अपने संपादकीय को शीर्षक दिया है, जन्म मृत्यु पंजीकरण सुरक्षा उपाय नागरिकों की मुश्किल ना बने।
0: और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। लाल सागर में यमन तट के पास हमले के बाद भारतीय ध्वज वाला जहाज डूबा, सभी 13 भारतीय नाविक सुरक्षित। भारतीय रिजर्व बैंक आज द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा की घोषणा करेगा। सर्वोच्च न्यायालय ने रिजर्व बैंक को फर्जी और साइबर धोखाधड़ी से जुड़े बैंक खातों से निपटने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने के निर्देश दिए। NEET UG काउंसलिंग के पहले चरण के लिए ऑनलाइन पंजीकरण आज से। और मौसम विभाग ने असम और मेघालय में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस, इंडिया फ्लैगशिप सिंक्स आफ्टर अटैक इन रेड सी, ऑल 13 इंडियन सेलर्स रेस्क्यूड, इंडिया कंडेम्स अटैक ऑन कमर्शियल वेसल। Reserve Bank of India to announce its bi-monthly monetary policy review this morning. Supreme Court asks RBI to prepare SOP for dealing with mule accounts and bank accounts linked to cyber fraud. Online registration for first round of NEET UG counseling 2026 to commence today. IMD warns of very heavy rainfall in Assam and Meghalaya today. And in badminton, PV Sindhu seeded 9th, while Satvik Sairaj, Ranki Reddy and Chirag Shetty get 5th seeding for BWF World Championships. And now the news in detail. An Indian-flagged commercial vessel, MSV Faiz Noore Olia, sank in the Red Sea after coming under attack off the coast of Yemen yesterday. All the 14 seafarers, including 13 Indian nationals who were on board the vessel, were rescued safely. We have a report.
3: According to reports, the Indian-flagged tanker was carrying oil from Saudi Arabia. Union Minister of Ports, Shipping and Waterways, Sarbanand Sonowal, said that the vessel was hit by a projectile near Yemeni waters, causing the vessel to capsize and sink. Mr. Sonowal said India strongly condemns this unprovoked attack on the defenseless mechanized sailing vessel. He said the safety of our people is our supreme priority. Moreover, in a statement, Ministry of External Affairs, MEA, condemned the attack on the Indian-flagged vessel, saying the continuing incidents of attacks on commercial shipping in the region are deeply worrisome. It said the targeting of commercial shipping in the region must end and free and unimpeded navigation and commerce through the international waterways in the region must be restored at the earliest. The ministry said that the Indian embassy in Riyadh is closely monitoring the situation and proactively coordinating with Yemeni authorities for the safety and security of the crew. With Anupam Mishra, Chirag Jha, Akashwani News, Delhi.
2: India has termed the so-called local elections

0: money restoration modules to ensure quicker relief for cybercrime victims. The Pioneer says SC gives RBI 4 weeks to frame standard operating procedure on cyber fraud accounts. Qatar and US see progress in talks to end Iran war, while in the Sun Times reports 13 Indians rescued as vessel sinks after attack off coast of Yemen. A headline in the Tribune writes about sex ratio at birth falling to 900 in first half of current year. The paper adds Karnal tops with 945, Charkhi Dadri lowest at 829. Strongly criticizing Pakistan over its recently conducted so-called elections in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir, the statesman writes, India dismisses POJK polls as complete farce. All the dailies have covered the news of passing away of educationist, philanthropist and ex-governor of Tripura, Bihar and West Bengal, Padma Shri Dr. D.Y. Patil at the age of 90. And finally, Gen Z may help drive digital gold rush, states the Economic Times, as the savvy Gen Z emerges as the fastest growing consumer. With that, it's back to you, Anuja.
1: Thank you, Subhadra. And now before we end the bulletin, the headlines once again. India flagship sinks after attack in Red Sea. All 13 Indian sailors rescued. India condemns attack on commercial vessel. Reserve Bank of India to announce its bi-monthly monetary policy review this morning. Supreme Court asks RBI to prepare SOP for dealing with mule accounts and bank accounts linked to cyber fraud. Online registration for first round of NEET UG counselling 2026 to commence today. IMD warns of very heavy rainfall in Assam and Meghalaya today. And in badminton, PV Sindhu seeded 9th, while Satvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty get 5th seeding for BWF World Championships. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: Akashvani se pesh hai khabarnama. आदा खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। भारत का परचम बरदार जहाज बोहेरे एवर में हमले के बाद गर्क हो गया है। 13 भारतीय जहाजियों को बचा लिया गया है। भारत ने हमले की मजम्मत की है। भारतीय रिजर्व बैंक आज सुबह अपनी 2 माही पॉलिसी के जायजे का ऐलान करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने आरबीआई से कहा है कि वो फर्जी और साइबर घोटाले वाले खातों से निमटने के लिए कामकाज के मयारी तौर तरीके तैयार करे। 2026 की नीट यूजी काउंसलिंग के पहले मरहले के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का अमल आज से शुरू हो रहा है। भारत के महकमे मौसमियात ने आसाम और मेघालय में आज बहुत शदीद बारिश से आगाह किया है। और बैडमिंटन में पीवी सिंधु ने BWF आलमी चैंपियनशिप के लिए 9वां मकाम, जबकि सत्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने 5वां मकाम हासिल किया है। अब खबरें तफसील से। यमन के साहिल के नजदीक बोहरे अहमर में कल भारत का परचम बरदार तिजारती जहाज MCV फैजे नूरे ओलिया हमले के बाद डूब गया है। जहाज पर सवार सभी 14 जहाजरां, जिनमें 13 भारतीय शहरी थे, उन सभी को बचा लिया गया है। तफसील हमारे नामनिगार से।
3: रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय परचम बरदार टैंकर सऊदी अरब से तेल लेकर आ रहा था। बंदरगाहों, जहाजरानी और आबी गुजरगाहों के मरकजी वजीर सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि इस जहाज को यमन के पानी में हमले का निशाना बनाया गया, जिसके बाद ये डूब गया। जनाब सोनोवाल ने कहा कि भारत दिफा से कासिर तजारती जहाज पर इस इश्तियाल अंगेज हमले की सख्त मजम्मत करता है। उन्होंने कहा कि भारतीय लोगों की सलामती सबसे अहम तरजीह है। इस दौरान वजारत खारजा ने इस हमले की मजम्मत करते हुए कहा कि खित्ते में तिजारती जहाज रानी पर हमलों के वाकयात का जारी रहना इंतहाई तशवीशनाक है। वजारत खारजा ने मजीद कहा कि खित्ते में तिजारती जहाज रानी को हमले का निशाना बनाना ख़त्म होना चाहिए और खित्ते की बैनुल अक़वामी आबी गुजरगाहों में जल्द से जल्द आज़ाद और बिला रुकावट जहाज रानी और तिजारत को बहाल किया जाना चाहिए। वजारत ने कहा कि रियाज में वाक़ भारतीय सिफारतखाना सूरत हाल पर गहरी निगाह रखे हुए है और अमले के अफराद की हिफाजत और सलामती के लिए यमन के हुकाम के साथ सरगर्म तरीके से तालमेल कायम कर रहा है। दिल्ली से अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए जमीर रजवी।
2: भारत ने पाकिस्तान के जेर कब्जा जम्मू कश्मीर के नाम नहाद मकामी इंतखाबात को मुकम्मल तौर पर तमाशा करार दिया है और कहा है कि इस तरह की खोखली हरकतें सच्चाई को नहीं छुपा सकती। नई दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए वजारत खारजा के तर्जमान रणधीर जायसवाल ने इशारा दिया कि असल मामला अवामी एहतजाज और पाकिस्तानी फोर्सेस की जानिब से मुजाहिरीन का जालिमाना कत्ल है। उन्होंने कहा कि

0: इस साल जून से जारी कार्रवाई में अब तक कम से कम 90 शहरी जान गंवा बैठे हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट ने अवामी इख्तलाफ का जवाब गोलियों, ब्लैकआउट, जोर ज़बरदस्ती और धमकियों से दिया है और अब इस तरह की खोखली इंतखाबी मशकों के जरिए उन्हें जायज़ ठहराने का जवाब ढूंढ रही है। जनाब जायसवाल ने मजीद कहा कि पाकिस्तान को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए और दुनिया को इंसानी हकूक पर पाकिस्तान की मुनाफिकाना लफाजी को भी सुनना चाहिए। सितंबर के महीने में नई दिल्ली में मुनक़िद होने वाली ब्रिक्स चोटी कॉन्फ्रेंस के दावतनामे से मुतालिक पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए जनाब जायसवाल ने कहा कि बांग्लादेश के वज़ीर आज़म तारिक रहमान की जानिब से इस साल फरवरी के महीने में ओहदा संभालने के बाद उन्हें भारत के दोतरफा दौरे की रस्मी दावत दी गई। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आज से ब्रिक्स की सकाफती मीटिंग की मेज़बानी की जा रही है। बहुत से मुल्कों के मंदूबीन सकाफत से मुतालिक चार रोज़ा तबादले ख्याल के लिए यहाँ पहुँच गए हैं। हमारे नामा निगार की एक रिपोर्ट।
1: ये चार रोज़ा मीटिंग भारत की ब्रिक्स सदारत के तहत मुनक़िद की जा रही है जो 8 अगस्त तक जारी रहेगी। इसमें ब्रिक्स के सकाफती वर्किंग ग्रुप और ब्रिक्स के वज़राए सकाफत की मीटिंग से शामिल हैं। इस तकरीब के लिए शहर की खास तौर पर तज़ईन कारी की गई है। VIP रोड और भोज सेतु को ताज़ा रंगों और मुराल से सजाया गया है। इब्तदाई दो रोज़ के दौरान सीनियर अफसरान तबादले ख्याल करेंगे और बाद के दो दिन सकाफत के वज़ीरों की मीटिंग्स मुनक़िद होंगी। वज़रा एक मुश्तरक ऐलानिये को कतई शक्ल देंगे। भारत ने रुकन मुल्कों के सामने दो अहम तजावीज़ रखी हैं जिनमें से एक का ताल्लुक फनकारों और सकाफती वर्से के लिए एक मुश्तरक डिजिटल प्लेटफॉर्म तख्लीक देने से है और दूसरी तजवीज़ का ताल्लुक ब्रिक्स मुल्कों की तरफ से यूनेस्को की मुश्तरक नामजदगियों की हौसला अफजाई से है। भोपाल से अभिनव गोयल की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं कलीम अहमद।
0: ब्रिक्स के वज़राए तालीम की 13वीं मीटिंग और ब्रिक्स के सीनियर अफसरान की 30वीं मीटिंग ओडिशा के शहर भुवनेश्वर में आज से इस महीने की 7 तारीख तक मुनक़िद की जाएगी। वज़ारत तालीम ने बताया कि इन मीटिंग्स में ब्रिक्स रुकन मुल्कों के वज़राए तालीम, सीनियर अफसरान और मंदूबीन शिरकत करेंगे। मीटिंग के दौरान इश्तराक के मौजूदात पर बातचीत की जाएगी जिनमें बचपन के इब्तदाई दौर में देखभाल और तालीम, नीज हुनरबंदी को मुस्तहकम बनाने, तआवुन में इजाफा करने और इश्तराक पर मबनी तहकीक, इख्तिरा, नीज स्टार्टअप्स को फ़रोग देने जैसे तरजीही मैदान शामिल हैं। मरकजी वजीर तालीम प्रहलाद जोशी ब्रिक्स के वज़राए तालीम की इस 13वीं मीटिंग में शिरकत करेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक RBI अपनी माली पॉलिसी के जायजे का ऐलान आज करेगा। इस माली पॉलिसी के जायजे का ऐलान हर दो महीने में एक बार किया जाता है। RBI के गवर्नर संजय मल्होत्रा ताज़ा तरीन रेपो रेट के फैसले का ऐलान मुंबई में सुबह 10 बजे करेंगे। पॉलिसी से मुतालिक ये फैसला एक ऐसे वक्त किया जा रहा है जब जोग्राफियाई और सियासी कशीदगी का सिलसिला जारी है और अमरीका के वफाकी बैंक की पॉलिसी में जारहीत का रुझान पाया जाता है। उम्मीद है कि RBI अपनी रेपो रेट 5.25% में कोई तब्दीली न करे। इसका मतलब ये होगा कि माली पॉलिसी से मुतालिक 6 रुकनी कमेटी MPC अपना गैर जानबदाराना मौक़िफ़ बरकरार रखे। रेपो रेट भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से आयद सूद की वो फीस होती है जो वो कमर्शियल बैंकों को पैसा उधार देते हुए वसूल करता है। रिजर्व बैंक अपने तबसरे में इफरात ज़र से मुतालिक उन अंदेशों, खाम कीमतों और आलमी जोग्राफियाई और सियासी गैर यकीनी हालात का जिक्र करेगा जो भारतीय मईशत पर असरअंदाज हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय रिजर्व बैंक को हिदायत दी है कि वो फर्जी खातों और साइबर घोटालों वाले बैंक खातों से निपटने के लिए एक मयारी तरीक़ेकार तश्कील दे। अदालत ने रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों नीज कानून नाफिज करने वाली एजेंसियों को भी हिदायतें जारी की हैं कि वो शिकायतों के इजाले को मुस्तकम बनाएं, घोटालों से बचाए गए रुपए पैसे की बहाली में तेज़ी लाएं और डिजिटल घोटालों के केस से निपटने के अमल को बेहतर बनाएं। मेडिकल काउंसिल कमेटी NCC आज नीट UG काउंसिलिंग के पहले राउंड का रजिस्ट्रेशन शुरू करेगी। शेड्यूल के मुताबिक पहले राउंड का रजिस्ट्रेशन और फीस की अदायगी इस महीने की 12 तारीख को सुपहर 3 बजे तक की जा सकेगी। तफसील हमारे नामानिगार से।
2: उम्मीदवार 6 अगस्त से 13 अगस्त के दरमियान अपने मुतबादिल फराहम कर सकते हैं। उम्मीदवारों के लिए 12 और 13 अगस्त को चॉइस लॉकिंग सहूलत दस्तियाब रहेगी। इस दौरान 13 से 16 अगस्त के दरमियान पहले राउंड की सीटों का अलॉटमेंट होगा। नतायज का ऐलान 17 अगस्त को होगा। सीट अलॉट किए गए उम्मीदवारों को 18 से 22 अगस्त के दरमियान मुतालिका इदारों में रिपोर्ट करना होगा। इस अमल में हिस्सा लेने वाले इदारे रिपोर्ट किए गए उम्मीदवारों के डेटा की 23 अगस्त को तस्दीक करेंगे।

0: काउंसलिंग के अमल की शुरुआत से पहले वजारत सेहत ने मरहलावार ट्यूटोरियल वीडियोस जारी किए हैं ताकि उम्मीदवार एमसीसी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन मुतबादिल फराहम करना और सीट अलॉटमेंट के तरीक़ेकार को समझ सकें। रिशु की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए जमीर रजवी।
1: ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन JPSC के इम्तिहान में मुबैना बदउनवानियों पर तलबा के मुजाहिरों में शिद्दत आ गई है। रांची में हजारों उम्मीदवार जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में पिछले 12 दिन से गैर मुबैना मुद्दत का एहतजाज कर रहे हैं। एक रिपोर्ट।
2: मुजाहिरीन ने दावा किया कि तेज धूप में भी मुजाहरे की जगह पर रहने के बावजूद उन्हें पीने के पानी, खुराक और बैतुलखला जैसी बुनियादी सहूलतों से महरूम रखा जा रहा है। दिफा के मरकजी वजीर ममलिकत और रांची के रुकने पार्लियामेंट संजय सेठ ने इस मामले पर अपोजिशन की खामोशी पर नुक्ताचीनी की है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि रियासती हुकूमत ने इस मामले में मुकम्मल बेहिसी का मुजाहरा किया है और अब तक हुकूमत के किसी भी नुमाइंदे ने एहतजाज कर रहे तलबा से मुलाकात नहीं की है। मुजाहरों के मुकाम पर बुनियादी सहूलतों की कमी पर इजहार ख्याल करते हुए गोड्डा के रुकने पार्लियामेंट निशिकांत दुबे ने भी हेमंत सोरेन की क्यादत वाली हुकूमत को निशाना बनाया। उन्होंने इम्तिहानात के दौरान सीटों की फरोख्त का संगीन इल्ज़ाम लगाते हुए भर्ती के अमल का नज्म करने के हुकूमत के तरीक़ेकार पर सवाल उठाए। तलबा ने पेपर लीक और एहतजाज के मुकाम पर बुनियादी सहूलतों के फुकदान का इल्ज़ाम लगाते हुए एहतजाज जारी रखने के अपने अज़्म को दोहराया है। रांची से महविश रहमान की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं कलीम अहमद।
1: उत्तर प्रदेश सरकार रियासती रोडवेज की बसों में 60 साल और उससे ज़्यादा उम्र की ख़वातीन को मुफ्त सफ़र की सहूलत फराहम करेगी। तफसील हमारे नुमाइंदे से।
0: उत्तर प्रदेश हुकूमत के पहले सप्लीमेंट्री बजट में माली साल 2026-27 के दौरान उत्तर प्रदेश रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की पहल को पूरा करने के लिए 100 करोड़ रुपये मुख्तस किए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अपने लोक कल्याण संकल्प पत्र में इस पहल का वादा किया था। इस फैसले के जरिए रियासत भर की लाखों मुअम्मर ख़वातीन शहरियों को माली तौर पर राहत मिलेगी और वो मजहबी, समाजी, ख़ानदानी और सेहत देखभाल से मुतालिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए सफ़र कर सकेंगी। लखनऊ से सुशील चंद्र तिवारी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए जमीर रजवी।
1: भारत के महकमे मौसमियात ने आज आसाम और मेघालय में मूसलाधार बारिश और बाज़ मकामात पर शदीद बारिश के पेश नज़र रेड अलर्ट जारी किया है। मौसमियात के महकमे के मुताबिक आज अरुणाचल प्रदेश, बिहार, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, उड़ीसा, जैली हिमालयी मगरबी बंगाल, सिक्किम, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में भी शदीद बारिश का इम्कान है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड और मध्य प्रदेश में कल तक बहुत तेज़ बारिश की पेशगोई की है। आज सुबह दिल्ली के बाज़ हिस्सों में हल्की बूंदाबांदी हुई। IMD के मुताबिक कौमी राजधानी में आज उमूमी तौर पर आसमान अब आलूद रहेगा और मुतअद्दिद मकामात पर हल्की बारिश का इम्कान है। आज केरलम में बारिश का सिलसिला जारी रहेगा लेकिन इसकी शिद्दत गुज़श्ता रोज़ के मुकाबले कम रहने का इम्कान है। कासरगोड, कन्नौर, वायनाड, कोझिकोड, इदुकी, इरनाकुलम, कोट्टायम, अल्पुया और पट्टनम थट्टा अजला के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जिसका मतलब है कि बाज़ मकामात पर इंतहाई शदीद बारिश का इम्कान है। रियासत के बाकी 5 अजला के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। कल के लिए भी रियासत के तमाम अजला में बारिश की वार्निंग जारी की गई है। आज सुबह तक रियासत के जनूबी अजला के कई इलाकों में 15 मिलीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड की जा चुकी है। नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में 17 अगस्त से 23 अगस्त के दरमियान मुनक़िद होने वाली BWF वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप के दौरान साबिक चैंपियन PV सिंधु के खवातीन के सिंगल मुकाबलों में दर्जाबंदी 9 है। वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारत की सबसे आला दर्जीबंदी मर्दों के डबल्स में सत्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी को मिली है, जो 5 है। साबिक आलमी चैंपियन और कांसे का तमगा जीत चुके लक्ष्य सेन मर्दों के सिंगल्स में 14वें नंबर पर, जबकि ध्रुव कपिला और ओलंपिक खिलाड़ी तनिषा क्रेस्टो मिक्स डबल्स में 15वें नंबर पर हैं। ताइपे ओपन में खवातीन के सिंगल्स की चैंपियन तन्वी शर्मा और साबिक आलमी नंबर 1 किदाम्बी श्रीकांत समेत भारत के सरकर्दा बैडमिंटन खिलाड़ी आज से जनूबी कोरिया के आसान में कोरिया मास्टर्स सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट में अपनी मुहिम का आगाज करेंगे। राष्ट्रपति भवन में मौसम गर्मा के दौरान सालाना तौर पर अमृत उद्यान इस महीने की 16 तारीख से लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। लोग अमृत उद्यान की सैर 15 सितंबर तक कर सकते हैं। इस दौरान ये बाग सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहेगा और इसमें सुपहर 5 बजे तक दाखिल हुआ जा सकेगा। ये थी खबरें।

भारत में सर्वप्रथम और आज भी सर्वश्रेष्ठ असली भरोसेमंद मोनो जिंक बनाने वाली 48 वर्षों से किसानों की खुशहाली हेतु समर्पित दयान फर्टिलाइजर्स अब धान उत्पादकों किसान भाइयों के लिए लेकर आई है धान प्रधान और धरती गोल्ड। अधिक पैदावार और उत्तम क्वालिटी के लिए एक बार जरूर प्रयोग करें और पाएं कम कीमत में ज्यादा मुनाफा, क्योंकि दयाल का है सपना, खुशहाल हो हर किसान अपना।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज आप भाई गुरतेज सिंह शांत को सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। 9 बजने को हैं। अब हिंदी में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी जयपुर से होंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश में नॉन पैचेबल और मिसिंग लिंक सड़कों के निर्माण के लिए 2000 करोड़ रुपए से अधिक के कार्य करवाए जाएंगे। आयुर्वेदिक दवाओं की गुणवत्ता जांच के लिए प्रदेश की पहली अत्याधुनिक ड्रग टेस्टिंग लैब जोधपुर में शुरू। नीट यूजी काउंसलिंग 2026 के पहले चरण का पंजीकरण आज से और राज्य के पांचों विद्युत निगमों में 2005 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में नॉन पैचेबल और मिसिंग लिंक सड़कों के निर्माण के लिए लगभग 2000 करोड़ रुपए से अधिक के 3500 कार्यों को मंजूरी दी गई है। इन कार्यों के माध्यम से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच सड़क संपर्क को मजबूत किया जाएगा। बजट 2026-27 की घोषणा के तहत स्वीकृत इन परियोजनाओं से आवागमन अधिक सुगम होगा और दूर दराज के क्षेत्रों की कनेक्टिविटी में सुधार आएगा। बेहतर सड़क नेटवर्क से किसानों, युवाओं, उद्यमियों और आमजन को सुविधा मिलेगी। आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलने के साथ ही आधारभूत ढांचे को नई मजबूती मिलेगी। राज्य के 84 शहरों में नगरीय आधारभूत सुविधाओं के विस्तार पर करीब 9500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। राजस्थान नगरीय आधारभूत विकास परियोजना RUIDP के पांचवें चरण के तहत होने वाले इन निर्माण कार्यों की जानकारी देने के लिए आज से संवाद कार्यक्रम शुरू हो रहे हैं। ये संवाद कार्यक्रम 11 अगस्त तक चलेंगे। इस दौरान प्रतिभागियों से सुझाव और फीडबैक भी लिया जाएगा। गौरतलब है कि पांचवें चरण में अपशिष्ट जल और ठोस प्रबंधन के लिए शहरी यातायात सुधार और विरासत संरक्षण सहित अन्य कामों के जरिए इन शहरों को स्मार्ट और सस्टेनेबल बनाया जाएगा। 67 शहरों में एशियन डेवलपमेंट बैंक के सहयोग से अपशिष्ट जल प्रबंधन किया जाएगा। आयुर्वेदिक दवाओं की गुणवत्ता की जांच के लिए प्रदेश की पहली अत्याधुनिक ड्रग टेस्टिंग लैब जोधपुर में शुरू हो गई है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय में करीब 9 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित इस प्रयोगशाला में आयुर्वेदिक दवाओं की वैज्ञानिक जांच की जाएगी। इससे नकली और मिलावटी दवाओं की पहचान आसान होगी और जांच के लिए दूसरे राज्यों की प्रयोगशालाओं पर निर्भरता समाप्त होगी। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: प्रयोगशाला को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप विकसित किया गया है। यहाँ यूवी स्पेक्ट्रो फोटोमीटर सहित 6 अत्याधुनिक मशीनें स्थापित है। आयुर्वेदिक दवाओं में एलोपैथिक दवाओं की मिलावट का भी पता

0: चलेगा। शुरुआत में किडनी, लीवर, हड्डियों व पाचन तंत्र से जुड़ी दवाओं की जांच होगी। भारी वस्तुओं जैसे शीशा, पारा, आर्सेनिक और कैडमियम के अवशेषों का विशेष परीक्षण किया जाएगा। कुछ महीनों में विश्वविद्यालय की अपनी प्रयोगशाला को भी इससे जोड़ा जाएगा। आगे चलकर कैंसर, अर्थराइटिस और तंत्रिका तंत्र से जुड़ी दवाओं की भी जाँच होगी। रामेश्वर बेड़ा, आकाशवाणी समाचार, जोधपुर।
1: प्रदेश में आमजन को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण दवाएं उपलब्ध कराने के लिए बाजार से दवा नमूनों की नियमित जांच की जा रही है। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौर ने विभागीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक में ये बात कही। उन्होंने बताया कि जुलाई माह में 587 दवा नमूनों की जाँच की गई। जाँच में 579 नमूने मानक गुणवत्ता के अनुरूप मिले, जबकि 8 नमूने अमानक पाए गए। इनमें एंटीबायोटिक, दर्द निवारक और अन्य दवाएं शामिल हैं। राज्य सरकार की वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत जयपुर से रामेश्वरम के लिए दूसरी विशेष ट्रेन कल रवाना की गई। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत ने डहर के बालाजी रेलवे स्टेशन से ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस विशेष ट्रेन से जयपुर संभाग के 970 वरिष्ठ नागरिक रामेश्वरम और मदुरई की यात्रा पर गए हैं। यात्रियों की सुविधा, सुरक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 30 अधिकारियों और कर्मचारियों का दल भी उनके साथ गया है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि योजना के माध्यम से प्रदेश के बुजुर्गों को सुरक्षित और सुविधाजनक तीर्थ यात्रा कराई जा रही है।
2: ये मैं मानती हूँ बहुत बड़ा काम हुआ है। सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है और ये वरिष्ठ जन है, इनके बारे में आजकल कोई नहीं सोचता, परिवार जन भी नहीं सोच पाते, सब इतने व्यस्त रहते हैं के बारे में सरकार ये कर रही है। तो ऐसी बहुत सारी हमारी जो तीर्थ स्थल है जो वो कभी सोच भी नहीं सकते कि हम कैसे जाएंगे, उसके लिए पूरी व्यवस्था। और अगर आप देखेंगे इस ट्रेन में भोजन की व्यवस्था है, फिर बीच में अगर कहीं पर स्टॉपेज होगा तो वहाँ रहने की भी व्यवस्था सरकार कर रही है, बाकी सारी व्यवस्थाएं ताकि वो सुरक्षित अपने स्थान पे, अपनी अपने तीर्थ पे पहुँचे, वहाँ दर्शन करें और वापिस सुरक्षित पहुँच जाए।
1: ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। रिजर्व बैंक आज द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा घोषित करेगा। आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा सुबह 10 बजे नई रेपो रेट की घोषणा करेंगे। रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की 3 दिन की बैठक सोमवार को शुरू हुई थी। संभावना जताई जा रही है कि आरबीआई प्रमुख रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं करते हुए इसे 5.25% पर ही रखेगा। नीट यूजी काउंसलिंग 2026 के पहले चरण का पंजीकरण आज से शुरू हो रहा है। मेडिकल परामर्श समिति की ओर से जारी कार्यक्रम के अनुसार पहले चरण का पंजीकरण और शुल्क भुगतान 12 अगस्त तक होगा। उम्मीदवार कल से 13 अगस्त तक अपनी पसंद दे सकते हैं। पहले चरण की सीट आवंटन प्रक्रिया 13 से 16 अगस्त तक चलेगी और परिणाम 17 अगस्त को घोषित किया जाएगा। जिन उम्मीदवारों को सीटें आवंटित की गई हैं उन्हें 18 से 22 अगस्त के बीच अपने संबंधित संस्थानों में रिपोर्ट करना होगा। संस्थान 23 अगस्त को उम्मीदवारों के डेटा का सत्यापन करेंगे। काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू होने से पहले स्वास्थ्य मंत्रालय ने उम्मीदवारों को एमसीसी पोर्टल पर पंजीकरण, चयन भरने और सीट आवंटन प्रक्रिया समझने में मदद करने के लिए चरण दर चरण ट्यूटोरियल वीडियो जारी किए हैं। काउंसलिंग प्रक्रिया के दौरान सहायता के लिए उम्मीदवार टोल फ्री नंबर 1800-102-7637 पर संपर्क कर सकते हैं। राज्य के 5 विद्युत निगमों में 2005 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी कर दिया गया है। इसके लिए अभ्यर्थी 25 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। भर्ती के तहत कनिष्ठ अभियंता के 869, कनिष्ठ लेखाकार के 371 और कनिष्ठ सहायक तथा वाणिज्यिक सहायक द्वितीय के 765 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। चयन के लिए ऑनलाइन प्रतियोगी परीक्षा आयोजित की जाएगी। भर्ती से जुड़ी सभी जानकारी वेबसाइट और हेल्पलाइन पर उपलब्ध कराई गई है। जैसलमेर में युवाओं को स्टार्टअप और नवाचार से जोड़ने के लिए उद्यमिता और स्टार्टअप संवर्धन कार्यशाला आज आयोजित की जा रही है। सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग की ओर से स्टार्टअप इंडिया के तहत आयोजित इस कार्यशाला में युवाओं, विद्यार्थियों, नवाचारकर्ताओं और संभावित उद्यमियों को स्टार्टअप से जुड़ी विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: कार्यशाला के माध्यम से जिले में स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा देने तथा स्थानीय प्रतिभाओं को राष्ट्रीय स्तर के अवसरों से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। कार्यशाला के दौरान स्टार्टअप

0: इंडिया एवं आईआईटी मान्यता प्राप्त प्रक्रिया, राज्य एवं केंद्र सरकार की विभिन्न प्रोत्साहन योजनाएं, वित्तीय सहायता, निवेश के अवसर, व्यवसाय मॉडल तैयार करने की प्रक्रिया, नवाचार प्रबंधन, बौद्धिक संपदा अधिकार, डिजिटल तकनीकों के उपयोग तथा व्यवसाय विस्तार की रणनीतियों पर विशेषज्ञों द्वारा विस्तार से जानकारी दी जाएगी। मनीष व्यास, आकाशवाणी समाचार, जैसलमेर।
1: राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने उद्योगों के लिए रेड, ऑरेंज, ग्रीन और ब्लू श्रेणियों का संशोधित वर्गीकरण लागू कर दिया है। मंडल के सदस्य सचिव कपिल चंद्रवाल ने बताया कि ये वर्गीकरण केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के दिशा निर्देशों के अनुरूप तैयार किया गया है। इसका उद्देश्य उद्योगों को पर्यावरणीय स्वीकृतियों और सहमति प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता और स्पष्टता प्रदान करना है। उन्होंने बताया कि संशोधित सूची में सीमेंट, डेयरी, अस्पताल, होटल, ई वेस्ट रिसाइकलिंग, निर्माण परियोजनाओं और औद्योगिक पार्क सहित कई नए क्षेत्रों को भी शामिल किया गया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में नॉन पैचेबल और मिसिंग लिंक सड़कों के निर्माण के लिए 2000 करोड़ रुपए से अधिक के कार्य करवाए जाएंगे। आयुर्वेदिक दवाओं की गुणवत्ता जांच के लिए प्रदेश की पहली अत्याधुनिक ड्रग टेस्टिंग लैब जोधपुर में शुरू की गई है। नीट यूजी काउंसलिंग 2026 के पहले चरण का पंजीकरण आज से, और राज्य के पांचों विद्युत निगमों में 2005 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। मोरमंगल कार्यक्रम में लीजिए सुनिए ताना राम मेहरडा को।

युगल फिल्म गीत। पहला गीत हमने कविता कृष्णमूर्ति मोहम्मद आजीज की आवाजों से लिया है, गीत आनंद बख्शी का, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का, फिल्म का नाम कर्मा।

मरमंगल कार्यक्रम में आज आप तानाराम मेहरड़ा की आवाज़ में गाई कुछ लोक रचनाएं सुन रहे थे। मीडियम वेव 326.7 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। आप हमारे कार्यक्रम DRM 909 किलोहर्ट्ज़, FM 100.1 किलो मेगाहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर भी सुन पा रहे हैं। आइए सुनते हैं कुछ

ये युगल फिल्म गीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से। मैं हूं आपके साथ आपका रेडियो दोस्त हरप्रीत। प्रोग्राम की अगली पेशकश देवदास फिल्म से, आवाजें कविता सुब्रमण्यम और श्रेया घोषाल की।

अभी आप सुन रहे थे कुछ युगल फिल्मी गीत। आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। इस समय दिन के 10 बजने को हैं। प्रोग्राम सुनिए आज के फनकार। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं गायिका लता मंगेशकर के गाए फिल्मी नगमे। प्रोग्राम का आगाज झुक गया आसमान फिल्म से, गीत शैलेंद्र का, संगीत शंकर जयकिशन का।

प्रोग्राम की अगली पेशकश मेरा गांव मेरा देश फिल्म का ये गीत। गीत लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का, आवाज लता मंगेशकर की। श्रोताओं, आज के फनकार कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं गायिका लता मंगेशकर के गाय फिल्मी नगमे।

0: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: चांदनी फिल्म में लता मंगेशकर को सुनिए।

श्रोताओं, ये फिल्म नगमे आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से। हमारे मीटर्स हैं मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्स, डीआरएम 909 किलोहर्ट्स, एफएम 100.1 किलो मेगाहर्ट्स, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर भी आप हमारे प्रसारण सुन पा रहे हैं। प्रोग्राम की अगली पेशकश लता मंगेशकर की आवाज़, फिल्म का नाम आपके साथ। श्रोताओं, आज प्रोग्राम आज के फनकार के तहत आप सुन रहे हैं गायिका लता मंगेशकर के गाए फिल्मी गीत।

प्रोग्राम की अगली पेशकश प्रतिज्ञा फिल्म से, आवाज लता की, गीत आनंद बख्शी का, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। प्रोग्राम आज के फनकार के तहत आप सुन रहे हैं गायिका लता मंगेशकर के गाए फिल्म इनक में।

यह है प्रोग्राम की आखिरी पेशकश बॉबी फिल्म से। इसी गीत के साथ एक ही फनकार कार्यक्रम से अपने दोस्त हरप्रीत को अनुमति दें। नमस्कार। आज के फनकार थे गायिका लता मंगेशकर।

श्रोतो, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम फिल्म संगीत। मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलो हर्ट्स पर, FM बैंड 100.1 मेगा हर्ट्स पर, आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरत गढ़ है। श्रोताओ, हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के 11 बजे हैं। लीजिए अब सुने कार्यक्रम सैनिकों के लिए।

सैनिकों के लिए कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को संजय चौधरी का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, कार्यक्रम का नाम सैनिकों के लिए है। जैसे कि हम बात करते हैं, जान हथेली पर रख कर जो देश का मान बढ़ाते हैं, ऐसे वीरों को हम दिल से बार बार सलाम करते हैं। तो श्रोताओं, कार्यक्रम का आगाज करते हैं बॉर्डर फिल्म के इस खूबसूरत गीत के साथ। इसे स्वर दिया है सोनू निगम और रूप कुमार राठौड़ ने।

श्रोताओ, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सैनिकों के लिए, आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से। कार्यक्रम में लीजिए अब सुने दिल तो पागल है, इस फिल्म का ये गीत। इसे स्वर दिया है आशा भोसले ने और इसके गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीत उत्तम सिंह का।

श्रोता कार्यक्रम में लीजिए अब सुने फिल्म फूल और कांटे का ये गीत। इसे स्वर दिया है अनुराधा पौडवाल और कुमार शानू ने।

श्रोताओ, सैनिकों के लिए कार्यक्रम इस वक्त आप आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से सुन रहे हैं। कार्यक्रम में लीजिए अब सुने दिल जले फिल्म का ये गीत। इसे स्वर दिया है उदित नारायण ने। इसके गीतकार हैं जावेद अख्तर और संगीत अनु मलिक का।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सैनिकों के लिए आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से। कार्यक्रम में लीजिए अब सुने फिल्म कभी खुशी कभी गम। इस फिल्म का ये गीत, इसे स्वर दिया है कविता के सुब्रमण्यम, अलका याग्निक, अमित कुमार, उदित नारायण और सोनू निगम ने। इसके गीतकार हैं समीर और संगीत जतिन ललित का।

श्रोताओ, कार्यक्रम के आखिर में लीजिए सुने कयामत से कयामत तक। इस फिल्म का ये गीत स्वर उदित नारायण के हैं। इसके गीतकार हैं मजरू सुल्तानपुरी और संगीत आनंद मिलन का।

दोस्तों, आज कॉलेज का आखिरी दिन है और आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। नो रियली, आई मीन इट। और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है।

अपनों से दूर रहकर भी जो वतन से प्यार निभाते हैं, ऐसे वीर जवान ही भारत का मान बढ़ाते हैं। श्रोताओ, इस गीत के साथ सैनिकों के लिए कार्यक्रम संपन्न करने की अपने दोस्त संजय चौधरी को दें इजाजत।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सैनिकों के लिए। मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलोहर्ट्ज़ पर, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरत कड़े। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के 12 बजे हैं। लीजिए अब सुने कार्यक्रम विवरण। कार्यक्रम विवरण में आप सुनेंगे हमारी आज की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम में उनका प्रसारण समय। अब से कुछ देर बाद यानी कि 12:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत। सुगम संगीत का वक्त रहेगा 12:30। खेत खलियान आप सुनेंगे 12:50।

पर दोपहर 1:05 पर कार्यक्रम होगा महिला जगत। दोपहर 2:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम फिल्म संगीत।

हमारी संध्याकालीन सभा के कार्यक्रमों में शाम 5 बजे युवा साथी सुनेंगे अपना दैनिक कार्यक्रम युववाणी। सरायकी का वक्त रहेगा शाम 6:05। चौपाल आप सुनेंगे शाम 7 बजे। 8:15 पर कार्यक्रम होगा फिल्म संगीत।

रात्रि 9:15 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सुगम संगीत। फिल्म संगीत का वक्त रहेगा रात्रि 10 बजे।

समाचार आप सुनेंगे दोपहर 2 बजे अंग्रेजी में, 2:15 पर समाचार होंगे हिंदी में हमारे दिल्ली केंद्र से। हिंदी में प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे शाम 6:30 पर। राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार होंगे 6:45 पर हमारे जयपुर केंद्र से। रात्रि 8:45 पर हिंदी में समाचार होंगे, अंग्रेजी में समाचार होंगे रात्रि 9 बजे। सभा के आखिर में रात्रि 11 बजे समाचार होंगे हिंदी में, अंग्रेजी में समाचार होंगे रात्रि 11:05 पर।

श्रोताओं, ये आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। लीजिए अब सुने कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत।

कुछ बातें कुछ गीत इस कार्यक्रम में लीजिए। अब सुने फिल्म प्रेम रोग का ये गीत। ये फिल्म 1982 में रिलीज हुई और एक प्रसिद्ध हिंदी रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन और निर्माण राज कपूर द्वारा किया गया था। यह फिल्म बाल विधवाओं की दुर्दशा और विधवा पुनर्विवाह जैसे सामाजिक मुद्दों पर आधारित है। इसमें मुख्य कलाकार ऋषि कपूर और पद्मिनी कोल्हापुरी, इसके अलावा शम्मी कपूर, नंदा कुलभूषण खरबंदार, राजा मुराद ने भी इस फिल्म में भूमिका निभाई थी। इस फिल्म के गीत काफ़ी सराहे गए थे। तो लीजिए कार्यक्रम में आपको सुनवाते हैं प्रेम रोग फिल्म का ये गीत।

श्रोता कार्यक्रम में लीजिए अब सुने फिल्म कभी कभी का ये गीत। यह फिल्म 1976 में बनी भारतीय सिनेमा की एक प्रतिष्ठित और सदाबहार म्यूजिकल रोमांटिक ड्रामा फिल्म है। यह यश चोपड़ा द्वारा निर्देशित इस फिल्म की कहानी प्रेम, बिछड़न और भाग्य के इर्द गिर्द घूमती है। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन और राखी अभिनीत पीढ़ियों की प्रेम कहानी को बहुत खूबसूरती से दिखाया गया है। इसमें मुख्य कलाकार के रूप में अमिताभ बच्चन, शशि कपूर, राखी, गुलजार, वहीदा रहमान, ऋषि कपूर, नीतू सिंह और सिमी ग्रेवाल ने इसमें मुख्य भूमिका निभाई। इसके संगीतकार खयाम हैं और गीतकार साहिर लुधियानवी। तो लीजिए आपको सुनवाते हैं इस फिल्म का ये गीत।

श्रोताओं, आप कार्यक्रम सुन रहे हैं कुछ बातें कुछ गीत, आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से। लीजिए, कार्यक्रम में आपको सुनवाते हैं नसीब फिल्म का गीत। इस फिल्म की अगर बात करें तो यह फिल्म 1981 में रिलीज हुई और अमिताभ बच्चन की ब्लॉकबस्टर मूवी थी। यह मनमोहन देसाई द्वारा निर्देशित एक बेहतरीन मल्टी स्टारर मसाला फिल्म थी। इसमें मुख्य कलाकारों की अगर हम बात करें तो अमिताभ बच्चन, शत्रुघ्न सिन्हा, ऋषि कपूर, हेमा मालिनी और रीना रॉय ने मुख्य भूमिका निभाई। कहानी की अगर हम बात करें तो यह चार दोस्तों और उनकी लॉटरी के टिकट के इर्द गिर्द घूमती है। एक रात नशे में वे लॉटरी का टिकट खरीदते हैं जो उन्हें रातों रात करोड़पति बना देता है, लेकिन इसके साथ ही उनकी दोस्ती में और प्यार में धोखे की परीक्षा शुरू होती है और ये इस फिल्म में दर्शाया गया है। संगीत की बात अगर करें तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल द्वारा संगीतबद्ध इसके गाने बहुत ही सराहे गए और आज भी वो गाने गुनगुनाए जाते हैं। तो लीजिए, सुने नसीब फिल्म का ये गीत।

श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत, मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलोहर्ट्ज़ पर, FM बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरत कड़ है। श्रोताओ, हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के 12:30:32 हुए हैं। लीजिए अब सुने कार्यक्रम सुगम संगीत। सुगम संगीत के इस कार्यक्रम में आज आपको सुनवा रहे हैं जगजीत सिंह की गाई कुछ गज़लें।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुगम संगीत। सुगम संगीत के इस कार्यक्रम में आज आपने जगजीत सिंह की गाई कुछ गज़लें सुनी। मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलोहर्ट्स पर आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरत गढ़ है। श्रोताओं, लीजिए अब सुने कार्यक्रम खेत खलिहान। इस कार्यक्रम में आज जानकारी का विषय है खीरे में बोरॉन की कमी के लक्षण।
1: किसान भाइयों राम राम। किसान भाइयों, बात करांगा आज आप खेतीपाती की, और खेतीपाती में जी हम बात करा आप खीरे की फसल के बारे गमा, क्योंकि खीरो बिया तो अपना ही क्षेत्र गमा, अपने जो किसान भाई लोग अभी बहुयात मात्रा गमा क्षेत्र गमा बीजे और अच्छो मुनाफो अच्छी आमदनी जकी है बाले वे, और अपनी जकी माटी है अपनी जकी जलवायु है वह खीरे ने बढ़िया माने भी है, और बढ़िया तरीके से अगर खेती करनी है तो बिंगमा कई जकी जानकारी की जकी बातें हैं, जरूरी ध्यान रखने वाली जकी बातें हैं, बांगू ध्यान रखना अपन बहुत ज़्यादा जरूरी है। और खीरो जो को है वो बड़ो बढ़िया हुए और स्वादिष्ट हुए, स्वास्थ्य के लिए भी अपना जगह भाई लोग अगर खावे तो फायदेमंद हुए। और खीरे ने जिया नमक के सागे लगा के या फिर मिर्च के सागे कच्चो भी आप खा सका, और छोटा फला ने कि एक कच्चा काट गए यार बांगू अचार चुको है वो भी अपने ही क्षेत्र का अपने जगह भाई लोग भी बनावा है। इन अलावा कड़ी बनाने का भी खीरा का जो वो प्रयोग है बहुत सबसे ज़्यादा हुआ है। इनका फड़ांगी जी की तासीर है किसान भाइयों, यानी कि खीरो जुको है और बिंग जी की तासीर है बट ठंडी हुए, और वो खीरो जुको है वो पीड़ियो है या फिर जगह कि मानस गए कोई कब्ज की शिकायत है तो बिंग लिए बड़ो लाभकारी मानी जाए।

0: कीड़ा है बे लागना शुरू हो जाए। तो टेम सर अपना जगह विशेषज्ञ है, जानी जान जगह किसान है, बंग संपर्क में अपन रहना चाहिए। और अपनी जगह फसल में अगर कोई कमी पूर्ति लगे तो अपन अपना जगह वैज्ञानिक लोग है बांस्यू भी अपन राय में सिरो जो है वो करते रहना चाहिए। इन अलावा जी अपन बोरोन अपने खेत का माँ अपनी फसल का माँ देवा तो बिना कई फायदे है जी। हाँ, एक तो खीरे की फसल का माँ बोरोन की जी मात्रा है वह पूरी राक्षा तो इन फड़ांगे जी की पराग नली का है वह बहुत बढ़िया बेहतर बनेंगे। जिसका वजह से क्या अपन कोई भी सूक्ष्म पोषक तत्व दे सियाँ पानी धानी लगा सियाँ तो भी शूँ के है का अपना पोट दो जो है वो बढ़वार कर जाएगा और बिना फल जगह है वे भी बेहतर और बढ़िया और उच्च क्वालिटी का जगह है बे लगेगा। फड़ांग जो को लागणो है वो भी ज़्यादा हो जाएगा। कई बार अपन देखा एक एक बेल गए एक एक दो दो ही लगे, अगर बोरोन के अलावा दूसरा जगह सूक्ष्म तत्व है वे भी अगर अपन सही तरीके से दी है तो फल जगह है वे भी भरपूर मात्रा में लगेगा। और फल और जगह झड़ने की समस्या है, फूल जगह है वे भी कई बार झड़ना शुरू हो जाए, फल जगह है बढ़ने के बाद में झड़ना शुरू हो जाए तो वे भी कम हो जाएगा। तो बोरोन जो को है वो बड़ो फायदेमंद है, वो देना जरूरी है। और फलांग जो का आकार है बंग जकी गुणवत्ता जकी है एक रूपता जकी है वह भी बढ़िया रहेगी, चमकदार जगह फल है वे अपन देखने मिलेगा। जब भी अपन बाजार गाँव अपने लेके जा सियाँ तो क्या का अपन मुनाफो जो को है आमदनी जकी है वह ज़्यादा होगी। और पौधा की बंटवार जकी है वह संतुलित बनी रहेगी, कई बार झाड़ बन जाए या फिर या देखा बंटवार जकी है बाबा लेवे भी कोनी पौधा जगह है पूरा बड्डे भी कोनी नहीं। तो अपन बोरोन अगर सही तरीके से देसियाँ तो भी शुक्र का पौधा की बंटवार है वह भी संतुलित तरीके से बनी रहेगी और फल जगह है वे भी बेहतर और बढ़िया लगेगा। उत्पादन तो इन अलावा बढ़ेगा। इनका सागा सागा आपा की है का बरसात हो चुको मौसम चलन ला रही है तो बिंगमा कीड़ा कांटा का अलावा की है का अपनी खीरे की जी की फसल है बिंगमा खरपतवार जो को है वो सबसे ज़्यादा होगा, है ना, क्योंकि आपा बट्टा पर बीज रखे है डोलियां पर बीज रखे है तो जट्ठा खाली खाली जगह रेडी है बट्ठा खरपतवार जो को है वो होगा तो स्वाभाविक सी बात है। तो खरपतवार रहित अपनी जी की फसल है बिना रखनी जरूरी है। जट्ठा भी यहाँ लगा कि कोई खरपतवार पैदा हो रहा है तो बट्ठा की अगर अपन थोड़ा बहुत कशिया छूँ या फिर कोई और तरीका से जाके वो खरपतवार जो है वो निकालना जरूरी है। और यहाँ लगा कि अब अपने अपनी जी की फसल है सूखन ला रही है फिर बत्तर आने ला रही है तो ऊपरों अपन मौसम जो है वो देख गए ही अपन बिंग जो सिंचाई को पानी जो है वो अपने देना चाहिए। और फूल आने पर या फिर फल बनता टाइम किया का अपन सिंचाई की जी मात्रा है वह निश्चित करनी जरूरी है। रोजाना अपन किया का कई बार पानी भरे रखा बना नमी जी की है वह भूमि में दे ही रखा तो भी शुक्र फल जगह है फूल जगह है वे झड़ना शुरू हो जाए और अपना जगह मुनाफा है आमदनी जी की है वह घट जाए। तो आ बातों का पूरा ध्यान रखना है, बढ़िया तरीके से अगर अपन खेती करनी है तो अपने खरपतवार रहित रखना जरूरी है, बने कीट रोग व्याधियां से बचा के रखना जरूरी है और जितना भी सूक्ष्म पोषक तत्व है देना जरूरी है। सा अपना खेत करेगा काम धंधा मन और भी करना है हूँ चलूँ। राम राम सा राम राम।
1: श्रोताओ अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेत खलिहान जिसमें आज जानकारी का विषय था खीरे में बोरोन की कमी के लक्षण। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के 1 बजने को है। लीजिए अब सुने हिंदी में प्रादेशिक समाचार। ये समाचार हमारे जयपुर केंद्र से अनुप्रसारित किए जा रहे हैं, कृपया प्रतीक्षा करें।
2: आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। आरबीआई ने रेपो दर में बदलाव नहीं करते हुए 5.25% पर ही बरकरार रखा है। मौद्रिक नीति समिति के फैसले की घोषणा करते हुए बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि देश की आर्थिक वृद्धि को मजबूत मांग का समर्थन मिल रहा है और ये विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बनी हुई है। श्री मल्होत्रा ने कहा कि वित्त वर्ष की पहली तिमाही में अर्थव्यवस्था का प्रदर्शन उम्मीद से बेहतर रहा जिसके चलते केंद्रीय बैंक ने वर्ष 2026-27 के लिए अपने वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की बढ़ोतरी अनुमान को संशोधित करके 6.7% कर दिया है। नीट मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई समेत कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण आज लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। सुबह 11 बजे जब लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया लेकिन विपक्षी सदस्य छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बयान की मांग कर रहे थे। श्री बिरला ने सभी सदस्यों से प्रश्नकाल के सुचारू संचालन में सहयोग करने का आग्रह भी किया।

0: अनुच्छेद 370 को हटाए जाने की आज सातवीं सालगिरह है। वर्ष 2019 में आज ही के दिन संसद ने अनुच्छेद 370 के उन प्रावधानों को खत्म कर दिया था जिनके तहत जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा मिला हुआ था। इससे पहले अनुच्छेद 370 के प्रावधानों के अनुसार जम्मू कश्मीर देश का एकमात्र ऐसा राज्य था जिसका अपना अलग संविधान था। ये एक अस्थायी प्रावधान था जिसने राज्य को विशेष स्वायत्त दर्जा दिया था। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग CQM ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR में 500 वर्ग मीटर से कम क्षेत्रफल वाले निर्माण और तोड़फोड़ स्थलों पर धूल नियंत्रण उपायों के उल्लंघन के खिलाफ कार्रवाई के लिए संशोधित निर्देश जारी किए हैं। आयोग ने NCR में अतिरिक्त नगर निगमों, विकास प्राधिकरणों, नगर परिषदों, नगर बोर्डों और शहरी स्थानीय निकाय को गंभीर उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ अभियोजन शुरू करने की शक्तियां प्रदान की हैं। इनमें अलवर, भरतपुर, भिवाड़ी और नीमराणा सहित NCR के विभिन्न क्षेत्र शामिल हैं। आयोग ने कहा है कि इसका उद्देश्य धूल नियंत्रण उपायों का कड़ाई से कार्यान्वयन सुनिश्चित करना है ताकि निर्माण और विध्वंस गतिविधियों से होने वाले कण प्रदूषण को कम किया जा सके। नागौर जिले के डेगाना उपखंड में हरियालो राजस्थान अभियान के तहत एक ही दिन में 1,00,000 पौधे लगाकर नया रिकॉर्ड बनाया गया है। भैरुंदा और डेगाना पंचायत समिति की सभी ग्राम पंचायतों ने जन सहभागिता से ये लक्ष्य पूरा किया है। अभियान के तहत हर ग्राम पंचायत में 4,000 पौधे लगाए गए। मुख्य कार्यक्रम सुरपुरा, निम्बुला बिस्वा और पिरामिड वैली स्थित तेजाजी हरसोर परिसर में आयोजित हुआ। प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान कई स्थानों पर बरसात हुई। मौसम विभाग से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार डीग जिले के रारहे में सबसे अधिक 66 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। इसके अलावा अलवर, भरतपुर, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, सीकर, झुंझुनू और जयपुर के आसपास के क्षेत्रों में भी अच्छी बारिश हुई। इस बीच मौसम विभाग ने आज 17 जिलों के लिए बरसात का येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार पूर्वी राजस्थान के ऊपर बने चक्रवाती परिसंचरण तंत्र के प्रभाव से उत्तर पूर्वी हिस्सों में मेघ गर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। वहीं 7 और 8 अगस्त को भरतपुर और कोटा संभाग के कुछ क्षेत्रों में भारी से अति भारी बारिश हो सकती है। राज्य सरकार ने प्रस्तावित राजस्थान समान सिविल संहिता UCC पर आमजन से ऑनलाइन सुझाव और विचार आमंत्रित किए हैं। राजस्थान के मूल निवासी निर्धारित पोर्टल या QR कोड के माध्यम से अपने सुझाव दर्ज करा सकते हैं। सरकार ने नागरिकों से अधिक संख्या में इस प्रक्रिया में भाग लेने की अपील की है। प्राप्त सुझावों पर विचार कर प्रस्तावित विधेयक को और अधिक व्यापक, प्रभावी और जनहितकारी बनाने का प्रयास किया जाएगा। इसके साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये
2: मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलोहर्ट्ज पर FM बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरत कड़ है। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के 1:05 और 30 सेकंड हुए हैं। लीजिए अब सुने कार्यक्रम महिला जगत।

सुरों की महफिल सजे, दिलों में प्यार जगाए, हर फरमाइश के साथ कोई मीठी याद मुस्कुराए, गीतों की खुशबू लेकर फिर आया है ये कारवां, संगीत के रंगों से महक उठे हर एक जहां। से क्यों आप सुन रहे हैं आकाशवाणी की कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ पर इस समय कार्यक्रम महिला जगत, और आज बुधवार है और समय है फरमाइशी गीतों के कार्यक्रम आपकी पसंद का। मैं हूं आपकी सखी अलका वर्मा, और अगले 55 मिनट तक हम आपके भेजे

हुए संदेशों और आपकी पसंद के सदाबहार गीतों के साथ रहेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज के पहले फरमाइशी गीत से, जो आया है हमें रघुनाथपुरा जिला श्रीगंगानगर से, लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हीना, हर्षित, खुशी गोस्वामी का। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश से आफताब अंसारी, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ, अनवर मास्टर, लुपना अंसारी, आलिया अंसारी ने भी हमें फरमाइश भेजी है। साथ ही साथ फरमाइश भेजी है जिला मुरादाबाद से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक, बलवीर सिंह। इसके साथ साथ इस गीत की फरमाइश हमें भेजी है गांव खोखरा वाली श्रीगंगानगर से विनोद बारासा, विशाल बारासा, विकास बारासा, रोशनी बारासा और शगुन बारासा ने। साथ ही साथ इसी गीत की फरमाइश हमें भेजी है अंबागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से रिजवान खां, आयशा सबीहा, अनस और रेहान ने। तो श्रोताओं, आप सबकी पसंद से सुनवाते हैं कार्यक्रम का ये पहला गीत।

आप सब सुन रहे हैं मुकेश और लता मंगेशकर को फिल्म शोर में। संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है और गीत लिखा है संतोष आनंद ने।

सो क्यों अगला जो मैसेज है वो हमें भेजा है गांव खारिया जिला सिरसा हरियाणा से प्रताप जिनागल इंदिरा मुकेश दिनेश अंशु बलदेव कटारिया। ये लिखते हैं कि आकाशवाणी सूरतगढ़ का ये कार्यक्रम सभी महिलाओं के लिए अनूठा मंच है और इस शानदार प्रस्तुति के लिए श्रीमती अलका वर्मा जी और नवीन सिसोदिया जी का बहुत बहुत आभार। तो आपका भी बहुत बहुत आभार कि आप हमारा कार्यक्रम जो है वो इतना पसंद कर रहे हैं। इसके साथ ही हमें फरमाइश भेजी है हनुमानगढ़ टाउन से रजाक मोहम्मद शमीम बेगम इमरान खान जीशान खान ने। साथ ही हमें फरमाइश भेजी है वडिंग खेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस पिंकी लवली आरती अरोड़ा ने। टैगोर गार्डन नई दिल्ली से फरमाइश भेजी है रविंद्र सिंह छाबड़ा इंद्रजीत कौर छाबड़ा स्वीटी छाबड़ा ने। और साथ ही फरमाइश भेजी है लिखमेवाला रायसिंह नगर से सोहनलाल जांगीड़ मंजू जांगीड़ इंदिरा देवी निर्मला देवी ममता देवी मोनिका शिवप्रकाश सुनील जांगीड़ ने। साथ ही साथ तंगोरी जिला मोहाली पंजाब से हमें फरमाइश भेजी है गुरप्रीत तंगोरी जसबीर कौर महकप्रीत कौर और सहजप्रीत कौर। और अगली फरमाइश भेजी है दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिगलानी बबीता मिगलानी सुभाष योगी और बप्पू डब्बू ने। और एक और फरमाइश हमें भेजी है टूंकिया तहसील सिंधरी जिला बालोतरा राजस्थान से कृष्ण कुमार डाबी भूपत कुमार डाबी राधा डाबी विक्रम अर्चना और साक्षी डाबी। आप सबकी पसंद से हम सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म क्रांति से। आवाज़ें दी है नितिन मुकेश और लता मंगेशकर ने। संगीत कल्याण जी आनंद जी का है और गीत लिखा है इंदीवर ने।

सखियों, संगीत वो भाषा है जो बिना शब्दों के भी दिल की बात कह देती है। कभी ये मुस्कान बनकर होठों पर खिल उठते हैं तो पुरानी यादों को भी ताज़ा कर देते हैं। हमारे श्रोताओं का यही अनमोल फरमाइश इस कार्यक्रम को और भी विशेष बनाता है। तो चलिए अगली फरमाइश की ओर बढ़ते हैं। और अगली फरमाइश आई है कुमार हैडा सहारनपुर से, सैयद मसरूर, शाइना हसन, अक्सा अदीब, नाजिया आफिया, इब्राहिम सद्दाम। गांव घमंडिया सूरतगढ़ से प्रमिला ढुकिया, ज्योति शिवम ढुकिया, सरिता सचिन, अमना तमन्ना, साइना विष्णु ढुकिया, दोहिती ईवा धारणिया की। और इसके साथ ही अगली फरमाइश है दादरी गेट भिवानी से, कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, किरण मेहरा, कपिल मेहरा, कुणाल मेहरा की। और गांव ऑन 4M से आई है कुलविंदर सिंह, सुखप्रीत, जसदीप की। और इसी के साथ ये फरमाइश आई है तहसील भादरा अनूप शहर से, गजानन सारस्वत, डॉक्टर ताराचंद सारस्वत, सोनू, पवन कुमार, साहिल, राघव, मुरारी लाल शर्मा, मदन लाल शर्मा, महावीर लोहरा, ममता, मीतू, किनू और परिवार के अन्य सदस्यों की। सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश से ये फरमाइश आई है यशमीत, यशु, निरंजन सिंह, सौम्या सिंह, अविरल सिंह की। और अगली फरमाइश आई है जाखोद राजस्थान से, शंभुदयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत खटक, सुंदरलाल खटक, योगेश कुमार खटक, दीपक कुमार खटक, कुमारी पूजा खटक की। साथ ही साथ कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय की फरमाइश आई है। और मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता गौड़ की भी फरमाइश आई है। और मंडी केसरी सिंहपुर से बिल्लू सूद, सुनीता सूद, चांदनी, आशीष, विश्वजीत, मोहनलाल प्रजापति, इनकी भी फरमाइश आई है। और साथ ही साथ अगली फरमाइश आई है सादुल शहर से राम कुमार रेवाड़, चंद्रकला रेवाड़ की। और ये लिखते हैं कि आपकी पसंद महिला जगत कार्यक्रम पेशकर्ता श्रीमती अलका वर्मा जी को प्रथम प्रोग्राम में हार्दिक स्वागत और सादर नमस्कार। आप सभी श्रोताओं को भी हमारी तरफ से सादर नमस्कार और धन्यवाद कि आप हमारा प्रोग्राम जो है इतना सराह रही हैं। और ऐसे ही सराहते रहिए और हमें समय समय पर अपनी फरमाइशी की तुक प्रोग्राम मैसेज के जरिए भेजते रहिए। साथ ही अगला जो मैसेज आया है वो गाँव वांडी जिला फाजिल्का पंजाब से आया है। ओम बगड़िया, क्रियांश बगड़िया, योगेश बगड़िया, रजत और बेबी गरिमा बगड़िया का। और अगला जो मैसेज है वो श्रीगंगानगर से नेकीराम बंसीवाला, जानी बंसीवाला, धनराज बंसीवाला ने भेजा है। और साथ ही साथ हमें मैसेज भेजा है गांव अरायन से डॉक्टर बनवारी लाल, जयपाल, विमला, सोनू, ममता, दीक्षा, मोक्ष, सुशांत, विक्रम, जयपाल, पूनम चालिया का। आप सभी श्रोताओं की पसंद से आपको सुनवाते हैं अब अगला गीत फिल्म मेरी जंग से। नितिन मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज़ें हैं, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है और गीत लिखा है आनंद बख्शी ने।

0: क्योंकि इस समय आप सुन रही हैं कार्यक्रम महिला जगत में आपकी फरमाइश, आपकी पसंद की गीत और व्हाट्सएप मैसेज पर भेजे गए संदेशों को। और इस समय वक्त है एक अंतराल का, आपसे मिलेंगे इस अंतराल के बाद।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: कार्यक्रम में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। और अगले जो फरमाइश के लिए हमें भेजा है मैसेज, वो है मंडी के सी सिंहपुर से श्यामलाल राजपाल, जयपाल संदीप कुमार चिमनलाल ने। रावर करनाल से ज्ञानभूषण शर्मा, सोमनाथ कालिया ने भी हमें मैसेज भेजा है। साथ ही साथ ये मैसेज भेजा है चंडीगढ़ से सतीश अनेजा, विमला अनेजा ने। बनवाला हनवंता, फाजिलका पंजाब से विनोद मायल, सीमा, लक्षिता, यशिका, विद्या देवी और सारा मायल परिवार ने भी हमें मैसेज भेजा है। जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकोस्टो, रोजी डिकोस्टो, पर्ल डिकोस्टो और विलिस डिकोस्टो ने भी मैसेज भेजा है। साथ ही साथ ये फरमाइश भेजी है हमें चक 15 PS से सरवजीत सिंह जोसन, सरवजीत कौर जोसन, गुरमन सिंह जोसन, आदर्शपाल सिंह जोसन, मेलबर्न रॉबिन सिंह जोसन। और अगली फरमाइश भेजी है हीरावाली फाजिलका पंजाब से सुभाष गोदारा, विमला गोदारा, इंदु पार्वती, हिमांशु गोदारा, सरवण रिणवा, हंसराज भाटिया, मनीराम, रणजीत राम किरोड़ीवाल, सुरेंद्र भादु। और इसी के साथ फरमाइश भेजी है अमरगढ़ सादुल शहर से कुलवंत मान, लखविंदर कौर मान, खुशप्रीत कौर मान, गुरनूर मान, कुलविंदर कौर मान, हरविंदर मान, राज सिंह प्रीत मान ने। और मध्य प्रदेश से ये भेजी है ममता, संजय और बेबी किट्टू ने भी हमें फरमाइश। और इसी के साथ बहलोल नगर से हमें फरमाइश भेजी है हरीश हैरी, जगतार जहरी, सुशील डेलू, राकेश चाहर ने। सादेवाला सिरसा हरियाणा से हमें फरमाइश भेजी है रामेश्वर माहर, परमेश्वरी माहर, जिगर और जानवी ने। और भाटापारा छत्तीसगढ़ से हमें फरमाइश भेजी है सोहन जोशी और पायल जोशी ने। छत्तीसगढ़ से ही हमें एक और फरमाइश आई है भारती वर्मा, शकुन वर्मा, रुक्मणी वर्मा, रजनी वर्मा, प्रतिमा वर्मा, द्रौपदी वर्मा, धनेश्वरी वर्मा, कुमारी पायल वर्मा की भी। और इसी के साथ अगली फरमाइश आई है कंवर कॉलोनी बड़वाहा, जिला खरगोन, मध्य प्रदेश से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली की। हिसार से हमें एक और फरमाइश आई है राजकुमार डूडी, सौरभ डूडी, प्रमोद डूडी की। और कॉल सिटी बरका काना से अफजाल ताज, शाहिन सुल्ताना, सोनू तस्नीम, निप्पी सहानी, मोहम्मद अफजल मलिक ने भी हमें फरमाइश भेजी है। और इसी के साथ अगली फरमाइश हमें भेजी है छत्तीसगढ़ से महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी, ट्विंकल डिंपल, मीनाक्षी, निशा तुलसी और दिशा गोस्वामी ने। और नई बंडी से, नई बस्ती से हमें ये मैसेज भेजा है मोहम्मद यासीन हाशमी, नाजमा बेगम हाशमी, मोहम्मद तौसीफ हाशमी ने। नई आबादी हनुमानगढ़ टाउन से सुल्तान सिंह तरड़, कृष्ण मुकेश तरड़, रामचंद तरड़, कपिल देव तरड़, हिमानी जाखड़ ने भी हमें फरमाइश भेजी है। गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी, पूजा पायल और जगदीश जौहरी ने भी हमें फरमाइश भेजी है। तो आप सबकी फरमाइश पर कार्यक्रम का अगला गीत नितिन मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज़ में, फिल्म का नाम है नूरी, संगीत दिया है खय्याम ने और इस गीत को लिखा है जन्निसा अख्तर ने।

श्री और गौरव साही ने। महाराष्ट्र से हमें ये फरमाइश भेजी है नारायण गायकवाड़, दयानंद गायकवाड़, ओमकार गायकवाड़, साई गायकवाड़। और मोहाली से हमें ये फरमाइश भेजी है टी डी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, शुभचंद्र बजाज कालका, साहिल बजाज ने। और अगली फरमाइश हमें भेजी है महाराष्ट्र से ही नंदकिशोर खटे, संगीता खटे, साक्षी खटे, जयश्री महेत्रे, अंजलि करवा, बाला साहब करवा, राम निवास अग्रवाल, धनंजय, पीवी कुलंदे। और इसके साथ ही हमें अगली फरमाइश भेजी है करनाल से विजेंद्र कुमार जयजान, कांता रानी, गुंजन, साहिल और वाणी जयजान ने। और अगली फरमाइश हमें भेजी है गाजीपुर से सुरेश जायसवाल, उर्मिला जायसवाल, दीपक जायसवाल, स्वाति जायसवाल ने। और इसी के साथ हमें फरमाइश भेजी है अनिल, गौरव, मानसी, कविता अरोड़ा ने नई दिल्ली से। और रानीगंज बंगाल से रवि और इंदर ने भी हमें फरमाइशें भेजी हैं। और साथ ही साथ एकता कॉलोनी रोहतक से बबीता बोर्ड, तन्वी बोर्ड, तमन्ना कांगड़ा, अंशिका बोर्ड ने भी हमें फरमाइशें भेजी हैं। और आप सबकी पसंद पर कार्यक्रम का अगला गीत सुनवाते हैं दरिया दिल फिल्म से। नितिन मुकेश की आवाज़ें हैं, राजेश रोशन ने इसमें संगीत दिया है और गीत लिखा है विट्ठल भाई पटेल ने।

श्रोताओं, अगला जो फरमाइश भेजी है वो है हमें व्यास कॉलोनी बीकानेर से डॉक्टर अशोक कुमार साही, मिसेस संतोष साही।

क्योंकि अगली फरमाइश जो हमें आई है वो उत्तर प्रदेश से बीपी गौतम सरिता गौतम की है। इसी के साथ हमें फरमाइश भेजी है बिहार कॉलोनी दिल्ली से तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन, आशीष राजा, चैतन्य मस्कीन, मेघा मस्कीन, राहुल खुराना, रचित खुराना, केशु रिधान खुराना की। फाजिलका पंजाब से हजारीलाल पुरोहित, मोनी पारिक, भूपेंद्र पारिक, जगत मंडावरा, राजू मंडावरा। और उत्तर प्रदेश से हमें ये फरमाइश भेजी है सत्येंद्र कुमार चंसोलिया, आदर्श सार्थक, अलौकिक ने। और इसी के साथ हमें फरमाइश भेजी है कवाई बारा राजस्थान से सतीश श्रीवास्तव, प्रेमलता श्रीवास्तव, हिमानी हर्षिता, अभिषेक श्रीवास्तव ने। अमरपुरा जालूखाट से जगदीश चंद्र प्रजापति, विमला प्रजापति, मोनू प्रजापति, राजेंद्र प्रजापति ने भी हमें फरमाइश भेजी है। न्योला रामपुरा से सुरेंद्र डिडन, सकीला डिडन, संदीप, अनवर, अक्कू बावरा, मुमताज डिडन ने भी हमें फरमाइश भेजी है। महाराष्ट्र से ही हमें फरमाइश भेजी है गंगाधर सावनकर, विजय लक्ष्मी सावनकर, राजेश, राकेश, रशिदा ने। और बरवट पकाल बुलढाना से हमें फरमाइश भेजी है नारायण हागे, कमल हागे, दिव्या हागे, जय हागे ने। जैन मंदिर कुरावली से हमें भेजी है राशिद हुसैन अंसारी, नसरीन अंसारी, नौरीन अंसारी, आसना अंसारी, मोहम्मद कैफ अंसारी ने भी हमें किसी भी गीत की फरमाइश भेजी है। डब्बा वाली से रूप सिंह लखोत्रा, करमजीत लखोत्रा, सरबजीत लखोत्रा, रानी सोनू रजनी ने भी हमें फरमाइश भेजी है। साथ ही साथ दिल्ली से ध्वनि और सानवी ने हमें फरमाइश भेजी है। और इसी के साथ अगली फरमाइश भेजी है नोखा राजस्थान से कैलाश मिश्री, गोवर्धन धरा, फरसाराम सोलंकी, श्यामलाल चौहान, धनश्याम भार्गव, बाबू गौरी, हसन सिक्का ने। और अगली फरमाइश हमें भेजी है नेहरू चौक पैठन से डॉक्टर सुरेश जाधव, अनीता जाधव, आरती, पूजा प्रसाद जाधव, सोनल जाधव, बेबी सिया ने। आप सबकी पसंद पर हम आपको सुनवा रहे हैं ये गीत दरिया दिल फिल्म, साथ साथ फिल्म से, माफ़ कीजिएगा, साथ साथ फिल्म से जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की आवाज़ें हैं और संगीत कुलदीप सिंह का है और गीत लिखा है जावेद अख्तर ने।

साथियों, अगली जो फरमाइश है वो हमें भेजी है महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतनमाला सुरलकर, आरती गौरी और ओम प्रकाश सुरलकर ने। साथ ही साथ हमें फरमाइश छत्तीसगढ़ से भी आई है करुणा वर्मा, प्रियंका बिनछोर और दिनेश वर्मा की। और ये अगली फरमाइश हमें आई है गांधीनगर गुजरात से सुरेंद्र राठौड़, मंजुला राठौड़, विशाल और निशा की। पंजाब से हमें फरमाइश आई है कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गाव्या मल्होत्रा, सुनील पाठक, सुच्चा सिंह पाठक की। और 14 PSP से हमें फरमाइश भेजी है कुलदीप सिंह, राजविंदर कौर, संदीप सिंह, जसकरण सिंह, हरदीप सिंह, मनराज विर्क की। और बिहार से हमें ये फरमाइश आई है फैसल इमाम, मोहम्मद अफजल, मोहम्मद अकलम, नफीसा प्रवीण, जोहानुल हुदा से। छत्तीसगढ़ से हमें फरमाइश आई है नितेश कुमार देवगाना, दुर्गा प्रसाद देवांगन, पराग टेलर, पूनाराम कृष्णा की। और साथ ही साथ हनुमानगढ़ से हमें ये फरमाइश आई है रमन वर्मा, अमन वर्मा, दिव्यांश वर्मा, डॉक्टर मदन लाल वर्मा की। अहमदगढ़ से हमें ये फरमाइश आई है मोहम्मद अनवर अंसारी, रवीना, आफिया, सना, समा, हीना, शकीला, जस्मीन, राजिया सुल्ताना अख्तर अंसारी की, सूरज मोहम्मद जावेद अंसारी की भी। और संगरिया से श्याम मिठा और सुमन मिठा ने भी हमें फरमाइश भेजी है। और तहसील भादरा, जिला हनुमानगढ़ से हमें फरमाइश आई है विक्रम कड़वासरा, सचिन सतीश।

जोगेश, युद्धव कड़वासरा, किरसन मायल, हनुमान सहारण, लीलाधर स्वामी, कुंदन जाखड़ और सुनील शर्मा की। और इसी के साथ हमें चैनपुरा तहसील धौरी मन्ना जिला बालोतरा से भी फरमाइश आई है। जगदीश भारती गोस्वामी, विजय भारती गोस्वामी, नरेश भारती गोस्वामी, मलिता गोस्वामी की। और सूरतगढ़ से लेखराज जी शाक्य, पवन कुमार, सुरजीत सिंह, रवि कुमार, कुंदनलाल शाक्य, जीवराज सिंह, उदय सिंह, आप सबकी पसंद से कार्यक्रम का ये अंतिम प्रस्तुति है।

क्योंकि उम्मीद करते हैं कि आज का ये फरमाइशी कार्यक्रम जो है वो आपको पसंद आया होगा। अगले बुधवार आपसे फिर मुलाकात होगी। अपने संदेश हमें ज़रूर भेजिएगा। तब तक के लिए सुनिए ये प्रस्तुति और अलका वर्मा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

0: Relief and restoration work has intensified across the flood-affected districts of Odisha as water levels continue to recede. We have more from a correspondent.
1: The state government says cooked food, dry rations, safe drinking water, medicines and other essential supplies are being distributed, while efforts are underway to restore roads, electricity and drinking water facilities. However, people in several flood-hit areas have alleged that relief has not yet reached them despite extensive damage. Meanwhile, 5 more sluice gates of the Hirakud Dam have been closed, reducing flood water discharge to just 8 gates. The India Meteorological Department has forecast another spell of widespread rainfall across Odisha till the 10th of this month. An orange warning has been issued for Mayurbhanj, while yellow warning remain in force for 13 districts for today. Prakash Das for Akashvani News, Bhubaneswar.
0: The India Meteorological Department, IMD, has issued a red warning for extremely heavy rainfall of Assam and Meghalaya today. The IMD has also issued an orange color warning for heavy to very heavy rainfall conditions over Arunachal Pradesh, Bihar, Konkan, Goa, Madhya Maharashtra, Odisha, Sub-Himalayan West Bengal, Sikkim, Uttar Pradesh and Uttarakhand for the day. Meanwhile, Delhi, Haryana, Chandigarh, Punjab, Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir and Ladakh are expected to witness heavy rainfall for the next 2 days. In Korea Masters Badminton Tournament, 3 Indian shuttlers, Isharani Barua, Tanvi Sharma and Sriyanshi Valishetty have entered the second round of the women's singles of the Korea Open in Asan. Isharani Barua defeated South Korea's Lee So-hee in the round of 32, while Tanvi defeated An Ki-won of China. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi says people's lives in Jammu and Kashmir and Ladakh transformed after abrogation of Article 370. RBI projects the GDP growth at 6.7%. This financial year says economic growth continues to be supported by resilient demand. Proceedings of both houses of parliament continue to witness disruption over several issues. Supreme Court says authorities must exercise restraint while responding to young protesters. Students protest against alleged irregularities in the JPSC and JSSC examinations intensifies in Ranchi. Red warning issued for extremely heavy rainfall of Assam and Meghalaya. And in badminton, 3 Indian shuttlers enter the second round of the women's singles of the Korea Open in Assam. And with that, we end the midday news.
2: Namaskar. आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा 7 वर्ष पहले अनुच्छेद 370 निरस्त किए जाने के बाद से जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों के जीवन में व्यापक बदलाव आया है। रिजर्व बैंक का इस वित्त वर्ष में जीडीपी वृद्धि दर 6.7% रहने का अनुमान। कहा मजबूत मांग के कारण आर्थिक वृद्धि बनी हुई है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा युवा प्रदर्शनकारियों के साथ अधिकारियों को संयम बरतना चाहिए। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में अनियमितताओं के खिलाफ छात्रों का विरोध प्रदर्शन तेज। असम और मेघालय में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और भारत की ईशारानी बरुआ, तन्वी शर्मा और श्रियांशी वेलिशेट्टी कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंची। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 7 वर्ष पहले अनुच्छेद 370 और 35 ए को निरस्त किए जाने के बाद से जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों के जीवन में व्यापक बदलाव आया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि दोनों केंद्र शासित प्रदेशों में बुनियादी ढांचे का विस्तार हुआ है और शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, उद्यमिता और खेल जैसे क्षेत्रों में अवसर भी बढ़े हैं। उन्होंने कहा कि संविधान पूरी तरह लागू होने से महिलाओं, वंचित समुदाय सहित उन लोगों को अधिकार मिले हैं जो दशकों तक अपने संवैधानिक अधिकारों से वंचित थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज का दिन इसीलिए भी विशेष है क्योंकि देश इस वर्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती मना रहा है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय एकता के प्रति डॉक्टर मुखर्जी का आजीवन समर्पण पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा। श्री मोदी ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी की परिकल्पना 5 अगस्त 2019 को ऐतिहासिक रूप से साकार हुई। जम्मू कश्मीर भाजपा अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद सतपाल शर्मा ने अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने को जम्मू कश्मीर के पूर्ण एकीकरण और विकास की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया। संसद परिसर में आकाशवाणी समाचार से बातचीत में उन्होंने दावा किया कि अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के बाद पिछले 7 वर्षों में जम्मू कश्मीर में महत्वपूर्ण प्रगति देखी गई है।
3: आज के दिन 2019 में 370 को निरस्त किया गया और हम सब जानते हैं कि जिस ऊंचाइयों की तरफ आज

0: जम्मू कश्मीर अग्रसर है वो अपने आप में दर्शाता है कि 370 हमारे ऊपर एक कलंक था वो हट गया है। हमारी मातृशक्ति जिसकी शादी हमारे प्रदेश के बाहर होती थी उनका हक जो था वो छिन जाता था, उनके प्रॉपर्टी राइट्स जो थे वो चले जाते थे। वाल्मीकि समाज के लोग, गोरखा समाज के लोग 370 हटने के बाद उनको उनका हक मिला है।
1: भाजपा सांसद दिनेश शर्मा ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि क्षेत्र में राष्ट्रवाद की भावना और मजबूत हुई है और अब शासन राजनीतिक परिवारों के बजाय जनता द्वारा संचालित है। भारतीय जनता पार्टी ने अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने को एक ऐतिहासिक दिन बताया है। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि संविधान की भावना के अनुरूप ही इस संवैधानिक प्रावधान को निरस्त किया गया था।
2: अनुच्छेद 370 को उखाड़ के फेंक दिया गया था जो कि हमारे संविधान में लिखा था, ऑनरिंग द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आर्टिकल 370 वॉज एब्रोगेटेड। आर्टिकल 370 स्टार्टेड विद द वर्ड टेम्पररी बट नोबडी हैड द विल टू एब्रोगेट इट।
1: अनुच्छेद 370 हटाए जाने के 7 साल बाद जम्मू कश्मीर में तेजी से विकास कार्य हो रहे हैं। सड़क, रेल और अन्य बुनियादी ढांचे का विस्तार हुआ है, संपर्क व्यवस्था बेहतर हुई है, सरकारी सेवाएं मजबूत हुई हैं और पर्यटन, निवेश तथा सुरक्षा की स्थिति में भी सुधार आया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रदेश में इससे लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आए हैं।
3: अनुच्छेद 370 निरस्त होने के बाद जम्मू कश्मीर में बुनियादी ढांचे में तेजी से विकास हुआ है। नई सुरंगें और सड़कों के चौड़ीकरण से जुड़ी परियोजनाओं से जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग को विकसित किया गया है। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक, जिसमें चिनाब और अंजीखड रेल पुल शामिल है, के पूरा होने से कश्मीर घाटी तक रेल संपर्क सुनिश्चित हुआ है। जेड मोड टनल ने सोनमर्ग तक हर मौसम में पहुँच सुनिश्चित की है, जबकि जोजिला सुरंग का काम पूरा होने वाला है और ये नैतिक रूप से महत्वपूर्ण श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर हर मौसम में पहुंच प्रदान करेगी। वर्ष 2024 में यहां आने वाले पर्यटकों की संख्या 2,35,00,000 से अधिक रही, जिसमें 65,000 से अधिक विदेशी पर्यटक शामिल थे। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 2019 से केंद्र शासित प्रदेश में लगभग 18,000 करोड़ का निवेश हुआ है। 2,200 से अधिक औद्योगिक इकाइयां स्थापित की गई हैं और 26 नए औद्योगिक ढांचे विकसित किए गए हैं। 41,000 से अधिक सरकारी नौकरियां दी गई हैं और लगभग 9,81,000 स्वरोजगार के अवसर भी सृजित हुए हैं। इन वर्षों में सुरक्षा की स्थिति में भी काफी सुधार देखने को मिला है। श्रीनगर से इशफाक शाह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने चालू वित्त वर्ष में देश की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 6.7% कर दिया है। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने आज मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए बताया कि रेपो दर को 5.25% पर यथावत रखा गया है।
4: After a detailed assessment of the evolving
3: परिवर्तनशील आर्थिक परिस्थितियों और भविष्य के अनुमानों के विस्तार से समीक्षा करने के बाद मौद्रिक नीति समिति ने रेपो रेट 5.25 पर ही बरकरार रखने का निर्णय लिया है।
1: रेपो दर वो ब्याज दर है जिस पर RBI सरकारी प्रतिभूतियों के बदले वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालिक ऋण देता है। श्री मल्होत्रा ने कहा कि मजबूत मांग के कारण देश में आर्थिक वृद्धि बनी हुई है और भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई बड़ी अर्थव्यवस्था बना हुआ है। उन्होंने कहा कि चालू वित्त वर्ष की अप्रैल जून तिमाही में अर्थव्यवस्था का प्रदर्शन अपेक्षा से बेहतर रहा। बैंक ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित महंगाई का अनुमान 5.1% से घटाकर 5% कर दिया है। श्री मल्होत्रा ने कहा कि हाल में महंगाई बढ़ने का मुख्य कारण खाद्य और ईंधन की कीमतों में वृद्धि रही।
4: हेडलाइन इन्फ्लेशन हैज एज्ड अप।
3: उम्मीद के मुताबिक मुद्रास्फीति आधार से थोड़ी ऊपर चली गई है। हालांकि पहले तिमाही में वास्तविक महंगाई दर अनुमान से थोड़ी कम रही। इससे पता चलता है कि लागत का दबाव कीमतों पर पूरी तरह से नहीं पड़ा है। महंगाई बढ़ने की मुख्य वजह ईंधन और खाद्य वस्तुएं हैं। अब तक कीमतों के दबाव के हर तरफ फैलने के कोई खास संकेत नहीं मिले हैं। कीमती धातुओं को छोड़कर महंगाई दर पहले के अनुमान के मुताबिक ही नियंत्रण में है।
4: As projected earlier.
1: उन्होंने कहा कि पहली तिमाही में बेहतर आर्थिक प्रदर्शन को देखते हुए RBI ने वर्ष 2026-27 के लिए वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि का अनुमान बढ़ाकर 6.7% कर दिया है।
4: रियल GDP ग्रोथ फॉर दिस ईयर
3: मौजूदा वर्ष के लिए वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद

0: में बढ़ोतरी का अनुमान अब 6.7% है। ये हमारे पिछले अनुमानों से 10 आधार अंक अधिक है। पहली तिमाही में 7%, दूसरी तिमाही में 6.4%, तीसरी तिमाही में 6.5% और चौथी तिमाही में 6.8%।
1: श्री मल्होत्रा ने कहा कि पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष से प्रमुख व्यापारिक मार्ग प्रभावित हो रहे हैं, जिससे वैश्विक अर्थव्यवस्था पर दबाव बना हुआ है। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा है कि यदि सब कुछ तय कार्यक्रम के अनुसार रहा तो अगले वित्त वर्ष की शुरुआत में प्लास्टिक के नोट चलन में आ जाएंगे। मुंबई में संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा कि प्लास्टिक के नोट अधिक टिकाऊ होते हैं। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, नीट मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई समेत विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित हुई। सुबह 11 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया। श्री बिरला ने सभी सदस्यों से प्रश्नकाल के सुचारू संचालन में सहयोग करने का आग्रह किया।
2: संसद चर्चा संवाद के लिए, आपके विचारों की अभिव्यक्ति के लिए प्रश्नकाल में महत्वपूर्ण प्रश्न पूछो, कई विभागों के महत्वपूर्ण प्रश्न है, और आप नियोजित तरीके से पोस्टरबाजी करके प्रदर्शन कर सदन की गरिमा को घटाना चाहते हैं।
1: सदन की कार्यवाही फिलहाल अभी जारी है। राज्यसभा में पहले स्थगन के बाद सभापति सीपी राधाकृष्णन ने प्रश्नकाल शुरू किया। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि देश के विभिन्न हिस्सों में ड्राइविंग प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किए जाएंगे। सरकार 300 ऐसे संस्थानों को अनुमति दे चुकी है। श्री गडकरी ने यह भी कहा कि देश में लगभग 22 लाख चालकों की कमी है। हरियाणा से भाजपा सांसद संजय भाटिया ने हरियाणा को भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। झारखंड में रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के खिलाफ छात्रों का विरोध प्रदर्शन जोर पकड़ रहा है। आंदोलनकारी छात्रों ने आगामी मॉनसून सत्र के दौरान अपनी मांगों को मनवाने के लिए झारखंड विधानसभा का घेराव करने की योजना की घोषणा की। हमारे संवाददाता ने बताया है कि विद्यार्थियों ने संदिग्ध परीक्षाओं को रद्द करने की मांग की है।
3: राजधानी रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में आंदोलन कर रहे छात्रों ने कल से शुरू हो रहे मॉनसून सत्र के दौरान विधानसभा घेराव का ऐलान किया है। छात्रों का कहना है कि उन्हें किसी का इस्तीफा नहीं बल्कि संदिग्ध परीक्षाओं को रद्द कर राज्य के बाहर से हाई कोर्ट के रिटायर्ड जजों से न्यायिक जाँच चाहिए। छात्रों ने सीआईडी जाँच को नाकाफी बताया है। छात्रों के विधानसभा घेराव के ऐलान के बाद सीआईडी की कार्रवाई और तेज हो गई है। सीआईडी ने इस मामले में 3 और लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि युवा छात्र प्रदर्शनकारियों को लेकर प्रतिक्रिया देते समय अधिकारियों को संयम बरतना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि हिंसा को रोकने के लिए किसी भी प्रकार के हिंसक प्रतिक्रिया से स्थिति और बिगड़ जाएगी। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कांग्रेस जनता पार्टी के खिलाफ कार्रवाई की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए ये टिप्पणी की। याचिका में दिल्ली और देश के अन्य हिस्सों में कांग्रेस जनता पार्टी के नेतृत्व में हुए प्रदर्शनों के दौरान हुई हिंसा, जिसमें पत्थरबाजी के आरोप भी शामिल है, पार्टी की कथित जिम्मेदारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। लोकसभा ने आज बैंकर्स बुक्स एविडेंस विधेयक 2026 पारित कर दिया है। आज केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने ये विधेयक सदन में पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य बैंकों के रिकॉर्ड से जुड़े साक्ष्यों के कानून को मौजूदा डिजिटल बैंकिंग व्यवस्था के अनुरूप बनाना है। इसके जरिए बैंकिंग प्रणाली की वर्तमान जरूरतों के अनुसार कानूनी ढांचे को आधुनिक बनाया जाएगा। विधेयक में ये भी प्रावधान है कि बैंकों के रिकॉर्ड की इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल प्रति को अदालत में वैध और कानूनी साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जा सकेगा। लोकसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। झारखंड में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और झारखंड पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाकर सरायकेला खरसावा से प्रतिबंधित भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी संगठन के 3 कुख्यात नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। महानिरीक्षक अभियान नरेंद्र कुमार सिंह ने इसकी पुष्टि की है। उत्तरी कर्नाटक के यादगीर जिले के कडेचूर बडियाल औद्योगिक क्षेत्र में आज सुबह रासायनिक रिसाव के कारण 3 श्रमिकों के दम घुटने से मौत हो गई। रिसाव के संपर्क में आए 2 श्रमिकों को रायचूर के अस्पताल में भर्ती कराया गया। भोपाल में तीसरी ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की तीसरी बैठक शुरू हो गई है। अनेक देशों के प्रतिनिधि 4 दिन के इस विचार विमर्श में भाग लेने के लिए भोपाल पहुंचे हैं। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में गिरावट देखी गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 107 अंक गिरकर 18

0: 73,322 पर और निफ्टी 94 अंक फिसलकर 24,521 पर पहुंच गया। मौसम विभाग ने असम और मेघालय में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, बिहार, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की गई है। वहीं दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब और लद्दाख में अगले दो दिन तक तेज बारिश की आशंका है। ओडिशा के बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य तेजी से जारी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में इस बार मॉनसून में सामान्य से अधिक वर्षा हुई है।
1: उड़ीसा के बाढ़ प्रभावित जिलों में बड़ी नदियों का जलस्तर घटने के साथ ही राहत और बहाली का काम युद्ध स्तर पर जारी है। हीराकुद बांध के 5 और स्लुइस गेट बंद कर दिए गए हैं, जिससे बाढ़ का पानी छोड़ने वालों गेटों की संख्या घटकर 8 रह गई है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने मयूरभंज के लिए ऑरेंज वार्निंग जारी की गई है, जबकि आज 13 जिलों के लिए येलो वार्निंग लागू है। उड़ीसा में मौजूदा मानसून सीजन के दौरान सामान्य से 26% ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: और खेलों में भारत की ईशा रानी बरुआ, तन्वी शर्मा और श्रेयांशी वलिशेट्टी कोरिया

0: गेटों की संख्या घटकर 8 रह गई है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने मयूरभंज के लिए ऑरेंज वार्निंग जारी की गई है, जबकि आज 13 जिलों के लिए येलो वार्निंग लागू है। उड़ीसा में मौजूदा मानसून सीजन के दौरान सामान्य से 26% ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: और खेलों में भारत की ईशा रानी बरुआ, तन्वी शर्मा और श्रेयांशी वलिशेट्टी कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के अगले दौर में पहुंच गए हैं। वहीं पुरुष सिंगल्स में विश्व नंबर एक किदांबी श्रीकांत, किरण जॉर्ज, रौनक चौहान, सानिध दयानंद और थारून मन्नेपल्ली आज खेलेंगे। राष्ट्रपति भवन ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को आधिकारिक कार्यक्रमों के दौरान मिले 300 चुनिंदा उपहारों की आज से ऑनलाइन नीलामी शुरू कर दी है। ये नीलामी ई उपहार पोर्टल पर की जा रही है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, 7 वर्ष पहले अनुच्छेद 370 निरस्त किए जाने के बाद से जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों के जीवन में व्यापक बदलाव आया है। रिजर्व बैंक का इस वित्त वर्ष में जीडीपी वृद्धि दर 6.7% रहने का अनुमान। कहा, मजबूत मांग के कारण आर्थिक वृद्धि बनी हुई है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, युवा प्रदर्शनकारियों के साथ अधिकारियों को संयम बरतना चाहिए। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में अनियमितताओं के खिलाफ छात्रों का विरोध प्रदर्शन तेज। असम और मेघालय में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और भारत की ईशा रानी बरुआ, तन्वी शर्मा और श्रेयांशी वलिशेट्टी कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंची। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलो हर्ट्स पर, एफएम बैंड 100.1 मेगा हर्ट्स पर, आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। श्रोताओ, हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के 2:30 और 14 सेकंड हुए हैं। लीजिए अब सुने कार्यक्रम फिल्म संगीत।

श्रोताओ, ये सुहाने फिल्मी गीत इस वक्त आप आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से सुन रहे हैं। कार्यक्रम में लीजिए अब सुने सुहाग फिल्म का ये गीत। इसे स्वर दिया है आशा भोसले और शशि कपूर ने। इसके गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

श्रोता कार्यक्रम में लीजिए अब सुने अखियों के झरोके से इस फिल्म का ये गीत। इसे स्वर दिया है हेमलता ने। इसके गीतकार हैं रविंद्र जैन और संगीत भी रविंद्र जैन का है।

श्रोताओ, फिल्म संगीत का ये प्रोग्राम इस वक्त आप आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरत कर से सुन रहे हैं। कार्यक्रम में लीजिए अब सुने धर्मात्मा फिल्म का ये गीत। इसे स्वर दिया है मुकेश और कंचन ने। इसके गीतकार हैं इंदिवर और संगीत कल्याण जी आनंद जी का है।

श्रोताओ, फिल्म संगीत का ये प्रोग्राम इस वक्त आप आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से सुन रहे हैं। कार्यक्रम के आखिर में लीजिए अब सुने तुमसे अच्छा कौन है, इस फिल्म का ये गीत। इसे स्वर दिया है मोहम्मद रफ़ी ने। इसके गीतकार हैं हसरत जयपुरी और संगीत शंकर जयकिशन का।

श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम फिल्म संगीत मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलो हर्ट्स पर, FM बैंड 100.1 मेगा हर्ट्स पर, आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। श्रोताओ, हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के 3 बजे हैं। लीजिए अब सुने उर्दू सर्विस के कार्यक्रम। ये कार्यक्रम हमारे दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किए जा रहे हैं। कृपया इन कार्यक्रमों की प्रतीक्षा करें।

सामीन आपको बता दें, फिर कुछ ही देर बाद यानी 3:05 पर खबरें नशर की जाएंगी। 3:15 पर आप सुनेंगे फिल्मी नगमों पर मबनी प्रोग्राम मेरी पसंद। दिन में 3:30 हम पेश करेंगे जनाब सैफुर रहमान अब्बाद का तहरीर करदा ड्रामा 50 साल बाद। 4 बजे से आप लुत्फ ले सकेंगे फिल्मी नगमों का। फिल्मी नगमों का प्रोग्राम जारी रहेगा शाम 4:50 तक। 4:50 पर खबरें नशर की जाएंगी और 5 बजे हमारी आज की दूसरी मजलिस की नशरियात इख्तिताम पजीर हो जाएंगी। तो सामने तक मुख्तसर तारुफ हमारे यहाँ से नशर होने वाले उन प्रोग्रामों का जो आज आप इस मजलिस में सुन सकेंगे। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है।

0: ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है, हमें आप सुन रहे हैं मीडियम वेव 1071 किलो हर्ट्स, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एयर और डीडी फ्री डिश पर। 3:05 हो चाहते हैं, अब खबरें नशर होंगी।
1: रजी अहमद से खबरें सुनिए। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दफ़ा 370 को मनसूख किए जाने के बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों की ज़िंदगी यकसर बदल गई है। RBI ने इस माली साल के दौरान 6.7% मजमू शहर तरक्की का तखमीना लगाया है। उसने कहा है कि इकतसादी नशोनुमा को मुस्तहकम मांग से मदद मिल रही है। भारत का परचम बरदार जहाज़ बहरे अहमर में हमले के बाद गर्क हो गया है। 13 भारतीय जहाजरानों को बचा लिया गया है। भारत ने हमले की मजम्मत की है। पाकिस्तान के ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में मुजाहिरों के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई के सिलसिले में तनखीद का निशाना बनाए जाने के बाद पाकिस्तान ने गैर मुल्की मीडिया पर बंदिशें आयद कर दी हैं। और बैडमिंटन में 3 भारतीय खिलाड़ी आसान में कोरिया ओपन के खवातीन के सिंगल्स के सेमीफाइनल के दूसरे राउंड में पहुँच गई हैं। खबरें तफसील से। आज दफ़ा 370 मनसूख किए जाने के 7 साल मुकम्मल हो गए। साल 2019 में आज ही के दिन पार्लियामेंट ने दफ़ा 370 को मनसूख किया था, जिसकी बदौलत साबिक जम्मू कश्मीर को खसूसी दर्जा हासिल था। इससे पहले जम्मू कश्मीर दफ़ा 370 के शेखों के मुताबिक अपना एक अलहदा आइन रखने वाली मुल्क की वाहिद रियासत थी। ये एक आर्जी शक थी जिसकी बदौलत इसे खसूसी रियासत का दर्जा हासिल था। दफ़ा 370 मनसूख किए जाने के बाद जम्मू कश्मीर में सभी मरकज़ी कवानीन और मुख्तलिफ फलाही स्कीमें नाफिज हो गईं और इस फैसले से खत्ते में सरमाकारी की राह भी हमवार हो गई, जिसके सबब तरक्की के इम्कान में इजाफा हुआ, ज़्यादा सरमाकारी से रोज़गार के मौाक़े पैदा हुए और खित्ते में समाजी और इक्तसादी बुनियादी ढांचे को मजीद बेहतर बनाया जा सका। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 7 साल पहले दफ़ा 370 और 35A मनसूख किए जाने के बाद से जम्मू कश्मीर और लद्दाख के आवाम की जिंदगियों में कायापलट कर देने वाली तब्दीलियां आई हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब मोदी ने इस बात को उजागर किया कि मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम दोनों इलाकों में बुनियादी ढांचे में तौसी हुई है और तालीम, हिफ्ज़ान सेहत, सनअतकारी और खेलकूद जैसे शोबों में मौाक़े में इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि ख़वातीन नहायत पसमानदा बरादरियों या जिन्हें दहाइयों से उनके बुनियादी आइनी हकूक़ से महरूम रखा गया है, उन सबको आइन के मुकम्मल लिफाज के साथ अब बाख्तियार बनाया गया है। वज़ीर आज़म ने इस बात को भी नुमाया किया कि आज के दिन को इसलिए भी ज़्यादा अहमियत हासिल है क्योंकि मुल्क इस साल डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का 125वां यौम पैदाइश मना रहा है। दफ़ा 370 मनसूख किए जाने के 7 साल बाद जम्मू कश्मीर में बुनियादी ढांचे, कनेक्टिविटी, हुक्मरानी, सयाहत, सरमायाकारी और सिक्योरिटी से मुतालिक शोबों में काबिल ज़िक्र तरक्की हुई है। मरकज़ के ज़ेर-ए-इंतज़ाम इलाके में बेहतर बुनियादी ढांचे, कनेक्टिविटी, पब्लिक खिदमात और इक्तसादी तरक्की, बेहतर हुक्मरानी

और बेहतर मियार जिंदगी की बदौलत तेज रफ्तार कायापलट कर देने वाली तब्दीली आई है। 5 अगस्त 2019 के बाद से मरकज के जेर इंतजाम इलाके के बुनियादी ढांचे में तेज रफ्तार तरक्की हुई है। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह को चिनाब और अंजी खड रेल पुलों समेत नई सुरंगों, बाईपास और कई मकामात पर सड़क को चौड़ा करने से मुतालिक प्रोजेक्टों से बेहतर बनाया गया है। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल रबते की बदौलत कश्मीर वादी को कौमी रेल नेटवर्क से जोड़ा गया है। वंदे भारत एक्सप्रेस से रेल कनेक्टिविटी मजीद मुस्तकम हुई है, जबकि जेड मोटर टनल की बदौलत पूरे साल सोनबर्ग पहुंचा जा सकता है और जोजिला टनल की तामीर जल्द ही मुकम्मल होने वाली है, जिसकी बदौलत स्ट्रेटजिक तौर पर अहमियत के हामिल श्रीनगर ले शाहरा पूरे साल आमदरफ्त हो सकेगा। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने मौजूदा माली साल में GDP की तरक्की के 6.7% रहने का तखमीना लगाया है। मरकजी बैंक ने रेपो रेट में कोई तब्दीली न करते हुए इसे 5.2% पर बरकरार रखा है। RBI के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा है कि मुल्क की माशी तरक्की में मुस्तहकम मांग के सबब भारत दुनिया की सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाली बड़ी मईशत बना हुआ है। उन्होंने कहा कि इस माशी साल में अप्रैल जून के सवाही में मुल्क की मईशत कारकर्दगी तवक्को से बेहतर रही। आज माशी पॉलिसी से मुतालिक कमेटी के फैसले का ऐलान करते हुए जनाब मल्होत्रा ने कहा कि RBI की रेपो रेट में कोई तब्दीली न करते हुए इसे 5.25% पर बरकरार रखने का फैसला किया गया है। रेपो रेट वो शरह सूद है जिस पर मरकजी बैंक कमर्शियल बैंकों को मुख्तसर मुद्दत के लिए कर्ज देता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हुक्काम नौजवान तालिब इल्म मुजाहरीन से निपटते वक्त तहम्मुल से काम लें। अदालत ने कहा कि तशद्दुद रोकने के गरज से की जाने वाली किसी भी पुरतशद्दुद कार्रवाई से सूरत हाल मजीद खराब होगी। भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत की सरबराही में एक बेंच ने CJP के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की दरख्वास्त पर समाअत करते हुए ये बात कही। दरख्वास्त में CJP की सरबराही वाले एहतजाज के दौरान दिल्ली और मुल्क के दीगर हिस्सों में हालिया तशद्दुद के लिए उस पर जिम्मेदारी आयद करते हुए उसके खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग की गई थी। चीफ जस्टिस ने कहा कि सबसे ताकतवर तरीका यह है कि सुना जाए कि एहतजाज करने वाले क्या कह रहे हैं और यह समझा जाए कि वो क्यों एहतजाज कर रहे हैं। यमन के साहिल के नजदीक बहर अहमर में कल भारत का परचमबरदार तजारती जहाज MSV फैज़े नूरे औलिया हमले के बाद डूब गया। जहाज पर सवार सभी 14 जहाजरानों को, जिनमें 13 भारतीय शहरी थे, बचा लिया गया है। खबरों के मुताबिक भारतीय परचमबरदार टैंकर सऊदी अरब से तेल लेकर आ रहा था। बंदरगाहों, जहाजरानी और आबी गुजरगाहों के मरकजी वजीर सर्वनंद सोनोवाल ने कहा है कि इस जहाज को यमन के पानी में हमले का निशाना बनाया गया, जिसके बाद ये डूब गया। जनाब सोनोवाल ने कहा कि भारत दिफा से कासिर तजारती जहाज पर इस इश्तआल अंगेज हमले की सख्त मजम्मत करता है। उन्होंने कहा कि भारतीय लोगों की सलामती सबसे अहम तरजीह है। इस दौरान वजारत खारजा ने इस हमले की मजम्मत करते हुए कहा है कि खत्ते में तजारती जहाज रानी पर हमलों के वाकयात का जारी रहना इंतहाई तशवीशनाक है। वजारत खारजा ने मजीद कहा कि खत्ते में तजारती जहाज रानी को हमले का निशाना बनाना खत्म होना चाहिए और खत्ते की मुलकवामी आबी गुजरगाहों में जल्द से जल्द आज़ाद और बिला रुकावट जहाज रानी और तजारत को बहाल किया जाना चाहिए। पाकिस्तान ने गैर मुल्की मीडिया पर अपना कंट्रोल मजीद सख्त करते हुए नए जवाबित नाफिज कर दिए हैं, जिसकी वजह से गैर मुल्की सहाफ़ियों को मुल्क के बेशतर इलाकों से रिपोर्टिंग करने से पहले हुकूमत की पेशगी इजाज़त हासिल करना लाजमी होगी। पाकिस्तान इस वक्त अपने ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में मुजाहरीन और उनके खिलाफ की गई सख्त कार्रवाई की वजह से जाँच और तनकीद का सामना कर रहा है। इंसानी हकूक की तनजीमों और मीडिया की आज़ादी के लिए काम करने वाले इदारों ने सहाफ़ियों पर आयद पाबंदियाँ, इंटरनेट की बंदिशें और मुजाहिरीन के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल पर खदशात का इजहार किया है। हाल ही में पाकिस्तान

0: के ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में हुकाम की जानिब से की जाने वाली कार्रवाइयों की कवरेज करने पर मुतअद्दिद न्यूज़ इदारों पर पाबंदी भी आयद कर दी गई है। भारत ने पाकिस्तान के ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर के नाम नहाद मकामी इंतखाबात को मुकम्मल तौर पर तमाशा करार दिया है और कहा है कि इस तरह की खोखली हरकतें सच्चाई को नहीं छुपा सकती। नई दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए वज़ारत खारजा के तर्जमान रणधीर जायसवाल ने कहा कि असल मामला अवामी एहतजाज और पाकिस्तानी फोर्सेज की जानिब से मुजाहरीन का ज़ालिमाना कत्ल है। आसान में जारी कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में ईशारानी बरुआ, तन्वी शर्मा और श्रियांशी वालीशेट्टी खवातीन के सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। और आखिर में इस बुलेटिन की खास खास खबरें एक बार फिर सुनिए। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दफ़ा 370 को मनसूख किए जाने के बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों की ज़िंदगी यकसर बदल गई है। RBI ने इस माली साल के दौरान 6.7% मजमू शरह तरक्की का तखमीना लगाया है। उसने कहा है कि इकतसादी नशोनुमा को मुस्तहकम मांग से मदद मिल रही है। भारत का परचम बरदार जहाज़ बहरे अहमर में हमले के बाद गर्क हो गया है और पाकिस्तान के ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में मुजाहरीन के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई के सिलसिले में तंकीद का निशाना बनाए जाने के बाद पाकिस्तान ने गैर मुल्की मीडिया पर बंदिशें आयद कर दी हैं। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन ख़त्म हुआ।
1: मीडियम में भी 1071 किलो हर्ट्स मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फील्ड डिश पर इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी से उर्दू सर्विस की नशरियात। पेश खिदमत है फिल्मी नगमों पर मबनी प्रोग्राम मेरी पसंद। तमाम सामईन की खिदमत में शमीम उस्मानी का पुरखलूस आदाब। प्रोग्राम की पहली पेशकश शैलेंद्र सिंह की आवाज़ में बॉबी फिल्म का नगमा, नगमा निगार आनंद बख्शी, मौसीकार लक्ष्मीकांत प्यारीलाल।

सामिनी सुनने के साथ ही आज का मेरी पसंद प्रोग्राम अब ख़त्म होता है। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है, हमें आप सुन रहे हैं मीडियम वेव 71 किलोहर्ट्स, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एयर और डीडी फ्री डिश पर। पेश खिदमत है जनाब सैफुर रहमान अब्बाद का तहरीर करदा ड्रामा 50 साल बाद।

0: बहू बहू
1: जी कहिए।
2: इमकान के कॉलेज के पास कोई बात हो गई है क्या?
1: कौन सी बात?
2: पूरी बात तो मुझे नहीं मालूम। आकाश भवन इमकान के कॉलेज के पास ही तो है।
1: हाँ हाँ।
2: तामीर के महकमे का एक ऑफिस है, उसमें सुना है वहाँ के अमले ने किसी वाकये के एहतजाज में इमारत के सामने मुजाहरा किया है, नारे लगाए हैं। अमले के किसी कारकुन के साथ कोई बात हो गई है। सुनने में ये भी आता है कि इमकान के कॉलेज के लड़कों ने भी मुजाहरे में हिस्सा लिया है।
1: इमकान उनमें नहीं होगा।
2: ये तुम कैसे कह सकती हो बहू?
1: आप ठीक ही कहते हैं, मैं भला ये कैसे कह सकती हूँ? किसी से मालूम कीजिए, मेरा तो दिल बैठा जा रहा है, हालात बिगड़ भी सकते हैं। इमकान मालूम नहीं इस वक्त कहाँ है।
2: घबराओ नहीं, मैं खुद ही जाता हूँ।
0: दादा जान,
2: इमकान आ गए तुम?
0: हम कहाँ जा रहे थे?
2: तुम्हारे कॉलेज के पास कोई हादसा हो गया है क्या?
0: जी दादा जान, वो आकाश भवन के सामने सरकारी मुलाजमीन ने मुजाहिरा किया है।
2: क्यों?
0: जी, तामीर के महकमे के एक मुलाजिम को नौकरी से बरतरफ कर दिया गया है।
2: क्यों, तुमको जानते हो इस बारे में?
0: वो दादा जान, उस मुलाजिम पर यह इल्जाम है कि उसकी कारगुजारियां नाकाबिले माफी हैं, या यूं कह लीजिए कि सिफर है। बार बार की याद दहानी और वार्निंग के बावजूद उस मुलाजिम ने अपनी ड्यूटी को ड्यूटी नहीं समझा और ऑफिस टाइम को तफरी में बर्बाद करता रहा। और जिस खास स्कीम की फाइल उसके पास थी उस पर एक लफ्ज भी नहीं लिखा गया था।
2: सुना है तुम्हारे कॉलेज के लड़कों ने भी मुजाहरे में हिस्सा लिया?
0: जी दादा जान,
2: ये तो अच्छी बात नहीं है। तालिब इल्मों को अपने निसाब पर तवज्जो देनी चाहिए। इल्म का उसूल हर शय के उसूल से अहम और बेहतर है।
0: लेकिन दादा जान, ये तालिब इल्म

0: तो समाज के ही फर्द होते हैं। क्या यह मुमकिन नहीं है कि जो मुलाजिम बरतरफ किया गया है वो भी किसी तलबे इनका रिश्तेदार हो, उसका उससे कोई ताल्लुक हो?
1: जरूर हो सकता है, लेकिन तुम कहना क्या चाहते हो?
0: दादा रेन, वो मुलाजिम संदीप अंकल है, वो मेरे दोस्त और क्लासमेट विक्रम के वालिद हैं। अब आप ही बताएं, ऐसी सूरत में क्या हम दोनों को मुजाहरे में हिस्सा नहीं लेना चाहिए था क्या?
1: इसका मतलब यह हुआ कि मुजाहरे में तुम भी शरीक थे। अच्छा ये बताओ इम्कान, संदीप साहब पर जो इल्जाम लगाए गए हैं क्या वो दुरुस्त है?
0: ये हमें ये सोचने की जरूरत नहीं है दादा जान, हमारा मसला तो बस ये है कि संदीप अंकल को नौकरी से निकाल दिया गया है, बस।
1: बेटा साथ सच्चाई का देना चाहिए। अगर संदीप साहब ने वाकई अपने फर्ज से कोताही की है तो ये सजा उन्हें मिलनी ही चाहिए। तुम शायद नहीं जानते बेटा, ऐसे लोग करोड़ों इंसानों के जज्बात से खेलते हैं। ऑफिस के काम का जो वक्त बर्बाद किया जाता है, जरा उसके मुतालिक सोचो। एक दो नहीं, सैकड़ों हजारों लोग ऐसे हैं जो ड्यूटी के नाम पर खुशगप्पियां करते हैं, सैर तफरी करते हैं, अखबार मैगजीन और नॉवल पढ़ते हैं, या ऑफिस में कहीं सो जाते हैं। इस तरह जो वक्त बर्बाद होता है, अगर इसका हिसाब किया जाए तो सिर्फ एक महीने में ही हजारों घंटे बेकारी के खाते में जाते हैं। हर स्कीम पीछे रह जाती है और मजीद मसाइल आगे आ जाते हैं। मुल्क की तरक्की कैसे होगी? अगर ये मान भी लिया जाए कि संदीप साहब बेकसूर हैं, तो भी एहतजाज करने का यह तरीका गलत है। सड़कों पर इंतजार फैलाने से रोजमर्रा की जिंदगी मुतासर होती है।
0: संदीप अंकल बेकसूर हैं दादा जान, विक्रम ने मुझे बताया है। और अगर मान भी लिया जाए कि वो कसूरवार है, तो ऐसा कसूर मुल्क में न जाने कितने ही लोग कर रहे हैं, तो फिर संदीप अंकल को ही सजा क्यों दी जा रही है?
1: बुराई फैलकर अच्छाई नहीं बन जाती बेटा, बुरे का अंजाम भी बुरा ही होता है। कोई गलत काम करने वाला पहले पकड़ा जाता है, कोई बाद में, और यह भी सच है कि कोई पकड़ा ही नहीं जाता। यह महज इत्तेफाक है, लेकिन वो शख्स खुद भी यह साबित नहीं कर सकता कि उसने अच्छा काम किया है।
0: आप संदीप अंकल की मुखालफत कर रहे हैं दादा जान।
1: मैं संदीप साहब की मुखालफत नहीं कर रहा हूं इम्कान, सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि हक क्या है और ना हक क्या। ये बस इत्तेफाक ही है कि बात संदीप साहब पर जा रही है।
0: नहीं दादा जान, नहीं, आप संदीप अंकल की खुली मुखालफत कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि वो हिंदू है
1: इम्कान। ये क्या कह दिया तुमने बेटा? आज एक पोते ने एक दादा को गाली दी है, तुम ये क्यों भूल गए बेटा कि तेरा दादा खुद एक मुजाहिद आजादी है? तुम एक इमारत के सामने नारे लगाकर वफादार हो गए, और मैं अंग्रेजों की गोलियों के आगे नारे लगाकर भी बेवफा ठहरा। हम सब ने साथ मिलकर आजादी हासिल करने की कस्में खाई थी। इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगता तो कोई ये नहीं देखता कि नारा हिंदू ने लगाया है या मुसलमान ने। मकसद एक था, आवाज एक थी। उस पाक जज्बे में तुम तासुब का जहर घोलने का इल्जाम लगाते हो, वो भी मुझ पर।
2: बदतमीज, अपने दादा से ऐसी बातें करते हो? शर्म नहीं आती तुम्हें? चलो यहां से, चलो
3: अम्मी जान।
2: चलो, तुम्हें छोटे बड़े की कोई तमीज नहीं? क्या अपने दादा जान का अदब करना तुम्हारा फर्ज नहीं? वो तुम्हारे बाप के भी बाप है बेटे, क्या बड़ों से ऐसी और इसी लहजे में बात की जाती है? तुमने तो इस घर का नाम डुबो दिया।
0: अम्मी जान, अगर मैं छोटा हूं तो इसमें मेरा क्या कसूर है? अगर मैं पहले पैदा हुआ था तो मैं भी बड़ा होता।
2: मगर अब हकीकत यही है, वो बड़े हैं और तुम छोटे। गलत दलीलों से अपनी मोमिन बातों की अहमियत मुझे समझाने की कोशिश ना करो, मैं उनको क्या मुंह दिखाऊंगी? मेरा सर तो शर्म से झुका जा रहा है।
0: अम्मी जान, अपनी बात की मुआफिकत में कौन नहीं बोलता? क्या हम मुआशरे के फर्द नहीं? अगर हैं तो हमारे हुकूक महदूद क्यों हैं? उनमें तरमीमों इजाफा क्यों नहीं किया जाता? गुस्सा करने के, ऊंचा बोलने के, मारने और रौब जमाने के सारे हुकूक बड़ों ने अपने कब्जे में कर लिया, और हमें मिले सिर्फ चुप रहने और सर झुकाने के हुकूक। हम इंसान नहीं है क्या? हमें भी बातें अच्छी बुरी लगती हैं अम्मी जान, हमें अपने इजहार का हक क्यों नहीं है? जरा आवाज तेज निकली कि हम बदतमीज हो गए, गुस्ताख हो गए हम लोग? ऐसा क्यों है अम्मी जान, ऐसा क्यों?
2: गला मत फाड़ो, तुम पागल हो गए हो, इस बात को यही खत्म कर दो।
0: ठीक है,

0: इम्कान बेटे खाना खा ले।
1: मुझे भूख नहीं है अम्मी।
0: तुझे भूख है बेटे? बेटे का हाल माँ से नहीं छुप सकता।
1: मैंने कह दिया ना अम्मी, मुझे भूख नहीं है।
0: गुस्सा थूक दे बेटा और मेरा कहना मान ले, मेरा दिल खुश हो जाएगा।
1: ठीक है, दो खाना
0: लो आराम से खा बेटे। देख आज मैंने तेरी पसंद की दाल बनाई है। बेटा अपने दादा जान से माफी मांग ले।
1: नहीं अमीजा।
0: ठीक है बेटे, मैंने को गलत बात कह दी। खाना तो पूरा खा ले बेटे।
1: जो खाना था सो खा लिया, मुझे बार भूख नहीं है।
0: बस थोड़ा सा और खा ले।
1: मैंने कह दिया ना अम्मी, जो खाना था खा लिया, मैं नहीं खाऊंगा।
0: ठीक है मत खाओ, पड़े रहो भूखे।

0: हेलो बेटी
1: जी कहिए।
0: बेटी, जरा वक्त तो बताना, मेरी घड़ी बंद हो गई है। उसके इम्कान की घड़ी लाकर मुझे ही दे दो, मैं वक्त मिला लूंगा।
1: इम्कान घड़ी पहनकर बाहर गया है।
0: है, बाहर गया है? आज तो इतवार है, कॉलेज की छुट्टी है।
1: कह रहा था विक्रम के घर जा रहा हूं।
0: मैं सब समझ रहा हूं, वो सिर्फ विक्रम के घर नहीं गया है, किसी नए प्लान में हिस्सा लेने गया है। तुमने इसे मना क्यों नहीं किया?
1: मैंने उसे बहुत मना किया लेकिन वो माना ही नहीं। कहने लगा विक्रम ही के घर तो जा रहा हूं।
0: तुमने मुझसे कहा होता।
1: सोचा तो था कि आपसे कहूं लेकिन फिर इसलिए रुक गई कि कहीं आज भी वो कल की तरह बदतमीजी से पेश ना आए।
0: कैसे मानेगा ये लड़का, कल नसीहत भी की लेकिन आज फिर चला गया। नई नस्ल जमीन देखकर नहीं चलती, आसमान देखकर चलती है। अपने बढ़ते कदमों पर उनकी निगाह जाएगी तो कैसे? फिर नई नस्ल समझती है कि दरमियान का फासला हमने बनाया है, यही उनकी भूल है। नई नस्ल जब खुद सिर्फ बदल कर चलेगी तो कब पुरानी नस्ल के करीब रह पाएगी? पुरानी कदरों और आदर्शों की मुखालफत में उसने जदीद कदरें और उसूल वजह कर दिए और तहजीब वाले बन गए। या खुदा, इनकी ये खुद सरी कहां ले जाएगी इन्हें? इस घर में तो अब दरमियान में कोई हद फासिल भी नहीं। इम्कान मेरी नहीं सुनता, उसका बाप जिंदा होता तो शायद उसकी सुन लेता, मगर अब मेरा बेटा कहाँ?
1: नहीं,
0: वो तो शेर खामोशा में अबदी नींद सो रहा है।
1: जाने दीजिए, उस नासमझ को माफ कर दीजिए। मैं उसे और समझाऊंगी। मुझे पूरा यकीन है कि वो अपनी रिवायत की तरफ जरूर लौटेगा।
0: मैं तो उसे माफ कर दूंगा बेटी, फिक्र तो इस बात की है कि पिछली तारीख उसे किस नाम से अगली तारीख के

घेर लो,

0: नहीं है, मगर अपनी जगह से इल्लाह कोई नहीं रहेगा।
1: एक एक

0: आइए मार्जिन साहब, आइए। कई दिनों से आप आए नहीं है ना?
1: जी हाँ जनाब, मैं शहर में था ही नहीं, लड़की के रिश्ते के सिलसिले में बाहर गया हुआ था।
0: अच्छा अच्छा,
1: आज ही तो लौटा हूँ, बल्कि अभी कुछ देर पहले आया हूँ। बदकिस्मती देखिए कि आज कई दिनों बाद आपके पास आया भी तो आपके लिए बुरी खबर लाया हूँ।
0: हाँ
1: जी, कह डालिए माजिद साहब, रोज न जाने कितने ही लोगों को बुरी खबर सुनना पड़ती है, मैं भी इसी माशरे का फर्द हूं। ये क्या जरूरी है कि मुझ तक पहुंचने वाली हर खबर मेरे लिए खुशी की ही हो? वो दरअसल आपके पोते इमकान को पुलिस गिरफ्तार करके ले गई।
0: क्या?
1: जी, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। मैं उसी रास्ते से आ रहा था, सरकारी मुलाजमीन और कॉलेज के लड़के इंजीनियर इन चीफ के बंगले पे मुजाहरा कर रहे थे, तोड़ फोड़ कर रहे थे। जिस वक्त पुलिस ने इमकान को गिरफ्तार किया सादिक साहब, वो इंजीनियर इन चीफ के बंगले का गेट तोड़ रहा था। आप जल्दी थाने चलिए, मैं भी चलता हूं आपके साथ।
0: नहीं, मेरे उसूल मुझ पर बार नहीं माजिद साहब, कि उन्हें तोड़कर मैं राहत तो आराम हासिल करना चाहूं। जब संदीप साहब को अपने किए की सजा मिल रही है तो फिर इमकान अपनी सजा से बरी क्यों हो?
1: जाने भी दीजिए सादिक साहब, इमकान अभी बच्चा है, उसे माफ कर दीजिए।
0: बच्चा जरूर है बाजिद साहब, मगर 20 साल का हो चुका है और बीएससी में पढ़ता है। और फिर देखिए, इमकान को माफ करके इंसाफ का तकाजा पूरा नहीं होता, और मेरे उसूल इंसाफ पर मबनी है।
1: अच्छा सादिक साहब, ठीक है, आप मुझे इजाजत दीजिए, मैं चलता हूं।
0: हाँ, आप चूंकि सफर से लौटे हैं, वरना मैं कुछ देर बैठने के लिए कहता। चाहिए माजिद साहब, खुदा हाफिज।
1: खुदा हाफिज।

0: आप आइए आइए, तशरीफ रखिए।
1: मैं बेहद परेशान हूँ माजिद साहब
0: जी।
1: आपके और इमकान के दादा के बीच हुई गुफ्तगू मैंने सुन ली है। इमकान के दादा के असूल सच्चे और खरे हैं, बहुत अजीम इंसान है वो। लेकिन माजिद साहब जरा सोचिए, मैं भी एक माँ हूँ। इमकान थाने में है तो मुझे कब एक लम्हा भी चैन मिलेगा? आपसे गुजारिश करती हूँ माजिद साहब, आप जाकर इमकान को ले आइए, अपनी जमानत दे दीजिए, आपका बड़ा एहसान होगा मुझ पर।
0: जी देखिए, आपके घर से भले ही मेरा कोई हकीकी रिश्ता ना हो, लेकिन जज्बाती रिश्ता जरूर है। मैं सादिक साहब का बेहद एहतराम करता हूं कि इस दौर में ऐसा नेक, शरीफ और उसूल परस्त शख्स मौजूद है। आप जानती हैं कि वो इमकान को थाने से लाने के खिलाफ है।
1: जी।
0: अगर मैं इमकान को थाने से ले भी आऊं तो बाद में सादिक साहब से निगाहें कैसे मिलाऊंगा?
1: माजिद साहब, अपने और इमकान के दरमियान सिर्फ मुझे भी महसूस कीजिए।
0: अच्छी बात है, अच्छी बात है। अब सिर्फ आपकी जज्बातियत ही मेरे जहन में है। मैं थाने जाता हूं।

0: देखना यह भी होगा कि पुलिस इम्कान को छोड़ती भी है या नहीं। आप घर चलिए, अगर इम्कान को लाने में मैं कामयाब हुआ तो मैं वहीं हाजिर होता हूं।
1: जी।

0: आदाब आदाब
1: आदाब, आइए आइए आइए माजिद साहब।
0: देखिए सादिक साहब, मैं इमकान को थाने से ले आया हूँ। ये काम मैंने आपकी मर्जी के खिलाफ किया है, आपका गुनहगार हूं मैं। अब ले ही आया है तो आइए तशरीफ रखिए। जी
2: आप आ गए माजिद साहब।
0: जी
2: इमकान भी आ गया।
0: अम्मी जान
2: शुक्र है खुदा का।
0: मैं इमकान को तो ले आया लेकिन सादिक साहब से मैं हमेशा शर्मिंदा रहूंगा।
1: आप अब और कितना शर्मिंदा होंगे माजिद साहब। थाने जाना ही एक शरीफ इंसान के लिए इंतहाई शर्मनाक बात है।
0: मुझे थाने से लाने की जरूरत ही क्या थी किसी को।
2: चुप रहो बदतमीज, फिर जबान चलाने लगे।
1: इसे बोलने दो बेटी, ये सिर्फ इमकान नहीं पूरी नई नस्ल की अलामत है। इसे बोलने दो वरना नई नस्ल हम पर ये इल्जाम लगा देगी कि इनके इजहार ख्याल को बदतमीजी का नाम देकर इनकी जबान काट ली गई। मैं इससे सिर्फ ये पूछता हूं कि चीफ इंजीनियर के बंगले पर तोड़फोड़ करके इसने चीफ इंजीनियर का नुकसान किया है या कौमी इमलाक तबाह की है।
0: पता चान, इस जमाने में हक लेने का यही तरीका है। कोई भी सिस्टम ज्यादा दिनों तक राइज रहे तो वो करप्ट हो जाता है। पुराने तौर तरीके भी आज करप्ट हो चुके हैं, अब यहां इंसाफ कहां।
1: इंसाफ तुम्हारी मोटरसाइकिल है क्या जिसे जिधर चाहे मोड़ दो। तुम्हारी नजर में इंसाफ तो वही है जो तुम्हारी मुआफकत में हो। वो इंसाफ जो तुम्हारे खिलाफ हो वो तुम्हारी नजर में ना इंसाफी है।
0: सच तो ये है दादा जान कि आप हम पर जदीद साइंस, जदीद हिसाब, जदीद इंग्लिश और जदीद टेक्नोलॉजी पढ़ने के लिए तो बहुत जोर डालते हैं, लेकिन हमारे तौर तरीकों में अगर जरा भी जदीदियत हो तो आप इसे गुस्ताखी और खुदसरी का नाम देते हैं। दादा जान, मैं क्या सिर्फ इस जमाने का मुंह देखने के लिए पैदा हुआ हूं? पुराने वक्त के साथ साथ आपकी पुरानी कदरें भी गई दादा जान, गई। आप दरमियान के फासले के उस पार खड़े होकर बेकार ही चिल्ला रहे हैं।
2: होश में आओ इमकान, वरना मैं तुम्हें मारने से भी गुरेज ना करूंगी।
0: अम्मी जान,
1: आप सुन रहे हैं माजिद साहब।
0: जी,
1: ताल्लुक को इस तरह जदीदियत पर कुर्बान किया जा रहा है और मुझे इन अल्फाज में नवाजा जा रहा है। आज मुझे अगस्त 1942 का वो दिन याद आ रहा है जब हमने भारत छोड़ो का नारा लगाकर अंग्रेज हुकूमत पर लर्जा तारी कर दिया था। आज उस तारीखी वाकये को पूरे 50 साल हो गए। मुल्क भर में उसकी गोल्डन जुबली मनाई जा रही है। तेरी आंखों के सामने उन यादों के जुगनू उड़ रहे हैं। हमने सोचा था इस सरजमीन से अंग्रेजों के नापाक कदम उखाड़ फेंकेंगे और अपने कदरों और आदर्शों के लिए एक साजगार माहौल बनाएंगे, अपनी तहजीब में किसी तहजीब को शरीक नहीं करेंगे, जिएंगे तो खालिस हिंदुस्तानी बनकर। आपको बताता हूं माजिद साहब।
0: जी,
1: उस वक्त मैं 20 साल का था, ठीक ठीक इस लड़के की उम्र का। मैंने अपने दादा से कहा था, दादा जान मैं आजादी की कीमत चुकाने जेल जा रहा हूं, अंग्रेज सिपाही गिरफ्तारियां कर रहे हैं, मुझे दुआ दीजिए दादा जान कि जेल की तारीख फजा में रहकर भी मैं सुर्ख रूह होकर लौटूं। फिर दादा जान ने मुझे अपनी आगोश में ले लिया था माजिद साहब, उनके आंसुओं से मेरी पेशानी गीली हो गई थी। उन खामोश आंसुओं में मेरे लिए सब कुछ था। मैंने अपने दादा जान से कहा था, माजिद साहब आज 50 साल बाद मेरा पोता मुझसे कहता है आप बेकार चिल्ला रहे हैं।
0: सादिक साहब,
1: हम

0: आजादी थी माजिद साहब, इसलिए शान से जेल गए और शान से वापस लौटे। लेकिन इस लड़के को देखिए, जुर्म की पैदाश में जेल गया, फिर भी नदामत का कोई एहसास इसके जमीर को नहीं छूटा। छोड़िए, देखिए, सुनिए जरा
1: जी,
0: आप इमकान को अंदर ले जाइए।
1: जी चलो, यहां से अंदर आओ मेरे साथ, चलो।
0: अब मुझे इजाजत दे सादिक साहब, मैं फिर किसी वक्त हाजिर हूंगा। अच्छी बात है माजिद साहब
2: जी।
0: खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।

0: 40 गांव वाले,
1: 40
0: गांव वाले,
1: 40
0: गांव वाले,
1: जो तुमने मारे वाले,
0: बिल्डिंग पर
1: पथराव करो।
0: वापस आओ, वापस आओ।
2: और

0: अभी आया भाई, अभी आया। आइए
1: आदर करता हूँ साहब।
0: आदाब, आइए आइए, तशरीफ रखिए। कहिए, मिजाज कैसे हैं?
1: मेरा मिजाज तो खुदा के फजल करम से ठीक ही है सादक साहब, लेकिन इस शहर का मिजाज बहुत बिगड़ा हुआ है।
2: कोई नाखुशगवार वाकया हो गया क्या?
3: क्या बात हो गई माजी साहब?
4: आज क्या हो गया अंकल? आज तो हम लोगों ने कुछ भी नहीं किया। मैं तो आज घर से बाहर भी नहीं गया।
1: सादिक साहब, आज एक संगीन वाकया हो गया।
2: क्या हुआ?
1: अभी एक घंटा पहले ज्ञानपुर गांव की 200 अफराद ने पहले तो आकाश भवन के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया, फिर इमारत पर पथराव किया। दरअसल बात यह कि ज्ञानपुर गांव के पास एक दरिया है, उसी दरिया से कश्तियों के जरिए ज्ञानपुर के लोग शहर आते जाते हैं।
2: जी,
1: बरसात में यह दरिया इंतहाई खतरनाक हो जाता है। गांव वालों की दरखास्त पर सरकार ने इस दरिया पर एक पक्का पुल बनवाने की स्कीम मंजूर की थी।
2: जी,
1: लेकिन तामीर के महकमे ने इस स्कीम की मंजूरी और कार्रवाई से मुतालिक फाइलों की इंदराज में मसलसल कोताही होती रही। ये फाइल संदीप साहब को दिए गए थे। नतीजा ये हुआ कि 2 साल गुजर गए और पुल की तामीर अमल में ना आई। आज ही सुबह जब एक बड़ी कश्ती 40 गांव वालों को लेकर शहर आ रही थी, तो बरसात से उबलते उस दरिया के बीचों बीच बेकाबू होकर डूब गई। एक आदमी भी नहीं बचा। इसी वाकये के जेर असर 200 गांव वालों ने आकाश भवन पर धावा बोल दिया। वो सब इमारत में घुसकर इंजीनियर इन चीफ पर हमला करना चाहते थे। इतला मिलने पर पुलिस ने आकर लाठी चार्ज किया। बहुत से गांव वाले घायल हो गए। ऐन उसी वक्त संदीप साहब आकाश भवन से बाहर निकल रहे थे। जब वो गेट से बाहर आए तो खुद ब खुद हुजूम का हिस्सा बन गए। पुलिस की एक लाठी उनके सर पे जोर से लगी और वो वहीं गिर पड़े। उनके महकमे के दोस्त उन्हें अस्पताल ले गए, लेकिन डॉक्टरों के आने से पहले ही उनकी मौत हो गई।
2: ये बहुत बुरा हुआ, बहुत ही बुरा हुआ। संदीप साहब की सजा मौत नहीं थी। इम्कान बेटे, मैं तुम्हारे जज्बात से वाकिफ हूं, लेकिन फिर भी एक बात कहता हूं बेटे, तुम वाकयात को यकजा करो और फिर इसमें से जरा संदीप साहब को निकाल कर सोचो। जो शख्स अपनी ड्यूटी से कोताही करता है और फिर इस टाइम को लगवियात में सर्व करता है, वो ये सोचता है कि इसे तो महीना खत्म होने पर तनख्वाह मिल ही जाएगी। मुल्क का नुकसान होता है तो हो,

0: लेकिन वो ये भूल जाता है कि इसका घर भी मुल्क का एक हिस्सा है और इसके जरिए भड़काई गई आग खुद इसके घर को भी लग सकती है, जहां मुल्क दुश्मन अनासर मुल्क की बुनियादों में दरारें डाल रहे हैं, वहीं अगर नई नस्लें भी मुल्क की तामीर नौ में दिलचस्पी न दिखाई तो उनकी औलादों के हिस्से में एक टूटे फूटे हिंदुस्तान के सिवा कुछ भी नहीं आएगा। इम्कान इटे मेरे साथ अस्पताल चलो।
1: दादा जान,
0: विक्रम वहां अकेला होगा, उसकी मां नहीं, आज बाप का सहारा भी सर से उठ गया, उसका मकान भी किराए का है, हम विक्रम को अपने घर लेकर आएंगे, आज से वो इस घर में तुम्हारे साथ रहेगा।
1: दादा जान, आपकी कदरों ने आसमान की बुलंदियां दी है, विक्रम के रहने के मुताल्लिक ये तजवीज तो मेरे जहन में भी नहीं आई थी।
0: हाँ बेटा,

सामिन भी आप सुन रहे थे जनाब सैफुररहमान अब्बाद का तहरीर करदा ड्रामा 50 साल बाद। पेशकश सरफराज अहमद की थी। हिस्सा लेने वाले फनकार थे बाबला कोचर, राम मैनी, सुनीता कोहली, एच के वैश, जीत कौशिक, के एस पवार, कमल सेठी, के टंडन, एस पी लावादी और कमल कुमार वर्मा। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पेश खिदमत है फिल्मी नगमे। प्रोग्राम की पहली पेशकश मुकेश की आवाज़ में रामू दादा फिल्म का नगमा, जिसे मौसीकी सजाया है चित्रगुप्त ने।

इन फिल्म का नाम आप सुन रहे थे आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाज़ों में, नगमा निगार थी वर्मा मलिक, मौसीकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। और सामने लीजिए अब सुनिए प्रोग्राम की अगली पेशकश उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ों में, समीर का लिखा गीत जिसे मौसीकी सजाया हिमेश रेशमिया ने, फिल्म है तेरे नाम।

مشهد.

मेरे सिवा गुजरे नहीं दर से बतला।

Cariño.

श्री घोषाल की आवाज में आप सुन रहे थे जहर फिल्म का नगमा, और अब सुनिए अलीशा चिनाई को। फिल्म है मर्डर, नगमा निगार आरती इंदौरी, मौसीकार अनु मलिक।

और सामिली जब सुनिए मन्ना डे की आवाज में, प्रेम धवन का लिखा गीत जिसे मौसीकी सजाया है रवि ने, फिल्म है एक फूल दो माली।

अग्रवाल ने कहा कि भारत दिफा से खासी तिजारती जहाज पर इस इश्ताल अंगेज हमले की सख्त मजम्मत करता है। उन्होंने कहा कि भारतीय लोगों की सलामती सबसे अहम तरजीह है। इस दौरान वजारत खारजा ने इस हमले की मजम्मत करते हुए कहा कि खत्ते में तिजारती जहाजरानी पर हमलों के वाकयात का जारी रहना एक तश्वीशनाक अमर है। वजारत खारजा ने मजीद कहा कि खत्ते में तिजारती जहाजरानी को हमले का निशाना बनाना खत्म होना चाहिए और खत्ते की बैन अलावी आबी गुजरगाहों में जल्द से जल्द आजाद और बिला रुकावट जहाजरानी और तिजारत को बहाल किया जाना चाहिए। वजारत ने कहा कि रियाज में वाक भारतीय सफारत खाना सूरत हाल पर गहरी निगाह रखे हुए है और हमले के अफराद की हिफाजत और सलामती के लिए यमन को काम के साथ सरगम तरीके से तालमेल कायम कर रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हुकाम नौजवान तालिबे इल्म मुजाहिरीन से निपटते वक्त तहम्मुल से काम लें। अदालत ने कहा कि तशद्दुद रोकने की गरज से की जाने वाली किसी भी पुरतशद्दुद कार्रवाई से सूरत हाल मजीद खराब होगी। भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत की सरबराही में एक बेंच ने सीजेपी के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की दरखास्त पर समाप्त करते हुए ये बात कही। दरखास्त में सीजेपी की सरबराही वाले एहतजाज के दौरान दिल्ली और मुल्क के दीगर हिस्सों में हालिया तशद्दुद के लिए उस पर जिम्मेदारी आयद करते हुए उसके खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग की गई थी। चीफ जस्टिस ने कहा कि सबसे ताकतवर तरीका यह है कि सुना जाए कि एहतजाज करने वाले क्या कह रहे हैं और ये समझा जाए कि वो क्यों एहतजाज कर रहे हैं। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। बलोच वाइस एसोसिएशन ने अक्वामे मुत्तहिदा की इंसानी हकूक की काउंसिल के 63वें इजलास से कबल उसे एक रिपोर्ट पेश की है जिसमें पाकिस्तान के बलूचिस्तान सूबे में इंसानी हकूक की अबतर सूरत हाल का जिक्र किया गया है। 17 सफात की इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि वहाँ लड़ाई सियासी नौयत की है और दाइयों से जारी पसमानगी इकतसादी इस्तेसाल और इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों की वजह से खत्ते में बेचैनी में इजाफा हुआ है। रिपोर्ट में लोगों को जबरन लापता किए जाने मावराए अदालत हलाकतों शहरी आज़ादी पर बंदिशें और इख्तलाफ राय को दबाए जाने का इल्ज़ाम लगाया गया है। बलोच वाइस एसोसिएशन ने बैन अल-अक़वामी बिरादरी और अक़वामे मुत्तहिदा से कहा है कि वो मुबैना खिलाफ वर्जियों की छानबीन करें, हकीकत का पता लगाने वाले मिशन भेजें और पाकिस्तान और बलोच नुमाइंदों के दरमियान बातचीत की राह हमवार करें। उसने अक़वामे मुत्तहिदा की निगरानी वाले एक तरीक़ाकार के जरिए बलोच अवाम के हक़ खुद इरादे पर तवज्जो दिए जाने के लिए भी कहा है। भारत ने पाकिस्तान के ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर के नाम नियाद मकामी इंतखाबात को मुकम्मल तौर पर एक तमाशा करार दिया है और कहा है कि इस तरह की खोखली हरकतें सच्चाई को नहीं छुपा सकती। नई दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने इशारा दिया कि असल मामला अवामी एहतजाज और पाकिस्तानी फोर्सेज की जानिब से मुजाहरीन का ज़ालिमाना कत्ल है। उन्होंने कहा कि इस साल जून से जारी कार्रवाई में अब तक कम से कम 90 शहरी जान गंवा बैठे हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट ने अवामी इख्तलाफ का जवाब गोलियों ब्लैकआउट जोर जबरदस्ती और धमकियों से दिया है और अब इस तरह की खोखली इंतखाबी मशकों के जरिए उन्हें जायज ठहराने का जवाब ढूंढ रही है। जनाब जायसवाल ने मजीद कहा कि पाकिस्तान को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए और दुनिया को इंसानी हकूक पर पाकिस्तान की मुनाफिकाना लफाजे को भी सुनना चाहिए। सितंबर के महीने में नई दिल्ली में मुनाकिद होने वाली ब्रिक्स चोटी कॉन्फ्रेंस के दावतनामे से मुतालिक पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए जनाब जायसवाल ने कहा कि बांग्लादेश के वजीर आजम तारिक रहमान की जानिब से इस साल फरवरी के महीने में ओहदा संभालने के बाद उन्हें भारत के दो तरफा दौरे की रस्मी दावत दी गई है। पाकिस्तान ने गैर मुल्की मीडिया पर अपना कंट्रोल मजीद सख्त करते हुए नए जवाबित नाफिज कर दिए हैं जिसकी वजह से गैर मुल्की सहाफियों को मुल्क के बेशतर इलाकों से रिपोर्टिंग करने से पहले हुकूमत की पेश की इजाजत हासिल करना लाजमी होगी। और आखिर में खास खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर अजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दफा 370 को मनसूख किए जाने के बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों की जिंदगी यकसर बदल गई है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इस माली साल के दौरान 6.7% मजमूई घरेलू पैदावार की शरह तरक्की का तखमीना लगाया है। भारत का परचम बरदार जहाज बोर अमर में एक हमले के बाद गर्क हो गया है। 13 भारतीय जहाजरानों को बचा लिया गया है। भारत ने हमले की सख्त मजम्मत की है। और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में मुजाहिरीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई के सिलसिले में तनकीद का निशाना बनाए जाने के बाद पाकिस्तान ने गैर मुल्की मीडिया पर बंदिशें आयद कर दी हैं। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।

0: मीडियम वेव 1071 किलोहर्ट्ज़ मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। सामिन शाम के 5 बजे चाहते हैं यहाँ हमारी आज की दूसरी मजलिस की नशरियात अब इख्तिताम पज़ीर होती हैं।
1: मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्ज़ पर, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, डीआरएम चैनल 909 किलोहर्ट्ज़ पर और मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एआईआर पर हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। संध्या के 5 बजे हैं, युवा श्रोता सुने अपना दैनिक कार्यक्रम युववाणी।

युवाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को पूजा वर्मा का नमस्कार। दोस्तों, आज हम आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं कार्यक्रम युवाणी के साथ। हम आपके लिए लेकर आए हैं आपके पत्रों पर आधारित फरमाइशी प्रोग्राम आपकी पसंद, जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतज़ार रहता है। आपको सुनाएंगे पत्रोत्तर, व्हाट्सएप, ईमेल व पत्रों पर आपकी फरमाइशों द्वारा फिल्मी गीत। लीजिए दोस्तों, करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत। और शुरुआत में सबसे पहला गीत सुनने के लिए हमारे पास फरमाइशें आई है, सबसे पहले रघुनाथपुरा से। लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हीना, हर्षित और खुशी गोस्वामी की। अगली फरमाइश है दोस्तों हमारे पास जिला अंबागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से, रिजवान खान, आयशा, सबीहा, अनस और रेहान की। अगले हमारी फरमाइश करता है पाकुड़ झारखंड से, उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, किशु ताशु, अर्णव आनंद और साथ हैं इनके सत्यम आनंद। अगली फरमाइश करता है हमारे हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान से, रज्जाक मोहम्मद खान, समीम बेगम, इमरान खान, इरफान खान और जिशान खान। दोस्तों, अगला पत्र है हमारे पास आपकी पसंद कार्यक्रम के लिए, छत्तीसगढ़ भाटापारा दंतरेगी से, द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और झावेंद्र कुमार वर्मा का। अगली फरमाइश करता है हमारे गांव खोखरा वाली श्रीगंगानगर से, विनोद बारसा, विशाल, विकास, रोशनी और शगुन बारसा। अगली फरमाइश करता है वडिंग खेड़ा पंजाब से, मिंटू टॉम्स, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा। तो लीजिए दोस्तों, आपको सुनाते हैं कार्यक्रम का ये पहला गीत।

0: दोस्तों, जीवन एक सुंदर यात्रा है। इस यात्रा में कभी खुशियां हैं, कभी चुनौतियां हैं, कभी सपने हैं तो कभी संघर्ष। लेकिन यदि मन में उम्मीद का दीपक जलता रहे तो हर राह आसान लगने लगती है।
1: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: लीजिए दोस्तों, अगला गीत सुनने के लिए हमें पत्र लिखा है गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मिका बलविंदर बिरक जैतिक बिरक ने। और अगली फरमाइश है हमारे पास,

हनुमानगढ़ फाजिल्का से, रमन वर्मा, अमन वर्मा, दिव्यांश वर्मा, मदन लाल वर्मा, कीर्ति वर्मा, सिद्धार्थ वर्मा और उनके साथ प्रियांश वर्मा, साथ ही उनकी पूरी फैमिली ने। अगली फरमाइश है हमारे पास गांव हीरावाड़ी फाजिल्का पंजाब से, सुभाष गोदारा, विमला गोदारा, इंदु, पार्वती, हिमांशु गोदारा, सरवण रीणवा, हंसराज भाटिया, मनीराम, रणजीत राम किरोड़ीवाल और उनके साथ है सुरेंद्र भादू जी। अगली फरमाइश करता है हमारे अनारकली बाजार जगराओ पंजाब से, सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गाव्या मल्होत्रा, सुच्चा सिंह पाठक, विनोद पुरी और उनके साथ है जयपाल यादव। अगली फरमाइश करता है हमारे बोर्ड खेड़ा पित्रामल जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से, विनोद मुणत, नेहा जैन, दीपक, मयंक मुणत और उनके साथ है चेतन नाहटा, दीक्षा और कुश मुणत। अगली फरमाइश करता है हमारे गांव पजौनिया जिला जालौन से, सत्येंद्र कुमार, चंचोलिया, आदर्श सार्थक, अलौकिक चंचोलिया। अगली फरमाइश करता है हमारे गांव नलोई तहसील शिवानी मंडी जिला हिसार से, सज्जन सिंह जांगड़ा, राजबाला, कार्तिक और उनके साथ है वेदांश जांगड़ा। अगली फरमाइश करता है हमारे अलीका डब वाले से बसंत सिंह चंद, राजकुमार, सुनीता और है उनके साथ कुलदीप गांधी। अगली फरमाइश करता है गांव लोहगढ़ ठाकुरावाड़ा से, स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरनूर सिंह, गुरलाल सिंह और अविराज सिंह। दोस्तों आप सुन रहे हैं युवानी कार्यक्रम में विशेष पत्रों की महक और गीतों का सफ़र, फरमाइशों के रंग और गीतों के संग।

दोस्तों, एक बार एक किसान था। उसने दो बीज खेत में बोए। पहला बीज बोला, मैं मिट्टी के अंदर नहीं जाना चाहता, मुझे डर लगता है। दूसरा बीज बोला, मैं बढ़ना चाहता हूँ, खिलना चाहता हूँ। कुछ दिनों बाद दूसरा बीज पौधा बन गया और पहला बीज वहीं पड़ा रह गया। और पहले बीज को एक चिड़िया खा लेती है। तो कहानी हमें संदेश देती है कि जो लोग डर के कारण अवसरों को छोड़ देते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते, और जो जोखिम उठाते हैं, वही मंजिलों को पाते चले जाते हैं। दोस्तों, जिंदगी आसान नहीं होती, लेकिन मजबूत बनने का मौका ज़रूर देती है। हर सुबह नई उम्मीद लेकर आती है। समय और शब्द दोनों ही बहुत अनमोल होते हैं। खुशियाँ खरीदने से नहीं, बांटने से बढ़ती है। लीजिए, चलते हैं आपकी फरमाइशों की ओर और आपको सुनाते हैं कार्यक्रम का अगला फिल्मी गीत। दोस्तों, अगला फिल्मी गीत सुनने के लिए हमारे पास फरमाइशें आई है। मेहर नगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गवहाणकर राही की, सरिता गवहाणकर, प्रणीता सिद्धांत गवहाणकर और साथ हैं उनके अर्जुन। अगले हमारे फरमाइश करता है आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरव, शायना और निवान शर्मा की। अगले हमारी फरमाइश करता है दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी, बब्बू और डब्बू। अगले हमारी फरमाइश करता है झोरड़ ढाणी गांव बहलोल नगर से नरेंद्र झोरड़, भीमसेन झोरड़, लोकेश झोरड़, गौरव, पुनीता और आरवी की। दोस्तों, अगली फरमाइश है हमारे पास कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से ओम प्रकाश रॉय, उषा रॉय, अमित कुमार और हैप्पी रॉय की। आपके पसंद प्रोग्राम के लिए अगली फरमाइश करता है हमारे श्रीगंगानगर से नेकी राम बांसीवाल, जॉनी बांसीवाल, धनराज बंसीवाल। अगली फरमाइश करता है हमारे परमवीर हाउ

0: कॉमन्स आदर्श नगर भटिंडा से अशोक ग्रोवर, प्रवीण ग्रोवर, नीति पवनीत और विक्रमजीत। अगली फरमाइश करता है हमारे जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिक्रेस्टो, रॉजी डिकेस्ट्रो, पर्ल और विलिस की। लीजिए दोस्तों, आपको सुनाते हैं कार्यक्रम में ये अगला फिल्मी गीत।
1: टेन नाइन एट सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन लेट्स स्टार्ट द फन।

दोस्तों, मुस्कुराहटों की कीमत नहीं होती और रिश्तों की कोई दीवार नहीं होती। लीजिए एक छोटी सी कहानी को हम समझेंगे। एक दीपक ने सूरज से कहा, मैं तुम्हारी तरह बड़ा नहीं हूँ। सूरज मुस्कुराया और बोला, अंधेरा चाहे कितना भी हो, तुम्हारी रोशनी छोटी सी फिर भी बहुत मायने रखती है। अगर पूरी जगह अंधेरा ही अंधेरा हो, तो एक छोटा सा दीपक भी हम क्यों ना जला दें, तो रोशनी का प्रकाश हर तरफ फैल जाता है। तो सूरज ने कहा, दूसरों से तुलना नहीं करनी चाहिए, आप अपने आप में सर्वश्रेष्ठ हो। दोस्तों, खुश रहने के लिए जरूरी नहीं होता कि बड़ा होना चाहिए, अमीर होना चाहिए। जैसे आप एट प्रेजेंट हो, छोटी छोटी चीजों में ही खुशियां ढूंढ लेनी चाहिए। लीजिए अब चलते हैं आपकी फरमाइशों की ओर, और आपको सुनाते हैं आपकी फरमाइशों पर कार्यक्रम में अगला फिल्मी गीत। अगला गीत सुनने के लिए फरमाइश आई है हमारे पास चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और विमला अनेजा की। अगले हमारे श्रोता हैं कुंडलवाड़ी महाराष्ट्र से गंगाधर सावनकर, विजयलक्ष्मी सावनकर, राजेश, राकेश और ऋषिता। अगली फरमाइश करता है हमारे नई बस्ती गंजडूडवारा से मोहम्मद यासीन हाशमी, नाजमा बेगम हाशमी, मोहम्मद तौसीफ, मोहम्मद तैमूर और मोहम्मद कलीम अंसारी। अगले हमारी फरमाइश करता है गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी, पूजा पायल और जगदीश जौहरी। अगले हमारे फरमाइश करता है भटिंडा रोड मंडी डब्बावाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग, लक्की और तानिया। दोस्तों, अगले फरमाइश करता है हमारे जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल और प्रिया, उनके साथ है दिशानी और निमित आहूजा। अगले हमारे श्रोता हैं आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार उत्तराखंड से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाब साबिर राही और महराज जहां। अगली श्रोता है हमारी मानसा पंजाब से जगदीश रॉय गर्ग। अगले हमारे फरमाइश करता है कविता अरोड़ा, अनिल, गौरव, मानसी, न्यू दिल्ली, मोती नगर से। अगले हमारी फरमाइश करता है संगरिया से श्याम मिड्ढा और सुमन मिड्ढा। तो लीजिए दोस्तों, आपको सुनाते हैं कार्यक्रम में ये अगला प्यारा सा फिल्मी गीत।

दोस्तों अभी आप सुन रहे हैं युवाणी कार्यक्रम कॉटन सिटी चैनल आकाशवाणी सूरतगढ़ से प्रसारित मेगावाट 918 किलो हर्ट्ज, DRM 909 किलो हर्ट्ज, FM 100.1 मेगा हर्ट्ज और मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर।

दोस्तों, कार्यक्रम का अगला गीत सुनने के लिए हमारे पास फरमाइशें आई है। गांधीनगर गुजरात से जी के परमार, ज्योत्सना परमार, हर्ष और दीपल की। अगले हमारे श्रोता हैं जिला छत्रपति संभाजीनगर औरंगाबाद महाराष्ट्र से, अनिल कुमार घोड़के वैशाली अनिल, प्राजक्ता घोड़के वैष्णवी गायत्री और यज्ञेश घोड़के। अगले हमारी फरमाइश करता है तहसील भादरा अनूप शहर से, गजानंद सारस्वत, ताराचंद सारस्वत, सोनू पवन कुमार, साहिल राघव, मुरारी लाल शर्मा, मदन लाल शर्मा, महावीर लोहरा, ममता, मीतू, किन्नू और उनके समस्त परिवार के सभी सदस्यों की। अगली फरमाइश है हमारे पास गांव सादेवाड़ा सिरसा हरियाणा से, रामेश्वर माहर, परमेश्वरी माहर, जिगर और जानवी की। अगली फरमाइश है दोस्तों हमारे पास गांव कलाना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से, विक्रम कड़वासरा, सचिन, सतीश, योगेश, युद्धव कड़वासरा, कुंदन जाखड़, लीलाधर स्वामी, किशन मायल, कीड़ू राम जोया, हनुमान सहारण और सुनील पाईवाल शर्मा। अगली फरमाइश करता है हमारे राधेश्याम शर्मा, इंदिरा शर्मा और सार्थक शर्मा। अगली फरमाइश करता है दोस्तों अनूपगढ़ से, जुगल किशोर, मनोरी देवी, मनोज, राजकुमार, पिक, नव्या, गंगा, सरस्वती और पूनम की। अगली फरमाइश है हमारे पास गांव बांडीवाड़ा फाजिल का पंजाब से, ओम बगड़िया, क्रियांश बगड़िया, योगेश बगड़िया, रजत और बेबी गरिमा की। लीजिए दोस्तों, सुनाते हैं आपको कार्यक्रम में अगला फिल्मी गीत।

दोस्तों, युवा केवल देश का भविष्य नहीं, बल्कि वर्तमान भी है। आज का युवा यदि जागरूक है तो समाज प्रगतिशील बनेगा। हमारा भारत सपनों का भारत, विकासशीलता की ऊंचाइयों की ओर चढ़ेगा। युवाओं की जिम्मेदारियां बनती है, शिक्षा प्राप्त करें, पर्यावरण की रक्षा करें, नशा मुक्ति का संदेश देना। आज करोड़ों युवा नशाओं की लत से जूझ रहे हैं। इससे अच्छा तो पढ़ाई की ओर ज़्यादा से ज़्यादा अग्रसर हो तो अपनी दुनिया को बहुत ही अच्छा बना सकते हैं। महिलाओं का सम्मान करें, डिजिटल दुनिया का सही उपयोग करें। दोस्तों, राह कठिन हो तो हिम्मत बढ़ाइए, सपनों को दिल से अपनाइए, मंजिल खुद चलकर आएगी, बस आप आगे कदम तो बढ़ाइए। लीजिए चलते हैं अब इतिहास के पन्नों में। आज का दिन जानेंगे। दोस्तों, आज के दिन 1920 महात्मा गांधी ने आज ही के दिन ब्रिटिश शासन के खिलाफ असहयोग आंदोलन शुरू करने की घोषणा की। वर्ष 2019 में भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 के अधिकांश प्रावधानों को हटाने का ऐतिहासिक निर्णय आज ही के दिन लिया। और यह दिन राजस्थान के युवाओं को अपने गौरवशाली इतिहास की गाथा कायम रखने के लिए भी याद किया जाता है। लीजिए अब चलते हैं आपकी फरमाइशों की ओर और आपको सुनाते हैं कार्यक्रम का अगला फिल्म गीत। अगला फिल्म गीत सुनने के लिए हमारे पास व्हाट्सएप के जरिए मेल आया है। गांव खारिया, जिला सिरसा, हरियाणा से प्रताप जिनागल, इंदिरा, मुकेश, दिनेश, अंशु और बलदेव कटारिया। अगले हमारी फरमाइश करता है गांव ढाणी, लाल खां नोहर से जावेद खां, अरमान खां, इमरान खां, सीमा बानो, विनोद खान। अगले श्रोता है हमारे रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा। अगले श्रोता है गांव होंडू से, जिला बालोतरा से उम्मेदाराम, सुरेश कुमार और सुतेश गोदारा। अगले श्रोता है हमारे नेपानगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल, नीति, सुरभि, अश्विन, मंगला बेन शाह और राजेंद्र जी। अगले हमारे श्रोता हैं खंडवा मध्य प्रदेश से आनंद जोशी, तनुजा जोशी, ध्रुवी और फाल्गुनी जोशी। अगली फरमाइश करता है मंडी केसरी सिंहपुर से बिल्लू सुद, सुनीता सुद, चांदनी, आशीष, विश्वजीत, मोहनलाल प्रजापति। दोस्तों, अगले फरमाइश करता है हमारे नई आबादी हनुमानगढ़ टाउन से सुल्तान सिंह तरड़, कृष्ण, मुकेश, रामचंद्र, कपिल देव और हिमानी जाखड़। अगले हमारे फरमाइश करता है सूरतगढ़ से बाबूलाल खत्री, सुगना देवी, सुरेश, आरती, पूजा, रितिका, रमन, रुद्र, खुश, रजनी और नव्यांश खत्री। अगले फरमाइश करता है हमारे उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी, भानु प्रकाश और गीतिका खोरवाल। अगले हमारे श्रोता हैं बेनीपट्टी, मधुबनी, बिहार।

फारसी, अरविंद कुमार, गुड़िया रानी, भाव्या कुमारी, निवेश कुमार और नियति कुमारी। अगले श्रोता हैं हमारे हीरा वाली फाजिल का पंजाब से हजारी लाल पुरोहित, मोनी पारिक, भूपेंद्र, और उनके साथ है जगत मडावरा और राजू मडावरा। अगले हमारे फरमाइश करता है आसाम से हितेंद्र दास। अगले फरमाइश करता है गांव नाईवाड़ा, जिला हनुमानगढ़, राजस्थान से वेद मिड्डा और अलका मिड्डा। अगले फरमाइश करता है हमारे रायश नगर से धनराज भामू, सोहन लाल जांगीर, चेतन राम सरसवा, प्रदीप सरसवा, राजेंद्र कासनिया, अरविंद कासनिया, विजय आशीष भामू। अगले फरमाइश करता है गंजडू डवारा से शमशुल कमर राही, शाहिन फातिमा, अदनान खान, फैजान खान, अनु खान, उस्मान अंसारी और कलेम अंसारी। अगले युवाणी कार्यक्रम के आपकी पसंद के श्रोता हैं हमारे सादुल शहर से रामकुमार रिवाड़, चंद्रकला रिवाड़। अगले फरमाइश करता है दादरी गेट भिवानी से कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, किरण मेहरा, कपिल कुणाल मेहरा। अगले फरमाइश करता है जिला किशनगंज बिहार से रविंद्र मोहनदास और आशा देवी। दोस्तों, दिमाग में विचारों का ट्रैफिक जितना कम होगा, जिंदगी का सफर उतना ही आसान होगा। लीजिए आपको सुनाते हैं अगला फिल्मी गीत।

और मीनू बाकोलिया की। अगली फरमाइश करता है हमारी भटिंडा पंजाब से अजय मीनू और माहिरा कंसोटिया। अगली फरमाइश करता है हिसार से महेंद्र सिंह शेखावत जी। अगली फरमाइश करता है हमारी, अगला पत्र है हमारे पास गांव दौलतपुरा से शोलाल जी बेनीवाल, शांति देवी, मंजू, मोहित बेनीवाल, हेमंत बेनीवाल। अगली फरमाइश करता है हमारे गांव नाईवाड़ा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़ से गौरव कंडियारा, राणा सिंह कंडियावारा, मन्नू और लड्डू। अगला गीत सुनने के लिए फरमाइशें आई है जमानिया गाजीपुर से सुरेश जायसवाल, उर्मिला दीपक और स्वाति। अगली फरमाइश करता है चकदस SDP लालगढ़ जाटान से रामेश्वर जी निराणिया, सुमन, दिव्या, नितुन, पंकज, मेहर चंद, हेमू, मनीषा, ब्रिजलाल जी और राम प्रताप जी जाखड़ की। अगले हमारे श्रोता है गांव बणवाला हनवंता फाजिल का पंजाब से विनोद मायल, सीमा, लक्षिता, यशिका। उनकी माँ साथ में विद्या देवी और उनका पूरा समस्त मायल परिवार। अगला पत्र है हमारे पास श्रीगंगानगर से बजरंग लाल शर्मा, जयपाल सिंह सिद्धू, जगमोहन सिंह गर्नेजा और मोहन लाल शर्मा का। अगले हमारे श्रोता है अलेका डबवाली से रूप सिंह लखोत्रा, करमजीत लखोत्रा, सरबजीत लखोत्रा, रानी सोनू और रजनी। अगला पत्र है हमारे पास फरमाइश करता है गांव घमंडिया से सूरतगढ़ से जगदीश ढूकिया, प्रमेला ढूकिया, ज्योति, शिवम, सरिता, सचिन, अमना, तमन्ना, सायना, विष्णु ढूकिया और उनके साथ है उनकी दोहिती ईवा धारणिया। अगले हमारे फरमाइश करता है हयात कॉलोनी अरिया बिहार से फैसल इमाम, मोहम्मद अफजल, मोहम्मद अकमल, नफीसा, प्रवीण, जुहानुल हुदा। अगले हमारे फरमाइश करता है चोटाला हरियाणा से दारा पंडित, संजय शर्मा और प्रियंका शर्मा। अगली फरमाइश करता है हमारे मंडी केसरी सिंहपुर से श्यामलाल राजपाल, जयपाल, संदीप कुमार और चिमनलाल। अगली फरमाइश करता है हमारे गोविंदपुरा सीकर राजस्थान से दातार सिंह शेखावत, संगीता कंवर, तुषार सिंह और रिंकी शेखावत। अगली फरमाइश करता है हमारे ग्राम पीपल रोड सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा और पूनम वर्मा और उनके साथ है ज्योति और शिवांश वर्मा। अगले हमारी फरमाइश करता है डोंगर गांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका गजभिये और उनके साथ है तन्मय गजभिये। युवाणी कार्यक्रम में आपके पसंद प्रोग्राम के लिए अगले फरमाइश करता है जिनकी फरमाइश आई है हमारे पास अमरपुरा से जालू खाट से जगजीत चंद्र प्रजापति, विमला प्रजापति, मोनू राजेंद्र और उनका समस्त परिवार। अगले हमारे फरमाइश करता है करमपुरा दिल्ली से अनिल मदान, कविता मदान, गौरव मानसी, वैन्या जनक, भावना मदान और सुमित मदान। तो लीजिए दोस्तों आपको सुनाते हैं कार्यक्रम में अगला फिल्मी गीत।

दोस्तों अगली फरमाइश है हमारे पास डब्बा वाले हरियाणा से, जेके बाकोलिया, सुनीता बाकोलिया, संजय।

दोस्तों, वाणी और विचार ये दोनों प्रोडक्ट ही हमारी खुद की कंपनी के हैं। इनकी क्वालिटी जितनी अच्छी होगी, वैल्यू ही उतनी ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी।

0: दोस्तों पत्रों, गीतों और प्रेरक विचारों से सजे सुंदर सफर में, फरमाइशों का रंग गीतों के संग आपकी पसंद प्रोग्राम में आपने हमारा साथ दिया, इसके लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। जिंदगी दोस्तों बहुत खूबसूरत है, बस अपनी नजरिए को, खूबसूरती को पहचानिए, समाज के प्रति जिम्मेदारी निभाइए और स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। इसी शुभकामना के साथ पूजा वर्मा को आज का युवाणी कार्यक्रम समाप्त करने की दीजिए इजाजत। आपसे विदा लेती हूँ, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।
1: अलग।

अभी युवा श्रोता सुन रहे थे अपना दैनिक कार्यक्रम युववाणी। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 326.7 नैनोमीटर यानी 918 किलो हर्ट्स पर, डीआरएम चैनल 909 किलो हर्ट्स पर, एफएम बैंड 100.1 मेगा हर्ट्स पर और मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एआईआर पर। संध्या के 6 बजे हैं कार्यक्रम। विवरण में सुनिए आज हमारे केंद्र से प्रसारण।

और अनुप्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों का विवरण और उनका प्रसारण समय। अब से कुछ ही देर बाद यानी 6:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सिराय की। 6:30 पर आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से हिंदी में प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे। तत्पश्चात 6:40 पर जिले की चिट्ठी और 6:45 पर राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी जयपुर से अनुप्रसारित किए जाएंगे। संध्या 7 चौपाल कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे पत्रोत्तर, व्हाट्सएप, ईमेल और पत्रों पर आधारित कार्यक्रम। इसके अलावा उपलब्ध होने पर बाजार भाव और मौसम की जानकारी भी दी जाएगी।

रात्रि 8 बजे संसद समीक्षा आकाशवाणी दिल्ली से रिले की जाएगी। स्पोर्ट्स कैन ये कार्यक्रम रात्रि 8:30 पर आकाशवाणी दिल्ली से रिले किया जाएगा। समाचार संध्या आप सुना करते हैं रात्रि 8:45 पर। सुगम संगीत कार्यक्रम में रात्रि 9:15 पर आप सुनेंगे चंद गजलें। चर्चा का विषय है ये कार्यक्रम रात्रि 9:30 पर आकाशवाणी दिल्ली से रिले किया जाएगा।

हिंदी फिल्मी गीतों का फेसबुक फरमाइशी विशेष कार्यक्रम मनभावन आप सुनेंगे रात्रि 10 बजे।

स्वतः हमारी प्रसारण सभा का समापन होता है रात्रि 11:10 पर। कल प्रातः 5:50 पर प्रातःकालीन समय में आप सुनेंगे कार्यक्रम वंदना 6:10 पर। चिंतन का समय रहेगा 6:45 और कार्यक्रम विवरण प्रातःकालीन समय में आप सुना करते हैं 6:50 पर। ये थे हमारे केंद्र से प्रसारित और अनुप्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों का विवरण और उनका प्रसारण समय। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं।

कलम दे धनी साईं कुंभन दास। कृष्ण जैकू सांवला, सांवल शाह, बेपरवा, किशन, कान्हा, पता नहीं कितने नावों दे नाल वरिया तू सड़ा वेंदारी है। उसे कृष्ण दे गुणगान करन आले भक्तां विच थे हन अठ वड्डे कवि, जिन्हां को बाद विच अष्ट छाप दे कवि सड़ा गया। इस अष्ट छाप दे कवियां विच सब तू पहले कवि थे साईं कुंभन दास जी। इन्हां दे बाद साईं सूरदास, साईं कृष्णदास, साईं परमानंद दास, साईं गोविंद स्वामी, साईं छीर स्वामी, साईं नंद दास ते साईं चतुर्भुज दास। ये सिलसिला, ये रीत 1448 ईस्वी तो ला के 1530 ईस्वी तक, यानी तकरीबन पूरे 100 साल चली। ये शुरुआत साईं कुंभन दास नाल शुरू थी है। साईं कुंभन दास का जन्म मथुरा जिले के गोवर्धन कस्बे के नाल जमुनावतो ना दे एक ग्रां विच खत्री खानदान, जैकू गोरवा खत्री आदे हन, 1448 ईस्वी चेत्र महीने दी कृष्ण पक्ष दी कारसी दी डिवार थी है। उना दे डाड के खानदान विच खेतरी दा कम ही रोजी रोटी दा जरिया है। खेतरी किसानी करना ते सुखी रहना, उना को अपने वड्डे वटेरा दी तरह इयो कम रास भी आ गया है। खास तौर ते उना दियां जमीना पारसोली ग्रां विच पौंदियां हन। किसानी दी आमदनी इत्ती ना होंदी है जो अपने घर आले आराम नाल गुजारा कर सकन। कदहीं मीह दा ना आवना, कदहीं मीह दा ज़्यादा आ वंजना, कदहीं बीज रहावना ते कदहीं जम्मण दी किल्लत करके हथ हमेशा तंग रहिंदा है। पर वल भी उन्हां दी खासियत है कि उन्हां अपनी लोड़ पूरी करन कीते किसी दे सामने अपना हथ नहीं फैलाया। उन्हां कीते तां कृष्ण साईं दी भक्ति हब कुछ है। भावें टब्बर बहु वड्डा हई ते खेती दी आमदनी नाल घर टब्बर को चलावना बहु औखा कम है, पर वह कस वध करके टब्बर दा गुजारा खेती नाल ही करेंदे रहे। उन्हां दे टब्बर जाल दे नाल 7 पुत्र, 7 नूहां ते एक विधवा भतरी जी भी है। साईं कुंभन दास कृष्ण भक्त चंगे ग्रस्त ते वड्डे त्यागी हन। महासंतोषी ते नेक बंदे दी खासियत ए भी है जो कृष्ण भगवान उन्हां दे सामने आप प्रकट थी के सखा भाव आले खेड खेडते हैं। उन्हां दे गुरु दाना महाप्रभु वल्लभाचार है। 1493 ईस्वी जदन वल्लभाचार थाई गोवर्धन आए हैं, तदा ही कुंभन दास ने उन्हें को अपना गुरु धार गिद्दा है। इस तो 15 वरिया पहलू श्री नाथ जी की मूर्ति प्रकट थी है। हुण गुरु की आग्ञा को सिर मत्ते रख के कुंभन दास श्री नाथ जी की सेवा करन लगे। पुष्टि मार्ग अव्वल तो श्री नाथ जी के मंदिर के कीर्तनकार का वड्डा अहुदा मिल वंजन ते भी उन्हें अपनी किसानी का कम नहीं छोड़ा ते मरदे दम तक गरीबी अपने टब्बर का पेट उसे नाल भरेंदे रहे। श्री नाथ जी के मंदिर साईं कुंभन दास जी नित नवे नवे पद गा गा के सुनावन लग पे। श्री नाथ साईं दे श्रृंगार दे पद बनावण ते गावण च कुंभन दास को बहु लज्जत ते चस आंदी आई। एक बार इवें थिया कि उन्होंने राधा कृष्ण युगल लीला दे पद गाए। इन्हां को सुन के गुरु वल्लभाचार्य जी ने खुश ते निहाल थी के आका तैकू तां निकुंज लीला दे रस दा हेलगी समझे ना। ये गाल सुन के कुंभन दास ने वलदा दिता कि साईं मैकू ता इसे रस की कुराड़ी लोड़ है। ये वो वेला है महाप्रभु वल्लभाचार्य दे पूरा थीवन पारू गोसाई विठल नाथ जी की सरप्रस्ती लीला गावन करन लगे। वड़े वड़े राजे महाराजे साईं कुंभन दास के दर्शन करन इच अपना भाग समझेंदे हन। वृंदावन के वड़े वड़े रसिक संत ते महात्मा भी उन्होंने नाल सत्संग करन की उम्मीद ला के बैठे रहते हैं। वड़ी गाल ए भी कि साईं ने हर मुश्किल ते पैसे दी थोड़ दे बाद भी अपनी भगवत भक्ति दे नेम ते यश ते कदहीं भी कोई हरफ नहीं आवन दिता। आखा वेंदा एक बार साईं विठल नाथ जी ने कुंभन दास जी को अपने नाल यात्रा इच द्वारका घिन वंजन दी उम्मीद रख

दमादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर, दमादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर, हो लाले मेरी।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सिराय की। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। संध्या के 6:30 होने वाले हैं। थोड़ी देर में आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से हिंदी में प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे। तत्पश्चात 6:40 पर जिले की चिट्ठी और 6:45 पर राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार अनुप्रसारित किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण आज भी कई बार बाधित हुई। रिजर्व बैंक का इस वित्त वर्ष में जीडीपी वृद्धि दर 6.7% रहने का अनुमान। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत राजस्थान में देश भर में सबसे अधिक

62,58,000 से ज्यादा किसानों का नामांकन। और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने संत रविदास के समता, सद्भावना और समरसता के संदेश को जन-जन तक पहुंचाने की बात कही। समाचारों के साथ मैं अल्पना राठौड़ और अब समाचार विस्तार से। लोकसभा ने आज बैंकर्स बुक्स एविडेंस विधेयक 2026 विपक्ष के हंगामे के बीच बिना चर्चा के पारित कर दिया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ये विधेयक सदन में पेश किया। इसका उद्देश्य बैंकों के रिकॉर्ड से जुड़े साक्ष्यों के कानून को मौजूदा डिजिटल बैंकिंग व्यवस्था के अनुरूप बनाना है। इसके जरिए बैंकिंग प्रणाली की वर्तमान जरूरतों के अनुसार कानूनी ढांचे को आधुनिक बनाया जाएगा। विधेयक में यह भी प्रावधान है कि बैंकों के रिकॉर्ड की इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल प्रति को अदालत में वैध और कानूनी साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जा सकेगा। लोकसभा की कार्यवाही विपक्ष के शोर शराबे के कारण कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले सदन

0: जरिए बैंकिंग प्रणाली की वर्तमान जरूरतों के अनुसार कानूनी ढांचे को आधुनिक बनाया जाएगा। विधेयक में यह भी प्रावधान है कि बैंकों के रिकॉर्ड की इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल प्रति को अदालत में वैध और कानूनी साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जा सकेगा। लोकसभा की कार्यवाही विपक्ष के शोर शराबे के कारण कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले सदन की कार्यवाही नीट सहित अन्य मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण आज भी बार बार बाधित हुई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया। उन्होंने सभी सदस्यों से संसद के सुचारू संचालन में सहयोग करने का आग्रह किया।
1: संसद चर्चा संवाद के लिए, आपके विचारों की अभिव्यक्ति के लिए प्रश्नकाल में महत्वपूर्ण प्रश्न पूछो, कई विभागों के महत्वपूर्ण प्रश्न है, और आप नियोजित तरीके से पोस्टरबाजी करके प्रदर्शन कर सदन की गरिमा को घटाना चाहते हैं।
0: राज्यसभा में पहले स्थगन के बाद सभापति सीपी राधाकृष्णन ने प्रश्नकाल शुरू किया। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि देश के विभिन्न हिस्सों में ड्राइविंग प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किए जाएंगे। सरकार 300 ऐसे संस्थानों को अनुमति दे चुकी है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने चालू वित्त वर्ष में देश की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 6.7% कर दिया है। इसके साथ ही मौद्रिक नीति समिति ने रेपो दर 5.25% पर यथावत रखने का फैसला किया है। आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने आज मौद्रिक नीति की घोषणा की। उन्होंने कहा कि मजबूत मांग के कारण देश की आर्थिक वृद्धि जारी है और भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बना हुआ है। चालू वित्त वर्ष की अप्रैल जून तिमाही में अर्थव्यवस्था का प्रदर्शन उम्मीद से बेहतर रहा। रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2026-2027 के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित महंगाई का अनुमान 5.1% से घटाकर 5% कर दिया है। श्री मल्होत्रा ने कहा कि हाल में महंगाई बढ़ने का मुख्य कारण खाद्य और ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी रही। पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण प्रमुख व्यापारिक मार्ग प्रभावित हो रहे हैं, जिससे वैश्विक अर्थव्यवस्था पर दबाव बना हुआ है। रिजर्व बैंक के गवर्नर ने कहा है कि देश में अगले वित्त वर्ष की शुरुआत में प्लास्टिक के नोट चलन में आ जाएंगे। मुंबई में संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा कि प्लास्टिक के नोट अधिक टिकाऊ होते हैं। इनके सुरक्षा फीचर्स और अन्य ब्यौरा जल्द साझा किया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि युवा छात्र प्रदर्शनकारियों को लेकर प्रतिक्रिया देते समय अधिकारियों को संयम बरतना चाहिए। अदालत ने कहा कि हिंसा को रोकने के लिए किसी भी प्रकार की हिंसक प्रतिक्रिया देने से स्थिति और बिगड़ जाएगी। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कॉकरोच जनता पार्टी के खिलाफ कार्रवाई की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए ये टिप्पणी की। याचिका में दिल्ली और देश के अन्य हिस्सों में सीजेपी की अगुवाई में हुए प्रदर्शनों के दौरान पत्थरबाजी के आरोप भी शामिल हैं। इसके लिए पार्टी की कथित जिम्मेदारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कोटा में खेल सुविधाओं के विस्तार को लेकर केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया से नई दिल्ली में मुलाकात की। श्री बिरला ने कोटा के खेल स्टेडियम में दो नए एथलेटिक्स ट्रैक बनाए जाने की आवश्यकता बताई। साथ ही कोटा को खेल प्रतिभाओं के सशक्त केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध करवाने पर भी चर्चा की। केंद्रीय खेल मंत्री ने श्री बिरला को कोटा में सुविधाओं के विकास के लिए हर संभव सहयोग देने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार खेल संस्कृति को बढ़ावा देने और देश भर में विश्व स्तरीय खेल सुविधाओं के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने प्रधानमंत्री आवास योजना लखपति दीदी और वीबी रामजी के तहत प्रदेश में हुए कामों की सराहना की है। श्री बागड़े ने आज लोकभवन में ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा बैठक ली। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों से गांवों के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए काम करने का आह्वान किया। राज्यपाल ने गांवों में हस्तकलाओं और कौशल विकास से जुड़े कामों के प्रशिक्षण के लिए समुचित व्यवस्था किए जाने की बात कही। श्री बागड़े ने मानसून के दौरान ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाने पर भी जोर दिया। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। प्रदेश में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का

0: व्यापक क्रियान्वयन हुआ है। राजस्थान में इस योजना में देश में सबसे ज्यादा 62,58,000 किसानों को नामांकित किया गया है। पीएम फसल बीमा योजना में साल 2025-2026 में राज्य की लगभग 2,82,00,000 हेक्टेयर सकल फसली क्षेत्र में 1,00,00,000 हेक्टेयर क्षेत्र को बीमित किया गया, जो राज्य के कुल फसली क्षेत्र का 36% है। योजना में चूरू में 77%, बाड़मेर में 69% और नागौर में 47% सकल फसली इलाके का बीमा कवरेज हुआ है। पिछले 5 सालों में किसानों की ओर से 4,650 करोड़ रुपए से ज्यादा का प्रीमियम हिस्सा जमा किया गया है, जो देश भर में सबसे अधिक है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों को सूखा, अकाल, ओलावृष्टि, कीटों और बीमारियों के कारण फसल को हुए नुकसान की वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है। योजना के तहत किसान, राज्य और केंद्र सरकार मिलकर प्रीमियम का भार वहन करते हैं। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों को देने के उद्देश्य से जोधपुर डिस्कॉम की ओर से कैंप लगाए जा रहे हैं। डिस्कॉम में सहायक अभियंता हेमेश जोशी ने बताया कि लोग इसका फायदा उठाकर बिजली के बिल को न्यूनतम कर सकते हैं।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत हर 3 किलोवाट तक अधिकतम 70,000 की सब्सिडी है। सरकार की यह मंशा है कि अधिक से अधिक घरों के ऊपर रूफटॉप सोलर लगाया जाए। जिन लोगों ने यह रूफटॉप सोलर लगा दिया, जिनको सब्सिडी मिल गई है, उनको सरकार द्वारा इंडक्शन कुकटॉप भी दिया जा रहा है, ताकि गैस से लोगों की जो उपलब्धता है वो खत्म हो गए और लोग लाइट की तरफ बढ़े, जिनके सोलर पे बिजली का जनरेशन हो रहा है। सरकार द्वारा और बैंक के द्वारा भी इसके अंदर सस्पेंड को लोन दिया जा रहा है। इस योजना का अधिक से अधिक लाभ ले।
0: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लाभार्थी नेमाराम ने बताया कि उनका बिजली का बिल शून्य हो गया है, साथ ही उन्हें सरकार की ओर से इंडक्शन कुकर की भी सौगात मिली है।
2: मैं नेमाराम प्रजापत शिवनगर पाली, मैंने पीएम सौर घर ऊर्जा का सोलर प्लांट लगाया, जिसमें मेरे को पहले 12,000 लाइट का बिल आता था, अब एक साल से मुझे 0% बिल आता है और 78,000 की सब्सिडी मिली और आज मुझे सोलर प्लांट का ये सोलर कूलर भी मिला है। जनता से आह्वान करूंगा आप भी सोलर ऊर्जा लगाएं।
0: संत रविदास जी की 650वीं जयंती के मौके पर प्रदेश में आज से समरसता संकल्प अभियान कलश वंदन यात्रा की शुरुआत हुई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर के एसएमएस स्टेडियम से यात्रा का शुभारंभ किया। इस मौके पर श्री शर्मा ने कहा कि ये यात्रा संत गुरु रविदास जी के सामाजिक समता, सद्भाव और मानवता के संदेश को जन जन तक पहुंचाने का माध्यम बनेगी। श्री शर्मा ने कहा कि संतों ने हमेशा समरसता का भाव दिखाया है और समाज को दिशा देने का काम किया है।
3: हमारी संस्कृति में हमेशा से रहा है कि हमारे संत, मुनि, महंत, ऋषि, महर्षियों का हमेशा सम्मान रहा है, क्योंकि इन्होंने हमारे राष्ट्र को दिशा देने का काम किया है और ये आज से नहीं, सदियों से है। हम ऐसे संतों का, मुनियों का, महंतों का सम्मान करते हैं। मित्रों, ये भारत की सनातन सांस्कृतिक चेतना, सामाजिक समरसता और राष्ट्रीय एकता का महापर्व है।
0: हनुमानगढ़ में आज महिला सुरक्षा हेल्पलाइन शुरू की गई है। बीकानेर रेंज की डीआईजी श्वेता धनकड़ ने इसका शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने महिलाओं से भी बातचीत की। उन्होंने कहा कि महिलाएं किसी भी तरह के उत्पीड़न, छेड़छाड़ होने पर हेल्पलाइन पर संपर्क कर तत्काल पुलिस सहायता प्राप्त कर सकती हैं।
4: पूरे प्रदेश भर में राज्य स्तरीय महिला सुरक्षा संकल्प कार्यक्रम मनाया जा रहा है, उसी कड़ी में आज पुलिस लाइन परिसर में और जिला हनुमानगढ़ में महिलाओं से वाद संवाद किया गया और साथ में जो एक नवाचार जो स्टार्ट किया गया है वो है महिला से सेफ्टी अभियान से रिलेटेड। हमने हेल्पलाइन नंबर सभी को बताया है, वो इस नंबर पे फोन करेंगी, मिस कॉल करेंगी, उनके पास वापिस में कॉल जाएगा, उनके पास कोई भी सूचना है वो फ्री होकर जो है बता सकती है पुलिस को और जहां भी वो बताएंगी उस पर कार्यवाही की जाएगी, उनका नाम और उनकी जो सूचना
0: है। और अब मौसम। पूर्वी राजस्थान और आसपास के क्षेत्र के ऊपर कल से नया परिसंचरण तंत्र बनने के आसार हैं। इससे मॉनसून के फिर से सक्रिय होने और बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी की संभावना है। 7 से 10 अगस्त के दौरान भरतपुर, कोटा, अजमेर और जयपुर संभाग के कुछ भागों में मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। वहीं कहीं कहीं भारी से बहुत भारी बारिश के भी आसार हैं। मौसम विभाग ने कल 17 जिलों में बरसात का येलो अलर्ट जारी किया है। इस बीच भरतपुर में आज भी घनघोर घटाएं छाई रहीं तो सुबह से ही कभी हल्की तो कभी तेज बरसात का दौर चला। नदबई, भुसावर

0: पैर और बयाना में भी कुछ देर झमाझम बारिश हुई। डीग में भी पिछले दो दिनों से रुक रुक कर कभी रिमझिम तो कभी तेज बारिश हो रही है। उधर सवाईमाधोपुर में रिमझिम बरसात से मौसम सुहावना बना हुआ है। हालांकि जल संसाधन विभाग के अनुसार इस मानसून सीजन में अब तक सामान्य से 10% कम बरसात हुई है। 5 जिलों में अत्यधिक पानी बरसा है, वहीं 19 जिलों में सामान्य और 17 जिलों में सामान्य से भी कम बरसात दर्ज की गई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण आज भी कई बार बाधित हुई। रिजर्व बैंक का इस वित्त वर्ष में जीडीपी वृद्धि दर 6.7% रहने का अनुमान। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत राजस्थान में देश भर में सबसे अधिक 62,58,000 से ज्यादा किसानों का नामांकन। और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने संत रविदास के समता, सद्भावना और समरसता के संदेश को जन जन तक पहुंचाने की बात कही। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप माधुरी वशिष्ठ से दौसा जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख आकाशवाणी समाचार एकांश जयपुर की ओर से तैयार किया गया है। राजधानी जयपुर से लगभग 55 किलोमीटर दूर स्थित दौसा शहर का एक नाम देवनगरी भी है। आभानेरी स्थित चांद बावड़ी दौसा जिले की आभा को बढ़ाती है और पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। वहीं चांद बावड़ी परिसर में मौजूद हर्षद माता का मंदिर अपनी स्थापत्य कला का एक अनूठा नमूना है। पहाड़ियों और जल स्रोतों से भरपूर झाजीरामपुर मंदिरों के लिए जाना जाता है। वहीं जिले में स्थित मेहंदीपुर बालाजी आस्था का प्रमुख केंद्र है। इन दिनों मॉनसून की बारिश के बाद ये पर्यटन स्थल लोगों का ध्यान लगातार आकर्षित कर रहे हैं। एक ओर मौसम सुहावना हो गया है, वहीं दूसरी ओर किसानों ने अपने खेतों में खरीफ फसल की बुवाई शुरू कर दी है। पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत ने दौसा में विभागीय योजनाओं की समीक्षा की और अधिकारियों को योजनाओं का समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बीते दिनों पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत दौसा आए। उन्होंने विभागीय योजनाओं की समीक्षा की और अधिकारियों को योजनाओं का समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कार्य में लापरवाही बरतने पर 2 अधिकारियों को निलंबित भी किया। मंत्री ने मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना, सेक्स सॉर्टेड सीमन योजना और खुरपका मुंहपका टीकाकरण अभियान की समीक्षा की। उन्होंने गोवंश संरक्षण और पशुपालकों के हितों से जुड़ी योजनाओं में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरतने की चेतावनी दी। ग्रामीण सेवा शिविर जिले में आमजन के लिए राहत का माध्यम बना। पंचायत समिति रामगढ़ पचवारा की ग्राम पंचायत निजामपुरा में लगाए गए शिविर के दौरान स्वामित्व योजना के तहत अरण्यकला गांव के लाभार्थियों को उनके पुश्तैनी मकानों के स्वामित्व संबंधी दस्तावेज और पट्टे प्रदान किए गए। लाभार्थियों ने कहा कि अब उन्हें अपने मकान का वैध स्वामित्व प्रमाण मिलने से बैंक ऋण सहित विभिन्न सरकारी सुविधाओं का लाभ लेने में आसानी होगी। शिक्षा और पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर सिकराय पंचायत समिति की मानपुर, पांचोली और ठीकरिया ग्राम पंचायत पहुंचे। उन्होंने वहां औचक निरीक्षण कर सफाई व्यवस्था का जायजा लिया। ग्रामीणों से बातचीत के दौरान मिली शिकायतों पर उन्होंने संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए। श्री दिलावर ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। उप मुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा ने महवा के समलेटी गांव में आयुर्वेद चिकित्सा महाविद्यालय और अस्पताल का भूमि पूजन और शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने महवा केंद्रीय बस स्टैंड के नवीनीकरण और सौंदर्यीकरण कामों का भी लोकार्पण किया। श्री बैरवा ने कहा कि आयुर्वेद महाविद्यालय बनने से क्षेत्र में शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार होगा तथा स्थानीय लोगों को रोजगार और विकास के नए अवसर मिलेंगे। उन्होंने स्वस्थ जीवन शैली अपनाने, योग को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने और आयुष सेवाओं का अधिक से अधिक लाभ लेने का आह्वान किया। जिले में आयोजित रोजगार उत्सव में बड़ी संख्या में नवचयनित कार्मिकों को नियुक्ति पत्र और स्वागत किट वितरित किए गए। ये कार्यक्रम पचपदरा में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह से वर्चुअल माध्यम से जुड़ा रहा, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कार्यक्रम में प्रभारी मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने कहा कि

0: देश में आधारभूत संरचना, उद्योग, पेयजल और रोजगार के क्षेत्र में तेजी से काम हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि ईसरदा पेयजल परियोजना पूरी होने के बाद दौसा जिले को भी इसका लाभ मिलेगा। जिला प्रभारी सचिव पीसी किशन ने नगर परिषद परिसर में आयोजित शहरी सेवा शिविर का निरीक्षण किया। उन्होंने शिविर में लाभार्थियों को पट्टे, नामांतरण पत्र, भवन निर्माण स्वीकृति और अन्य दस्तावेज वितरित किए। उन्होंने कहा कि शहरी सेवा शिविरों का उद्देश्य विभिन्न सरकारी सेवाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध कराना और आमजन की समस्याओं का तुरंत समाधान करना है। प्रभारी सचिव ने पट्टा प्रक्रिया को और अधिक सरल बनाने तथा शिविरों में ही अधिक से अधिक प्रकरणों का निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इसी के साथ दौसा जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर पेश है प्रादेशिक समाचार। पहली आजरी खास खास खबरां। संसद रा दोनों सदनारी कार्यवाही न्यारा न्यारा मुद्दा माथे विपखरा हंगामा रे चालता आज भी कई बगत रोकनी पड़ी। रिजर्व बैंक रो इन माली बरस माए जीडीपी बढ़ोतरी दर 6.7% रहबारो अंदाजो। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना रे तहत राजस्थान माए देश भर माए सबू बत्ता 62,58,000 कास्कारा रो नामांकन। और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा संत रविदास रा समता, सद्भावना और समरसता रा संदेश ने लोगा ताई पुगाबारी बात कही। समाचार आ रहे सागे, मैं रचना पारिक और अब समाचार विगतवार। लोकसभा में आज बैंकर्स बुक एविडेंस विधेयक 2026 विपक्ष रा हंगामा रे बीच बिना चर्चा रे पारित कर दियो। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ओ विधेयक संसद में सदन में पेश करियो। एंड्रो लगस बैंकारा रिकॉर्ड सु जुड़िया साक्षारा कानून ने मौजूदा डिजिटल बैंकिंग व्यवस्था रे मुजब बनानो है। एंड्रे मार्फत बैंकिंग प्रणाली री हाल री जरूरत रे मुजब कानूनी ढांचा ने आधुनिक बनायो जावेला। विधेयक माए ओ भी प्रावधान है के बैंकारा रिकॉर्डरी इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल प्रति ने अदालत माए वैध और कानूनी साक्षीरा रूप माए मान्यो जावेला। लोकसभा री कार्यवाही विपखरा शोर शराबारी वजहों काल तई रे वास्ते रोक दी गई। इनसु पहली सदन री कार्यवाही नीट समेत दूजा मुद्दा माथे विपखरा हंगामा रे चालता आज भी बार बार रुकनी पड़ी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला प्रश्नकाल शुरू कर बारी कोशिश करिया, वणा सगला सदस्याओं संसद ने चोखी तरीकाओं चलाबा माए इमदाद कर बारी अरज करी।
2: संसद चर्चा संवाद के लिए, आपके विचारों की अभिव्यक्ति के लिए प्रश्नकाल में महत्वपूर्ण प्रश्न पूछो, कई विभागों के महत्वपूर्ण प्रश्न है और आप नियोजित तरीके से पोस्टरबाजी करके प्रदर्शन कर सदन की गरिमा को घटाना चाहते हैं।
1: राज्यसभा में पहला स्थगन रे पछे सभापति सीपी राधाकृष्णन प्रश्नकाल शुरू करिया। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी कया के देश रा न्यारा न्यारा हल्का माए ड्राइविंग प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करिया जावेला। सरकार 300 इन भातरा संस्थाना ने मंजूरी दे चुकी है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई चालू माली बरस माए देश री माली दर रो अनुमान बढ़ार 6.7% कर दियो है। इनरे सागई मौद्रिक नीति समिति रेपो दर 5.25% ज्यों की त्यों राखबारो फैसलो करियो है। आरबीआई रा गवर्नर संजय मल्होत्रा आज मौद्रिक नीति रो ऐलान करियो। वे कया के 32 मांगरी वजह सु देश री आर्थिक वृद्धि जारी है। भारत दुनिया री सबू तेजी सु बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बनियो वियो है। चालू माली बरस री अप्रैल जून तिमाही माए अर्थव्यवस्था रो प्रदर्शन उम्मीद सु बत्तो रियो। रिजर्व बैंक माली बरस 2026-27 खातर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक माथे आधारित महंगाई रो अंदाजो 5.1% सु घटार 5% कर दियो। श्री मल्होत्रा कया के हाल ताई महंगाई बदबारो खास कारण खाबा और ईंधन री कीमता माए बढ़ोतरी है। पश्चिमी एशिया माए चाल री लड़ाई री वजह सु व्यापार रा खास

0: रास्ता मां थे घणो असर पड़ियो है जिनसू दुनिया भर मां थे माली दबाव पड़ियो है रिजर्व बैंक रा गवर्नर कया के देश माए आवता माली बरस री शुरुआत माए प्लास्टिक रा नोट चलन माए आ जावेला मुंबई माए संवाददाता सम्मेलन माए वणा कया के प्लास्टिक रा नोट बत्ता टिकाऊ होवे है सर्वोच्च न्यायालय कयो के युवा छात्र प्रदर्शनकारिया ने लेर आपरा विचार राखता टेम अहलकारा ने संयम बरतनो चाहिजे अदालत कयो के हिंसा ने रोकबा खातर किणी भी भांतरी हिंसक प्रतिक्रिया दे बासू हालात बिगड़ सके है मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांतरी अगुवाई वाली पीठ कॉकरोच जनता पार्टी रे खिलाफ कार्यवाही री मांग वाली याचिका माथे सुनवाई करता थका आ टिप्पणी करी याचिका माए दिल्ली और देशरा दूजा हलका माए सीजेपी री अगुवाई माए प्रदर्शन रे दौरान पत्थरबाजी रा आरोप भी भेला है इन खातर पार्टी री कथित जिम्मेदारी रे खिलाफ कार्यवाही री मांग करी गई है लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कोटा माए खेल सुविधावा ने बढ़ावा खातर केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया सु नई दिल्ली माए मुलाकात करी श्री बिरला कोटा रा खेल स्टेडियम माए दो नया एथलेटिक्स ट्रैक बना जाबा माते जरूरत बताई साथ ही कोटा ने खेल प्रतिभावां रा मजबूत केंद्र रा रूप माए बढ़ावा खातर जरूरी सुविधा देबा माते चर्चा करी केंद्रीय खेल मंत्री श्री बिरला ने कोटा माए सुविधावां ने बढ़ावा खातर इमदाद दे बारी आस बंधाई वे कया के केंद्र सरकार खेल संस्कृति ने बढ़ावो देबा और देश भर माए विश्व स्तरीय खेल सुविधा रा विकास खातर प्रतिबद्ध है ये समाचार आप आकाशवाणी राजयपुर अजमेर केंद्रों सुन रिया हो प्रदेश में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जोर शोरों चल रही है राजस्थान में इन योजना में देश में सबू बत्ता 62,58,000 कासकाना ने नामांकित करियो गयो है पीएम फसल बीमा योजना में बरस 2025-26 में राज्य री करीब 2,82,00,000 हेक्टर सफल फसली हलका माए 1,00,00,000 हलको बीमित करियो गयो है जो राज्य रा कुल फसली हलका रो 36% है योजना माए चूरू माए 77 बाड़मेर माए 69 और नागौर माए 47% सकल फसली इलाका रो बीमो कवरेज वियो है लारला 5 साल माए कासकारा रिकानी हु 4,650 करोड़ रुपया सु बत्ता रो प्रीमियम हिस्सो जमा करायो गयो है जो देश भर माए सबू बत्तो है ध्यान जोग है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कासकारा ने सूखा अकाल ओला पड़बा कीट और बीमारियां री वजह सु फसल ने व्या नुकसान ने माली सुरक्षा देवे है योजना रे तहत कासकार राज्य और केंद्र सरकार मिलर प्रीमियम रो भाव उठावे है प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना री जानकारी बत्ताऊ बत्ता लोगां ने देबारा लगा सु जोधपुर डिस्कॉमरी कानियों कैंप लगाया जा रिया है डिस्कॉमरा सहायक अभियंता हेमेश जोशी बताया के लोग इनरो फायदो उठार बिजली रा बिल माए कमी ला सके है
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत हर 3 किलोवाट तक अधिकतम 70,000 की सब्सिडी है सरकार की यह मंशा है कि अधिक से अधिक घरों के ऊपर रूफटॉप सोलर लगाया जाए जिन लोगों ने यह रूफटॉप सोलर लगा दिया जिनको सब्सिडी मिल गई है उनको सरकार द्वारा इंडक्शन कुकटॉप भी दिया जा रहा है ताकि गैस से लोगों की जो उपलब्धता है वो खत्म हो गए और लोग लाइट की तरफ बढ़े जिनके सोलर से बिजली का जनरेशन हो रहा है सरकार द्वारा और बैंक के द्वारा भी इसके अंदर सस्पेंड को लोन दिया जा रहा है योजना का अधिक से अधिक लाभ ले
0: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना रा लाभार्थी नेमाराम बतायो के वारो बिजली रो बिल शून्य वेग्यो है साथ ही वाने सरकारी कान्यो इंडक्शन कुकर दियो गयो
2: मैं नेमाराम प्रजापत शिव नगर पाली मैंने पीएम सौर घर ऊर्जा का सोलर प्लांट लगाया जिसमें मेरे को पहले 12,000 लाइट का बिल आता था अब एक साल से मुझे 0% बिल आता है और 78,000 की सब्सिडी मिली और आज मुझे सोलर प्लांट का ये सोलर कूलर भी मिला है जनता से आह्वान करूंगा आप इस सोलर ऊर्जा लगाएं
0: संत रविदास जी री 650वीं जयंती रे मौके प्रदेश माए आज समरसता संकल्प अभियान कलश वंदन यात्रा री शुरुआत हुई मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जयपुर रा एसएमएस स्टेडियम सु यात्रा री शुरुआत करी इन मौके श्री शर्मा कया के आ यात्रा संत गुरु रविदास जी रा सामाजिक समता

0: भाव और मानवता रा संदेश ने लोगा ताई पुगाबा रो जरियो बनेला वणा कया के संत हमेशा समरसता रो भाव दिखाबा और समाज ने दिशा देबा रो काम करियो है
1: हमारी संस्कृति में हमेशा से रहा है कि हमारे संत मुनि महंत ऋषि महर्षियों का हमेशा सम्मान रहा है क्योंकि इन्होंने हमारे राष्ट्र को दिशा देने का काम किया है और ये आज से नहीं सदियों से है हम ऐसे संतों का मुनियों का महंतों का सम्मान करते हैं मित्रों ये भारत की सनातन सांस्कृतिक चेतना सामाजिक समरसता और राष्ट्रीय एकता का महापर्व है
0: प्रदेश की पहली महिला सुरक्षा हेल्पलाइन हनुमानगढ़ माय शुरू करी गई बीकानेर रेंजरी डीआईजी श्वेता धनकड़ इनरी शुरुआत करी इन दौरान वणा महिला वासु बातचीत करी वे कया कि किणी भी भांतरा उत्पीड़न और छेड़छाड़ हुबा माथे हेल्पलाइन माथे संपर्क कर तुरंत पुलिस री इमदाद हासिल करी जा सके है
2: पूरे प्रदेश भर में राज्य स्तरीय महिला सुरक्षा संकल्प कार्यक्रम मनाया जा रहा है उसी कड़ी में आज पुलिस लाइन परिसर में और जिला हनुमानगढ़ में महिलाओं से वाद संवाद किया गया और साथ में जो एक नवाचार जो स्टार्ट किया गया है वो है महिला से सेफ्टी अभियान से रिलेटेड हमने हेल्पलाइन नंबर सभी को बताया है वो इस नंबर पे फोन करेंगी मिस कॉल करेंगी उनके पास वापिस में कॉल जाएगा उनके पास कोई भी सूचना है वो फ्री होकर जो है बता सकती है पुलिस को और जहां भी वो बताएंगी उस पर कार्यवाही की जाएगी उनका नाम और उनकी जो सूचना है गोपनीय रखें
0: पूर्वी राजस्थान और आरएसआरए रा हलकारे ऊपर कालसून नुवो परिसंचरण तंत्र बनबारा आसार है इनसु मानसून रे फेरू सक्रिय होबा और तेज बारिश होबारो अंदाजो है 7-10 अगस्त रे दौरान भरतपुर कोटा अजमेर और जयपुर संभागरा कुछ एक हल्का माए हल्की सु तेज बारिश वह सके है वठीने कठे कठे भारी और घटा टोप में बरस बारा आसार भी है मौसम महक मो काल 17 जिला माए बरसात रो येलो अलर्ट जारी करियो है इन बीच आज भरतपुर माए बादला छाया रिया अठे सुमारा सुही कठे कठे हल्की तो कठे तेज बरसात रो दौड़ चालियो नदबई भुसावर बैर और बयाना माए भी थोड़ी देर झमाझम में बरसियो डीग माए भी लारला दो दुनाओं रुक रुक कर में बरस रियो है वठीने सवाई माधोपुर माए झिरमिर में बरस बासु मौसम सुहावणो वैग्यो हालांकि जल संसाधन महकमा रे मुजब इन मानसून सीजन माए हाल ताई सामान्य सु 10% कम बरसात भी है जत के 5 जिला माए 32 में बरसियो वटे ही 19 जिला माए सामान्य और 17 जिला माए सामान्य सु कम में बरसियो है और अब आखिर माए खास खबरां एक कर फेरूं संसद रा दोनों सदनारी कार्यवाही न्यारा न्यारा मुद्दा माथे विपक्ष रा हंगामा रे चलता आज भी कई बगत रोकनी पड़ी रिजर्व बैंक रो इन माली बरस माए जीडीपी बढ़ोतरी दर 6.7% रहबारो अंदाजो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना रे तहत राजस्थान माए देश भर माए सबू बत्ता 62,58,000 कास्कारा रो नामांकन और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा संत रविदास रा समता सद्भावना और समरसता रा संदेश ने लोगा ताई पुगाबारी बात कही इंद्र सागी प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो वियो महाको आगलो समाचार बुलेटिन काल सुमारे 9 बजे हिंदी माए प्रसारित करियो जावेला नमस्कार
3: हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलो हर्ट्ज पर एफएम एंड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर डीआरएम चैनल 909 किलो हर्ट्ज पर और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी आप हमारा ये प्रसारण सुन सकते हैं संध्या के 7 बजे हैं किसान भाई सुने अपना दैनिक कार्यक्रम चौपाल

राम राम सा कार्यक्रम चौपाल सुनिए सगळ्या परिवाराने आज भाई रामेश्वर का घणान घणा राम राम, मोकळा मोकळा राम राम। भाई लोगो देखा नहीं तो अब मौसम जो को है वो तब्दीली पर है, और देखा तो अब चौमासो जो को है वो

लगभग आपने यहाँ लगा है के आ रही है। और अब देखा नहीं तो अब जिकिया झिरमिर झिरमिर जिकी छांटिया पड़ ला रही है, जो को मेह बरसन ला रही है। और इंगमा के है कि अब थोड़ा सो आलो शिलो जो को मौसम है, अपने ध्यान रखने की जरूरत है। और वो मौसम बदल तो जो को है वो अपने स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक भी हो सके जी आप लापरवाही करा तो। इन वास्ते आपने जो को खान पान है, आपने जो को ओढ़नो पेरनो है, बिंगो पूरा ख्याल रखना है। अपना पशुधन को भी ख्याल रखना है, अपना जगह छोटा टबरी है बंगो भी ख्याल रखना है। पर आप सदा की भांति चौपाल की शुरुआत करिए करें एक भजन शू, पछे आप आज थरा जका कागज मेल है भी शामिल करांगा सा। लियो पहला सुनो थे हो भजन।

0: नमस्कार किसान भाइयों, भारत में सर्वप्रथम और आज भी सर्वश्रेष्ठ असली भरोसेमंद मोनोजिंक बनाने वाली 48 वर्षों से किसानों की खुशहाली हेतु समर्पित दयान फर्टिलाइजर्स अब धान उत्पादकों किसान भाइयों के लिए लेकर आई है धान प्रधान और धरती गोल्ड। अधिक पैदावार और उत्तम क्वालिटी के लिए एक बार जरूर प्रयोग करें और पाएं कम कीमत में ज्यादा मुनाफा, क्योंकि दयाल का है सपना, खुशहाल हो हर किसान अपना।
1: बिल्कुल सर, थाने गीत सुनायो सतीश देड़ू की आवाज गवा आपने ती संदेश जका है व्हाट्सएप पर बे भी भाई लोगों आ रहे हैं, क्योंकि आज बुधवार को दिन है और बुधवार के दिन आपने की है कि प्रतिक्रिया जगह कागज मेल संदेश जका है भी आप शामिल करे करा और आज भी भाई लोग जका व्हाट्सएप संदेश है, मेल जका है और कागज जका है भी पुगड़ है। तो शेषु पहली बात करा आप पहले संदेश की जो आपने व्हाट्सएप पर पुग्यू है, वो लिखियो है भूपेंद्र मिशन परमजोत मिशन और बेबी जानविका सूरतगढ़ छू। ये लिखा है कि चौपाल पेश करने वाला ने महारा कानी छू घनी घनी रामा श्यामा और पिछलो कार्यक्रम पत्र उत्र सुनियो बीमा लोक भजन लोक गीत और प्रोग्राम पेश करना जो अंदाज है वो बड़ो पसंद आयो और गीतारो गजरो में जका थे लोक भजन लोक गीत सुनाया बेबी बड़ा पसंद आया। बाकी दिना में चौपाल में कृषि संबंधी जी की जानकारी है, बाजार भाव है, मौसम संबंधी जी की जानकारी है, वा मने पहला शू मिल जाए तो बिंगो मैं फायदो भी उठावा और इंग सागे सागे कथे आपने फसलों बुआई गो निराई गुड़ाई गो दवाइयों के छिड़काव के बारे में जी की जानकारियां दियो बे भी मने बढ़िया लगे सा और बंगो फायदो उठावा मैं। आपने भूपेंद्र मिशन जी आगे भी लिखे है कि बरसात का मौसम में फसलों में कह लागन वाली जी की बीमारियाँ हैं और बाकी रोकथाम के बारे में जी की जानकारी थे दो तो भी आज के गाँवगी चौपाल गवा कृषि संबंधी जी की जानकारी है बड़ी अच्छे इनके भाव से और यहाँ केस कहाँ के बड़े चाव से सुना है और कम पानी और बरसात का भाव में कह फसल जी की है भी मुरझान ला रही है तो इन बारे में जे अपने खाद पानी के प्रयोग के बारे में भी आपने बताओ थे तो आप बहुत बढ़िया बात है। तो आप बड़ी लंबी चौड़ी प्रतिक्रिया लिखी है भूपेंद्र मिशन जी और बिया ये नितवंद्या श्रोता है तो आंगो मोकड़ो सारो धन्यवाद देवा कि कार्यक्रम सुनता रहे और सुन के फायदो जरूर उठाता रहे क्योंकि आपने चौपालगमा मिशन साहब खेती बाड़ी की जी की बातें हैं, घर गवाड़ की जी की बातें हैं और पशुधन के बारे में जी की बातें हैं बे कही जाए और देखा नहीं तो अब आपने जी की खेती है बा पुराना ढर्राऊँ आपने नया जो तरीको है आधुनिक जो तरीको है बिंग कानी पाउंडो भर रखी है तो बिंगी जी की जानकारियाँ हैं भी अपना चौपालगमा अट्ठे सुन दी जाए और भी पसंद आवे तो इन वास्ते थारो मोकड़ो सारो धन्यवाद सा। वो संदेश पुगे अपने थी हनुमानगढ़ टाउन से लिखने वाला है रजाक मोहम्मद शमीम बेगम इमरान खान और इरफान खान आरण मिल के लिखे है। ये लिखा गया प्रोग्राम पेश करने वाला हमारा कानी शू घनी घनी रामा श्यामा तो थाने भी मोकली मोकली रामा श्यामा और आगे भी लिखे है खान साहब के चौपाल के मैं बारम्बार सुना और बड़ो फूट रो लग ऐसा कि हर बार बड़ो फूट रो लागे सा और गीता रो गजरो में कह जगह थे गीत भजन सुनो बेबी बड़ा पसंद आवे और मौसम को जो हाल है बाजार भाव है बेबी बढ़िया लागे सा। बिल्कुल आपने कार्यक्रम में थाने गीत भजन है

काफी अच्छा लगा और गीता गजरो जो को कार्यक्रम है वो थाना अच्छो लगा तेवी वास्ते थारो मोकड़ो सारो धन्यवाद। और रही बात मौसम का हाल की और बाजार भाव की, तो बे के है कि हमारती पुख्ता हो जाए ना तो बे थरती करते हो पुख्ता और बिंगो फायदो भी अपना जब किसान भाई लोग है बे सुने और बिंगो फायदो अपने उठावे भी है। वो अपने संदेश पुग्यो है और लिखने वाला है अमरपुरा जालू खाड़ से नितवंदिया श्रोता है जगदीश चंद्र प्रजापति, बिमला प्रजापति, हरीश चंद्र पुनिया, मोनू प्रजापति, राजेंद्र प्रजापति। और ये लिखा है कि 29 तारीख ने कह चौपाल में कह मारो संदेश शामिल करो तो ई वास्ते कह थारो मोकड़ो सारो धन्यवाद और मेरे का कार्यक्रम जो है वो रोजाना सुना तो थारो भी मोकड़ो सारो धन्यवाद सा कार्यक्रम रोजाना सुनो। और पिछले कार्यक्रम में थारो क्या अपने संदेश जो को शामिल हो गया तो आपने तो काम ही वही है ना जगदीश जी के जका भाई लोग का संदेश है कागज है मेल है बे मारते पूछ जाए तो बन ऐसा में कतई लेट कौन करानी शामिल कर देवा है ना। वो संदेश पूछ तो करियो है नितवंदिया श्रोता है चक 15 PSU और लिखने वाला है सरबजीत सिंह जोशन, सरबजीत कौर जोशन, गुरमन सिंह जोशन, आदर्श पाल सिंह जोशन मेलबर्न, रोबिन सिंह जोशन वेंकुवर। और आ लिखियो है कि पेड़ लगाओ प्रकृति बचाओ, बिल्कुल बड़ी स्याणी बात लिखी है और सह उपेली ऊपरी लिखी है। और आगे लिखे गए सह उपेली पत्र उत्तर पेश करता भाई रामेश्वर ने कमारा कहानी सुन गणिन गणी रामा श्यामा कबूल करो सा बात लिखी है तो बिल्कुल सा कबूल है, कबूल है थरी रामा श्यामा मारते ही पुगती होगी सा। और मारा कहानी सु भी थाने मोगड़ी सारी घनी सारी रामा श्यामा। और आगे लिखे जोशन साहब का चौपाल का कमी नियमित श्रोता और प्रोग्राम सुना जिया गीतारो गजरो है इंगमा नाटक जका है बाजार भाव है खेती की जी की बातें हैं और भजन जका है बेमाने बड़ा दाया वै और मायड़ भाषा को जो प्रोग्राम है बड़ो फूट रो है शांत रो है सा। तो बिल्कुल आंगो भी मोकलो सारो धन्यवाद देवा कह पंजाबी भाषा हो गए भी बिंग बावजूद भी थाने जी की अपनी मारवाड़ी बागड़ी भाषा तना अच्छी लगन आ रही है तो बिया देखा नहीं जोशन साहब तो अपने भाषा को तो की कोई फेरबदल को नहीं है ना भाषा चाहे किसी भी है अपने आसा पासे की चाहे भाषा है अपने आस पड़ोस की भाषा है और बे भाषा सारी अच्छी है लेकिन जकी भाषा में आपन कोई बात समझ और बा भाषा अगर थाने प्यारी लगा तो वास्ते थारो मोकड़ो सारो धन्यवाद कार्यक्रम सुनता रहे करो थे भी। चक 58 NP रायसनगर से अपने ती संदेश मांडिया सुल्तान राम मलखट सरस्वती देवी हरवंश लाल बनवारी लाल गोपी राम ललित नरेंद्र और मीनाक्षी। ये लिखा है कि राम राम जी चौपाल गया अंतर्गत कथे जो को कार्यक्रम ले रहा हो बड़ो काबिली तारीफ है कई माँ नाटक है झलकी गीत भजन बाजार भाव मौसम गीज की जानकारी है भाभी अच्छी लगे और प्रोग्राम दो आवाज हम पेश करो ना तो वो मैंने बड़ो पसंद आवे। और मैंने कह देसी सप्रे तैयार करने की जिया दतूरो तुम्बा नीम नीम पत्ती जकी है सरसों की खल है गोमूत्र है लस्सी है गुड़ है हल्दी है और लगभग कह 100 लीटर यानी आधो ड्रम सप्रे जो है वो करा तो बीस के का अपने मूंग में या फिर ग्वार में छिड़का तो बिल्कुल आपने किए है कि अब जैविक तरीका जो है वे अपनाना चाहिए बहुत अच्छी बात लिखी है कि धीरे धीरे अपना रासायनिक जो को तरीका है वो खेती के लिए भी नुकसानदायक है अपनी भूमि के लिए भी नुकसानदायक है और सहसु बड़ी बात तो है कि अपने प्रकृति के लिए भी नुकसानदायक है ना। अब देखा नहीं कि धीरे धीरे अपनी जो माटी है अपनी जो भूमि है वह कल्डी होने ला रही है कई जगह तो उसर होने ला रही है एक समंग वहाँ की है कि आप रासायनिक तरीके से खेती जी की है वह बढ़ोतरी ले गए लेस का लेकिन अब धीरे धीरे की है कि आपने भूमि जी की है वह नाश होने आ रही है तो बिंग वहाँ की है कि उपजाऊपन जो को है वो खत्म होने आ रही है तो अब जो को जैविक तरीको है वो अपना से तो बहुत बढ़िया रही सी आने वाली पीढ़ी जी की है वह बची रहेगी और पर्यावरण जो है वो भी बच्चों रहेगा सा। इतनी अच्छी जानकारी लिखी है मलकट साहब तो थारो देवा मोकड़ो सारो धन्यवाद कार्यक्रम थे भी सुनता रहे करो। सुरतगढ़ से लेखराज पवन कुमार रवि कुमार सुरजीत सिंह रणवीर और आ लिखियो है कि चौपाल कार्यक्रम बड़ो पसंद आ रहा है और आ लिखियो कठू है सुरतगढ़ से ही लिखियो है ना बिल्कुल। और आ लिखियो है कि चौपाल में कह जिकी थी बातम तो भी बड़ी पसंद आ रही है और चौपाल जो कि हमारा पसंदीदा कार्यक्रम है बिल्कुल थारो भी मोकड़ो सारो धनवा सा। वो संदेश आपने ती पूग तो हुए है और आ लिखे कि घनी घनी रामा राम बिल्कुल थाने भी मोकली सारी रामा श्यामा। और एक कहे कि मेरो नाम जो को है वो कहे लवली फूलिया है हाँ जी और कह मैं सुरतगढ़ शहर गए जिला श्री गंगानगर से हूँ बिल्कुल मैं भी आपने सुरतगढ़ से ही बोला सा है ना। और थे आपने सुरतगढ़ का माई हो तो आपने यहाँ मानस कहाँ के निड़ते रही लेकिन आगा लिखे है कि मारी के एक राय है कि चौपाल संबंधी है कह मे चौपाल ने कह रोमांचक का चौपाल ना और ज़्यादा रोमांचक बनाओ।

जियाँ के राजस्थानी कल्चर के बारे में बात करो, राजस्थान के गाँव के बारे में बात करो, और भट्ठे के लोगों को जो रहन सहन है बिंग बारे में बात करो, ताकि आज की युवा पीढ़ी है इशू सीख सके और बिना आपने प्रयोग में आपके जीवन में ला सके। बिल्कुल बड़ी अच्छी और सुनी बात लिखी है फूलिया जी, कि आपने जो को जीवन है नी वो आपने क्या का उड़ावा शू पेरना शू आपने खान पान शू आपने रहन सहन शू जुड़ेड़ो है, आपनी जी की संस्कृति है वह आपने जीवन का सागर जुड़ेड़ी है, आपने रहन सहन का सागर जुड़ेड़ी है, और आपनों जो को संस्कृति है बिना आगे बढ़ावा सारू की है कि आपा बिया तो चौपाल गाँव देखो सा आपनों राजस्थानी कार्यक्रम ही है, इनमें आपा खेत क्यारी की बातें के सागर सागर गाँव गुआड़ की जी की बातें हैं, बे बिक्रे करा और घर बीती जी की बातें हैं, पर बीती जी की बातें हैं, बंग माँ की है कि अपनी संस्कृति के बारे में भी अठे जानकारी जी की है कई बार अठू प्रसारित कर देवा, और बिया भी थे जी की राय दी है ना बा हूँ एक कागजी पर मांड ली और आपने जगह मोटर अधिकारी है तो बंग सामने जरूर रखा कि एक शो आपने स्पेशल कार्यक्रम रखा कि जगह में आपनों राजस्थानी कल्चर के बारे में ही सिर्फ बात हुए है ना, इतनी अच्छी जानकारी लिखी है वास्ते थारो मोगलो सारा धन्यवाद, कार्यक्रम थे भी सुनता रहे करो और आगे भी थरे संदेश की जिकी है वह उड़ीक रहेगी सा। गाम घमंडिया शिव अपना नितबंधिया श्रोता है जगदीश ढूकिया, प्रमिला ढूकिया, ज्योति शिवम ढूकिया, सरिता सचिन, अमन्ना तमन्ना, सायना विष्णु ढूकिया, और एक नानी सी दोईती है अंगी कह इवा धरणिया है वा, और आ लिखियो है कि चौपाल पेश करने वाला रामेश्वर भाई ने महारा कहने शू घनी घनी रामा श्यामा, तो थाने भी मोकली सारी रामा श्यामा, कह पिछले बुधवार ने कह नवीन जी और जो को पत्र उत्र पेश करियो वो बड़ो पसंद आयो, और शुक्रवार ने गीता और गजरग माँ लोकगीत लोक भजन जो कहे बड़ा लाजवाब आ, और इं त्रियाँ शुक कल चौपाल का माँ जैविक उर्वरक के बारे में जबकि जानकारी दी वह बड़ी उपयोगी ही बड़ी पसंद आई, तो ढुके साहब बिल्कुल अपना कार्यक्रम में जिको थाने गीता और गजरो है शुक्रवार ने प्रसारित तो है बिंग मान जी का लोकगीत लोक भजन सुनावा ही हाँ, और पे थाने पसंद आवा ती वास्ते थारो मोकलो सारा धन्यवाद, और पिछले बुधवार में आपने नवीन जी हाँ लेकिन आज क्या क्या थोड़ा कोई काम धंधे की वजह से कोनी आ सके चौपाल गाँव, अपने पिछला प्रोग्राम थाना अच्छो लागे ती वास्ते थारो मोकलो सारो धन्यवाद सा। वो संदेश पूग तो करियो है आपने लिखने वाला है आ नाम लिखे नादेड़ महाराष्ट्र से नारायण गायकवाड़, दयानंद गायकवाड़, ओम प्रकाश गायकवाड़ और साई गायकवाड़, बस हाँ लिखियो है कि कार्यक्रम जो है वो मने पसंद आवे, और मने कह कोई हिंदी गीत सुनाई बिल्कुल आपने ही कार्यक्रम में की है कि राजस्थानी गीत ही प्रसारित हुए है, राजस्थानी गीत है, राजस्थानी लोक भजन है, अपने जी राजस्थान से संबंधित बातें हैं वे ही प्रसारित हुए, हिंदी जगह गीत है आपने सुरतगढ़ का और भी कार्यक्रम है बंगमा थे सुनस को और बंगमा भी थे संदेश फरमाइश जिकी है वह मानस को सा। वो संदेश लिखियो है तहसील भादरा अनूपसर से लिखने वाला है गजानंद सारस्वत, डॉक्टर ताराचंद सारस्वत, सोनू पवन कुमार, शाहिल राघव, मुरारी लाल शर्मा, मदन लाल शर्मा, फुसाराम मील, महावीर लोरा, ममता मितू किन्नू और परिवार का सगड़ा सदस्य, ये लिखा गया थे खेतीबाड़ी और पशुओं के बारे में जिकी जानकारी दियो वा बड़ी ध्यान से सुना और इनको लाभ भी उठावा, का सावण को जो को गीत है वो सुनाते रहियो सा, बिल्कुल सावण तो लाग गया ना, सावण का गीत जो है भी आपने चौपाल का माँ चल रही है और उसके आज भी थाने एक आधो गीत जो है वो सुना देवा, लेकिन कार्यक्रम थाने अच्छा लागे ये वास्ते थारो मोकलो सारो धन्यवाद सा। संदेश पुख्त क्रिया सुरेश राठौड़, मंजुला राठौड़, गांधीनगर गुजरात से, और ये लिखे है राम राम जी चौपाल कार्यक्रम के मैं नियमित रूप से सुना और कार्यक्रम में खेती के लायक जिकी बातें हैं, पशुपालन संबंधी जिकी जानकारी है बड़ी अच्छी लगे, और कार्यक्रम की जिकी प्रस्तुति है वह बड़ी सुंदर है, तो इनके लिए शुभकामनाएं दी है, तो बिल्कुल थाने भी मोकली सारी शुभकामना और धन्यवाद सा कि कार्यक्रम थाने पसंद आने ला रहे है और खेतीबाड़ी की जिकी बातें हैं पशुधन के बारे में जिकी बातें हैं वे सुन गए अर्थे फायदा उठाओ तो हमारे लिए भी बहुत अच्छी बात है कि कार्यक्रम देने मुझको देने की जिकी सार्थकता है बस सही है ना, अब आगे भी थारे संदेश की उड़ीक रहेगी सा आगे जरूर मांडियो, और वो संदेश आपने ती लिखे भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिंपा, कपिल छिंपा, ईशान छिंपा, पूजा परिहार, और ये लिखे है कि आकाशवाणी सुरतगढ़ का सगड़ा कार्यक्रम जो है बड़ी शिद्दत से सुना में और आनंद भी उठावा और सगड़ा कार्यक्रम एक से बढ़ के एक है बेहतरीन प्रस्तुति खातर कह थाने मोकलो सारो धन्यवाद, बिल्कुल थारो भी मोकलो सारो धन्यवाद सा कार्यक्रम सुनता रहो। रवि कुमार राहुल कस्बा बराड़ा जिला अंबाला हरियाणा से अपने ते संदेश मांडियो है लिखा है कि रेडियो गै सागे सोऊं और इंगा सागे ही उठूं कै मैं और जद का बहुत खुश हूँ जद कोई फरमाइश पूरी ना हो, बिल्कुल आपने की है कि अठे फरमाइश जकी है वह कई बार पूरी हो जाए कई बार कोनी वनी, कई बार यहाँ हो जाए ऐसा

का अपने अठे कुछ ज़्यादा मेल आ जाए, ज़्यादा खत आ जाए, या फिर कोई टाइम की जी की पाबंदी है, टाइम को एक तकाजो है अपने अठे बिंग हिसाब से, क्योंकि आपने किया कि यहाँ कोनी के थोड़ा घर वालों का माँ बैठा आता ही करा, और बिंग माँ किया कि चलो 10 मिनट और 15 मिनट आप और बैठ जाओ, चार भाई बंधु और आ गया आस पास बैठ जाओ, तो अपनी अता ही गाँव घरांग माँ जी किया आधा घंटा पौना घंटे भी चाल सके। लेकिन अठे की है क्या एक टाइम गिज की है, समय गिज की है, बस सीमा है ना। बी बाद गमा अगर कोई रेज है तो माफी के साथ आ बात कह दिया कि अगला प्रोग्राम में थारी जी की बात है बात जरूर रखांगा, संदेश जो को है, मेल जो को है, कागज जो को है वो जरूर शामिल करांगा। और इतनी अच्छी बात लिखी है तो थारो मोकलो सारो धन्यवाद देवा रवि कुमार, और आगे भी थे संदेश मांडियो और भी प्रतिक्रिया जी की वह जरूर मांडियो। लेकिन बात लिखी बात थोड़ी सी मैं पढ़ी दूँ, लिखी तो हिंदी गमाई है लेकिन फिर भी अपना इन राजस्थानी गमाई फिर बदल कर देवा। कदी फरमाइश पूरी ना हो मायूसी में आपो खो दूँ, और मारो ना तो कुछ इश्यू है रेडियो से कह मैं रेडियो को एक बहुत बड़ो श्रोता हूँ, के बात है सा। धन्यवाद सा थारो मोकलो सारो, वो संदेश लिख्यो है अपने ती, और लिखने वाला है रमन वर्मा, अमन वर्मा और सगलो परिवार, और लिखे बुर्ज हनुमानगढ़ जिला फाजिलका से। ये भी का कार्यक्रम जो कहो मैंने पसंद आ रहा है, और मैंने जितनी भी थी जानकारियां दो भी अच्छी, और कार्यक्रम पेश करना जो अंदाजा वो आना पसंद आवे ऐसा, तो थारो भी मोकलो सारो धन्यवाद। संदेश आयो है आपने व्हाट्सएप के ऊपर, और लिखे है डोंगर गांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल का जी भी और राधिका गज भी है। एक एक कार्यक्रम जो है वो बढ़िया लगन आ रहे है, शिक्षा प्रद है, शुक्रवार ने के गीतारो गजर जो है वो बढ़िया हो रही, हमारो मेल जो है वो शामिल को नहीं हो, पर कोई बात नहीं, अच्छी बात है सा ना, रूसिया को नहीं गज भी है। और क्या क्या कई बार अभी थोड़ी देर पहले बात बताई ना कठिन कठी कोई रे भी जाए ना तो भी रूसे करो ना अपा कठी हो, यहाँ तो है कोनी भी कठी और कठी जागे आपने उठाटी हो तो चालेंगे, आपने ही आकाशवाणी सूरतगढ़ से ही अपना कार्यक्रम पेश होता रहेगा, थारा संदेश मेल कागज कह भी आता रहेगा, हूँ बाँस तोड़ूंगा दूसरा कार्यक्रम में भी आता रहेगा तो भी अपने शामिल होता रहेगा, पर नाराजगी अर्ज की बात है ना कति नहीं करनी चाहिए है ना। संदेश मांडे हुई वास्ते थारो मोकलो सारो धन्यवाद, और संदेश आपने पुख्त तो हुए है और वो लिखे है आपको जो को नाम है वो लिखियो को नहीं सा है ना, और अतो पतो जो को है वो भी कौन लिखियो नहीं, और लिखियो तो ये है कि चौपाल में कश्मीर की कली ये तो आपने बैठा नरेश भाई जका है वे ही कुछ न कुछ मांडन आ रहा सा। लेकिन अपा यहीं से पहले एक गीत सुन लिया, उड़ जा हमारी चिड़कली अनुराधा पोडवाल की आवाज गवा लियो थे भी सुनो, और पछा थारा मेल जका है कागज जका है भी शामिल करांगा सा।

बिल्कुल सर, थाने अनुराधा पोडवाल की आवाज़ का गीत सुनायो ऊर्जा मारी चिड़कली। बात करें अपने मेल जका है भी भाई लोग भेज रखे है और मेल पुग्यो है अपने सह छुपेली नितवंध्या श्रोता है गांव नाई वाला जिला हनुमानगढ़ शू वेद मिढा और अलका मिढा। ये आपने नितवंध्यो कार्यक्रम सुना और लिख्यो है कै रामेश्वर भाई राम राम और कै किरतार थाने राज्य खुशी और निरोर रखे। बिल्कुल थाने भी महाराज कानी छू रामा श्यामा और मैं भी अरदास प्रार्थना जी की है बा आई बात करा मिड्डा साहब कि थाने भी भगवान जो है वो निरोग रखे हंसता खेलता चलता फिरता रखे। और आगे कुछ बातें लिखी है कि भेड़ा रहता भाईड़ा, बड़ी तुकबंदी वाली बात है कि भेड़ा रहता भाईड़ा और बजता सुखरा ढोल का न्यारा होता ही अठे और मनड़ो खावे को। बिल्कुल आपने परिवार में कई बार सागर जो सांझो परिवार है भेड़ो सीर करेड़ो जो को परिवार है बिमा आपने जो भाई बंधु सागर है तो कितनी फूटरी बात है। आगे भी यहाँ लिखे कि आंगणियों जस हरिया, आंगणियों जस हरिया हेत जठे भरपूर और परिवार जठे एकता दुख रह सब दूर। कह संपत में है सुख घणो, संपत में है सुख घणो और टूटे नहीं परिवार, जको मिलजुल रहे सी बेड़ो हो सी पार। कह दुख में ढांडस बधावे है सुख में हुए साथ और परिवार सोई भलो जो रख है सिर पर हाथ। क जठे प्रीतरो बास है, क जठे प्रीतरो बास है और मिलजुल रेवे साथ, क जठे प्रीतरो बास है मिलजुल रेवे साथ और उन घर में देवता राख है सदा ही हाथ। के बड़ी फूटरी बात लिखी है सा ना परिवार के लिए होश के कई बार मीन में एक छोटी मोटी जकी है वह परिवार में हो जाए और भिड़ा पड़ा भांडा जक है वे खड़क जाए, लेकिन रल मिल के रहनो सांझो रहनो कट्ठो रहनो बहुत बड़ी बात है। दुख सुख गमा अड्डो आनो एक दूसरे के सिर बटाणो एक दूसरे के सागे बहुत बड़ी बात है। कई बार हो जाए कि ऊंच नीच हो जाए कि क्या सुनी सु हो जाए, लेकिन सियाणी बात तो आई है कि जकी भूल हो जाए कोई थोड़ी बहुत किरण पिरन हो जाए मीन में एक निकल जाए तो भी बात ने भुला देनी चाहिए। ऐसा परिवार जिसो सागो कट्ठी कौन मिले नहीं दुनिया का माँ, आपका जगह माइत है आपका जगह काका बाबा है आपका जगह भाई बंधु है बंग सागे रल मिल गए रहो एक दूसरे को जो दुख सुख है वो बंटाओ और दुख सुख बंटाना शू ही की है कि परिवार जगह है वे आगे बधेपो खावे आगे बढ़े और उन्नति का जगह रास्ता है वे परिवार में खुले। बड़ी फूटरी बात लिखी है मिड्डा साहब इन वास्ते थारो मोकड़ो सारो धन्यवाद देवा सा। मेल पुग्यो है अपने ती और लिखे है जिला मुरादाबाद ग्राम दुल्लापुर उत्तर प्रदेश शू और लिखे है मुकेश कश्यप शीतल कश्यप सोनू सुरेश राजपाल पंकज अंग सागे है काजल सीमा मानवी तन्वी लक्ष्य सोनी मोहनी ऋतिक और बलवीर सिंह।

बस हाँ लिख्यो है कै मारो नाम जो है वो कोई गीत में शामिल करियो, है ना। फरमाइश तो आपने ये कार्यक्रम में आज तो कोनी कश्यप साहब, लेकिन शुक्रवार ने गीता रो गजरो जो को है भी माथे फरमाइश मांडियो, थारी फरमाइश की अब जरूर पूर्ति हो जाएगी। गांव 11 टिका तहसील राइसनगर जिला श्री गंगानगर छू आपने ती मेल मांडिया नरसिंह कुमार, कमलेश, दिवांशु, यश्विनी, प्रियांशु, मुकेश, योगिता, ओम प्रकाश, रोशनी देवी, चक 32 एन पी छू, कृष्ण लाल कुधारा आ रणमिल के लिख्यो है और लिख्यो ही तो ही है, बस आगा के लिख्यो अब वो पतो को नहीं सा कि लिख्यो भी कोनी। संदेश मांडो तो बिमा प्रतिक्रिया जी के बस जरूर मांडे करो सा, सिर्फ नाम सुनने से तो की है कह आपनों कार्यक्रम जो कह वो जच्चा कोनी, है ना। रायसनगर से सोलाल जांगिड़, मंजू जांगिड़, शिव प्रकाश, जसवंत राम, सुनील जांगिड़, साहब राम स्वामी ए नियमित श्रोता है और हर कार्यक्रम में आंगो जो को मेल है संदेश जो कह वो शामिल हो जाए। और ये लिखे कि चौपाल कार्यक्रम पेश करने वाला भाई रामेश्वर ने हमारा कहानी सुन घनी घनी रामा श्यामा, तो थाने भी मोकली सारी रामा श्यामा। और आगे भी यहाँ लिखे है कि चौपाल कार्यक्रम

है ना। रायसिनगर से सोहनलाल जांगिड़, मंजू जांगिड़, शिवप्रकाश, जसवंत राम, सुनील जांगिड़, साबराम स्वामी ये नियमित श्रोता है और हर कार्यक्रम में आंगो जो को मेल है संदेश जो का वो शामिल हो जाए। और ये लिखे कि चौपाल कार्यक्रम पेश करने वाला भाई रामेश्वर ने महारा कहानी चुं घनी घनी रामा श्यामा, तो थाने भी मोकली सारी रामा श्यामा। और आगे भी यहाँ लिखे है कि चौपाल कार्यक्रम सगड़ा मिल के लाइव सुन ला रहा, हाँ के बात करो सा है ना, वही तो थोड़ी देर पहला बात कर ला रहा क्या, सांझो रह गए और सांझो खा गए, सांझो बर्ताव कर गए भी जिसी होड़ जकी है वह कट्ठी होनी सा, सागर रल मिल गए रहो सा फूट रही बात है। और पिछलो आपने पत्रोत्तर कार्यक्रम सुनो रामेश्वर भाई के थे बड़ो लाजवाब पेश करो, वो थारो ने स्नेह है सा है ना, कार्यक्रम जका है भी अपना जका दूसरा है भी बड़ा अच्छा कार्यक्रम है भी सुने करो। और शुक्रवार ने के गीतारो गजरो कार्यक्रम पेश करो थे वो भी बड़ो पसंद आयो, तो बिल्कुल थाने मोगलो सारो धन्यवाद देवा सा थे कार्यक्रम सुनो। और जांगिड़ साहब और रल मिल के लिखे कि पिछला 7 दिन में कह जितना भी चौपाल कार्यक्रम आया एक से बढ़कर एक हा, कोई कमी नहीं सा, कार्यक्रम पेश करने वाला सगड़ा भयन राम राम लिखी आ, तो बिल्कुल आपने जगह कार्यक्रम सुन ला रहा है पेश करने वाला जगह भाई लोग है बे भी आज कार्यक्रम सुनता हो सी तो बांती थारी रामा श्यामा जी की है बा सोनलाल जी मंजू जांगिड़ और शिवप्रकाश जसवंत राठी जी की सगड़ा की पुगन ला रही है। और अगा लिखियो है कि रामेश्वर भाई जी थारी बोली और थारू कार्यक्रम पेश करने का अंदाज बड़ो निरालो है के बात है सा, और बड़ो का आनंद आवा चौपाल में जत थे कार्यक्रम लेके आओ आनंद सा की है कि कई बार आपने रग उग मिलन वाली बात हो जाए जंगड़ साहब, और कार्यक्रम बिया सारा ही है आनंद लेने का तरीका जका है बे आपने थोड़ा सा राखी करो जको अंदाज जिस अंदाज का मैं कई बार ये हो जाए ना कि एक सा अंदाज का मैं आदमी जो है वो बोर होने लग जाए, तो आपने चौपाल की खासियत ही है और चौपाल जो का वो एक गुलदस्ते की तरिया है ना, भांत भांत का फूल है और हर फूल की जगह खुशबू है, हर फूल को जो डिजाइन है, हर फूल को जो अपने अलग रुतबू है, और वो ही बात है चौपाल का माँ का हर भाई जगह है प्रोग्राम ले गया और बंगो जो को पेश करना हो जो को अंदाज है वो निरालो ही है और अलग तरीका को होश के, लेकिन बिंगो भी थे आनंद लो और कार्यक्रम सुनता रहे करो, सुन के आपने प्रतिक्रिया भी है तो हमेशा मांडो ही हो, लेकिन रही बात बोली की और बोली जिकी है बा अपनी राजस्थानी मायड़ भाषा ऐसा है ना, तो और मायड़ भाषा जिकी है बा किन कौन प्यारी लगे नहीं है ना भाई, बात है कि जकी बोली अपन बोलांगा बा बोली अगर भी बोली के माँ अगर अच्छा शब्द हो सी अच्छी मिठास हो सी तो बा बोली सबने प्यारी लगेगी, और भी बोली के अंदर एक थोड़ी कान कसर होएगी तो बा बोली चाहे अपने कितो ही बड़ो तबको बोलतो है कितो ही बड़ो प्रांत बोलतो है बा बोली अच्छी कोनी सा है ना, तो बोली चाहे 4 जना बोले चाहे 10 जना बोले चाहे 1 जना बोले अगर अच्छो बोलेगो तो वह बोली किसी प्रांत की है बा अच्छी है सा है ना। अगर वहाँ लिखे चौपाल कार्यक्रम में भेंट वार्ता लोक भजन लोक गीत सुनो भी बड़ा फूटरा लगा है, और चौपाल में कृषि संबंधी जी की जानकारी है, बाजार भाव है, मौसम और पशुपालन संबंधी जी की जानकारी है बा फायदेमंद हो है, बिल्कुल सा कार्यक्रम सुनता रहो और सुन के प्रतिक्रिया जी की भी थे मानता रहे करो, आज अपने मेल भेजो ही वास्ते थारो मोकलो सारो धन्यवाद। गांव हीरावाली फाजिलका पंजाब से सुभाष गुदारा, बिमला गुदारा, इंदु पार्वती, हिमांशु गुदारा, सरवण रिणवा, हंसराज भाटिया, मनीराम, रणजीत राम, करोड़ीवाल, सुरेंद्र भादू, ये लिखा है राम राम रामेश्वर भाई, चौपाल पेश करनाला ने कह भी मारी राम राम, और का अब लाइव पत्र उत्तर जो कह वो सुन ला रहा, तो हूँ लाइव ही बैठो सा सहन दे एकदम है ना, बस फर्क बीच में वही है कि रेडियो थारे बिचाला पड़ो है और मेरा आगे माइक है ना। और आगा लिखे कि पिछले हफ्ते चौपाल में थारसा का नवीन जी आया बड़ो अच्छो प्रोग्राम पेश करियो, पिछले हफ्ते शुक्रवार ने के गीतारो गजरो जो को है वो भी आने अच्छो लाग्यो, सावण का गीत जो कह भी सुनाया और कह मेरी माता जी ने बड़ा अच्छा लाग्या, तो आप भी एक बड़ी फूट रही बात है कह थारा सागे सागे अपने जगह माता जी है बे भी कार्यक्रम सुना है बड़ो चाव सू और बन अच्छा लगे, तो बंगो भी मोगलो सारो धन्यवाद। सोमवार ने कह फसलांगे माँ कीटांग बारे में जी की जानकारी दी बा भी बड़ी अच्छी लगी, बाकी प्रोग्राम में खेती संबंधी जी की जानकारी है, बाजार भाव जो है, मौसम की जी की जानकारी है बा बड़ी फायदेमंद और काम आ जाए, और कह प्रोग्राम में कह सावण का गीत जो है बे जरूर सुनाई करो, बिल्कुल आपने कार्यक्रम में सावण का जो गीत है बे चलते रहे तो गीतारो गजरो जो है या फिर जो का दूसरा खेती संबंधी जो का कार्यक्रम आप चौपाल में ले गया वहाँ, तो बंग बीच बीच आड़े की है कपाँ का गीत जो है बे मौसम मुजब जो है तीज त्योहारों मुजब जो जुड़ेड़ा गीत है बे भी आप सुना तरह करा सा, वो संदेश पुग्यो है अपना ती और लिखने वाला है लिख्यो है सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से मेल पुग्यो है टी डी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप, कालकाशु, शुभचंद्र बजाज और साहिल बजाज, बिट्टा बजाज, हाँ रल मिल के लिखे है ए भी का कार्यक्रम जो है वो बड़ो पसंद आने ला रहे है और अने इनमें गीत भजन जो

जानकारी जेकी दियो बेपसंद आवे सा, तो आंगो भी मोकलो सारो धन्यवाद। वो संदेश लिखर भेजो है अपने तई चंडीगढ़ से सतीश अनेजा, और अंग सागे अनाम दो लिखे करे लेकिन अब की बार तो एक ही लिखे है, और ये लिखे राम राम जी चौपाल पेश करने वाला ने मारे का निशुक रामा श्यामा लिखी है, तो आने भी मोकली सारी रामा श्यामा का चौपाल का अंतर्गत पत्र उत्तर कार्यक्रम जो बड़ो लाभदायक सिद्ध होना रहा है, क्योंकि मैं कह मैं मारे दिल की बात जकी है या फिर कुछ मारी जकी मांग है बा जाहिर कर सकाँ केस कहाँ, और जद का किसान भाई प्रोग्राम सुन गए और बिंग हिसाब से फसल की जकी देखभाल करे और ज़्यादा फसल को लाभ उठाए तो आकाशवाणी के लिए दुआ भी मांगे। बिल्कुल सा काम तो अपन इशू ही करना चाहिए सा, जगह के लिए आमलो सामलो चुको है वो अपने लिए दुआ मांगे। आंता जानता ने एक बार बोलत श्री का काम तो अच्छो करे है, और था नहीं अलग है कि महाराज से अठो से कोई प्रोग्राम पेश हो रहे है और मेज की जानकारी आंदा और बे बिंगो फायदो अपने किसान भाई लोग उठावे और बिहू बाद में आकाशवाणी के लिए दुआ मांगे तो आप बहुत बड़ी बात है सा लखदा है थाने भी, और मोकलो सारो धन्यवाद देवा। और आगे लिखे दुआ कमाणो बड़ो बहुत बड़ी बात है, अनेजा साहब लिखिए कि एक विशेषज्ञ जरूर बुलाओ और मानसून के बारे में कह फलांग में जगह कीड़ा है या फिर फूलदार जगह पौधा बने किया बचा सका, तो इन बारे में बिल्कुल आपने कार्यक्रम सुनता रहो थाना अमरूद के बाग के बारे में भी जानकारी देशा साहब आते लिखी है और कार्यक्रम में जानकारियाँ भी तो दरावते ही रहो अनेजा साहब है ना, लेकिन एक टेम आपने जगह विशेषज्ञ है बन बुला सियाँ और अमरूद के बाग के बारे में या फिर मानसून में जिकी फसलां दूसरी है बंग बारे में फूल पौधा के बारे में जिकी जानकारियाँ भी थाने जरूर सुना सियाँ, कार्यक्रम सुनता रहे करो मेल भेजो इन वास्ते थारो मोकलो सारो धन्यवाद। संदेश लिखर भेजो है अपने थी गांव बारे टिक्का राइसनगर से और लिखे है धर्मपाल भारती कृष्णा भारती विशेष भारती अंजना भारती, ये लिखा है राम राम जी का चौपाल मारी रग में बस गयो कह और बढ़ाई खातर शब्द कम पड़ गया सा, आज चौपाल आज रो चौपाल नवीन जी सिसोदिया ने समर्पित करूँ सा। बिल्कुल सा बहुत बहुत धन्यवाद, आपने नवीन जी तो आया को नहीं लेकिन माने समर्पित है कार्यक्रम सुनता हुसी, और आगा लिखे कि रेडियरी करूँ हताई कह ना पीसा ना टेक्स के बात है सा, कह हंसमुख चेरो साफ मन नवीन जी मारा पेक्स के बात है जी। बहुत फूटरी बात लिखी है, और आगा लिखे सादो जीवन मीठा बोल सगला रह मन भावे थोड़ा बोले सोच सांतरी श्रोता गुण गावे, कह नुआ नुआ नाटक बनाया सागर रूपक कहानी ऐ सुन गे रूह खुश हो जे जो जेठ साड में पानी, कह चौपाल माई आप बिराजो ज्ञान की वाड़ी खुले अर कंपेयर बैठा कागज बांचे उथला साहब बोले, अर डांगर पशु धीनेरी बातां जचे साहब रे मुंडे अर बातां रा तड़का लागे जो मसाला कूटे कुंडे, अर कान कायद करे मोकड़ो कर कर लंबा हाथ अर आगे गए न ठंडो पानी पछे पूछे बात, मगेज नहीं पदरो आने की बात है सा ना बातां में ठरको ऐ जी जी करता सारा दिन शब्द ना बोले चरको। बड़ी फूटरी बात लिखी है सा, और आगे भी यहाँ दो तीन और बातें लिखी है कि गीत संगीत में दिन बितावे कदे भजन कदे आरती अर जिसी सूजी बिसी लिख दी मैं रेडियो वालो भारती। भारती साहब बड़ी फूटरी और सोहनी बात लिखी है सा, और आगे भी उड़ीक रहेगी मेल गवा कह कार्यक्रम मुजब जी की बातें हैं वे जरूर मांडोगा, कार्यक्रम संबंधित जी की जानकारी है प्रतिक्रिया है वह जरूर मांडोगा उड़ीक रहेगी सा, और आगे भी थे अपना कार्यक्रम सुनता रहियो और सुन गए जी की प्रतिक्रिया है वह मांडता रहियो सा, मेल भेजो इन वास्ते थारो मोकलो सारो धन्यवाद। पर क्यों ना आप एक गीत सुन लिया थे भी सुनो और पछे आप मेल जका है वे बंचांगा सा।

बिल्कुल सर, टाइम तो काली पीली बादली को ही चलान ला रहे है। कट्ठी जकी है वह बरसात होने ला रही है, कट्ठी जको है वो छांटा छिड़को ही होने ला रही है, कट्ठी जकी अपने ठंडी ब्यार जकी हवा चलन ला रही है। अपने अब बरसात को सीजन है, सावन को समा चलन ला रही है, तो अब ना बरसात होसी तो कद होसी है ना। संदेश गए बाद गए आप मेल जकी अभी शामिल कर ला रहे, और मेल गए अंतर्गत ही अपना ते मेल पुगी है जकी ईमेल लिखकर भेजी है सादुल शेर सिंह राम कुमार रिवार्ड और चंद्रकला रिवार्ड नितबंध श्रोता है। और ये अपने राम कुमार रिवार्ड जी जगह है वे कार्यक्रम सुरतगढ़ के अलावा अपने दूसरा जगह आकाशवाणी केंद्र है बांग ने भी सुने हैं, तो यह मानस कहाँ के रेडियो के प्रति बड़ा समर्पित है ये, है ना। और आगे भी यहाँ लिखे है के राम राम जी, तो आने भी मोगली सारी रामा श्यामा। और चौपाल पत्रोत्र पेश करने वाला के रामेश्वर भाई जी आज का थे अकेले ही आया हो, तो रिवार्ड जी की है कि आपने नवीन जी है भी आए करे कई बार सागे, और आज की है कि माने कोई खेत गवा यार फिर नवीन कोई काम हो गया कठिन कठी भी उलझ गया और आइजा को निभा सूँ, पर अगले कार्यक्रम में कोशिश कर सक नवीन जी से कहे वे जरूर आवे, है ना। पर आज तो हूँ अकेलो ही हूँ, थर सा कताई करना आ गयो और थारी जी मेल प्रतिक्रिया जी की है संदेश जी कहे वे वंचन आ गयो। और अगा लिखा के सगला ने महारा कानी श्री रामा श्यामा और पिछले बुधवार ने का पत्र उत्तर कार्यक्रम पेश करियो नवीन जी के सागे बड़ो पसंद आयो, काफ़ी दिना बाद गा माँ चौपाल गा माँ का हाजिरी लागी और शुभकामनाएं दी। बिल्कुल आपने कार्यक्रम में नवीन जी जो कहे भी कई बार आजे और कह दिया के चलो आज चौपाल के अंदर हूँ बैठ चूँ, लेकिन कई बार काम धाम की वजह से कोनी आस कैसा पणे जद भी धो बायला जो कहे भी कार्यक्रम देवा ना तो कार्यक्रम शांतरो हो ऐसा आ बात मैं भी जाना कोशिश कर सियाँ का अगला कार्यक्रम में नवीन जी भी आवे। और आगा लिखे है रिवार्ड साहब के मारो चौपाल कार्यक्रम के इन दिना बड़ो खूबसूरत लाजवाब पेश होने ला रहे है और चौपाल का हर वर्ग के लिए बड़ो फायदेमंद है लाभदायक है। इन माँ के तरह तरह की जिकी जानकारियाँ हैं और सदाई भांति जगह गीत भजन बाजार भाव मौसम की जिकी जानकारी है, नाटक रूपक और किसान भाइयों ने जितनी भी थे जानकारियाँ दी बड़ी चौपाल में मिल जाए और बड़ी फायदेमंद है। के आपने के आगा लिखे है के बारिश को मौसम जो को है वो चालन ला रहे है और इनमें सावधानी बरतने की बात आ लिखी है, जीव जंतु जो कह बे बारह निकले तो आप बड़ी बात जो की है वह फूटरी लिखी है रिवार साहब कह। अब जो को मौसम है ना ये मौसम में चाहे अपना किसान भाई लोग है खेत कैरी जगह काम धंधा करन जावे तो बने पूरा ख्यात रखना है पूरा ध्यान रखना है, कई बदलता मौसम में जगह जहरीला जी जिनावर है ना बे भी बारह निकले, जब भी रात ने कोई पानी पूनी लगान जावे या फिर कोई अपने खेत का मां दिन में भी कोई सौ तरह का काम धंधा करना पड़े, कोई खड़ो सुवारना पड़े कोई बट सुवारनी पड़े।

तो अपन ने पूरा सावधानी बरतनी है, पूरा ध्यान रखना है, कोई कचरा है माँ, कोई घास है माँ, जब भी आप कोई बड़ा है या फिर बिन साफ करा तो अच्छी तरह पेड़ पौधे की जाँच पर करनी जरूरी है ना। अभी टेम का माँ के है कि जी जिनावर जगह है जेरी लाए हैं और दबाव का माँ कई बार जो को आज जिनावर बहुत जिनावर खार बीजे है ना, तो बड़ी सावधानी करनी है। आपने जगह पेड़ बे उघाड़ा नहीं है सब बड़ा, आपने लंबी जकी जूता हुआ है बड़ा मजबूत जूता हुआ है गोड्डा तक अपने पैर नाला हुआ है तो बे पैर के ही अपना काम करा तो ज़्यादा बेहतर है। और आगा लिखे है कि बारिश को कसावण का बारिश को मौसम चलना ला रहे हो तो ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ जो है जरूर लगाना है, धरती ने हरी भरी जी की आवाज ज़्यादा करनी है और ज़्यादा पेड़ हो सी तो आने वाली जी की पीढ़ियाँ हैं बे सावण का झूला जक्का भी झूलेगी। बिल्कुल आपने बात बड़ी सियाणी और फूटरी कही है कि पर्यावरण बचाणु भी जरूरी है और आने वाली जी की पीढ़ी है बिने भी बचाणु जरूरी है। प्रकृति बचेगी स्वा तो पीढ़ी आगे बचा सकें, आप खुद बच सकें, अपने जो को जीवन है वो बच सके सुधर सके, लेकिन प्रकृति ने के तरीके से बचा सकें त्रिको तो वही है कि पानी जो है वो अपना आस पास को साफ सुथरों रखा, अपना आस पास की जो कि भूमि है बिगमा जितो हो सके अपना पेड़ पौधा लगावा, और जितना पेड़ पौधा लगा लिया तो बाकी राख रुखाली जकी है वह भी अपन करनी जरूरी है। अगर प्रकृति हरी भरी रहेगी तो अपना जीवन जो है वो भी हरियो भरियो रहेगा। बड़ी सुनी और फूटरी बात लिखी है रिवार साहब, तो इन वास्ते थारो देवा मोकलो सारो धन्यवाद और आगे भी उड़ीक रहेगी थारे ईमेल की और आगे भी ते प्रतिक्रिया जकी वह सदांग भांति जरूर मांडोगा कार्यक्रम सुनगे है ना। और वो अपने ती ढाणी लाल खां सू जावेद खां नोहर सू लिखी है अरमान खां इमरान खां सीमा बानोर विनोद खां ये लिखा कि चौपाल माना बड़ो अच्छो लग गया और माना गीत नाटक भजन सुनाया करो। और रामा श्यामा लिखिया तो थारो भी मोकलो सारो धन्यवाद रामा श्यामा और कार्यक्रम सुनता रहे करो सामान यहाँ लागे जावेद जी थे कार्यक्रम 2-3 साल हो गए सुनो को नहीं और कठिन कठी कोई न कोई अपने कान कसर है या तो रेडियो में कोई गड़बड़ है क्या बैठा आकाशवाणी सुरतगढ़ का प्रोग्राम है भी थाना सुनाई कौन देना आ रहा नहीं या फिर कठिन कठे थे अपने कमताली में उलझ रहे हो सो और शुक्रवार बुधवार वाले दिन मने याद कर लियो अपने कहा चलो संदेश मेल जका है कागज जका है भी मांड देवा, लेकिन यह नहीं ऐसा कार्यक्रम सुनो थे और सुन के फिर प्रतिक्रिया जरूर मांडो ताकि फिर फूटरा लागे ना भाई बात है आगे भी उड़ीक रहेगी अपने मेल जको है वो जरूर मांड लिया सा। पड़ीवगा कैंची ढाणी छू अपने ते संदेश लिखे शंकर लाल तंवर कह हूँ थारो पुराणो श्रोता हूँ और सावण का गीत सुनो, तो शंकर लाल जी थानू बता देवा कह सावणगा माँ सावण का गीत चल रहा है बीच बीच आला अपना दूसरा भजन जका है लोकगीत जका है बेबी चलावा और थारो आपने आ लिखे कि थारो पुराणो श्रोता हूँ तो बिल्कुल आप बड़ी फूटरी बात है ना। और जितो घी पुराणो बीतो ही ज्यादा ताकतवर मानी जे और थे पुराना श्रोता हो तो थाने तो अपना आकाशवाणी की एक रग रग को पतो हो सी हर कार्यक्रम के बारे में थाने जानकारी हो सी और बिंगो आनंद भी थे उठायो हो सी है ना, तो आप बड़ी अच्छी बात है। और आगे आपने जब भी मेल संदेश कागज मांडो ना शंकर लाल जी तो बिंगो प्रतिक्रिया जिकी है वह जरूर मांडियो उड़ीक रहेगी कार्यक्रम सुन गए बिंगो के उतार चढ़ाव घट्टो बाधो की रही है तो बिंगो भी माना थोड़ा सा पतो ला जैसा। गांव गंधेली छू अपने ती ईमेल मांडे है पालराम श्याग रमेश मोनिका संदेश संदीप भावना और अंग माता जी है बिमला स्याग पोतो राघव स्याग ये लिखा है कार्यक्रम पेश करने वाला महारा का निशु घनी घनी रामा श्यामा, तो बिल्कुल सा थाने भी मोकली सारी रामा श्यामा। और आगा लिखे दो आवाज़ा में थारो कार्यक्रम बड़ो बढ़िया लागे थारा प्रोग्राम की जितनी प्रशंसा करा बीती कम है, तो बिल्कुल मोकलो सारो धनवा सा थाने कार्यक्रम अच्छो लागे। बागपत उत्तर प्रदेश में संजय ढींगिया नवन ढींगिया पार ढींगिया भी अपना ती ईमेल मांडियो है और लिखियो है कि कार्यक्रम पेश करने वाला महारा का निशु घनी घनी रामा श्यामा और चौपाल कार्यक्रम का मारो पसंदीदा कार्यक्रम है मैं लाइव सुना रहा हूँ लोक गीत लोक भजन जका है बे माने बड़ा दया है तो कार्यक्रम सुनता रहो सा। और आपने इनमें की है कि कार्यक्रम में लोक गीत लोक भजन के अलावा नाटक है कहानियाँ है चुटकला जका है या फिर कविता पाठ जो है वो भी सुनाई जाए और इनके अलावा खेत क्यारी की बातें हैं बे तो सदा भांति चलती रहे और सागे सागे आपने किया कि बारह से कोई विशेषज्ञ जगह है जानी जान मिनख जगह है बन बुला के भी अपन जी जानकारी है खेती बाड़ी की जी जानकारियाँ हैं पशुधन की जी जानकारियाँ हैं वे देता रहे हैं और भी वो फायदो जरूर उठाए करो। गांव भैलोनगर तहसील और जिला हनुमानगढ़ से अपने ती लिखे है जोरड़ फार्म हाउस सू और लिखने वाला नरेंद्र झोड़ भीमसेन झोड़ लोकेश झोड़ गौरव झोड़ पुनीता और आरवी झोरड़ ये लिखे है कि राम राम जी, तो बिल्कुल सा थाने भी मोगली सारी मारा आकाशवाणी सुरतगढ़ की तरफ से हूँ पूरा परिवार की तरफ से हूँ घनी घनी मोगली मोगली रामा श्यामा। और आगे लिखा है कि माने थारो वो चौपाल प्रोग्राम बड़ो फूटरो लगे, तो बिल्कुल सा थारो मोगलो सारो धन्यवाद और वो चौपाल जो कहे ना वो मारो

को नहीं जरूर साहब, वो जीता भी श्रोता सुने ना, बंगू भी है ना, थारो भी कार्यक्रम है तो थे सुन ला रहे हो, और वो कार्यक्रम में पेश कर लाने तो मारो भी है, तो आपनों रेड़ो मिलियो सगड़ा प्रोग्राम है। और इवा लिखे है राजस्थानी गीत भजन जका है, खेती की जगह बातें बड़ी चौकी लागे हैं। हाँ जोड़ साहब लिखे है, और आगा लिखे है कि ई प्रोग्राम शू का मन है घनी चौकी चौकी जगह जानकारियां हैं भी मिले, जी शू का मन है घणो लाभ हो ऐसा, तो मारो उद्देश्य ही हुई ऐसा। बड़ी अच्छी बात है का कार्यक्रम सुन गए और थे खेती पाती की जी की बातें हैं बे सुन गए, और खेती बाड़ी कर ला रहे हो भी वो फायदा उठा ला रहे हो, तो और कई चाहिए सहना सोना पर सुहागली बात है हमारे लिए तो। और आगा जोड़ साहब लिखे है कि लारले दिना खजूर की खेती के बारे में जी जानकारी दी बड़ी चौकी लागी, क्योंकि मेरे ढाणी में खजूर का पेड़ है, और थे ई त्रिया ही जानकारी देवता रहे और माना फायदो मिलतो रहे सी, बाकी अगली बार के बात कर सें साहब। के बात है सा है ना, थारी डाइनिंग में अगर खजूर का पेड़ है और बिन्नू आपने आकाशवाणी चौपालगा माँ खजूर के बारे में जिकी जानकारी दे दी और थाने बड़ी पसंद आई, तो अच्छी बात है सा, बिया जानकारी जिकी आप देता रहा सा और फायदो थे उठाता रहो, जानकारी देनो मारो काम, फायदो उठानो थारो काम है ना। ईमेल मांडो यू वास्ते थारो मोकलो सारो धन्यवाद। चौटाला हरियाणा सुन दारा पंडित संजय शर्मा, प्रियंका शर्मा, पुनीत पचारिया आ भी ईमेल मांडे है और लिखा है राम राम जी, सारा सूरतगढ़ सुनने वाला बिलियन है, बिल्कुल थारी जी की रामा श्याम है ना दारा पंडित जी, वाह सुनने वाला जितना भी संगी साथी बिल्ली जी का भाईला है बांति पूर्ति होना रही है। और आगे लिखे है कि कार्यक्रम जो है वो सुन ला रहा हाँ, बाकी जानकारी जी की है वह अच्छी है सा, बीज बाजार भाव मौसम की जी की जानकारी है, पशुआम जी का रोग व्याधियाँ लग गया, फसल में जी का रोग व्याधियाँ लग गए, तो बंगबा जिकी जानकारी थी दो बा बड़ी पसंद आ रही है। और क्या घर गए धीणेंगी रीस कोनी सा, पशु तो होना ही चाहिए, बिल्कुल सा आपने पशुधन जो है वो खेती से जुड़ेड़ो है दारा पंडित जी, और खेती है तो पशु जो है वो बड़ो आसानी तरीके से आप पालन पोषण जो है वो कर सकाँ पाल सकाँ, और पशुधन अगर है तो खेती के लिए भी आपने फायदो मान सकाँ आप के लिए, तो किसान को साथी जो है वो पशुधन है। और घर गए धीणेंगी रही बात, तो श्याणी बात ऐसा घर के धीणेगी घर के घी दूध की चूंटी की गठे होड़ हो सके ऐसा है ना। और आगा लिखे है कि वो गर्मी को मौसम उमस को जो को मौसम है और इनको खेड़ो जो को है वो छुड़ा दे तो जी सरोचे के बात ऐसा ना। अब यह तो एक बात बताऊं, मौसम जका जिता भी बनेड़ा है ना बे सब फायदेमंद ही है, कोई मौसम जो को है वो माड़ो को नहीं, चाहे बरसात को मौसम है, चाहे गर्मी को मौसम है, चाहे सर्दी को मौसम है, और चाहे आपने उमस को मौसम है, कट्ठे न कट्ठे प्रकृति जी की है, बा आपको तालमेल बिठा गए ये धरती ने हरियो भरियो कर रखी है, जीवन जो को है वो इन पर कायम कर रखे है। जी हाँ मानो ना संजय शर्मा दारा पंडित जी भी एक उमस जकी है बा आपने भगवान से प्रार्थना करके ख़त्म कर देवा, तो यहाँ समझो सर जीवन को कुछ ना कुछ एक हिस्सों भी खत्म हो सके, प्रकृति जी की है बा आपके हिसाब से ही चले, उमस भी जरूरी है कठिन कठी अपनी फसलों के लिए, अपने जीवन के लिए और अपनी धरती के लिए। और आगा लिखे है कि कमारा अठक है जिकी चार पांच आंगल जिकी छांटा हुआ है तो क्या बड़ो नाको चोखो लाग जाए, तो बिल्कुल आपने छांटा छिड़को जो है वो आपने आस पास हो भी है कई जगह, और जरूर राम जी महाराज जगह भी छांटो छिड़को भी करसी, वो आपने लिए भी जरूरी है, अपने पशुधन के लिए भी जरूरी है, अपनी खेती बाड़ी जगह पेड़ पौधा है बंगे लिए भी जरूरी है सा है ना। गांव खोकरा वाली जिला श्री गंगानगर से विनोद बारसा, विशाल बारसा, विकास बारसा और रोशनी बारसा, सगुन बारसा भी अपना ती मेल मांडे है और लिखे रामेश्वर भाई राम राम। और आगा लिखे कह इमां जगह जानकारियां दो, गीत भजन बाजार भाव सुनो वे बड़ा अच्छा लागे, और मौसम की जगह जानकारी अब भी बड़ी पसंद आ रही है। और आगा लिखे है कि आपने सावण को जो को महीनों चालन आ रही है, तो इमां की है कथे संदेश जगह है बे अपना गीत जगह है बे जरूर सुनाई करो, तो बिल्कुल आपने सावण का महीना में गीत भजन जगह है बे चलते ही रहे कार्यक्रम सुनता रहे करो, और इनके अलावा जगह सावण के अलावा भी लोकगीत जगह है बे भी अठा अपने चलाई करा, तो बिंगो भी थे आनंद ले करो। कनवाणी राव सर सुकृष्ण शाह का आपने ईमेल मांडे है और आ लिखे कार्यक्रम जो है वो अच्छा चालन आ रही है, बिल्कुल सर थारो भी मोकलो सारो धन्यवाद। मुकलावा शु मदन बरोड़, मंजू बाला, प्रीति बरोड़, दिव्या बरोड़, हितेश बरोड़, कामना बरोड़, लुभानी बरोड़, आरती बरोड़, अजय पेंटर, मुकेश पेंटर, राजू और अंगा माऊ बापू है, हनुमान बरोड़, इमृति देवी, ए भी का कार्यक्रम जो है वो अने अच्छो लगे सा। 19 GG R शेरका तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़ शु सोनू
चंद्रकला वर्मा।

पप्पूराम, रानी देवी, दया अभिनीता, मनोहर लाल वर्मा, अंगा दादा और दादी जी, एमीलाल और शांति देवी, ये भी गए कार्यक्रम जो है वो माने अच्छो लगे। और आगा लिखियो है कि माने बीरू राम जी की कोई कहानी सुनाओ, तो बिल्कुल आपने बीरू राम जी चावरिया की कोई कहानी लिखी जिकी है भी है तो सुनाता ही रहा, लेकिन आगे आगे भी थे कार्यक्रम सुनता रहो और थाना कहानी जिकी है बात जरूर सुनने मिलेगी। नोर जिला हनुमानगढ़ से नरेंद्र सुथार, मनोज सुथार, हिमांशु सुथार, गांव ब्रिकाली से राम कुमार सुथार, दिलीप कामड़, बेगरा श्या, कालू खान, नजाकत अली गुट्टे, खांचागन सिंह तवर, कालू मिस्त्री, और ये लिखा है कि चौपालगा में पक्का और नियमित श्रोता हाँ, चौपाल रोजाना सुनाएंगे माँ गीत भजन नाटक जका है भी तो सुनाओ बड़ा अच्छा लगे। 1 अगस्त ने कह कार्यक्रम नए प्रोग्राम में कह समय बढ़ोतरी कर दी और श्रोताओं ने पसंद आई, तो बिल्कुल सा आपने कार्यक्रम को जो टेम है समा जो है वो 1 घंटों कर दियो और आगा लिखे चौपाल को टेम जो को बढ़ा दियो, माने बड़ी खुशी हुई। तो बिल्कुल आपने कार्यक्रम जो है वो थारे लिए ही है और थारी फरमाइशों के आधार पर आपने कार्यक्रम जो को है वो 1 घंटा को कर दियो सा। लखवाड़ी शू मास्टर भंवर लाल, कृष्णा स्वरूप, विशाल, लक्षिता, नव्या, राजबाला, ममता, महावीर लोहरा, संग्रिया शू मुकुणा राम, ये भी का कार्यक्रम जो को है वो माना अच्छा लगा है। और चौपाल मारा हिवड़ा शू जुड़ेड़ो है, एक गीत भजन नाटक बाजार भाव मौसम की जी जानकारी है वे माने बड़ी पसंद आवे और जितनी भी थी जानकारियाँ दो बिंगो में फायदो भी उठावा। तो बिल्कुल आपने कार्यक्रम में की है कि जानकारियाँ दे जाइए ऐसा, और इनके अलावा घर गुआड़ की जी की बातें हैं, बुजुर्गों की जी की बातें हैं, और छोटा टाबरियों की जी की बातें हैं, बंगा बढ़ाई लिखाई की जी की बातें हैं वे बताई जाए और बिंगो फायदो जरूर उठाए करो। वो कार्यक्रम जो को है आपने चौपाल है वो सिर्फ एक खेती से ही जुड़ेड़ो को नहीं, या मानस कहाँ के एक किसान, एक जो को जमींदार, एक आपने कृषि वर्ग से जुड़ेड़ो इंसान है, बिना आशा पासा की जितनी भी क्रियाकलाप जगह है बाँसु जुड़ेड़ी जी की बातें हैं वे अपने चौपाल गमा करीजे, चाहे वह खेती बाड़ी से संबंधित है, चाहे वह पशुधन से संबंधित है, कुछ भी है, तो आपने की है कि खेती बाड़ी के अलावा भी जिकी दूसरी जानकारियाँ दें तो बिंगो फायदो जरूर उठाए करो। और भंवरलाल जी आपने ईमेल मांडो ई वास्ते थारो मोकलो सारो धन्यवाद, आगे भी आपने ई कार्यक्रम में थारे ईमेल की उड़ीक रहेगी सा। अपने भाई लोगों ने बता दें कि कार्यक्रम में आपने जका भाई लोग अभी सजरा जुड़े है बन पतो को नहीं ईमेल को, तो मेल को पतो जो को है वो नोट कर लियो सा, आगे कार्यक्रम में ईमेल जिकी है बात जरूर मांडियो, aircourtgad@gmail.com ई पर थे आने वाले कार्यक्रम में ईमेल मांडियो। पर आज को कार्यक्रम ही तो ही है, भाई रामेश्वर ने दियो अज्ञा, राम राम शाह, राम राम।

कार्यवाही की समीक्षा सुनिए। पहले राज्यसभा, लेखक हैं पीटीआई भाषा के माधव चतुर्वेदी। राज्यसभा में आज राम मंदिर में चढ़ावा चोरी सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्षी सदस्यों की नारेबाजी और हंगामे के कारण दोपहर 2 बजे से पहले तक बैठक बार बार बाधित हुई। हालांकि बाद में उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने से संबंधित एक महत्वपूर्ण विधेयक पर 2.5 घंटे तक चर्चा के बाद इसे ध्वनिमत से लोकसभा को लौटा दिया गया। लोकसभा इस विधेयक को पहले ही पारित कर चुकी है। आज सुबह 11 बजे जब उच्च सदन की बैठक शुरू हुई तो विपक्षी सदस्यों ने अयोध्या राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी के मुद्दे को लेकर विरोध जताते हुए नारेबाजी की और दिल्ली में छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के मामले में गृहमंत्री अमित शाह की सदन में मौजूदगी की मांग की। हंगामे के बीच सभापति ने कार्यवाही जारी रखते हुए सदस्यों को लोक महत्व से जुड़े विभिन्न मुद्दे उठाने की अनुमति दी। विपक्ष के लगातार हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। शून्यकाल में विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच विभिन्न सदस्यों ने लोक महत्व के मुद्दे उठाए। भाजपा की कविता पाटीदार ने निजी स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी के ग्राहकों को दावा निस्तारण में आ रही तमाम कठिनाइयों पर चिंता जताते हुए सरकार से मांग की कि इन दावों को निपटाने में अनावश्यक विलम्ब होने पर संबंधित कंपनियों के विरुद्ध प्रभावी एवं समयबद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। भाजपा सांसद ने सरकार से मांग की स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी जारी करते हुए ये अनिवार्य किया जाए कि सरल एवं सहज शब्दों में पॉलिसी के भीतर कवर की जाने वाली बीमारियों और उपचार के बारे में जानकारी हो। इसमें प्रतीक्षा अवधि, दावा स्वीकार या अस्वीकार किए जाने वाली परिस्थितियों, दावा प्रस्तुत करने की प्रक्रिया और दावा निस्तारण की अवधि भी बताई जानी चाहिए। शून्यकाल में भाजपा की मेधा विश्राम कुलकर्णी ने एक ही दवा के अलग अलग मूल्य होने का मुद्दा उठाते हुए कहा कि मरीजों को महंगी दवाएं बेचकर मुनाफाखोरी को रोका जाना

चाहिए। उन्होंने कहा कि हाल में एक संसदीय समिति ने भी इस पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि दवाओं के लिए एक रेफरेंस प्राइस रेंज बनाई जानी चाहिए। शून्यकाल में भाजपा की संगीता बलवंत ने 18 जुलाई 2026 को भारत की निजी कंपनी स्काईरूट द्वारा श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से अपने पहले ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 का सफल प्रक्षेपण किए जाने की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट किया। उन्होंने कहा कि ये भारत की वैज्ञानिक उपलब्धियों और नवाचार का प्रमाण है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के वी शिवदासन ने शून्यकाल में अनुबंध कर्मचारी की सेवा को एकाएक समाप्त करने के बढ़ते चलन का मुद्दा उठाते हुए इस पर चिंता जताई। भाजपा सांसद संजय भाटिया ने हरियाणा में देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन चलाए जाने का स्वागत करते हुए मांग की कि सेवा का विस्तार करते हुए राज्य के पानीपत, रोहतक एवं हिसार को भी इससे जोड़ा जाना चाहिए। शून्यकाल में ही अन्ना द्रमुक के नेता डॉक्टर एम थम्बीदुरई ने मद्रास उच्च न्यायालय का नाम बदलकर तमिलनाडु पर करने की मांग करते हुए कहा कि वर्ष 2016 में तमिलनाडु विधानसभा ने इस बारे में केंद्र से अनुरोध करते हुए एक प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित किया था। भाजपा के सतपाल शर्मा ने जम्मू कश्मीर से आज ही के दिन 2019 में अनुच्छेद 370 हटाए जाने का जिक्र करते हुए कहा कि इसके कारण केंद्र शासित प्रदेश के लोगों को केंद्र की हर योजना का लाभ मिल रहा है और वो देश के विकास में कंधे से कंधा मिलाकर साथ दे रहा है। एक बार के स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे बैठक फिर शुरू होने पर सभापति ने प्रश्नकाल चलवाने का प्रयास किया, किंतु सदन में हंगामा थमते ना देख उन्होंने बैठक को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। दोपहर 2 बजे बैठक फिर शुरू होने पर विपक्षी सदस्यों का हंगामा जारी रहा। हंगामे के बीच कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश संख्या संशोधन विधेयक 2026 को चर्चा और पारित करने के लिए पेश किया। विधेयक में उच्चतम न्यायालय में प्रधान न्यायाधीश समेत न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 34 से बढ़ाकर 38 करने का प्रावधान है। विधेयक पर चर्चा के दौरान विभिन्न मुद्दों पर विरोध जताते हुए कांग्रेस एवं कुछ अन्य विपक्षी दलों के सदस्य सदन से बहिर्गमन कर गए। विधेयक पर चर्चा में हंगामे के बीच ही उपसभापति ने विधेयक पर चर्चा शुरू करवाई। इसमें कांग्रेस के विवेक तनखा, भाजपा की संगीता यादव, नरेश बंसल, भीम सिंह, केसरी देव सिंह झाला, अशोक कुमार मित्तल और मनन कुमार मिश्र, तृणमूल कांग्रेस की मेनका गुरुस्वामी, द्रमुक के आर गिरिराजन और पी विल्सन, बीजू जनता दल के सस्मित पात्रा, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के एस निरंजन रेड्डी, अन्ना द्रमुक के आई एस अनबदुरई, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राजेंद्र हीलालाल जैन, तेलुगु देशम पार्टी के विजय चिंता कायला, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, राष्ट्रीय जनता दल के संजय यादव, भारत राष्ट्र समिति के रविचंद्र वद्दीचंद्र, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के वी शिवदासन और ए रहीम, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के चौधरी मोहम्मद रमजान, झारखंड मुक्ति मोर्चा की महुआ माझी, शिवसेना के मिलिंद मुरली देवरा और ज्योति नागनाथ वाघमारे, एमडीएमडीए के एल के सुधीश, भाजपा के नरेश बंसल, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के संदोष कुमार पी, द्रमुक के पी विल्सन, यूपीपीएल के प्रमोद बोरो, मनोनीत उज्ज्वल निकम आदि ने भाग लिया। करीब 2.5 घंटे तक चली चर्चा में भाग लेते हुए विपक्षी सदस्यों ने कहा कि उच्च न्यायपालिका की नियुक्ति में महिलाओं एवं आरक्षित जातियों के सदस्यों को अधिक प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए। वहीं सत्ता पक्ष के सदस्यों ने कहा कि न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने से अदालतों में मामलों के अंबार को कम करने में मदद मिलेगी। चर्चा में हस्तक्षेप करते हुए संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि वो सरकार की ओर से स्पष्ट करना चाहते हैं कि उच्चतम न्यायालय में उन्हीं न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है जिनकी सिफारिश कॉलेजियम करता है। उन्होंने कहा कि इस मामले में महिलाओं एवं आरक्षित वर्ग के लोगों के बारे में विचार करने का विषय कॉलेजियम का है। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए मेघवाल ने कहा कि ये विधेयक न्यायिक क्षेत्र में सुधार श्रृंखला की कड़ी है जिसके माध्यम से उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का प्रावधान किया गया है। मेघवाल ने कहा कि स्वतंत्र भारत में शीर्ष अदालत में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता महसूस की गई और अगस्त 1956

ने पारित विधेयक के माध्यम से प्रधान न्यायाधीश समेत कुल न्यायाधीशों की संख्या 11 की गई। उन्होंने कहा कि उसी मूल भावना को देखते हुए और लंबित मामलों की संख्या को कम करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या अब 34 से बढ़ाकर 38 की गई है। इसी साल मई में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने से संबंधित विधेयक को मंजूरी दी थी। इसके तुरंत बाद सरकार अध्यादेश लेकर आई थी। अध्यादेश के बाद बढ़ाई गई स्वीकृत संख्या के आधार पर उच्चतम न्यायालय में 5 न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई। कानून मंत्री के जवाब के बाद सदन ने विधेयक को ध्वनिमत से लोकसभा को लौटा दिया। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। इसके उपरांत सदन में विभिन्न सदस्यों ने आसन की अनुमति से विशेष उल्लेख के जरिए लोक महत्व के मुद्दे उठाए। इसके बाद सदन की बैठक पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। अब सुनिए लोकसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक हैं पीटीआई भाषा के अनवारुल हक। अयोध्या के राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी और दिल्ली में प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दों को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण आज भी लोकसभा की कार्यवाही बाधित हुई और प्रश्नकाल तथा शून्यकाल नहीं चल सके। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि विपक्षी दल संसद की कार्यवाही नहीं चलना देना चाहते और कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टियों ने संसद परिसर में नाटक करके भगवान राम का अपमान किया है, जिसके लिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए। सदन में हंगामे के बीच ही बैंककार बही साक्ष्य विधेयक 2026 को मंजूरी दी गई, जिसका उद्देश्य अदालतों में डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग रिकॉर्ड को साक्ष्य के रूप में स्वीकार करने की प्रक्रिया को आधुनिक तथा पहले से अधिक स्पष्ट बनाना है। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी समेत विपक्षी दलों के सदस्यों के हंगामे के कारण लोकसभा की कार्यवाही एक बार के स्थगन के बाद कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा की कार्यवाही आज सुबह 11 बजे शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने जब प्रश्नकाल शुरू कराया तो विपक्ष के सदस्य हंगामा करने लगे। वे अयोध्या में राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठा रहे थे और दिल्ली में प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के बारे में गृहमंत्री अमित शाह के बयान की अपनी मांग दोहरा रहे थे। बिरला ने कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों से प्रश्नकाल चलने देने का आग्रह करते हुए कहा कि प्रश्नकाल महत्वपूर्ण होता है और इसमें सदस्यों को अवसर मिलना चाहिए। मेरा आग्रह है कि प्रश्नकाल चलाने में सहयोग करें। प्रश्नकाल के बाद सभी मुद्दों पर आपसे चर्चा करूंगा। उन्होंने आसन के पास आकर नारे लगा रहे और पोस्टर लहरा रहे सदस्यों से कहा, सदन के अंदर या बाहर नारेबाजी लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। आप नियोजित तरीके से पोस्टरबाजी करके और प्रदर्शन करके सदन की गरिमा को गिराना चाहते हैं। शोर शराबा जारी रहने पर अध्यक्ष ने बैठक दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी। कार्यवाही फिर शुरू होने पर स्थिति ज्यों की त्यों बनी रही। पीठासीन सभापति जगदम्बिका पाल ने कहा कि मैं गंभीरता से आग्रह करना चाहता हूं, मैं शून्यकाल चलाना चाहता हूं। आपके नाम लॉटरी में आए हैं और नीति और राज्य से जुड़े सवाल हैं, मैं आपको बोलने दे रहा हूं। उन्होंने कहा कि मैं सबसे आग्रह करता हूं कि आप अपने स्थान पर जाइए और शून्यकाल चलने दीजिए। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि अगर कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल अपने दल के सदस्यों को समझा दें तो हम चर्चा के लिए तैयार हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि विपक्ष के सदस्य संसद नहीं चलाना चाहते। रिजिजू ने कहा कि कांग्रेस, कम्युनिस्ट और समाजवादी पार्टी ने हमेशा भगवान राम का अपमान किया है। उन्होंने कहा कि राम मंदिर बन रहा था तो विपक्ष ने काली पट्टी बांधकर विरोध किया। संसद परिसर में जो नाटक किया गया उसके लिए देश से माफी मांगनी चाहिए। हंगामा नहीं थमने पर पाल ने कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी। विपक्षी सदस्यों की नारेबाजी के बीच ही लोकसभा ने बैंककार बही साक्ष्य विधेयक 2026 को मंजूरी दी। ये विधेयक औपनिवेशिक काल के 125 वर्ष पुराने बैंककार बही साक्ष्य अधिनियम 1891 का स्थान लेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने इस विधेयक को पारित कराने के लिए रखा। पीठासीन सभापति जगदम्बिका पाल ने विधेयक पर संशोधन पेश करने के लिए विपक्षी सांसदों मनोज कुमार, एन के प्रेमचंदन, के सुरेश और कुछ अन्य के नाम पुकारे। हालांकि किसी ने संशोधन पेश नहीं किया। सदन के हंगामे के बीच ही इस विधेयक को बिना चर्चा के ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। प्रस्तावित कानून में बैंककार बही की परिभाषा का दायरा बढ़ाकर इसमें डिजिटल क्लास

0: क्लाउड आधारित और अन्य इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को भी शामिल किया गया है। विधेयक में अदालतों के समक्ष डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग रिकॉर्ड को साक्ष्य के रूप में पेश करने तथा उनके प्रमाणन के लिए स्पष्ट और एक समान नियम निर्धारित करने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा बैंक अधिकारियों को बिना ठोस आधार के बार बार अदालतों में तलब किए जाने से बचाने के लिए विशेष कारण स्पेशल कॉज परीक्षण का प्रावधान भी किया गया है। लोकसभा में प्रश्नकाल नहीं चल सका, हालांकि सरकार ने कई सदस्यों के प्रश्नों के लिखित उत्तर दिए। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में जानकारी दी कि आरक्षित कोच वाली स्पेशल ट्रेन का किराया नियमित निर्धारित ट्रेन की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक होता है। वैष्णव का ये लिखित उत्तर कांग्रेस सांसद संजना जाटव द्वारा स्पेशल ट्रेन के किराया ढांचे और किराया निर्धारित करने के मानदंडों से जुड़े प्रश्नों के जवाब में आया। सांसद ने यह भी पूछा था कि पिछले 3 वर्षों में कितनी स्पेशल ट्रेन को नियमित सेवाओं में बदला गया है तथा क्या हनुमानगढ़ जयपुर ट्रेन का किराया उसी मार्ग पर चलने वाली अन्य नियमित ट्रेनों की तुलना में अधिक है। रेल मंत्री ने कहा कि भारतीय रेल यात्रियों की बढ़ती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लगातार प्रयासरत है। इसके तहत नई ट्रेन सेवाएं शुरू की जाती हैं, मौजूदा ट्रेन का विस्तार किया जाता है, उनके फेरे बढ़ाए जाते हैं तथा उनमें अतिरिक्त डिब्बे जोड़े जाते हैं। उन्होंने कहा कि मौजूदा ट्रेन सेवाओं में अतिरिक्त डिब्बे भी लगाए जाते हैं। ये एक सतत प्रक्रिया है जो परिचालन क्षमता, संसाधनों की उपलब्ध और अन्य प्रतिस्पर्धी आवश्यकताओं पर निर्भर करती है। वैष्णव ने आगे कहा कि त्योहारों, विशेष आयोजनों और यात्रा के व्यस्त सीजन में अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए भारतीय रेल स्पेशल ट्रेनें चलाती है। बाद में यात्री मांग, व्यावसायिक औचित्य, परिचालन व्यवहार्यता और संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर इन्हें नियमित सेवाओं में शामिल किया जाता है। उन्होंने बताया कि अप्रैल 2024-25 से लेकर जून 2026 तक भारतीय रेल ने 245 ट्रेन सेवाओं को नियमित किया। अभी आप संसद में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।
1: हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलो हर्ट्स पर, FM एंड 100.1 मेगाहर्ट्स पर, DRM चैनल 909 किलो हर्ट्स पर और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर। रात्रि की 8:15 हुए हैं। आइए सुने कार्यक्रम एक ही फिल्म से।

कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को नमस्कार। आज श्रीपाल शर्मा का। श्रोताओं, आज हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म दुश्मन के कुछ गीत।

सदाओ फिल्म दुश्मन सन 1972 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म के निर्देशक थे दुलाल गुहा, लेखक थे वीरेंद्र सिन्हा और निर्माता थे प्रेम जी। इस फिल्म में अभिनय करने वाले कलाकार थे राजेश खन्ना, मीना कुमारी, मुमताज, कुमारी नाज, असित सेन, कन्हैयालाल, लीला मिश्रा। संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

Sobre todo film Dusman Suchitra प्रोडक्शन के बैनर तले बनी फिल्म थी। इस फिल्म में अभिनय करने के लिए राजेश खन्ना को फिल्म फेयर के सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार के लिए नामित किया गया था। इस फिल्म में गीतों को आवाज़ देने वाले गायक कलाकार थे किशोर कुमार और लता मंगेशकर। फिल्म दुश्मन में राजेश खन्ना ने सुरजीत सिंह का यानी दुश्मन का अभिनय किया था। मीना कुमारी ने मालती का, मुमताज ने फूलमती का, कुमारी नाज ने कमला का और अभी भट्टाचार्य ने पुलिस इंस्पेक्टर का अभिनय दिखाया था। सुरजीत सिंह यानी राजेश खन्ना जो इस फिल्म में एक ट्रक

चालक थे और ट्रक चलाकर अपनी आजीविका निभाते थे। वो जल्दबाजी में अक्सर रहा करते थे और शराब पीकर गाड़ी चलाते थे। एक रात वो चमेली बाई यानी बिंदु के पास रुकता है। उसके साथ रुककर अगली सुबह देर से उठता है और बाहर निकलता है और घने कोहरे में तेज गति से ट्रक चलाता है। वह रामदीन नाम के एक किसान की हत्या कर देता है ट्रक से कुचलकर। लेकिन भागने के अवसर के बावजूद वह परिणामों का सामना करने का फैसला करता है। उसे पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जाता है और अदालत में पेश किया जाता है। सुरजीत रहमान जो न्यायाधीश का अभिनय कर रहे थे उनसे अपना अपराध स्वीकार कर लेते हैं, जो बदले में जानता है कि उसे सुरजीत को 2 साल के लिए जेल भेज देना चाहिए। लेकिन रामदीन के परिवार की दुर्दशा देखकर और उनकी अंतर्निहित मान्यता निकल जाती है कि कारावास पीड़ित या अपराधी दोनों के लिए अच्छा नहीं होता, न्यायाधीश रामदीन के परिवार के साथ रहने और उनकी वित्तीय ज़रूरतों को आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वहाँ सुरजीत को भेज देते हैं। सुरजीत को पुलिस सुरक्षा के तहत अपने नए जेल में वहाँ पे पहुँचाया जाता है, जहाँ उनकी मुलाकात शत्रुतापूर्ण ग्रामीणों से होती है। रामदीन का परिवार उसकी उपस्थिति से घृणा करता है और उसे दुश्मन कहने लगते हैं। सुरजीत पहली रात भागने का प्रयास करता है लेकिन वहाँ पकड़ा जाता है। धीरे धीरे इसे भाग्य का मोड़ मान लेता है और रामदीन के परिवार को पूरी सहायता देता है तो लोग उसे पसंद करने लगते हैं। इस तरह से इस फिल्म की एक कहानी जो सभी को प्रभावित करती है, और राजेश खन्ना जिन्होंने अपना पूरा फर्ज निभाया उस परिवार को सहायता देकर।

0: बेटा ये तमाशा देखोगे?
1: हाँ।
0: बाद में देखेंगे ना?
1: नहीं, मुझे अभी देखना है। तुम तो बोलते थे कि मैं लाफा मार के दिखाऊंगा।
0: बेटा यहाँ लाफा नहीं चलेगा, तमाशे वाला बदल गया। चलो तो घर चले।
1: नहीं, मुझे अभी देखना है।
0: देखना?
1: हाँ।
0: चल बेटा।

श्रोताओं, फिल्म दुश्मन वीरेंद्र सिन्हा के एक उपन्यास पर आधारित थी। फिल्म में राजेश खन्ना की भूमिका शीर्षक वाली है और मीना कुमारी, मुमताज रहमान, अजित सेन और लीला मिश्र ने भी इस फिल्म में अपना अभिनय एक से बढ़कर एक कलाकार ने बखूबी दिखाया था। इस फिल्म में गीत लिखे आनंद बख्शी ने, संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारीलाल ने। चलते चलते सुनवाते हैं इस फिल्म का टाइटल गीत।

श्रोताओं, इसी गीत के साथ आज का एक ही फिल्म से कार्यक्रम समाप्त करने की श्रीपाल को इजाज़त दीजिए। आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। थोड़ी ही देर में हमारा अगला कार्यक्रम स्पोर्ट्स कैन आकाशवाणी दिल्ली से रिले किया जाएगा।

0: नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के संस्करण के साथ मैं प्रशांत कुमार आप सभी श्रोताओं का अभिनंदन करता हूं। हम लेकर आए हैं स्पोर्ट्स कैन का ये नया रंग, जिसमें है खिलाड़ियों का जोश, खेल का रोमांच और जीत की उमंग। साथ ही होंगी खेल जगत की बड़ी खबरें, शानदार प्रदर्शन और हर मुकाबले की खास बात आपके अपने प्रोग्राम स्पोर्ट्स कैन के साथ। तो शुरू करते हैं एक नए अंदाज में इस प्रोग्राम का ये सफर, लेकिन सबसे पहले एक नज़र स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स में 7 खिलाड़ियों ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। प्रज्ञानंदा सेंट लुइस रैपिड एंड ब्लिट्ज शतरंज प्रतियोगिता में शीर्ष पर। अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप अमेरिका के यूजीन में आज से शुरू। और केंद्रीय मंत्री HD कुमार स्वामी ने राष्ट्रमंडल खेलों में कांस्य पदक विजेता शिल्पा शायला को सम्मानित किया। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं बैडमिंटन से, जहां आज का दिन भारतीय खिलाड़ियों के लिए मिला जुला रहा। अलग अलग वर्ग में खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया, तो कुछ वर्ग में खिलाड़ियों हार के साथ वो प्रतियोगिता से बाहर हो गए। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज कई भारतीय खिलाड़ियों ने अलग अलग वर्ग के प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। कई बैडमिंटन खिलाड़ियों का सफर आज समाप्त हो गया। प्रतियोगिता से जुड़े आज के मुकाबलों को लेकर हमारे साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी निखिल। निखिल, आज अलग अलग वर्ग में भारतीय खिलाड़ियों ने प्रतिस्पर्धा किया, कुछ खिलाड़ियों को अगले दौर में जगह मिली तो कई प्रतियोगिता से बाहर हो गए। कैसा रहा खिलाड़ियों का आज का प्रदर्शन?
1: प्रशांत, आज की अगर हम बात करते हैं तो भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन मिला जुला रहा। कुछ वर्ग में खिलाड़ियों ने बेहद शानदार प्रदर्शन किया तो कई में खिलाड़ियों का प्रदर्शन बहुत ही निराशाजनक रहा। और अगर प्रशांत महिला सिंगल्स की हम बात करें तो कुल 7 खिलाड़ियों ने अगले दौर में प्रवेश कर लिया है। तन्वी शर्मा भारत का नेतृत्व कर रही थी, उन्होंने भी अगले दौर में जगह बना ली है। वहीं अगर महिला डबल्स की हम बात करते हैं तो आज एक मुकाबला खेला गया।

0: इसमें खिलाड़ियों ने जीत दर्ज की और अगले दौर में प्रवेश किया। वहीं मिक्स डबल्स के दो मुकाबलों में भारतीय खिलाड़ियों ने अपना दमखम दिखाया, जिसमें से एक में तो हमें जीत मिली और दूसरे में हार कर सफर समाप्त हो गया है। और पुरुष डबल्स के एकमात्र मुकाबले में आज भारतीय खिलाड़ियों को हार का सामना करना पड़ा। हालांकि कल भारतीय डबल्स भारतीय जोड़ी ने जीत दर्ज करके इस वर्ग में उम्मीदें कायम रखी हैं। लेकिन प्रशांत, आपको मैं बताना चाहूंगा कि पुरुष सिंगल्स में आज निराशा ही हाथ लगी, सभी 6 खिलाड़ी हारकर प्रतियोगिता से बाहर हो गए हैं।
1: जैसा निखिल आपने बताया कि

0: रोहित शर्मा ने आज भी बड़ा शानदार प्रदर्शन किया, उनका खेल देखने लायक था। तन्वी ने सीधे गेम में युवान आंशी को 21-16 और 21-15 से हराकर अंतिम 16 में प्रवेश किया है और उनका ये खेल दिखाता है कि किस तरह से वो लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रही हैं। वहीं अनमोल खरब ने भी बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए हांगकांग की ली सिन यान को 16-21, 21-17, 21-12 से हराया। मानसी सिंह ने भी कोरिया की किम जो युन को 14-21, 21-19, 21-9 से हराया। वहीं रक्षिता श्री रामराज ने कोरिया की ये यौन यू को 22-24, 21-12, 21-13 से पराजित किया। उधर अश्मिता चालिया ने भी एक तरफा मुकाबले में जापान की हिरामोतो को 22-20, 21-18 से हराया। श्रियांशी वली शेट्टी ने वाई पी पाई को 21-15, 21-14 से हराया। और आपको हम ये भी बता दें कि ईशा रानी बरुआ ने कोरिया की ली सो युल को 21-18, 15, 21 और 21-7 से हराकर अगले दौर में प्रवेश किया है। हालांकि आकर्षी कश्यप मिनजी किमसे और तान्या हेमनाथ जापान की हिना आकेचाई से हारकर इस टूर्नामेंट से बाहर हो गई हैं।
1: जी निखिल, महिला सिंगल्स वर्ग के बारे में आपने बताया, लेकिन पुरुष डबल्स, महिला डबल्स और मिक्स डबल्स में क्या कुछ रहा आज खिलाड़ियों का प्रदर्शन?
0: हम अपने श्रोताओं को बता दें कि अगर पुरुष डबल्स की बात करें तो भारत को एकमात्र मुकाबले में हार मिली है। भारत के विश्व तेज गोबरू और भार्गव राम एरिगेला की भारतीय जोड़ी को चीन की आरुणताई और आरुण चिया ने 21-17, 21-15 से हराया। इस वर्ग में सभी की निगाहें कल होने वाले कृष्णा प्रसाद गरागा और पृथ्वी कृष्णमूर्ति रॉय के मुकाबले पर होंगे। वहीं महिला डबल्स के बारे में भी हम बता दें कि आज एक मुकाबला खेला गया जिसमें भारतीय जोड़ी को जीत मिली थी। सोनाली सिंह और रितिका ठक्कर ने 32वें राउंड में स्थानीय दावेदार जी सनबैंग और ह्यून जी जांग को 13-21, 21-15, 21-12 से हराया। उधर मिक्स डबल्स की बात करें तो भारत को आज एक जीत और एक हार मिली है। ईशान भटनागर ने अपने ही देश के सात्विक रेड्डी कन्नापुरम और राधिका शर्मा को 20-22, 21-10, 21-15 से हराकर अगले दौर में प्रवेश किया है। वहीं एक अन्य मुकाबले में मलेशिया की लू बिंग कुन और नोराकिला मायसारा ने ध्रुव रावत और मनीषा को 18-21, 21-14, 21-17 से हरा दिया था।
1: आपने सभी वर्ग की तो बात कर ली निखिल, लेकिन पुरुष सिंगल्स में खिलाड़ियों ने आज कैसा प्रदर्शन किया है?
0: पुरुष सिंगल्स की अगर हम बात करें तो निराशा हाथ लगी है। पुरुष सिंगल्स के सभी 6 खिलाड़ी हारकर प्रतियोगिता से बाहर हो गए हैं। बड़ी उम्मीदें थी किदांबी श्रीकांत से, तो उन्हें भी हार का सामना करना पड़ा। किरण जॉर्ज, रौनक चौहान, थारुण मन्नेपल्ली, सनी दयानंद और मिथुन मंजुनाथ की हार के साथ ही पुरुष सिंगल्स में भारत की चुनौती अब समाप्त हो गई है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद निखिल इस विस्तृत जानकारी के लिए, और हम उम्मीद करेंगे कि अब जो बाकी खिलाड़ी बचे हैं इस प्रतियोगिता में वो अच्छा प्रदर्शन करें और देश का परचम लहराते रहें।
0: बिल्कुल।
1: उधर सात्विक साईराज रंकी रेड्डी कंधे की चोट से उभर गए हैं और विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के लिए पूरी तरह तैयार हैं। भारत के मुख्य डबल्स कोच टैन किम हर ने इस बात की पुष्टि की है। सुनते हैं एक रिपोर्ट।
2: सात्विक साईराज रंकी रेड्डी कंधे की चोट से उभर गए हैं और चिराग शेट्टी के साथ मिलकर 17 अगस्त से होने वाले विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारत की चुनौती की अगुवाई करने को तैयार हैं। सात्विक की कंधे की चोट जुलाई में जापान ओपन के दौरान फिर उभर आई थी, जिस कारण सात्विक और चिराग को पुरुष डबल्स के पहले दौर के मुकाबले के बीच से हटना पड़ा। इस जोड़ी ने इसके बाद चीन ओपन से भी नाम वापस ले लिया था। दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में होने वाली विश्व चैंपियनशिप में दुनिया की 5वें नंबर की जोड़ी सात्विक और चिराग को भारत के लिए पदक का सबसे बड़ा दावेदार माना जा रहा है। पहले दौर में बाई हासिल करने वाली ये 5वीं वरीय जोड़ी अपने अभियान की शुरुआत दूसरे दौर से करेगी। मलेशियाई कोच किम हर ने सात्विक की चोट से जुड़ी चिंताओं को दूर करते हुए कहा कि उनका कंधा लगभग पूरी तरह ठीक हो गया है और वो कोर्ट पर उतरने के लिए तैयार हैं। भारत के हरिहरन अमसा करुणन और MR अर्जुन की जोड़ी भी पुरुष युगल में चुनौती पेश करेगी और पहले दौर में आयरलैंड की जोड़ी से भिड़ेगी। मनोज, स्पोर्ट्स स्कैन।
1: और श्रोताओं, आपको बता दें कि बैडमिंटन में विश्व चैंपियनशिप के बाद एशियाई खेल भी होने हैं। सात्विक और चिराग एशियाई खेलों में गत चैंपियन हैं और वे विश्व चैंपियनशिप और एशियाई खेलों में प्रतिस्पर्धा करने के लिए पूरा दमखम लगा रहे हैं। उधर BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप का आयोजन 17 से 23 अगस्त तक इंदिरा गांधी स्टेडियम नई दिल्ली में होगा। इस आयोजन के लिए हाल ही में जापान ओपन का खिताब जीतने वाली स्टार भारतीय खिलाड़ी PV सिंधु को 9वीं वरीयता दी गई है। 2022 एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता सात्विक चिराग की जोड़ी को 5वीं वरीयता मिली है। इस चैंपियनशिप की अगर बात की जाए तो सभी 5 कैटेगरी में

0: भारत की दो दो एंट्री है और पांच में से चार कैटेगरी में कम से कम एक वरीयता वाली एंट्री है। सिंधु और सात्विक चिराग के अलावा पूर्व वर्ल्ड चैंपियनशिप कांस्य पदक विजेता लक्ष्य सेन को पुरुष सिंगल्स में 14वीं वरीयता मिली है। ध्रुव कपिला और तनिषा क्रिस्टो की मिक्स डबल जोड़ी को 15वीं वरीयता मिली है और खिलाड़ी 28 अप्रैल की अपनी वर्ल्ड रैंकिंग के आधार पर इस प्रतिष्ठित चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई हुए। रैंकिंग के आधार पर भी इस चैंपियनशिप के लिए उनकी वरीयता तय की गई है। और अब बैडमिंटन कोर्ट से चलते हैं शतरंज की ओर। सेंट लुइस में भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने सेंट लुइस रैपिड एंड ब्लिट्ज शतरंज प्रतियोगिता के रैपिड वर्ग में शानदार प्रदर्शन करते हुए 18 में से 12 अंक हासिल कर शीर्ष स्थान प्राप्त किया। उन्होंने इसके साथ ही वर्ष के अंत में होने वाले ग्रैंड शतरंज टूर फाइनल में जगह बनाने की अपनी उम्मीदें भी कायम रखी है। सुनते हैं एक रिपोर्ट।
1: विश्व चैंपियनशिप 2026 की दौड़ से बाहर हो चुके प्रज्ञानंदा ने 9 दौर के रैपिड मुकाबलों में बेहतरीन तकनीक, सटीक चालों और जीत के जज्बे का परिचय दिया। हालांकि उन्हें 9वें और अंतिम दौर में नीदरलैंड्स के ग्रैंड मास्टर जॉर्डन वान फॉरेस्ट से हार का सामना करना पड़ा, फिर भी वो एक अंक की बढ़त के साथ शीर्ष पर बने रहे। उन्होंने उज्बेकिस्तान के जावोखिर सिंदारोव को पीछे छोड़ा, जो इस वर्ष विश्व चैंपियनशिप मुकाबले में डी गुकेश को चुनौती देंगे। प्रतियोगिता का परिणाम केवल रैपिड वर्ग से तय नहीं होगा, अब 18 ब्लिट्ज मुकाबले खेले जाएंगे, जिनके बाद कुल विजेता का फैसला होगा। प्रज्ञानंदा ने रैपिड वर्ग में 4 जीत, 4 ड्रॉ और 1 हार के साथ कुल 12 अंक जुटाए। अब उनका पूरा ध्यान 18 दौर के ब्लिट्ज मुकाबलों पर होगा, जहां प्रत्येक जीत के लिए 1 अंक मिलेगा। सिंदारोव 11 अंक के साथ दूसरे स्थान पर हैं, जबकि अमरीका के वेस्ली सॉ 10 अंक के साथ तीसरे स्थान पर हैं। इनके बाद की लेनियर डोमिंगेज पेरेस और जर्मनी के विंसेंट कीमर 9-9 अंकों के साथ संयुक्त रूप से अगले स्थान पर हैं। 10 खिलाड़ियों की राउंड रॉबिन प्रतियोगिता के बाद प्रतिष्ठित सिंक फील्ड कप खेला जाएगा, जो क्लासिकल प्रारूप में आयोजित होगा। सर फिरोजी, स्पोर्ट्स कैन।
0: और अब बात एथलेटिक्स पर भी कर लेते हैं। अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप आज से अमेरिका के यूजीन में शुरू हो गई। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने 23 पुरुषों और 13 महिलाओं की टीम की घोषणा की है, जो हेवर्ड फील्ड में 5 दिनों तक चलने वाले 18 ट्रैक और फील्ड स्पर्धाओं में प्रतिस्पर्धा करेंगी। भारत ने इस प्रतियोगिता में 36 सदस्यीय दल भेजा है। ये प्रतियोगिता 9 अगस्त तक खेली जाएगी। सुनते हैं हमारे सहयोगी विशेष की ये रिपोर्ट।
2: अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत की ओर से कई एथलीट इस सीजन में घरेलू स्तर पर शानदार प्रदर्शन करने के बाद चैंपियनशिप में प्रवेश कर रहे हैं। भारत प्रिंट मध्यम दूरी की स्पर्धाओं, बाधा दौड़, कूद, थ्रो, रेस वॉक और रिले स्पर्धाओं में भाग लेगा। भारत की पुरुष टीम में मोहम्मद अशफाक और पीयूष राज 400 मीटर दौड़ तथा 400 मीटर मिक्स्ड रिले में चुनौती पेश करेंगे। वहीं वेंकट राम रेड्डी मोगाली और उविन आनंद 800 मीटर में भारत का प्रतिनिधित्व करते नजर आएंगे, जबकि अमित कुमार 400 मीटर बाधा दौड़ में हिस्सा लेंगे। बसंत और अम्बरीश कार्तियन ऊंची कूद में, शहनवाज खान और जितिन अर्जुनन रमन लंबी कूद में प्रतिस्पर्धा करेंगे। रोशन चंद्रशेखर और धनुष राज मनापट्टी ट्रिपल जंप में, निश्चय चक्का फेंक में चुनौती पेश करेंगे। भाला फेंक में आशीष यादव और धरणीधरन त्यागराजन अपना दमखम दिखाएंगे। 5000 मीटर रेस वॉक में नितिन गुप्ता, 4x400 मीटर रिले में अंशु रजक, आदित्य तात्या, निवेद कृष्ण ज्योति प्रकाश, नील रामराज, रुद्र सचिन शिंदे और पुरुषों की 4x400 मीटर रिले में रंजीत कुमार, सबीर सैयद, नकुल प्रभु हिस्सा लेंगे। विशेष शुक्ला, स्पोर्ट्स कैन।
0: राष्ट्रमंडल खेल 2026 में शॉटपुट F57 स्पर्धा में देश को कांस्य पदक दिलाने वाली पैरा एथलीट शिल्पा शायला को आज भारी उद्योग और इस्पात मंत्री HD कुमार स्वामी ने सम्मानित किया। शिल्पा ने 7.26 मीटर दूर गोला फेंकते हुए कांस्य पदक अपने नाम किया। केंद्रीय मंत्री ने शिल्पा के साथ उनके कोच सत्यनारायण और पुष्पा निरंजन प्रसाद को भी सम्मानित किया। इस बात की जानकारी उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X के जरिए साझा की। उन्होंने लिखा, आज मैंने कर्नाटक की बेहतरीन पैरा एथलीट शिल्पा के शायला का स्वागत और सम्मान किया। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में शिल्पा ने शर्मिला धनखड़ के साथ पोडियम फिनिश किया था। शर्मिला पैरा एथलेटिक्स में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली खिलाड़ी रहीं। शर्मिला ने 9.81 मीटर के अपने बेस्ट प्रदर्शन के साथ स्वर्ण पर कब्जा जमाया था। भारत ने 13 स्वर्ण समेत कुल 39 पदक जीते हैं।

0: और अब जन्मदिन विशेष में आज बात उस भारतीय क्रिकेटर की जिन्होंने तेज गेंदबाजी, कोच और प्रशासक के रूप में अहम भूमिका निभाई। आज भारत के दाएं हाथ के तेज गेंदबाज वेंकटेश प्रसाद का जन्मदिन है। एक योद्धा की तरह क्रिकेट के मैदान में विपक्षी टीम से लड़ने वाले वेंकटेश प्रसाद संन्यास के बाद कोच और प्रशासक की भूमिका में सफल रहे। मौजूदा समय में वे कर्नाटक स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। वेंकटेश प्रसाद का जन्म 5 अगस्त 1969 को बेंगलुरु में हुआ था। उन्होंने 1994 में 25 वर्ष की उम्र में भारतीय टीम के लिए डेब्यू किया था। वेंकटेश प्रसाद ने 7 वर्ष के अपने करियर में 33 टेस्ट और 161 वनडे खेले। उन्होंने टेस्ट में 96 और वनडे में 196 विकेट लिए। वेंकटेश प्रसाद के करियर का सबसे दिलचस्प किस्सा पाकिस्तान के खिलाफ रहा है, जो आज भी क्रिकेट इतिहास की चर्चित कहानियों में से एक मानी जाती है। इस मैच में वेंकटेश प्रसाद ने 10 ओवर में 45 रन देकर 3 विकेट अपने नाम किए थे।
1: Response from Amir Sohail is magnificent. He's down the track and really it's been a flat batted tennis shot. Over covers for 4. Well, that's the answer. That's the best way you can answer a batsman. Venkatesh Prasad has clean bowled Amir Sohail. Sohail losing a bit of concentration, having a chat with the bowler and having his off stump peg back next ball. 113 for 2 Pakistan.
2: So let's watch it here. It's a really terrible shot. And by losing his concentration, arguing with the bowler, now look what Pakistan has suffered.
0: वेंकटेश प्रसाद को स्पोर्ट्स कैन की टीम की ओर से जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और श्रोताओं, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस पर आप अपनी राय और सुझाव स्पोर्ट्स कैन की ईमेल sportscan.air@gmail.com पर हमें भेज सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।
3: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं निखिल कुमार। संसद ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाकर 37 करने वाला विधेयक पारित किया। लोकसभा ने डिजिटल बैंकिंग रिकॉर्ड को कानूनी मान्यता देने वाला विधेयक पारित किया। मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने बाल शोषण सामग्री, डीप फेक कंटेंट और प्लेटफॉर्म की खामियों पर केंद्र सरकार से माफी मांगी। देश ने अनुच्छेद 370 और 35A को निरस्त किए जाने के 7 साल पूरे होने का उत्सव मनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, संवैधानिक परिवर्तनों ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विकास तथा सशक्तिकरण का मार्ग प्रशस्त किया। भारत ने इस्लामाबाद को पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में हिंसा समाप्त करने, आतंकी नेटवर्क को खत्म करने और अवैध कब्जे वाले सभी भारतीय क्षेत्रों को तुरंत खाली करने को कहा। और कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में तन्वी शर्मा तथा अनमोल खरब सहित 7 भारतीय महिला खिलाड़ी सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में। और अब समाचार विस्तार से। संसद ने सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इसे आज पारित किया और लोकसभा ने इसे सोमवार को पारित किया था। ये विधेयक सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन करता है। इसके अंतर्गत भारत के मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की वर्तमान संख्या 33 से बढ़ाकर 37 की जाएगी। राज्यसभा में विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के आदर्श वाक्य पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि देश के लोग हर क्षेत्र में सुधार देख रहे हैं और ये विधेयक न्यायिक सुधारों का ही एक हिस्सा है।
5: न्यायपालिका के बढ़ते कार्यभार, न्यायिक विषयों के बदलते प्रकृति व उभरते कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल इंटरप्रिटेशन के नए सवालों को ध्यान में रखकर माननीय सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाना एक समय की मांग और समयानुकूल सुधार भी है, जिसमें संवैधानिक पीठों के अधिक गठन की आवश्यकता भी एक प्रमुख पहलू है।
4: हमारे संवाददाता ने बताया कि विधेयक का उद्देश्य सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों को निपटाना है।
6: सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामलों की बढ़ती संख्या को कम करने के लिए जजों की संख्या में बढ़ोतरी की गई है। इस साल जनवरी तक सुप्रीम कोर्ट में 92,000 से अधिक मामले लंबित थे। वर्ष 2019 से सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश सहित

0: 30 जजों की स्वीकृत संख्या पूरी होने के बावजूद केवल 65,000 से अधिक मामलों का ही निपटारा हो सका, जबकि पिछले साल अदालत में 75,000 से अधिक नए मामले आए। हर साल नए मामलों की संख्या निपटाए गए मामलों से अधिक होने के कारण सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामलों का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में अब जजों की संख्या बढ़ने से मामलों का निपटारा तेज होगा और लोगों को समय पर न्याय मिल सकेगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: लोकसभा में बैंकरों के बही खातों का साक्ष्य विधेयक 2026 पारित हो गया है। विधेयक का उद्देश्य बैंकरों के बही खातों से संबंधित साक्ष्यों के लिए कानून बनाना और इसे समकालीन डिजिटल बैंकिंग कार्यप्रणालियों के अनुरूप बनाना है। इसका लक्ष्य वर्तमान बैंकिंग कार्यप्रणालियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कानूनी ढांचे का आधुनिकीकरण करना है। विधेयक में बैंकरों के बही खातों का इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य, वैध और कानूनी रूप से लागू करने योग्य प्रावधान भी है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई समेत विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण कई बार बाधित होने के बाद दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा में अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया। श्री बिरला ने सभी सदस्यों से प्रश्नकाल के सुचारू संचालन में सहयोग का भी आग्रह किया।
2: संसद चर्चा संवाद के लिए, आपके विचारों की अभिव्यक्ति के लिए प्रश्नकाल में महत्वपूर्ण प्रश्न पूछो। कई विभागों के महत्वपूर्ण प्रश्न है और आप नियोजित तरीके से पोस्टरबाजी करके प्रदर्शन कर सदन की गरिमा को घटाना चाहते हैं।
1: इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि सरकार बच्चों की ऑनलाइन गतिविधियों से जुड़े जोखिमों से अवगत है। श्री वैष्णव ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि सरकार ऑनलाइन सुरक्षा से संबंधित वैश्विक घटनाक्रमों और विकसित हो रहे अंतर्राष्ट्रीय नियामक दृष्टिकोणों से अवगत रहती है। इसमें डिजिटल वातावरण में बच्चों की सुरक्षा के लिए विभिन्न देशों की ओर से अपनाए गए उपाय भी शामिल हैं। मेटा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जुकरबर्ग ने बाल यौन शोषण सामग्री, डीप फेक सामग्री और प्लेटफॉर्म के संचालन में हुई त्रुटियों के लिए केंद्र सरकार से क्षमा मांगी है। सूत्रों के अनुसार मेटा ने स्वीकार किया है कि कुछ विशेष प्रकार की सामग्री को बढ़ावा देने के लिए बड़ी रकम का भुगतान किया गया था। मेटा को स्पष्ट कर दिया गया था कि वे मध्यवर्ती की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आते हैं और वे ही तय करते हैं कि उनके मंच पर दी गई सामग्री किसे प्राप्त होगी। बंबई उच्च न्यायालय ने मेटा एक्स कॉर्प तथा गूगल LLC को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को निशाना बनाकर बनाए गए अपमानजनक, अश्लील और मानहानिकारक सोशल मीडिया पोस्ट को तुरंत हटाने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को ऐसे तंत्र विकसित करने के लिए भी कहा है जिससे पीड़ितों को अदालतों का सहारा लेने की आवश्यकता के बिना ही ऐसी सामग्री को तुरंत हटाया जा सके। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। देश ने आज अनुच्छेद 370 और 35A को निरस्त किए जाने के 7 साल पूरे होने का उत्सव मनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि निरस्त किए जाने के बाद से जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख के लोगों के जीवन में व्यापक बदलाव आया है। उन्होंने कहा कि दोनों केंद्र शासित प्रदेशों में बुनियादी ढांचे का विस्तार हुआ है और शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, उद्यमिता तथा खेल के क्षेत्रों में अवसर बढ़े हैं। उन्होंने कहा कि संविधान पूरी तरह लागू होने से महिलाओं और वंचित समुदाय सहित उन लोगों को भी अधिकार मिले हैं जो दशकों से वंचित थे। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि दोनों अनुच्छेदों को निरस्त करने के बाद राज्य में बहुत विकास हुआ है।
3: धारा 370 और 35 से ये एक विभेदकारी और अन्याय पूर्वक एक धारा थी जिसको समाप्त किया नरेंद्र मोदी जी ने, और उसके बाद जम्मू कश्मीर में विकास की रफ्तार भी तेज हुई। विरासत और विकास दोनों को बल मिला, वहाँ के नागरिकों को रोजगार मिला, पहली बार उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर में इतना काम होते हुए देखा, तो नागरिक तो वहाँ खुश है।
1: जम्मू कश्मीर से राज्यसभा सांसद सतपाल शर्मा ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने को जम्मू कश्मीर के पूर्ण एकीकरण और विकास की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया है।
4: जिस ऊंचाइयों की तरफ आज जम्मू कश्मीर अग्रसर है वो अपने आप में दर्शाता है कि 370 हमारे ऊपर एक कलंक था वो हट गया है। हमारी मातृशक्ति जिसकी शादी हमारे प्रदेश के बाहर होती थी, उनका हक जो था वो छिन जाता था, उनके प्रॉपर्टी राइट्स जो थे वो चले जाते थे। वाल्मीकि समाज के लोग, गोरखा समाज के लोग 370 हटने के बाद उनको उनका हक मिला है।
1: भारत ने आज पाकिस्तान को पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में हिंसा रोकने, आतंकी नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई करने और उसके अवैध कब्जे वाले सभी भारतीय क्षेत्रों को तुरंत खाली करने की सलाह दी। तथाकथित यौम इस्तेहसाल पर पाकिस्तान के विदेश मंत्री की टिप्पणियों के संबंध में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि

0: दुनिया इन सुनियोजित तमाशों से मूर्ख नहीं बन रही है। श्री जायसवाल ने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा हैं, हमेशा से रहे हैं और हमेशा रहेंगे। पंजाब पुलिस ने दिल्ली के जंतर मंतर पर हाल ही में हुए विद्यार्थियों के प्रदर्शनों के दौरान सीमा पार आतंकी मॉड्यूल द्वारा हमला करने की एक योजना का खुलासा किया है। अमृतसर पुलिस ने कल सीमा पार के दो आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया था। जांच के दौरान खुलासा हुआ कि वे दिल्ली में जंतर मंतर पर पेट्रोल बम से हमला करने वाले थे। हालांकि भारी सुरक्षा व्यवस्था को देखकर उन्होंने अपनी योजना छोड़ दी। अमृतसर पुलिस आयुक्त गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने बताया कि नई दिल्ली में हमला करने की कोशिश करने वाले सभी लोग नाबालिगों को ISI द्वारा प्रशिक्षित किया गया था।
1: जो दूसरा मॉड्यूल है पेट्रोल बम फेंकने का और उनको बनाने का ट्रेनिंग दी गई ISI के जो हैंडलर्स हैं उनके द्वारा, और वहाँ उनको बताया गया कि आप पुलिस की एस्टेब्लिशमेंट या सिक्योरिटी एजेंसी की एस्टेब्लिशमेंट या किसी यूनिफॉर्म बंदे का टारगेट करने के लिए उनकी रेकी करो और आपको पैसे दिए जाएंगे। इसके अलावा जो जंतर मंतर पे धरना चल रहा था वहाँ भी ये जाके आए 8 लोग और वहाँ इनको लोकल एक सपोर्ट मुहैया करवाई।
0: झारखंड में रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में JPSC और JSSC परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के खिलाफ छात्रों का विरोध प्रदर्शन जोर पकड़ रहा है। आंदोलनकारी छात्रों ने आगामी मानसून सत्र के दौरान अपनी मांगों को मनवाने के लिए झारखंड विधानसभा का घेराव करने की घोषणा की है। इस बीच भाजपा ने इन प्रदर्शनों पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी की चुप्पी की आलोचना की है। नई दिल्ली में पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने आरोप लगाया कि उन्होंने झारखंड का दौरा इसलिए नहीं किया क्योंकि कांग्रेस राज्य में सत्ताधारी गठबंधन का हिस्सा है। श्री पात्रा ने राहुल गांधी की आलोचना की है कि उन्होंने अपने राजनीतिक उद्देश्यों के लिए मासूम बच्चों को संवाददाता सम्मेलन में घसीटा।
2: जो बच्चे आज राहुल जी के साथ थे उन्हें मैं बहुत प्यार से कहना चाहूंगा कि निडर रहना, बिल्कुल आप घबराना मत। हम विश्व की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी हो सकते हैं, हम सब पार्टीज हो सकते हैं, मगर आप हमारे हैं, प्रधानमंत्री आपके हैं, हम सब आपके साथ हैं। हम ऑपोजिशन की और राहुल गांधी की झूठी नरेटिव यहाँ एक्सपोज करना चाहते हैं।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे NewsOnAIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। हैदराबाद में आज ब्रिक्स भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह की दूसरी बैठक संपन्न हुई। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता में हुई 2 दिन की बैठक का विषय था सुदृढ़शीलता, नवाचार, सहयोग और सतत विकास। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की सचिव रचना शाह ने कहा कि भारत की भ्रष्टाचार को कतई बर्दाश्त नहीं करने की नीति का उल्लेख इस दौरान किया गया। उन्होंने कहा कि सत्यनिष्ठा, सुशासन और सतत विकास की नींव है। बैठक में ब्रिक्स के सदस्यों ने कानून प्रवर्तन विशेषज्ञों के ब्रिक्स नेटवर्क के लिए भारत के प्रस्ताव पर सैद्धांतिक सहमति व्यक्त की। यह नेटवर्क भ्रष्टाचार के मामलों में वांछित भगोड़ों का पता लगाने में सहायता करेगा और प्रत्यर्पण में सहयोग भी करेगा जो वर्तमान कानूनी प्रक्रियाओं का पूरक होगा। सरकार ने विदेश व्यापार नीति 2023 के अंतर्गत कंपनी के पास मौजूद उस कुल सामान, माल या स्टॉक के आधार पर सीमा पार ई कॉमर्स निर्यात ढांचे का कार्यान्वयन शुरू कर दिया है। ये ढांचा भारत में निर्मित या उत्पादित वस्तुओं के इस आधार पर सीमा पार ई कॉमर्स निर्यात पर सुगम बनाने के लिए व्यापक नीति और प्रक्रियात्मक संरचना प्रदान करता है। इसमें कई सुरक्षा उपाय शामिल हैं ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि ई कॉमर्स निर्यात का लाभ भारतीय निर्माताओं तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को मिले और साथ ही नियामक निगरानी भी बनी रहे। सरकार ने कहा है कि मुंबई देश में फिल्म, टेलीविजन प्रसारण, डिजिटल मीडिया और कंटेंट निर्माण का प्रमुख केंद्र बना हुआ है। ये भारत के मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉ. एल मुरुगन ने आज लोकसभा में लिखित उत्तर में कहा कि मंत्रालय ने भारतीय सिनेमा, फिल्मों की विरासत और फिल्म सामग्री के प्रसार को प्रोत्साहन देने के लिए विकास, संचार तथा फिल्म सामग्री के प्रसार की केंद्रीय योजना लागू की है। केंद्र सरकार पत्रकार कल्याण योजना लागू करती है। लोकसभा में लिखित उत्तर में सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉ. एल मुरुगन ने कहा कि योजना के अंतर्गत सरकार ने 2014-15 से 2025-26 तक 456 मीडिया कर्मियों या उनके परिवारों को 19 करोड़ 41 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की है। भारतीय रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष में देश की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 6.7% कर दिया है। बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने आज मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए बताया कि रेपो दर को 5.25% तक रखा गया है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
3: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 152

0: अंक बढ़कर 78,581 पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के निफ्टी में मामूली 10 अंकों की बढ़त हुई और ये 24,625 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया 25 पैसे मजबूत होकर 1 अमरीकी डॉलर की तुलना में 95.13 पर बंद हुआ।
1: कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन में तन्वी शर्मा और अनमोल खरब सहित 7 भारतीय महिला खिलाड़ी सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। इन खिलाड़ियों में ईशरानी बरुआ, मानसी सिंह, रक्षिता श्री रामराज, अश्मिता चालिया और श्रियांशी वलीशेट्टी भी शामिल हैं। वहीं महिला डबल्स में सोनाली सिंह और रितिका ठक्कर तथा मिक्स्ड डबल्स में श्रुति मिश्रा और ईशान भटनागर ने अंतिम 16 में जगह बना ली है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड, झारखंड, गंगा के मैदानी पश्चिमी बंगाल, ओडिशा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा में कल मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। झारखंड, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में भी कल तेज बारिश होने की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाकर 37 करने वाला विधेयक पारित किया। लोकसभा ने डिजिटल बैंकिंग रिकॉर्ड को कानूनी मान्यता देने वाला विधेयक पारित किया। मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने बाल शोषण सामग्री, डीप फेक कंटेंट और प्लेटफॉर्म की खामियों पर केंद्र सरकार से माफी मांगी। देश ने अनुच्छेद 370 और 35A को निरस्त किए जाने के 7 साल पूरे होने का उत्सव मनाया। प्रधानमंत्री ने कहा, संवैधानिक परिवर्तनों ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विकास और सशक्तिकरण का मार्ग प्रशस्त किया। भारत ने इस्लामाबाद को पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में हिंसा समाप्त करने, आतंकी नेटवर्क को खत्म करने और अवैध कब्जे वाले सभी भारतीय क्षेत्रों को तुरंत खाली करने को कहा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening. This is Akashvani. I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Parliament passes bill increasing the strength of Supreme Court judges to 37. Lok Sabha clears legislation giving legal recognition to digital banking records. Meta CEO Mark Zuckerberg apologizes to Government of India over child abuse material, deepfake content and platform lapses. Nation marks 7 years of abrogation of Articles 370 and 35A. Prime Minister Narendra Modi says constitutional changes ushered in development and empowerment in Jammu and Kashmir and Ladakh. New Delhi asks Islamabad to end bloodshed in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir, dismantle terror networks and vacate illegally occupied Indian territories. And at Korea Masters Badminton Tournament, Tanvi Sharma and Anmol Kharb are among 7 Indians to enter second round of women's singles. The Parliament has passed the Supreme Court Number of Judges Amendment Bill 2026, with the Rajya Sabha returning the legislation to the Lok Sabha after discussion. The Lok Sabha had passed the bill on Monday. The legislation amends the Supreme Court Number of Judges Act 1956 for increasing the number of judges of the apex court from the present 33 to 37, excluding the Chief Justice of India. Union Law and Justice Minister Arjun Ram Meghwal moved the bill in the Rajya Sabha. Replying to the debate in the House, Mr. Meghwal said, in view of the increasing workload of the judiciary, the evolving nature of judicial matters and the emerging constitutional and legal interpretation issues, increasing the number of judges in the Supreme Court is the need of the hour and a timely reform. Our correspondent reports that the strength of the judges of the Supreme Court was last increased from 30 to 33, excluding the Chief Justice of India, by amending the original Act through the Supreme Court Number of Judges Amendment Act 2019.
3: The increase in judge strength is one of the viable solutions for tackling the pending backlog of cases in the Supreme Court. As on 1st of January this year, over 92,000 cases are pending in the Supreme Court. Even while working at near full sanctioned capacity of 34 judges, including the Chief Justice of India, since 2019, the Supreme Court recorded institution of 75,410 fresh matters last year, against a disposal of more than 65,000 cases. The volume of litigation in the Supreme Court has constantly been on the rise due to a persistent gap between institution and final disposal of cases in the court. The increase in the number of judges in the Supreme Court is expected to expedite

सुगम संगीत कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे जगजीत सिंह की गाई गजलें। आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। थोड़ी ही देर में हमारा अगला कार्यक्रम चर्चा का विषय है आकाशवाणी दिल्ली से रिले किया जाएगा। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: चर्चा का विषय है।
1: ये आकाशवाणी है, चर्चा का विषय है। कार्यक्रम में प्रस्तुत है साइबर धोखाधड़ी से निपटने और अवैध बैंक खातों पर रोकथाम से जुड़े सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं आर्थिक विश्लेषक शरद कोहली और बैंकिंग विशेषज्ञ अश्विनी राणा। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आनंद श्रीवास्तव।
2: जरा कल्पना कीजिए, एक पिता ने अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए वर्षों तक पैसे जोड़े, एक बुजुर्ग दंपत्ति ने अपनी पूरी जिंदगी की बचत बैंक में सुरक्षित समझकर रखी, एक युवा ने अपनी पहली नौकरी की पहली तनख्वाह खाते में आते ही अपने सपनों की शुरुआत की, लेकिन सिर्फ एक फोन कॉल, सिर्फ एक क्लिक और कुछ ही सेकेंड में सपने भी गायब और बैंक बैलेंस भी। आज अपराधी आपके घर का ताला नहीं तोड़ते, वे आपके भरोसे को तोड़ते हैं, वे आपकी जेब नहीं काटते, वे आपकी पहचान, आपका बैंक खाता और आपकी मेहनत की कमाई चुरा लेते हैं। और हैरानी की बात यह है कि इस पूरे खेल में इस्तेमाल होने वाला सबसे बड़ा हथियार कोई हाईटेक वायरस नहीं है, उस तिजोरी का नाम है म्यूल अकाउंट्स, यानी वो कठपुतली बैंक खाते जिन्हें कभी बेकसूर लोगों के भोलेपन का फायदा उठाकर तो कभी चंद रुपयों के लालच में किराए पर लेकर इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अब इस काले कारोबार पर नकेल कसने के लिए देश की सबसे बड़ी अदालत उच्चतम न्यायालय ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को एक SOP बनाने का निर्देश दिया है जो इन म्यूल अकाउंट सहित साइबर फ्रॉड को रोकने में कारगर साबित हों। लेकिन सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि SOP कैसी होगी, सवाल यह है कि क्या हम अनजाने में किसी साइबर गैंग का हिस्सा तो नहीं बन रहे? क्या सिर्फ एक गलती हमारी पूरी जिंदगी की कमाई छीन सकती है? इन्हीं सवालों का जवाब तलाशेंगे आज के कार्यक्रम में। आज हमारे साथ जुड़े हैं दो बेहद खास मेहमान, अर्थशास्त्री और वित्तीय मामलों के विशेषज्ञ शरद कोहली और बैंकिंग विशेषज्ञ अश्विनी कुमार राणा जी। आप दोनों का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आनंद, आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा अभिवादन।
4: जी नमस्कार
2: शरद जी, आपके साथ शुरुआत करते हैं और सबसे पहला प्रश्न जो यही होगा कि म्यूल अकाउंट्स, बहुत सारे लोग जो आकाशवाणी से जुड़े हैं और ये कार्यक्रम सुन रहे हैं, हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के लिए ये शब्द पहली बार हो, आप बहुत ही व्यवहारिक बोलचाल की भाषा में अगर लोगों को समझा पाएं कि म्यूल अकाउंट्स होते क्या हैं।
3: आपने बिल्कुल ठीक कहा, बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं म्यूल अकाउंट क्या होता है। देखिए म्यूल अकाउंट जो साइबर क्रिमिनल्स होते हैं, जो व्यक्ति गलत इंटेंशन से पैसे किसी से वसूलना चाहता है, किसी को फ्रॉड द्वारा किसी से पैसे लेना चाहता है, कोई गलत जानकारी दे के पैसे लेना चाहता है, तो होता क्या है कि जब आप बैंक में अकाउंट खुलवाते हैं तो बैंक में तो पूरा KYC किया जाता है। बैंक में आप कौन है, आपका आधार, आपका पैन नंबर, आपका एड्रेस वगैरह बैंक में सब रिकॉर्डेड होता है। तो यदि वो क्रिमिनल अपने नाम से बैंक अकाउंट खुलवाता है तो लाजमी बात है उसका तो पकड़ा जाना लगभग तय हो जाता है। तो ऐसे में ये शातिर दिमाग क्या करते हैं कि ये किसी भोले भाले व्यक्ति का, किसी दूसरे व्यक्ति को, उसको कुछ पैसे का लालच देकर, उसको और लालच देके उसके अकाउंट का प्रयोग करते हैं किसी व्यक्ति से गलत तरीके से पैसे वसूल करने में। यानी कि म्यूल अकाउंट का मतलब है अपने अकाउंट में पैसे ना लेके किसी भोले भाले इनोसेंट व्यक्ति को, जिसको ज्यादा जानकारी नहीं है, जो बैंकिंग के बारे में ज्यादा, आपको पता ही है जनधन खाता खोलने के बाद देश में तो ज्यादातर लोगों के अब बैंक अकाउंट है, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बैंकिंग के बारे में ज्यादा नहीं जानते हैं। किसी ने जाके कहा कि भाई आप अपना ऐसा करो, मेरे पास बैंक अकाउंट नहीं है, आपके बैंक अकाउंट में कुछ पैसे आएंगे और उसके बदले में कुछ उसकी परसेंटेज आप रख लेना। तो आप अनजाने में किसी साइबर क्रिमिनल, जो कि फ्रॉड करना चाहता है, उसके एक तरह से पार्टनर बन जाते हैं। और ज्यादातर लोग जो मैंने इसमें आनंद देखे हैं, वो लोग बिल्कुल ही इनोसेंट होते हैं, उनको कुछ नहीं पता होता। बाद में जब उनके सामने सारा कुछ आता है, उनका अकाउंट फ्रीज हो जाता है, FIR हो जाती है, पुलिस तहकीकात करती है, साइबर डिपार्टमेंट तहकीकात करता है, तब पता लगता है ये तो हम किसी गलत चक्कर में फंस गए। तो म्यूल अकाउंट का मतलब है कि अकाउंट आपका पर करतूत किसी और की, और नाम आपका आगे आएगा अगर हम इसको सरल शब्दों में कहें।
2: जी हाँ बिल्कुल, अश्विनी जी आपसे समझना चाहेंगे कि

0: आनंद देखे हैं, वो लोग बिल्कुल ही इनोसेंट होते हैं, उनको कुछ नहीं पता होता। बाद में जब उनके सामने सारा कुछ आता है, उनका अकाउंट फ्रीज हो जाता है, FIR हो जाती है, पुलिस तहकीकात करती है, साइबर डिपार्टमेंट तहकीकात करता है, तब पता लगता है ये तो हम किसी गलत चक्कर में फंस गए। तो म्यूल अकाउंट का मतलब है कि अकाउंट आपका पर करतूत किसी और की, और नाम आपका आगे आएगा अगर हम इसको सरल शब्दों में कहें।
1: जी हाँ बिल्कुल। अश्विनी जी आपसे समझना चाहेंगे कि आज के समय में डिजिटल अरेस्ट, पार्ट टाइम जॉब स्कैम और फर्जी ट्रेडिंग ऐप जैसे कई तरीकों से आम लोगों को शिकार बनाया जा रहा है। आंकड़े ये भी बताते हैं कि साइबर फ्रॉड से देश को हजारों करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। आर्थिक और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से अगर हम देखें तो ये किस तरह का खतरा है कि उच्चतम न्यायालय को, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को निर्देश देना पड़ा?
2: जिस प्रकार से मैंने वो स्टडी किया है जो सुप्रीम कोर्ट ने बैंकों को कहा है SOP बनाने के लिए, बिल्कुल अच्छी बात है। और उसके लिए आपकी जानकारी के लिए रिजर्व बैंक ने एक AI टूल भी जनरेट किया है म्यूल हंटर के नाम से, और उसने कुछ काम करना शुरू किया है म्यूल अकाउंट को डिटेक्ट करना, उसमें क्या ट्रांजेक्शन्स किसी ऐसे खाते में जिसमें बैलेंस नहीं है, बड़ा कुछ बैलेंस आ रहा है, उस तरह का शुरुआत किया है। लेकिन और भी जरूरत है, और उसमें मुझे लगता है SOP बनाने के साथ साथ बैंकों में जो खाते खोलने का जो सिस्टम है उसका ड्यू डेलिजेंस भी बहुत जबरदस्त करना पड़ेगा, क्योंकि अभी खाते जो हैं वो कैसे भी खुल जाते हैं, जब ऐसे खुलते हैं तो वो आगे बिक जाते हैं। थोड़ी साहब ने भी ठीक कहा कि म्यूल अकाउंट वही है, और खाता खोलने के लिए आपको एक सिम चाहिए, और सिम भी आपको सड़क पर फर्जी आपके डॉक्यूमेंट के साथ मिल जाता है। तो इससे ये दोनों अगर चीजें जो है हो जाए तो इससे कंट्रोल हो सकता है। और जहां तक डिजिटल अरेस्ट की बात है तो उसके लिए हम बैंकों को सीधा सीधा नहीं जिम्मेवार ठहरा सकते, क्योंकि व्यक्ति खुद ही अगर कोई उसमें फंस गया है और तैयार हो, और आजकल तो बैंक इम्प्लाइज को भी बैंक इतना ट्रेन कर रहा है कि कोई आदमी आता है और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मनी निकाल रहा है या कोई टेंशन में है तो उसको जो है काउंसलिंग की जाती है, और ऐसे बहुत सारे केस बैंकों ने बचाए हैं। तो बिल्कुल जरूरत है, क्योंकि इस तरह का जो फ्रॉड है और जो लोगों का पैसा है उसको सुरक्षित रखना बैंकों की जिम्मेवारी है, और उसके लिए बैंक का जो है और आगे टेक्नोलॉजी वाइज जो है अपग्रेड हो, ये बहुत जरूरत है।
1: शरद जी, जो लोग ये कार्यक्रम सुन रहे हैं उनमें से बहुत सारे लोग साइबर ठगी का कभी ना कभी शिकार भी हुए होंगे। जो लोग इससे सतर्क होना चाहते हैं, सजग होना चाहते हैं, सरकार ने 1930 का एक पोर्टल भी बनाया है जहां पर आप जाकर कंप्लेन कर सकते हैं, और कहते हैं कि अगर आपके साथ साइबर ठगी हुई है तो शुरुआती घंटे बहुत महत्वपूर्ण होते हैं ताकि बैंक उस खाते को फ्रीज कर सके, यानी आपके पैसे आगे बढ़ने से रुक सके, शुरुआती पहल क्या करनी चाहिए? एक नागरिक जो ये कार्यक्रम सुन रहा है, साइबर ठगी अगर उसके साथ हो गई, उस समय उसको शुरुआती घंटों में किस तरह के सुरक्षात्मक उपाय उठाने चाहिए?
0: सबसे पहले तो इसमें आनंद ये है कि पहले कोशिश तो ये करें कि आप इस साइबर ठगी का शिकार ही ना हो। तो अब बहुत सारे लोग जो शिकार हुए हैं उन सब से आप बात करेंगे, मैंने कुछ लोगों से बात करी पीछे, मुझे निरंतर मिलते रहते हैं, उनका ये कहना है कि भाई उस समय तो हमें पता नहीं होता, अगर हमें उस समय पता होता तो हम शायद कोई पैसा ना ट्रांसफर करते, या जिसको डिजिटल अरेस्ट कहते हैं, घंटों तक आप स्क्रीन के आगे आपको बैठाए रखा जाता है, आपको ब्लैकमेल किया जाता है कि आपकी फोटो हम उस पे डाल देंगे, हम AI से ये करके, दुनिया भर की धमकियां उसमें दी जाती है। अब अगर आप शिकार हो ही चुके हैं तो इसमें मुझे लग रहा है कि लोग क्या होता है शिकार होने के बाद, एक अंग्रेजी में बोलते हैं स्टेट ऑफ शॉक, कि आप ऐसे अचंभे में पड़ जाते हैं जैसे ही आपको पता लगता है। तो पहले तो आपको पता लगना चाहिए कि आप शिकार हो चुके हैं, जैसे ही पता लगे फौरन आपको, जैसे आपने नंबर दिया 1930, वहां पर आप कॉल करें, कॉल करके सारा मामला बताएं, आपसे पूछा जाएगा, नहीं तो जो नियरेस्ट आपके कोई साइबर पुलिस स्टेशन है, नहीं तो आप एक साधारण पुलिस स्टेशन में भी जाएंगे तो वहां पर पुलिस वाले आपकी मदद करते हैं। हर राज्य में, हर केंद्र शासित प्रदेश में एक साइबर का पुलिस का सेल है, और ये जरूरी नहीं कि जिस शहर में, जिस गांव में आप हो वहां पर ये सेल हो, ये तो जरूरी नहीं है, परंतु सभी पुलिस स्टेशन को हिदायत दी गई है कि आपके पास अगर कोई साइबर ठगी का कोई विक्टिम आता है, कोई व्यक्ति जिसके साथ फ्रॉड हुआ है वो आता है, तो आप तुरंत उस पुलिस स्टेशन के पास, वहां का नंबर होता है, आप उससे संपर्क कराएं। बहुत जल्दी एक्ट करना, आपने बड़ी अच्छी बात करी कि बहुत जल्दी एक्ट करना इसलिए जरूरी है क्योंकि ऐसे जो शातिर दिमाग होते हैं, जो लोग इस कार्य में लगे हुए हैं, वो मल्टीपल अकाउंट्स को यूज करते हैं, यानी बहुत सारे अकाउंट्स के संपर्क में रहते हैं, और ये पैसा एक जगह पहुंच के उसके बाद अमूमन ऐसा देखा गया है कि कई अकाउंट्स में जाके बट जाता है, उसको लॉन्डर कर दिया जाता है पैसे को, जिससे कि अगर एक अकाउंट फ्रीज भी हो, एक अकाउंट पकड़ा भी जाए, तो आप दूसरे अकाउंट तक हम पहुंच जाए, तीसरे अकाउंट पर। तो इसलिए अगर आप जल्दी नहीं एक्ट करेंगे तो तब तक पैसे के लिए बाद में साइबर सेल को, पुलिस को उस पैसे को वापस लाने में, उस पैसे को रिकवर करने में और भी ज्यादा कठिनाई आएगी, क्योंकि जितने ज्यादा अकाउंट्स होंगे उतनी ज्यादा कठिनाई आएगी, उतना ही ज्यादा समय भी लगेगा, और मैं ये भी बता दूं साथ में चांसेस भी फिर कम हो जाते हैं इस पैसे के रिकवरी के। इसलिए अगर आप देखें कि कोर्ट ने जो आनंद जो SOP जारी किया है, उस SOP में क्या क्या चीजें, आप देखिए अगर SOP को देखेंगे

0: आपके सवाल का पार्टली यहां से भी जवाब निकल जाता है. पहले सब केंद्र शासित प्रदेशों को राज्यों को कहा गया है कि आप एक ग्रीवेंस रिड्रेसल सेल बना दीजिए भाई. वो तो साइबर में होता है, जैसा मैंने आपको अभी बताया कि हर पुलिस स्टेशन को निर्देश दिए जाएंगे अगर आपके यहाँ साइबर नहीं भी है तो आप जैसे ही आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति आए आप उसको साइबर सेल से कनेक्ट कर दीजिए. दूसरा फिर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज क्या करते हैं, कई बार कंप्लेंट नहीं लिखते, उनको कहा गया है कि आप इस कंप्लेंट को लिखेंगे भी, FIR भी करेंगे और आप जल्द से जल्द उसका निस्तारण करने की भी चेष्टा करेंगे. ये नहीं कहेंगे कि जी ये तो आप साइबर सेल के पास जाइए, आप ये तो हमारा थाना इसको देखता नहीं है वगैरह वगैरह. दूसरा इसमें देखिए आनंद समझना होगा कि इसमें बैंकों का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि पैसा किस माध्यम से गया, UPI से गया या किसी और ऐप के थ्रू गया, गया तो बैंक के माध्यम से. पैसा तो बैंक के माध्यम से जब भी आप पेमेंट इंटरफेस यूज करेंगे तो बैंकिंग चैनल तो उसमें चाहिए चाहिए. तो बैंक्स को भी सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्व बैंक के थ्रू निर्देश दिए हैं कि बैंक भी पूरा कोऑपरेट करें, क्योंकि ऐसे में बैंक क्या कहता है जी हमें क्या पता, वो तो आपने ट्रांजैक्शन किया होगा, आपने एक देने वाला कोई लेने वाला कोई, तो जब ऐसा कोई कस्टमर बैंक का आ रहा है बैंक के पास तो बैंक को भी उसको पूरा ध्यान देना. दूसरा देखिए मामला कहां जाता है, अगर राज्यों की हम बात करें, अब सुप्रीम कोर्ट तो सारा देखेगा नहीं, हर राज्य में हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट्स को साथ में बोला गया है कि आप जो लोअर लेवल के कोर्ट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, सेशंस कोर्ट है, उसमें आप पूरा सहयोग करें सबऑर्डिनेट कोर्ट्स को, उनको पूरे मैकेनिज्म के बारे में बताएं, यानी कि सुप्रीम कोर्ट इसको हाई कोर्ट्स को भेजेगा, हाई कोर्ट्स आगे लोअर कोर्ट्स इसको हम बोलते हैं उनको निर्देश देंगे कि इन मामलों को किस तरीके से जल्द निस्तारण करना है. उसके बाद स्टेट वाइज और बैंक वाइज ये भी कहा गया आनंद के, स्टेट वाइज बैंक वाइज रिपोर्ट्स निकाली जाए बकायदा, जो कि कंप्लेंट को पूरी तरह से कम समय में सर्कुलेट कर दे. और इंटर डिपार्टमेंटल कमेटी जो कि बैंक को कंसल्ट करती है उसको भी एक्टिवेट किया गया, जिससे जो बीच में जो इंटरमीडिएट्स, क्योंकि देखिए होता क्या है जितने भी साइबर क्रिमिनल्स हैं और जो लोग इसके पीड़ित हैं उन्होंने एक शिकायत करी कि जी हमें एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, वो कहता है बैंक करेगा, बैंक कहता है नहीं इंटरमीडिएट करेगा, इंटरमीडिएट कहता है ऐप वाला करेगा, ऐप वाला कहता है पुलिस स्टेशन करेगा. तो ये जो लंबी चेन है इन सबकी एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बननी चाहिए, क्योंकि ऐसा व्यक्ति एक फेसलेस क्रिमिनल है आपके सामने, आपको उसका चेहरा नहीं मालूम है. तो आपको जब तक सारे के सारे विभाग एक साथ कोऑर्डिनेटेड वे में संयुक्त तरीके से काम नहीं करेंगे, यूनिफाइड तरीके से काम नहीं करेंगे, तो ये इस क्रिमिनल को पकड़ा नहीं जा सकता. तो ये SOP जो मैंने बताया, इस SOP के अंतर्गत एक स्कीम बनाई गई है, एक मुहिम लाई गई है कि चौतरफा उसको घेरा जाए कि ऐसा व्यक्ति बच के निकल ना पाए. आनंद
1: जी, अश्विनी जी आपसे थोड़ा ये समझने की कोशिश करेंगे, शरद जी भी अपनी बात में उसका चर्चा कर रहे थे, जो 14C पोर्टल है या फिर E0 FIR है और न्यू मनी रिस्टोरेशन मॉड्यूल की जो चर्चा हो रही है, उससे पीड़ितों को कितनी तेजी से रिफंड मिल सकेगा?
2: देखिए क्या है कि अभी ये मिलना चाहिए ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन निश्चित रूप से अभी जो भी उसका जो सिस्टम है, ढांचा है, वो बहुत अच्छा नहीं है हम कह सकते हैं. कारण क्या है कि साइबर थानों में जो लोग डिप्यूटेड है वो उस तरह से उन चीजों को निपटने के लिए उतने एक्सपर्टाइज नहीं है और वो उस तरह से व्यवहार भी नहीं करते, लेकिन अब वो कहा गया है तो वो बिल्कुल होना चाहिए. दूसरा मैं ये कह रहा हूँ कि जो रिजर्व बैंक एक एफर्ट्स कर रहा था वो अभी तक हो जाए तो इसमें और लोगों को लाभ मिल सकता है कि जो एक डिले, एक घंटे के डिले पेमेंट जो है का जो प्रस्ताव रिजर्व बैंक का था कि अगर 10,000 से ज्यादा की पेमेंट UPI से हो रही है तो वो आप एक घंटे के बाद वो जो है वो ऑपरेटिव हो, मतलब आपने पैसा डाल दिया लेकिन वो एक घंटे के बाद उसके बीच में कभी आप रोक सकते हैं. तो बड़े अमाउंट के लिए, ट्रांजेक्शन के लिए अगर इस प्रकार का जो सिस्टम आ जाता है तो उससे जो एक आदमी फंस गया है और उसको मुश्किल में और उसको समझ आता है तो वो उसको रोक सकता है. तो इसलिए अभी रिजर्व बैंक भी अपने तरीके से काम कर रहा है, लेकिन क्या होता है ना कि सुप्रीम कोर्ट निर्देश दे सकता है लेकिन नीचे धरातल पर उतरने के लिए निश्चित रूप से बैंकों को, एक्सपर्ट्स को, रिजर्व बैंक को, इन सबको जो है मिलके, और साइबर एक्सपर्ट्स जो लोग हैं वो थानों में भी वैसी पुलिस, ताकि और उसके कारण से ये निपटारा, नहीं तो हम नई नई चीजें बन 1930 है, आप फोन करेंगे तो आपको निश्चित रूप से वहां पर रिप्लाई मिला है, वो ऑल इंडिया एक लाइन है, लेकिन कई बार देखने में आता है कि वहां पर रिस्पॉन्स जो है, जो वहां पुलिस है उसका उतना लोगों को नहीं होता, तो लोग एकदम से वो हो जाते हैं. और उसके साथ साथ लोग अगर 1930 के साथ साथ अपने बैंक को भी ये कॉन्टेक्ट करते हैं, बात करते हैं, तो वहां पर भी अपनी ट्रांजेक्शन को फर्दर वो रोक सकते हैं और बैंक अगर कोशिश करता है तो जहां वो पैसा गया है उसको भी आगे रोका जा सकता है. ऐसा सिस्टम डेवलप होना चाहिए, अभी वो है, लेकिन और फास्ट वो अगर होता है तो लोगों को उसका लाभ हो सकता है.
1: शरद जी, साइबर फ्रॉड का पैसा केवल भारत के भीतर नहीं घूमता जैसा आप भी बता रहे थे, बल्कि ये म्यूल अकाउंट से होते हुए

0: क्रिप्टो करेंसी, पीयर टू पीयर एक्सचेंजेस और हवाला नेटवर्क के जरिए साउथ ईस्ट एशिया या फिर यूरोप के कई देशों में डाइवर्ट कर दिया जाता है। एक अर्थशास्त्री के नाते भारत के विदेशी मुद्रा भंडार और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी FDI के भरोसे पर इस इंटरनेशनल मनी ट्रेल और कैपिटल ड्रेन का क्या आप दूरगामी आर्थिक प्रभाव देख रहे हैं?
1: देखिए, आपने जो बात कही पहले उसमें हमें समझना होगा कि भारत में अगर रुपए में पैसा आपका कनेक्ट हुआ है तो उसको अगर आपको विदेश भेजना है तो अंटिल एंड अनलेस कि उस देश के साथ हम रुपी और उसकी करेंसी में एक एग्रीमेंट नहीं हुआ हुआ है तो आप रुपी में तो भेज नहीं पाएंगे उसको। ये जनरली जो आप कह रहे हैं वहां होता है जहां पर आपका कोई क्रिमिनल विदेशी है या आपसे विदेशी मुद्रा में कह रहा है कि आप डॉलर में पेमेंट कर दीजिए। उसके लिए डॉलर किसी आम आदमी को या कोई और करेंसी किसी आम आदमी को, यूरो है, पाउंड है, किसी आम आदमी के लिए ऐसे आसानी से लेना संभव नहीं है। उसके लिए बैंक में एक A2 फॉर्म होता है, आपको पर्पस बताना होता है आप डॉलर क्यों इशू कराना चाहते हैं। और मैं जो जिसपे ज्यादा प्रकाश डालना चाह रहा था आनंद आपकी इजाजत से, वो था कि अभी मैंने बहुत सारे लोगों से बात करी और कुछ लोग जो इसका शिकार हुए थे, जिनको दिक्कतें आई, जो पीछे शिकार हुए हैं, उन्होंने तीन चार कॉमन जो समस्याएं निकल के आई जिसकी वजह से मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट को इसमें दखल देना पड़ा। सबसे पहली समस्या थी कि जब पुलिस स्टेशन जाके आप FIR कराते हैं, जब हम जल्दी करने की बात कर रहे हैं तो FIR करने में डिले होती है, जिसके बारे में मैंने अभी हल्का सा जिक्र भी किया। दूसरा होता है कि जैसे ही पता लगता है, अब मान लीजिए पता लग गया कि किस अकाउंट में पैसे गए हैं, तो तुरंत निर्देश दिए जाने चाहिए उस अकाउंट को फ्रीज करने के। अब ये तो म्यूल अकाउंट है, यानी कि ये अकाउंट तो किसी दूसरे व्यक्ति का है। अब उस व्यक्ति का उसने किसी और के लिए ये काम किया, यानी किसी और को अपने अकाउंट को बेच दिया या अपने अकाउंट को किराए पे दे दिया या किसी लालच में आके किया, तो उस व्यक्ति का अकाउंट फ्रीज हो जाता है। अब उस व्यक्ति ने तो फ्रॉड किया नहीं है, वो तो शिकार हुआ है लालच का या शिकार हुआ है किसी और के चक्कर में। तो अब इसमें क्या है कि आपको जो कोऑर्डिनेशन है बैंक और पुलिस स्टेशन के बीच में, वो मुझे लगता है बहुत सुदृढ़ करने की जरूरत है, क्योंकि वो कोऑर्डिनेशन की कमी होने की वजह से पुलिस के इंस्ट्रक्शन आएंगे, बैंक तब फ्रीज करेगा, बिना उसके तो फ्रीज करेगा नहीं बैंक। तो इसमें स्पीड स्पीड करने की जरूरत है। दूसरा, एक दफे अकाउंट फ्रीज हो गया तो उसको टाइमली हियरिंग्स करके अनफ्रीज करने की भी जरूरत है, क्योंकि हो सकता है उस व्यक्ति के पहले से मान लीजिए कुछ पैसे उस बैंक में पड़े हो। इसके अलावा ये व्यक्ति जो पैसे की ट्रांजैक्शन कर रहा है, जिसने उसको म्यूल अकाउंट बनाया है, वो व्यक्ति अपने पैसे यूज कर रहा है पर उसके पैसे उसमें ऑलरेडी पड़े हुए हैं। अब उसका तो अकाउंट फ्रीज हो गया, तो उसके जो पैसे पड़े थे वो भी फ्रीज हो गया, या उसको कल को बैंक अकाउंट की जरूरत पड़ी तो उसका अकाउंट फ्रीज पड़ा है। तो मुझे लगता है टाइमली हियरिंग करके उसको डीफ्रीज करना भी जरूरी है। दूसरा, एक और जो सबसे बड़ी शिकायत मेरे सामने आई आनंद, जो लोगों से मैंने जब बात करी कि रिकवरी रेट बहुत कम है। मतलब जो फ्रॉड, मान लीजिए मैं मानता हूँ 1 लाख रुपए का अगर फ्रॉड हुआ है कुल, मैं एक उदाहरण के तौर पर ले रहा हूँ, तो 1 लाख रुपए में मान लीजिए 8 व्यक्ति शामिल हैं, 12-12 हजार, 12.5 हजार, इतने लोगों के साथ फ्रॉड हुआ है, तो रिकवरी रेट बहुत पुअर है। उसमें से मात्र 5-10 हजार रुपए, 5%, 10% रिकवरी हो पाती है। और उस रिकवरी रेट कम होने का कारण जो मैंने आपको बताया कि लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन विभिन्न, अब एजेंसीज कौन सी, हम एक बार फिर से देख लेते हैं, हमारे श्रोताओं को सुननी बहुत जरूरी है। पुलिस स्टेशन हो गया जहां पहले रिकॉर्ड करेंगे, जहां पहले रिपोर्ट करेंगे 1930 पे कर रहे हैं तो वहां ठीक है, आप अपने नजदीक के पुलिस स्टेशन जा रहे हैं वो आपको साइबर सेल से कनेक्ट करें, वहां बैंक दूसरी एजेंसी हो गई। दूसरा, जिस प्लेटफॉर्म से आप पेमेंट कर रहे हैं, कई दफे ऐसा होता है कुछ खरीद बेच लोग कर रहे होते हैं, आपको कोई सामान बेचने की कोशिश कर रहा है किसी कंपनी का नाम देके कि ये प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है आप पहले पेमेंट कर दीजिए, या कोई आप सर्विस ले रहे हैं तो किसी कंपनी का नाम लेके सर्विस की जा रही है, तो उस कंपनी को भी इन्फॉर्म करना बहुत जरूरी है। तो मुझे लग रहा है जितनी इसमें जितनी जानकारी काम आती है आनंद, उससे ज्यादा अंग्रेजी में कहावत होती है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो अगर आप इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, मैं समझता हूँ जितनी जानकारी आज इस शो के माध्यम से जो लोग हमको सुन रहे हैं उनको मैं सबसे पहले तो कहना चाहूंगा कि कोशिश तो करें कि आप इसका शिकार ना हो। और जैसे जैसे साइबर फ्रॉड के बारे में आप अखबार में भी इश्तेहार आते हैं, आकाशवाणी इसको लगातार चलाता है कि आप साइबर फ्रॉड के शिकार ना हो, तो आपको चौकन्ना रहना है। मुझे लगता है लोगों का चौकन्नापन सबसे ज्यादा कारगर है, और अब हो गया है तो उसके बारे में हम चर्चा यहाँ पर कर ही रहे हैं। सबसे बड़ा सुप्रीम कोर्ट के इस निर्देश का फायदा आनंद जो मुझे नजर आता है कि ये एजेंसी अभी भी काम कर रही है, ऐसा नहीं कि कोई नई एजेंसी को सुप्रीम कोर्ट ने लाने को बोला है, कोई नई एजेंसी नहीं है। हाँ, एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बन सकती है, परंतु इन एजेंसी को आपस में तालमेल जो है उससे काफी हद तक ये रिकवरी 50-60% तक जा सकती है अगर कोऑर्डिनेटेड वे में, यानी कि पूरे संगठित तरीके से ये सारी की सारी एजेंसीज काम करें।
0: जी हाँ, रिकवरी से जुड़े अगर कुछ आंकड़ों पर नजर डालें तो 2021 में सिटीजन फाइनेंशियल साइबर फ्रॉड रिपोर्टिंग एंड मैनेजमेंट सिस्टम शुरू किया गया सरकार की तरफ से, और इसके माध्यम से वित्तीय धोखाधड़ी की सूचना मिलते ही संबंधित राशि को जल्द से जल्द रोकने का प्रयास किया जाता है। 31 जनवरी 2026 तक इस व्यवस्था के माध्यम से 24,65,000 से अधिक शिकायतों में 8,690 करोड़ रुपए से अधिक की राशि बचाई जा चुकी है, लेकिन ये आंकड़े

0: अभी भी बहुत कम है, जैसा कि शरद जी बता रहे हैं। अश्विनी जी, आपसे दो व्यवहारिक सवाल पूछना चाह रहा हूं। सबसे पहले कि जब बैंकों का सिस्टम इतना मजबूत है, अगर मैं या कोई भी इस देश का नागरिक बैंक में अपना खाता खुलवाने जाता है, तो केवाईसी की सुविधा उपलब्ध होती है, सारी जांच पड़ताल की जाती है, ई केवाईसी भी होता है, इन सब के बावजूद म्यूल अकाउंट्स बड़ी तादाद में खुलना, क्या बैंकों के जो संस्थागत ढांचे में कोई कमी है? और दूसरी बात, जिस तरफ शरद जी इशारा कर रहे थे कि साइबर ठगी से बचने की जरूरत है, आज के आधुनिक दौर में जब तकनीक की भरमार है, किन बातों का ध्यान रखा जाए?
1: बिल्कुल, मैं दो बातें बताऊंगा कि खाता खुलने के लिए क्या चाहिए। आपको अपना कोई डॉक्यूमेंट चाहिए, फिर आपको एक सिम चाहिए, एक नंबर चाहिए, फ्रॉड करने के लिए भी यही चाहिए। सिम आपको पटरी पे मिल जाता है, जब तक उसको ड्यू डेलीजेंस के साथ, सख्ती के साथ वो नहीं इश्यू होगा, ये काम होते रहेंगे। दूसरा, खाता खोलने के लिए भी बैंकों पर इतना दबाव रहता है कि टारगेट्स पूरे करके आप इतने खाते खोलो, और फिर कई बार वो खाते प्राइवेट एजेंट्स के थ्रू खोल जाते हैं। बीसी मॉडल है, यानी बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट मॉडल है, उसमें ज्यादातर लोगों को वो गुमराह करके उनके खाता खोल लेते हैं, और बाद में उनको बेचारों को पता ही नहीं लगता कि उनके नाम खाता खुल गया और खाता कहीं और भेज दिया जाता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि एक सिम इशू और खाता खोलना, ये बहुत ड्यू डेलिजेंस के साथ, सख्ती के साथ इसके ऊपर खुलने चाहिए। दूसरा, जहां आपने कहा कि बचने के लिए, क्या होता है कि हम ट्रैप कहाँ होते हैं, हम लालच में ट्रैप होते हैं। सोशल मीडिया पर इतने तरह के प्रलोभन आते हैं कि हम फटाक से उसमें फंस जाते हैं और उसके अंदर हम फंस जाते हैं। डिजिटल अरेस्ट समझ सकते हैं कि आपके पास फोन आया, आपको उन्होंने वो किया, लेकिन यहाँ तो हम खुद ही फंस रहे हैं। जो सोशल मीडिया पर इतनी सारी एड आती हैं, हमें सोचना होगा कि ये हमें क्यों फ्री दे रहा है, या हमें ये क्यों एक्स्ट्रा दे रहा है। मार्केट में इसका रेट ज्यादा है, ये हमें सस्ता, इतना सस्ता कैसे मिल रहा है। या किसी ने हमें रेस्टोरेंट में, हम खाना खाने के अगले दिन फोन आ गया कि भाई आपको फ्री जो है एक और डिनर या ब्रेकफास्ट दे रहे हैं, तो वो क्यों? यानी वो अगर हम थोड़ा सा भी अपने दिमाग के इसको खोल के रखेंगे ना, तो मुझे लगता है हम उस ट्रैप में नहीं फंसेंगे। लेकिन हम आंख बंद करके सोशल मीडिया पर टक टक टक टक करते जाएंगे तो हम उनके ट्रैप में फंस जाएंगे। तो दो चीजें हैं, एक तो बचना है और दूसरा, सरकार को इस खाते को खोलने और सिम को इशू करने के लिए जब तक सख्ती नहीं होगी, आप इन चीजों को नहीं रोक सकते।
0: शरद जी, जब हम साइबर फ्रॉड की बात कर रहे हैं या इससे जुड़े रोकथाम की बात कर रहे हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात न करें, तो ये चर्चा अधूरी रहेगी। पहले के ज़माने में जो पारंपरिक मनी लॉन्ड्रिंग होती थी, उसके मुकाबले जो एआई के इस्तेमाल से अब डिजिटल मनी लॉन्ड्रिंग की गति बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई है। एआई दोनों ही तरीकों में इस्तेमाल हो रहा है, पहली तो साइबर ठगी में और दूसरा उसके बचाव में भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पूरे परिदृश्य में दोनों तरफ से एआई की भूमिका को कैसे देख रहे हैं आप?
2: देखिए, अगर हम एआई की भूमिका पहले उस तरफ से देखें कि क्या हम ठगी से बच सकते हैं, मुझे लगता है ज्यादा जरूरी वो है। तो एआई के अभी टूल्स आप बैंक तो लगा सकता है, पर एक किसी निजी व्यक्ति के लिए ये टूल लगाना कि ये असली है नकली है, क्योंकि एआई में भी आपके सामने जो शख्सियत आती है, क्योंकि फेसलेस काम होता है, ज्यादातर तो फेसलेस होता है, बहुत कठिन होगा। और इसमें मैं अभी जो अश्विनी ने बात कही, मैं आपकी इजाजत से उसमें जोड़ना चाहूंगा, ये आपके सवाल से भी बात जुड़ी हुई है। जब मैंने प्रिवेंशन की बात करी कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी कि आप कोशिश करें कि आप इसमें फंसे ना। अब देखिए, हम म्यूल अकाउंट की बात कर रहे हैं। अब जिस व्यक्ति ने म्यूल अकाउंट खुलवाया है, उसकी तो ड्यू डिलीजेंस पूरी है, उसने अपना आधार दिया है, उसने अपना पैन दिया है, उसके पास वो नंबर भी, सिम कार्ड, जैसे अश्विनी पटरी वाले बता रहे थे, उसके पास पटरी वाला नहीं, उसने बकायदा एक ऑथोराइज्ड सेंटर से जाके सिम लिया है, परंतु अकाउंट खुलवा लिया, अब बाद में वो लालच में आ गया। तो मैं यहाँ पर जो बड़ा संदेश जो मैं देना चाहता हूँ, जो लोग हमको सुन रहे हैं, आकाशवाणी की पहुंच तो पूरी देश में है, तो मैं उनको ये कहना चाहूंगा, आपके पास यदि कोई भी व्यक्ति आता है और वो कहता है कि हमारा बैंक अकाउंट नहीं खुल रहा है, आपका बैंक अकाउंट हम इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपको उदाहरण देता हूँ, मैं ये मेरे साथ बीता हुआ है, किसी स्टूडेंट का मेरे पास आया, उसने कहा जी मेरे बैंक अकाउंट अभी खुलवाया है मेरे पेरेंट्स ने, और मेरे पास कोई फोन आया कि आपको हम 10,000 रुपए कमीशन देंगे, आपका तो स्टूडेंट का अकाउंट है तो इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, आप हमसे 10,000 रुपए महीने के लेते रहिए। तो स्टूडेंट के लिए बड़ा अट्रैक्टिव था, वो एक मिनट में मान जाता, उसके बाद वो तो उसके घर पे बात हुई, फिर उनका पेरेंट्स मुझे जानते थे, मेरे से बात हुई, तो हमने उसको मना कर दिया। आपको शक हो जाना चाहिए जैसे ही कोई व्यक्ति, अब ये मेन बात है, सुनने वाली बात है, जैसे ही कोई व्यक्ति आपको ये कहे या कोई दूसरी तरफ से एआई टूल आपको ये कह रहा है कि आप एक बैंक अकाउंट खुलवा लीजिए, उसमें पैसे आया करेंगे और इसके लिए अलग से अकाउंट होगा, तो यहां पर आपके कान खड़े हो जाने चाहिए। हम क्योंकि यहां पर म्यूल अकाउंट डिस्कस कर रहे हैं आनंद, तो ये बात

0: श्रोताओं के लिए जाननी बहुत जरूरी है, जिसने अकाउंट खुलवाया है वो इनोसेंट है। उसको उस समय जब अकाउंट खुलवाया था तब उसके सामने ऐसा कुछ नहीं था, बाद में उसने अपने अकाउंट को बेचा या किराए पे दिया। आपका अकाउंट ना तो किराए पे देने की चीज है, आपका अकाउंट ना बेचने की चीज है, आपके अकाउंट केवल आपके पैसे आपके ट्रांजैक्शंस के लिए है, किसी भी थर्ड पार्टी को। ये तो वैसे भी कल को मान लीजिए साइबर फ्रॉड नहीं भी है, कोई व्यक्ति आपके अकाउंट में वैसे आपकी जानकारी से भी ट्रांजैक्शन कर रहा है, हो सकता है वो पैसे का सोर्स जो है वो क्रिमिनल हो। तो अगर क्रिमिनल होता है तो अगर वो व्यक्ति कल को जेल जाता है तो आप तो उसके पार्टनर माने जाएंगे उसमें, जो कि अमूमन होता है। तो मुझे लगता है कि व्यक्ति को अपने बैंक अकाउंट को पहले तो किसी को एक्सेस नहीं देना चाहिए। कोई लालच दे आपको कि आपके हम इतने पैसे देंगे, आप अपना अकाउंट हमें इस्तेमाल करने दीजिए, कितने भी पैसे ऑफर करें, मुझे लगता है उस व्यक्ति को, अनलेस कि वो आपका ब्लड रिलेटिव है, आपके घर का माता पिता है, भाई बहन है, तो अलग बात है। पर कोई भी अनजान व्यक्ति अगर आपको कर रहा है, अनजान क्या, मैं कहता हूं अगर दूर की जान पहचान का भी है तो भी आपको नहीं करना चाहिए। आपके अकाउंट में किए गए हर जमा और हर विड्रॉल के लिए जिम्मेवार पूरी तरह से आप होंगे। कल को वो व्यक्ति अगर फंसता है तो आप उसके साथ फंसते हैं। यू बिकम अ पार्टनर इन क्राइम, इसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं, आप उसके साझीदार बन जाते हैं उस अवैध गतिविधि में। आनंद
1: जी, इसी चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। अश्विनी, बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनके खातों का गलत इस्तेमाल इस समय हो रहा होगा, जब से सुप्रीम कोर्ट ने ये आरबीआई को एसओपी बनाने को कहा है, और उनको अगर बहुत बाद में पता चला कि उनका अकाउंट एक तरीके से म्यूल अकाउंट है या उस अकाउंट का इस्तेमाल गलत तरीके से हो रहा है, अब वो चाहते हैं कि वो बैंक को बताएं या पुलिस में जाकर बताएं, लेकिन उनके मन में झिझक है कि ऐसा करने से वो भी उस जांच के दायरे में आ जाएंगे और उन पर भी कार्रवाई हो सकती है। ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए?
2: नहीं नहीं बिल्कुल, आपके खाते में कोई पैसा आया है और आपको पता है कि ये सोर्स इसका जो है मेरे लिए नहीं है, ये मनी ना मेरे किसी फ्रेंड ने, रिलेटिव ने, किसी ने भी ट्रांसफर नहीं किया, ना मेरी पेंशन है, सैलरी है, कोई डिविडेंड नहीं आया, तो उसको ना तो उस व्यक्ति द्वारा फोन करने पर वापस करना चाहिए और उसको कहना चाहिए आप अपने बैंक के थ्रू ही इसको जो है रिवर्स करवाएं, और अपने बैंक को बता देना चाहिए कि दिस मनी डजंट बिलोंग्स टू मी, तो आप इसको जो है अपना वो कर लीजिए। क्योंकि बाद में जब वो, जैसे कोहली जी कह रहे थे कि जब वो इन्वेस्टिगेशन होगी और वो मनी जो उस ट्रेल में थी वो आपके अकाउंट में आई है तो आपका अकाउंट भी सीज हो जाएगा, तो उससे बचने के लिए पहले ही आपको वो करना चाहिए। और ऐसे केस में जहां आपकी गलती नहीं है, आपके खाते में पैसा कोई डाल दिया गया है, और उसके लिए भी कोर्ट ने पहले भी कहा है, बार बार कहता है कि जितना वो ट्रांजेक्शन आई है उस खाते को ही फ्रीज बैंक करे, बाकी उसके खाते को ऊपर जो है वो फ्रीज ना लगाए, ताकि उसको मुश्किल ना हो, क्योंकि वो तो कल्प्रिट नहीं है, वो तो इनोसेंट है और किसी ने उसके खाते में डाला है। तो इसलिए अपने खाते को रेगुलर हम देखते रहें, और जो हमने फोन नंबर दे रखा है उस पर भी देखते रहें कि मैसेज आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, नहीं आ रहे तो हम बैंक से ध्यान रखें, क्योंकि कई बार जो इस तरह के लोग रहते हैं वो बैंक में मिलकर या कुछ भी करके जो है आपका मोबाइल नंबर जो वहाँ फीड है उसको भी चेंज करवा देते हैं, ताकि कोई ट्रांजेक्शन वो करते हैं तो आपको उसकी इंफॉर्मेशन ही नहीं मिलती। तो इसलिए सतर्क रहना भी बहुत जरूरी है, ताकि हम थोड़े थोड़े समय में अपनी चीजों को टटोलते रहे।
1: शरद जी, कार्यक्रम में समय नहीं है, आकाशवाणी जन जागरूकता का एक बड़ा माध्यम है, साइबर ठगी से बचने के लिए आप लोगों को जागरूक रहने के लिए संक्षेप में क्या संदेश देंगे?
0: बस मैं यही कहना चाहूंगा संक्षेप में कि ये जो म्यूल अकाउंट है ये इसी प्रकार से होता है कि एक जगह जैसे बैंक में रॉबरी होती है, बैंक को लूटा जाता है, उसके लिए जैसे कार इस्तेमाल की जाती है, तो बैंक को लूटने के लिए जैसे कार है, ऐसे ही म्यूल अकाउंट आपका समझ लीजिए लूटे जाने का एक साधन बन जाता है। सतर्क रहिए, चौकन्ना रहिए, यही सबसे बड़ा इसका सोल्यूशन है, और अगर हो भी जाए तो घबराइए नहीं, जो तरीके बताए गए हैं कार्यक्रम में उनको फॉलो करिए, और आपका पैसा सरकार से, सुप्रीम कोर्ट के इस डायरेक्शन की वजह से और जो उसके अगेंस्ट एक्शन लिए जाएंगे अवश्य वापस आएगा।
1: आज की चर्चा खत्म हो रही है, लेकिन साइबर अपराधियों की कोशिशें नहीं, वो न दिन देखते हैं, न रात, न उम्र, न पेशा, उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि सामने एक छात्र है, किसान, सैनिक, व्यापारी या कोई बुजुर्ग, उन्हें सिर्फ एक चीज चाहिए, आपकी एक गलती। याद रखिए, दुनिया की सबसे मजबूत तिजोरी भी उस समय बेकार हो जाती है जब उसकी चाबी हम खुद किसी और को सौंप देते हैं। डिजिटल युग में हमारी सबसे बड़ी सुरक्षा सिर्फ पासवर्ड नहीं, जागरूकता है। आपकी सतर्कता ही आपकी सबसे बड़ी साइबर सुरक्षा है। आज अगर हम अपने बैंक खाते, अपने डेटा और अपनी डिजिटल पहचान की रक्षा करने सीख जाएं, तो न केवल अपनी मेहनत की कमाई बचाएंगे, बल्कि एक सुरक्षित, विश्वसनीय और सशक्त डिजिटल भारत के निर्माण में अपनी शानदार भूमिका भी निभाएंगे। शरद जी आपका और अश्विनी जी आपका इस चर्चा में भाग लेने के लिए और विशेषज्ञ राय आकाशवाणी

0: के श्रोताओं के साथ साझा करने के लिए बहुत बहुत आभार।
1: धन्यवाद,
2: नमस्कार।
3: अभी आप सुन रहे थे साइबर धोखाधड़ी से निपटने और अवैध बैंक खातों पर रोकथाम से जुड़े सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे आर्थिक विश्लेषक शरद कोहली और बैंकिंग विशेषज्ञ अश्विनी राणा। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आनंद श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
4: हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलो हर्ट्ज पर, FM बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, DRM चैनल 909 किलो हर्ट्ज पर और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर। रात्रि के 10 बजे हैं, आइए सुने विशेष फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मन भावन, जो आपके फेसबुक फरमाइश पर आधारित है।

मैं अकेला ही चला था जाने बे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को नमस्कार। श्रीपाल शर्मा।

श्रोताओं, फिल्म दोस्ती का गीत अभी आपने सुना। आवाज़ थी मोहम्मद रफ़ी की, गीत रचना मजरू सुल्तानपुरी की, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। सुनना चाहा है गीत को, फरमाइश हम तक पहुंची है। गांव हांडीखेड़ा सरसा से राधेश्याम शर्मा, इंद्रा शर्मा और सार्थक शर्मा की।

गीत इनको पसंद आया। भोपालगढ़ राजस्थान से कमेंट में फरमाइश हमें लिख के भेजी है धर्मेंद्र छिपा, कपिल छिपा, ईशान छिपा और पूजा परिहार ने। गांव हीरावाली फाजिलका पंजाब से सुभाष गोदारा, विमला गोदारा, इंदु पार्वती, हिमांशु गोदारा, सरवण रिणवा, हंसराज भाटिया, मणिराम, रणजीत राम, किरोड़ीवाल, सुरेंद्र भादू लिखते हैं कि विशेष मनभावन फेसबुक पर आधारित कार्यक्रम जिसकी शुरुआत बहुत अच्छी इनको लगी। गांव नलोई शिवानी मंडी हिसार से सज्जन जांगड़ा, राजबाला, कार्तिक और वेदांश जांगड़ा ने फरमाइश हमें लिख के भेजी है। नाईवाला हनुमानगढ़ राजस्थान से वेद मिड्डा, अलका मिड्डा, आया सावन झूमके फिल्म का गीत सुनने के लिए हमें कवाई बारा राजस्थान से सतीश श्रीवास्तव, प्रेमलता श्रीवास्तव, हिमानी हर्षिता और अभिषेक श्रीवास्तव ने हरीश हेरी, जगतार जैरी, सुशील डेलू और राकेश चाहर लिखते हैं बहलोल नगर से। मनभावन कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता को सादर नमस्कार के साथ कमेंट में फरमाइश हमें लिखते हैं सादुल सैर से रामकुमार रेवाड़, चंद्रकला रेवाड़, गांव हीरावाली फाजिलका पंजाब से हजारीलाल पुरोहित, मोनी पुरोहित, मोनी पारिक, भूपेंद्र पारिक, जगत मंडावरा और राजू मंडावरा।

मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में लोफर फिल्म का गीत आपने सुना। आनंद बख्शी के लिखे गीत को संगीत से संवारा था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। श्रोताओं, आपके कमेंट, आपकी पसंद फेसबुक पर लगातार हमारे पास आ रही है। गांव टोरीवाल नवाशहर पंजाब से गगनदीप थांदी, तृप्ता कुमारी थांदी, प्रियंका थांदी, प्रशांत थांदी, प्रीतम थांदी, बेबी वामिका और वाणी थांदी, ज्योतिनगर नोखा राजस्थान से पुखराज बड़गुजर, कैलाश मिस्त्री, गोवर्धन धरा, फरसाराम सोलंकी, श्यामलाल चौहान, घनश्याम भार्गव, बाबू गोरी और हसन सिक्का, एक रिश्ता रेडियो श्रोता संघ अम्भई, सिल्लोड, संभाजीनगर, औरंगाबाद से अनिल कुमार घोड़के, वैशाली अनिल, प्राजक्ता घोड़के, वैष्णवी घोड़के, गायत्री घोड़के और यज्ञेश घोड़के, गांव ढाणीलाल खां नोहर से जावेद खां, अरमान खां, इमरान खान, सीमा बानो, विनोद खां और इनके साथी लिखते हैं कोई भी गीत आप हमें सुनवाएं। दूल्हापुर मुरादाबाद यूपी से मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार और नरगिस खातून, कोई भी गीत में आप हमारा मैसेज ये शामिल करें। ग्राम पंजोनिया जालौन यूपी से सत्येंद्र कुमार चंसोलिया, आदर्श सार्थक और अलौकिक चंसोलिया, धनोरी तेलीवाला उत्तराखंड से निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया, अयान बाबू, गांव कलाना भादरा हनुमानगढ़ राजस्थान से विक्रम कड़वासरा, सचिन सतीश, योगेश कड़वासरा और युद्धव कड़वासरा, कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय और हैप्पी राय, नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी, ट्विंकल डिंपल मीनाक्षी, निशा तुलसी और दिशा गोस्वामी, गंज डुंडवारा यूपी से आफ्ताब अंसारी, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ, अनवर मास्टर, लुबना अंसारी, आलिया अंसारी, चौखूंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान, अबान और अब्बासी परिवार के लोग, पटियाली रोज रोड गंज डुंडवारा यूपी से एम खलीफ कुरैशी, नुसरत बेगम, एजाद कुरैशी बेबी, आरिया हबीबा, कुमारखेड़ा सहारनपुर से सैयद मसरूर, साइना हसन, अबसा, अदीप, नाजिया, आफिया इब्राहिम और सद्दाम, नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पी एस नवाणकर, निर्मल नवाणकर, विशाल नवाणकर, आसाम से फरमाइश भेजते हैं हमें हितेंद्र व्यास। संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव, मोहाली पंजाब से गुरप्रीत तंगोरी, जसबीर कौर, महकप्रीत कौर और सजप्रीत कौर, टेगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंदर सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा, स्वीटी छाबड़ा,

पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, किसुतासु, अर्णवानंद और सत्यमानंद, बोड़ागाछी पश्चिम बंगाल से मुन्ना भगत, गुड्डी भगत, खारिया ढाणी सरसा हरियाणा से सतवीर सिंह बिजारनिया, देवेंद्र राजपाल, अभिषेक, योगेश पूजा आरजू, नव्य बिजारनिया, विष्णु मस्कीन, रितिका मस्कीन, वाणी मस्कीन, आरो मस्कीन, दयानंद कॉलेज सोलापुर महाराष्ट्र से हमें फरमाइश भेजते हैं, मजनू कटीला से कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा, उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक और माही मलिक का ये संदेश हम तक पहुंचा, दूलापुर यूपी से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल पंकज, काजल सीमा, मानवी तन्वी, लक्ष्य सोनी, मोहिनी ऋतिक और बलवीर सिंह लिखते हैं। किसी भी गीत में आप हमारा ये संदेश शामिल करें, तो सुनिए आप सभी की पसंद पर ये गीत।

मैं चुप कराता हूँ हर शब उमड़ती बारिश को, मगर ये रोज़ गई बात छेड़ देती है। श्रोताओ, आप सुन रहे हैं विशेष कार्यक्रम मन भावन। कार्यक्रम का अगला गीत सुने, पसंद आप सभी की, सदर बाजार कुरावली से अनिल कुमार वर्मा, माया देवी वर्मा, राहुल कुमार वर्मा, विनीत कुमार वर्मा और सोनम वर्मा। कोई भी गीत आप हमें सुनवा दें, गांव थोब ओसियां, जिला जोधपुर से श्रीराम जानी और गर्वित जानी, गांव लोग ठाकुरावाला से सवन सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरलाल सिंह, अविराज सिंह और गुरनूर सिंह, सुखदीप सिंह। लिखते हैं कोई भी गीत आप हमें सुनवाएं, पर नाम हमारा ज़रूर शामिल करें। दीपेंद्र कांत सारस्वत हनुमानगढ़ टाउन से हमें लिखते हैं और ये फरमाइश हम तक पहुंची है, कोहिनूर रेडियो श्रोता संघ गोगा गांव खरगोन मध्य प्रदेश से उस्मान खत्री, रिजवान खत्री, अब्दुल गफार खत्री और इनके साथी, सनाउद से शेख मुसा मुहसिन, अशोक वर्मा और राजकुमार बोडाना, बुलंदशहर से उमेश गौड़ और रानी गौड़, गांव बडोपल हनुमानगढ़ राजस्थान से सुभाष चिंपा और इंद्रजीत चिंपा, हजारी राम बागनी बिश्नोई और भंवरलाल सिसोदिया कार्यक्रम को पसंद करते हैं। कमेंट आपके हम तक पहुंच रहे हैं। जमशेदपुर से जन्मे महतो, रेखा महतो, शिवांश कुमार सौरभ महतो और इनके साथी, गांव फरासी हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी, पुष्पेंद्र कुमार डूडी, संदीप मक्कड़, ज्योति मक्कड़, मन्नत मक्कड़, भरत मक्कड़, कमल सानी पींगावाला चौक गोराया जालंधर से हमें फरमाइश भेजते हैं, जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी डिकेस्ट्रो, पल डिकेस्ट्रो और विलिस डिकेस्ट्रो का ये संदेश हम तक पहुंचा, चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और बिमला अनेजा का संदेश हम तक पहुंचा, लोफर फिल्म के गीत की फरमाइश आपकी पूरी हो चुकी है, गीत हमने सुनवाया आपको, सागर लखनादौन मध्य प्रदेश से लाडला जी चौबे, लाडली जी चौबे, रिमझिम और अक्षर चौबे का ये संदेश हम तक पहुंचा। कोई भी गीत में हमें शामिल करें, पंचकुला चंडीगढ़ से हमारे नियमित श्रोता राहुल खुराना, रचिता खुराना, केसु रिधान खुराना और तुलसी मस्कीन

अमरावती महाराष्ट्र से प्रवीण हांगोणे, योगिता हांगोणे, कुमारी प्रियाली हांगोणे, पार्थ हांगोणे और इनके परिवार के लोग। खंडवा मध्य प्रदेश से आनंद जोशी, तनुजा जोशी, ध्रुवी जोशी और फाल्गुनी जोशी। किसी भी सदाबहार गीत में हमारा ईमेल शामिल करें और ये फरमाइश हम तक पहुंची है। लिखने वाले हैं रिगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा। हेलो मनभावन, आप हमें कोई भी गीत सुनवा दीजिए। हम आपको बता दें कि आज विशेष कार्यक्रम मनभावन में हम आपकी पसंद के गीत हम आपको सुनवा रहे हैं। संगरिया से गोवर्धन दास, कृष्णा देवी, योगेश मनीष, माही केदार चित्रा और युवांशी बद्रा का ये संदेश हम तक पहुंचा। गोविंदपुरा सीकर राजस्थान से दातार सिंह शेखावत, संगीता कंवर तुषार सिंह, रिंकी शेखावत। आदाब के साथ फरमाइश लिखते हैं गुन्नौर यूपी से फारूक अली खान, फैजी फराज, फरहीन फरहान फारिया और ताहिरा। गांव कोला हनुमानगढ़ से महावीर सुथार की फरमाइश हम तक पहुंची। बेरडी मध्य प्रदेश से हुकुम करमकर, सुनीता करमकर, हार्दिक प्राची और तनु करमकर। किशनगंज बिहार से रविंद्र मोहन दास, आशा देवी। पित्रामल उज्जैन मध्य प्रदेश से विनोद मुणत, नेहा जैन, दीपक मयंक मुणत, चेतन नाटा और इनके साथी। विशेष कार्यक्रम में नमस्कार के साथ हमें लिखते हैं रायसिंह नगर से लिखमे वाला गांव से सोहनलाल जांगिड़, मंजू जांगिड़, रवि, संजय, शो प्रकाश, सुनील जांगिड़ और इनके साथी। कोई भी गीत आप हमें सुनवाएं। पटेल नगर मलोट पंजाब से डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया, आरजू जाजोरिया और गुड्डू हमें लिखते हैं। गांव बेरा बेमेतरा छत्तीसगढ़ से प्रहलाद सिंह वर्मा, मालती वर्मा, सुरू निहू, चकवती देशमुख। सावन को आने दो फिल्म का गीत इन्होंने सुनना चाहा है। बहरहाल हम सुनवाते हैं आपको ये गीत, उसके बाद आपकी फरमाइश भी पूरी करेंगे।

कि बरसात का बादल तो दीवाना है वो क्या जाने, बरसात का बादल तो दीवाना है क्या जाने, किस राह से बचना है, किस छत को भिगोना है।

आप आई बाहर आई, इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना, मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ में। श्रोताओ, आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से आप सुन रहे हैं विशेष फरमाइशी कार्यक्रम मन भावन। मैं हूं आपके साथ श्रीपाल शर्मा। आपके कमेंट, आपकी फरमाइश लगातार हम तक पहुंच रही है। आकोट से विनायक बेंडे, श्रीमती मंगला बेंडे, विजय शुभम बेंडे, पवन जरिए, संजीव डोबेराव, सांगली महाराष्ट्र से हनुमंत शिंदे, ऋषिकेश शिंदे, वाशी महाराष्ट्र से मास्टर विठ्ठुल सुरोशे, सुषमा सुरोशे, परिधि और मायरा सुरोशे, अंबागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से रिजवान खान, आयशा, सबीहा, अनस और रेहान, कुंडलवाड़ी महाराष्ट्र से गंगाधर सावनकर, विजयलक्ष्मी सावनकर, राजेश, राकेश और ऋषिता, अनारकली बाजार जगराम से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गव्या मल्होत्रा और सुच्चा सिंह पाठक, नमस्कार, आप किसी भी सदाबहार गीत में हमारा ये संदेश शामिल करें। ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाब साबिर राही, मेहराज जहां, आज़ाद नगर, लक्सर, हरिद्वार से हमारा नमस्ते सप्रेम कबूल करें। लिखते हैं चक 15 PS श्री गंगानगर राजस्थान से सरवजीत सिंह जोशन, सरवजीत कौर जोशन, गुरमन सिंह जोशन,

मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया से आदर्शपाल सिंह जोशन और वैंकूवर कनाडा से रोबिन सिंह जोशन, पाटन दुर्ग छत्तीसगढ़ से बलकरण वर्मा, अंजनी ज्योति वर्मा, प्रहलाद राजेंद्र वर्मा, संजय अशु वर्मा, छत्रपति शिवाजी नगर खंडवा से राजेश सेन, सुरेखा सेन, कल्याण मुंबई से किशोर हिवराते, सुजाता हिवराले और प्रतीक हिवराले, नंदन कुमार सिंह, अंकित कुमार सिंह, बेगूसराय बिहार से संदीप कुमार सिंह, संजय कुमार सिंह, मोतिहारी बिहार से और अकोला महाराष्ट्र से ये मेल, ये संदेश हम तक पहुंचा है। नाम इन्होंने नहीं लिखा, सिर्फ नमस्कार लिखा है। मन भावन कार्यक्रम आकाशवाणी सूरतगढ़ से प्रस्तुतकर्ता को नमस्कार इन्होंने लिखा। जाखोद राजस्थान से शंभुदयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत खटक, सुंदरलाल, योगेश कुमार, दीपक कुमार, कुमारी पूजा खटक, आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, निवान शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा और शाइनी शर्मा, काशी निवास नागपुर से प्रकाश रंभाडे, भारती जानवी, वैष्णवी और हर्षल रंभाडे, गुमला झारखंड से एसएम जावेद और नजमुल होदा, लकवाली हेड से मास्टर भंवरलाल, सौरभ विशाल, नव्या लक्षिता, मोहम्मद रफीक, संगरिया से मुकनाराम, श्रवण कुमार, लिखाला साहवा, सिद्धार्थनगर, दरियापुर बाबली से गजानन येले, विश्वदीप येले, शेरी पटनेर, अकोला से आदित्य दामोदर, अरुणा दामोदर, दमदम एयरपोर्ट कलकत्ता से वसंत कुमार सिंह, रेखा देवी शाह और इनके साथी, नई बस्ती गंज टुंडवारा से मोहम्मद यासीन हाशमी, नाजमा बेगम हाशमी, मोहम्मद तौसीफ, मोहम्मद तैमूर और मोहम्मद कलीम अंसारी, मारहरा दरवाज़ा एटा से नबी हसन अब्बासी, नुवेद हसन, सुहेल हसन और अनब अब्बासी, नांदेड़ महाराष्ट्र से नारायण गायकवाड़, दयानंद गायकवाड़, ओमकार गायकवाड़ और साई गायकवाड़, होली चौक उत्तम नगर दिल्ली से जयराम खोरवाल, सचिन खोरवाल, अमन दीपांशु और इनके साथी, हरि सिंह सिहाग का ये संदेश हम तक पहुंचा, लिखते हैं बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है। नाम इन्होंने नहीं लिखा। मुजफ्फरपुर बिहार से आर्यन राज, रोहित राज और पीयूष कुमार, राजू ओझा का ये संदेश हम तक पहुंचा अर्जुन सर से। एमएलबी रोड ग्वालियर से सुरेश खुराना, पप्पी किरण खुराना, लव्य आरव खुराना और एसके पप्पी, बागपत यूपी से संजय डिंगिया, नमन डिंगिया और अपार डिंगिया, डोंगरगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजबीये, राधिका गजबीये, तन्मय गजबीये, कोई भी नगमे में हमारा नाम आप शामिल करें ये लिख के इन्होंने भेजा है। नागपुर महाराष्ट्र से कमल साहनी, डॉक्टर हाजी अफजल मलिक, संदीप और निपी साहनी का ये

अंधेशम तक पहुंचा। 19 GGR शेर का टीबी हनुमानगढ़ से सोनू वर्मा, चंद्रकला वर्मा। पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक। केथल हरियाणा से मधु नायक। तुलसी मस्कीन का ये संदेश हम तक पहुंचा। गोवर्धन बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से इनके साथ वीना मस्कीन, आशीष राजा, चैतन्य मस्कीन, मेगा मस्कीन, राहुल खुराना, रचिता खुराना, के सूर्यदान खुराना। नौहर से प्रताप पारगर का ये संदेश हम तक पहुंचा। बीड शहर महाराष्ट्र से नंदकिशोर घटे, संगीता घटे, साक्षी घटे, जयश्री मैत्री, अंजलि करवा और बाला साहेब करवा। उदयपुर राजस्थान से बाबू भाई, भारती देवी, रमेश नाचानी, विनीत नाचानी, तिलक तंबोली और गोपाल तंबोली का ये संदेश हम तक पहुंचा। गांव डोलेवाला मोगा पंजाब से सवन सिंह का ये संदेश हम तक पहुंचा। लिखते हैं कोई भी गीत में आप हमें शामिल करें। गिरडी झारखंड से मोहम्मद यासीन, अनजान, साइमा नवाज, हसन, बाबू अहद, मिफरा नवाज और बेबी चाहत। मेरठ से दिग्दर्शन और कविता गोड़ का संदेश हम तक पहुंचा। लिखते हैं कोई भी गीत में आप हमें शामिल करें। नमस्कार, राम राम के साथ सावन का गीत इन्होंने सुनना चाहा है। सूरतगढ़ जिला श्री गंगानगर से, गांव रघुनाथपुरा से लिखने वाले हैं चिरंजी लाल शर्मा, कक्कू। सावर रोड गंज डुंडवारा से मोहम्मद उस्मान अंसारी, मोहम्मद कलीम अंसारी, शामसुल कमर राही। हनुमानगढ़ टाउन से सुल्तान सिंह तड़, कपिल देव तड़, हिमानी जाखड़ और इनके साथी। बहरहाल सुनवाते हैं आप सभी को ये गीत।

कब के सावन में शरारत ये मेरे साथ हुई, अब के सावन में शरारत ये मेरे साथ हुई, मेरा घर छोड़ के कुल शहर में बरसात हुई।

जसपाल सिंह और कल्याणी मित्रा की आवाज़ में सावन को आने दो फिल्म का गीत आपने सुना। गांव गोपी, खीरिया, भांडेर, मध्य प्रदेश से राहुल पाल, हरिमोहन पाल, अंजना पाल, ज्योति बघेल, लक्ष्य बघेल। गांव कल्याण मलका, बठिंडा पंजाब से अमृतपाल सिंह, रामगढ़िया, परमिंदर, सचनूर और मानिंदर। तहसील लाहार, दबोह, भिंड, मध्य प्रदेश से सोनू सरपंच, मोनू बघेल, गोलू पाल और विक्की पाल। लिखते हैं कोई भी गीत आप हमें सुनवाएं। गांव बारा, कृष्णा वाली ढाणी से मदन नाथ, गणेश और नीतू का ये संदेश हम तक पहुंचा। पांजरा बोरी, भंडारा महाराष्ट्र से बबन रामटेके, वैशाली रामटेके, आरुषि और आस्था रामटेके का ये संदेश हम तक पहुंचा। राजेंद्र कुमार शर्मा का संदेश हम तक पहुंचा। इन्होंने लिखा नहीं आगे कुछ। जाखोद राजस्थान से ये संदेश हमने पहले भी शामिल किया है। कांकोला हनुमानगढ़ से महावीर सुथार। और इनके साथी संदेश आपके कमेंट सेक्शन में हम तक पहुंच रहे हैं। ये संदेश हम तक पहुंचा है। नरसिंहगढ़ राजगढ़ मध्य प्रदेश से गोविंद वैष्णवे और सुमन कोमल परी, कृतिका और रमेश चंद्र डांगी का। कस्बा बराड़ा अंबाला से रवि कुमार, राहुल, रणजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका मन्नत, गुरकिरत राहुल, गुरशबद सिंह राहुल। लिखते हैं कोई भी गीत आप हमें सुनवाएं। संदेश आपका कमेंट सेक्शन में हम तक पहुंचा। लिखने वाले हैं गांव मारहरा एटा से

और नांदेड़ से ऊंचे गांव से देवानंद शिंदे पाटिल और इनके साथी नानक खन्ना, चंचल खन्ना, लवली खन्ना, रजत खन्ना, लव खन्ना कुश खन्ना और इनके परिवार के लोग, सफीदों सिटी हरियाणा से ये संदेश हमें लिखते हैं। हीरामन बाबा रेडियो श्रोता संघ अशोकनगर मध्य प्रदेश से विनोद नारायण कुशवाहा, नारायण सिंह कुशवाहा, मुनकोबाई कुशवाहा, निशा, प्रियंका, इसिका, खुशी, ऋषि और निधि नारायण कुशवाहा। अनारकली बाजार जगराम से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गव्या मल्होत्रा, सुचा सिंह पाठक और इनके साथी। अकोला महाराष्ट्र से कोई भी गीत आप हमें सुनवाएं। चौदह पीएसबी से कुलदीप सिंह, संदीप सिंह, जसकरण सिंह और इनके साथी। बाकरावाला रावतसर से सुभाष करडवाल, नोहर हनुमानगढ़ से राकेश सुभाष और नरेश, हनुमानगढ़ से भजनलाल, गांव कल्याणा से ये फरमाइश हमने शामिल कर ली, भांडेर दतिया मध्य प्रदेश से राहुल पाल और इनके साथी। सुनवाते हैं आप सभी को कार्यक्रम के आखिर में ये गीत, और अभी एक फरमाइश हम तक पहुंची है सूरतगढ़ राजस्थान से भूपेंद्र मिशन, प्रभजोत मिशन और बेबी जानवी का। नाईवाला हनुमानगढ़ से ये भी शामिल हो चुकी है। आपके कमेंट लगातार हम तक पहुंच रहे हैं। बहरहाल कार्यक्रम के आखिर में आपको सुनवाते हैं ये गीत।

टूट पड़ती थी घटाएं जिन आँखों को देखकर, टूट पड़ती थी घटाएं जिन आँखों को देखकर, वो भरी बरसात में तरसे हैं पानी के लिए।

भास्कर अंजलि ज्योति भावना प्रभात स्वाति आरती और मानवी का ये संदेश हम शामिल करते हैं। श्रोताओ, आपको कार्यक्रम कैसा लगा हमें ज़रूर लिखें और श्रीपाल को इस बात के साथ इजाज़त दीजिए कि दूर तक छाए थे बादल और कहीं कोई साया न था, दूर तक छाए थे बादल और कहीं साया न था, इस तरह बरसात का मौसम कभी आया न था। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे फिल्मी गीतों का विशेष कार्यक्रम मन भावन। आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। रात्रि के 11 बजने वाले हैं, थोड़ी ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से समाचार रिले किए जाएंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रवि कपूर। संसद ने सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इसे आज पारित किया और लोकसभा ने इसे सोमवार को पारित किया था। विधेयक में संशोधन के तहत सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की वर्तमान संख्या 33 से बढ़ाकर 37 की जाएगी। राज्यसभा में विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के आदर्श वाक्य पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि देश के लोग हर क्षेत्र में सुधार देख रहे हैं और ये विधेयक न्यायिक सुधारों का ही एक हिस्सा है।
1: धारा 370 और 35 से ये एक विभेदकारी और अन्याय पूर्वक एक धारा थी जिसको समाप्त किया नरेंद्र मोदी जी ने, और उसके बाद जम्मू कश्मीर में विकास की रफ्तार भी तेज हुई। विरासत और विकास दोनों को बल मिला, वहां के नागरिकों को रोजगार मिला, पहली बार उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर में इतना काम होते हुए देखा, तो नागरिक तो वहां खुश है।
0: विधेयक का उद्देश्य सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों को निपटाना है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई समेत विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण कई बार बाधित होने के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा में अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू होने का प्रयास किया। श्री बिरला ने सभी सदस्यों से प्रश्नकाल के सुचारू संचालन में सहयोग करने का आग्रह किया।
2: संसद चर्चा संवाद के लिए, आपके विचारों की अभिव्यक्ति के लिए प्रश्नकाल में महत्वपूर्ण प्रश्न पूछो। कई विभागों के महत्वपूर्ण प्रश्न है और आप नियोजित तरीके से पोस्टरबाजी करके प्रदर्शन कर सदन की गरिमा को घटाना चाहते हैं।
0: मेटा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जुकरबर्ग ने बाल यौन शोषण सामग्री, डीप फेक सामग्री और प्लेटफॉर्म के संचालन में हुई त्रुटियों के लिए आज भारत सरकार से क्षमा मांगी है। सूत्रों के अनुसार मेटा ने स्वीकार किया है कि कुछ विशेष प्रकार की सामग्री को बढ़ावा देने के लिए बड़ी रकम का भुगतान किया गया था। बंबई उच्च न्यायालय ने मेटा, एक्सकॉर्प तथा गूगल एलएलसी को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को निशाना बनाकर बनाए गए अपमानजनक, अश्लील और मान हानिकारक सोशल मीडिया पोस्ट को तुरंत हटाने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को ऐसा तंत्र विकसित करने के लिए भी कहा है जिससे पीड़ितों को अदालतों का सहारा लेने की आवश्यकता के बिना ही ऐसी सामग्री को तुरंत हटाया जा सके। भारत ने आज पाकिस्तान को पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में हिंसा रोकने, आतंकी नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई करने और उसके अवैध कब्जे वाले सभी भारतीय क्षेत्रों को तुरंत खाली करने को कहा है। तथाकथित यौमे इस्तेसाहल पर पाकिस्तान के विदेश मंत्री की टिप्पणियों के संबंध में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि दुनिया इन सुनियोजित तमाशों से मूर्ख नहीं बन रही है। श्री जायसवाल ने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा हैं, हमेशा से रहे हैं और हमेशा रहेंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज सिलक्यारा सुरंग बचाव अभियान में अहम भूमिका निभाने वाले 12 रेट माइनिंग श्रमिकों को सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक से सम्मानित किया। नई दिल्ली में आयोजित समारोह में सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा और मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। इस अवसर पर श्री गडकरी ने कहा कि सिलक्यारा सुरंग हादसे का बचाव अभियान हाल के वर्षों के सबसे कठिन अभियानों में से एक था। पंजाब पुलिस ने दिल्ली के जंतर मंतर पर हाल ही में हुए विद्यार्थी

0: is intensifying with each passing day. The agitating students have announced plans to lay siege to the Jharkhand Assembly during the upcoming monsoon session to press their demands. India enjoyed a mixed day at the Korea Masters Badminton Tournament in Asan, with seven players advancing to the second round of women's singles, while all six men's singles players crashed out in the opening round. In the women's singles, Anmol Kher, Tanvi Sharma, Mansi Singh, Rakshita, Ramraj, Ashmita Chaliha, Isharani Barua and Shriyanshi Valishetty progressed to the second round with impressive victories. And that is the end of this news bulletin.
1: मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलो हर्ट्स पर, एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, डीआरएम चैनल 909 किलो हर्ट्ज़ पर और मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एआईआर पर हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। रात्रि के 11:10 हुए हैं। अब हमारी आज की प्रसारण सभा के कार्यक्रम यहीं संपन्न होते हैं। प्रातः 5:50 पर आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक इजाज़त दीजिए। शुभरात्रि। जय हिंद।